मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। आज दिन है बुधवार, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 27वीं तिथि, तदनुसार 17 जून सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:55 और 35 सेकंड हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की ये पहली सभा।

सुबह की पावन बेला और चिड़ियों की चहचहाहट के साथ आइए करते हैं दिन की शुरुआत। तो श्रोताओं नमस्कार, लखनऊ में आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत करता है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए आइए रुख करते हैं आकाशवाणी दिल्ली की ओर, जहां से अब से बस थोड़ी ही देर बाद यानी 6 बजे से रिले किया जाएगा हिंदी समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में कल G7 शिखर सम्मेलन में एक सत्र को संबोधित किया। इसका विषय था नई साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का निर्माण। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सत्र में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर गठबंधन, वैश्विक बायोफ्यूल गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम अभियान शामिल है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा

0: प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो से मुलाकात कर कहा कि भारत और केन्या की साझेदारी ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। G7 देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। भारत, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया ने भी इसका समर्थन किया है। सभी सदस्यों ने इबोला के लिए वैक्सीन, जांच और इलाज के विकास में सहयोग का भी वादा किया। G7 ने कैंसर का इलाज ढूंढने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा। श्री शाह ने अधिकारियों को 5 जेजे क्लस्टर के पुनर्वास के लिए 45 दिनों के भीतर निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों में आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और खेल मैदान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी और इनमें कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आज नशा मुक्त भारत अभियान NMBA के अंतर्गत नशा मुक्त भारत सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान डॉ. वीरेंद्र कुमार नशा मुक्ति मित्र के लिए पर्सनल डैशबोर्ड और NMBA पर आधारित एक लघु फिल्म सहित कई प्रमुख पहल का भी अनावरण करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आज मुंबई के वर्ली साइकिल ट्रैक पर विशेष फिट इंडिया साइक्लोथॉन का नेतृत्व करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने बताया कि ये आयोजन व्यापक फिट इंडिया अभियान का हिस्सा है। फीफा विश्व कप में कल फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हरा दिया। प्रतियोगिता के एक अन्य मुकाबले में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। उरुग्वे और सऊदी अरब तथा बेल्जियम और मिस्र के मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रही हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। श्रोताओं, खेती किसानी से जुड़ी जानकारियों के लिए आइए चलते हैं हमारे अगले कार्यक्रम की ओर। तो प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा, जिसमें आज संकर धान की उन्नत कृषि तकनीक विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर राम लखन सिंह। इनसे इस विषय पर बात करने जा रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय। आइए सुनते हैं।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहां खरीफ में धान उत्पादन की योजना बनाए हैं और खास करके संकर धान, तो इसकी उन्नत कृषि तकनीक क्या है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र सेकेंड मनकापुर गोंडा से वैज्ञानिक सस्य विज्ञान डॉक्टर राम लखन सिंह साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जहां इस बार संकर धान उत्पादन करना चाहते हैं किसान भाई बहन, तो क्या सलाह है आपकी?

0: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, संकर धान की उत्पादन के लिए भूमि का चयन, प्रजाति का चयन किसान भाई कर लें। भूमि के चयन के लिए दोमट से मटियार दोमट मिट्टी जिसकी जल धारण क्षमता अच्छी होती है वह भूमि उपयुक्त है। इसकी उन्नतशील प्रजातियों में पंत संकर धान 1, पंत संकर धान 2, नरेंद्र संकर धान 2, PHB 71, KRH 2, प्रो एग्रो 6201, प्रो एग्रो 6444, PAC 835, पूसा आर एस टेन सुगंधित भी है
1: जी,
0: अच्छी प्रजाति है। और गंगा नरेंद्र ऊसर संकर धान 3 जो ऊसर भूमि में बोने के लिए अच्छी प्रजाति है। सह्याद्री 4, US 312, एराइज प्राइमा 27P31 जिसकी उपज क्षमता ज्यादा है 32 से 35 कुंटल प्रति एकड़ है
1: जी।
0: तो ये प्रजातियां हैं, इनकी उपज 4 से 5 कुंटल प्रति एकड़ सामान प्रजातियों से अधिक होती है।
1: अच्छा।
0: संकर प्रजातियां
1: जी,
0: तो इनका किसान भाई अगर उत्पादन लेते हैं, संकर धान की खेती करते हैं तो उनकी उपज अच्छी मिलती है और प्रति इकाई क्षेत्रफल में ज्यादा आय प्राप्त होती है।
1: डॉक्टर साहब, संकर धान की उन्नत कृषि तकनीक की बात चल रही है तो संकर धान की रोपाई करना अच्छा होगा या सीधी बुआई?
0: अगर वैज्ञानिक तकनीक से धान की सीधी बुआई करते हैं तो उससे भी बराबर उत्पादन मिलता है।
1: क्या अभी भी संकर धान की जो उन्नत प्रजातियां हैं उनकी नर्सरी पड़ सकती है?
0: हाँ, इसकी नर्सरी जून के अंतिम सप्ताह तक किसान भाई बुआई कर सकते हैं,
1: यानी नर्सरी डाल सकते हैं
0: जी।
1: तो नर्सरी प्रबंधन में क्या कुछ खास है डॉक्टर साहब?
0: नर्सरी के लिए जैसे किसान भाई 1 एकड़ में संकर धान की रोपाई करना चाहते हैं तो इसके 10 में से 12 में से 350 से 400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में इसकी नर्सरी तैयार करते हैं
1: जी।
0: नर्सरी ऊंचे स्थान पर हो, अच्छी तरह से खेत की तैयारी करें, इसमें सड़ी गोबर की खाद अच्छी तरह से मिला लें।
1: हाँ।
0: और इसकी मात्रा जो होगी 350 से 400 वर्ग मीटर के लिए 7 किलोग्राम मात्रा यूरिया की, DAP की 4.3 किलोग्राम मात्रा और म्यूटा पोटास की 3.3 किलो मात्रा की जरूरत होगी।
1: डॉक्टर साहब, मात्रा एक बार खाद की दोबारा दोहरा दें।
0: 1 एकड़ क्षेत्र में संकर धान की रोपाई के लिए इसके 10 में से 12 में हिस्सा 350 से 400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में
1: जी
0: धान की नर्सरी तैयार की जाती है। और इस क्षेत्रफल में, नर्सरी के क्षेत्रफल में यूरिया की 7 किलोग्राम मात्रा, DAP की 4.3 किलोग्राम मात्रा और म्यूरेट ऑफ पोटास की 3.3 किलो मात्रा की जरूरत होगी।
1: यानी 3 से 3.5 किलो पोटास
0: जी जी,
1: उतने नर्सरी के लिए, 1 एकड़ की रोपाई के लिए
0: जी।
1: बीज की मात्रा कितनी लगेगी 1 एकड़ के लिए डॉक्टर साहब?
0: 6 से 8 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है
1: जी। फिर नर्सरी की देखभाल में कुछ खास सावधानियां होंगी?
0: नर्सरी की देखभाल में ये देखा जाता है कि नर्सरी में जिंक तत्व की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं
1: और कभी कभी लोहा पोषक तत्व।
0: हाँ, लौह तत्व की कमी के लक्षण, जब सफेद रंग की नर्सरी दिखाई देती है, ऊपर का हिस्सा नर्सरी का सफेद दिखाई देना, पत्तियां शुरू हो जाती हैं, तो ये लौह तत्व की कमी के लक्षण होते हैं। जिंक की कमी की पूर्ति के लिए 5 ग्राम जिंक सल्फेट प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। और जब लौह तत्व की कमी जिसमें सफेद पत्तियां दिखाई दें उस समय फेरस सल्फेट की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे संकर धान की उन्नत कृषि तकनीक के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 9120-8530-29 9120-8530-29 9120-8530-29।
1: डॉक्टर राम लखन सिंह साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और संकर धान की उन्नत कृषि तकनीक क्या है इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: संकर धान की उन्नत कृषि तकनीक, इस विषय पर खेती किसानी कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमारे किसान भाइयों को जानकारी दे रहे थे डॉक्टर राम लखन सिंह, जिनसे इस विषय पर बातचीत कर रहे थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। मीडियम वेव के मीटर पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र।

0: स्वयं प्रदूषित है। जल को प्रदूषण मुक्त करना हम सबका पुनीत कर्तव्य है। अथर्ववेद के अनुसार जल सुखदायक है, इसीलिए उनसे प्रार्थना की गई है, आपो हिष्ठा मयो भुवस तान ऊर्जे दधातन महे अणाय चक्षसे। अर्थात हे जलो, क्योंकि आप सुखदायक हो इसलिए हमें सुखोपभोग करने, रमणीय तत्वों के दर्शन करने तथा परब्रह्म से साक्षात्कार के लिए परिपुष्ट करिए।
1: जल जीवन का आधार। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर आशाराम त्रिपाठी के स्वरों में आज का ये सुविचार। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। और श्रोताओं, अब प्रस्तुत है आस्था प्रार्थना आत्मा व परमात्मा के प्रेम भाव से परिपूर्ण कार्यक्रम आराधना का।

भगवान गणेश की महिमा अपरंपार है। प्रभु अपने भक्तों का सदैव हित करते हैं। हे प्रभु, हम सभी के दुखों का आपको ज्ञान है। हमारी इच्छाओं से, हमारी आशाओं से आप भली प्रकार परिचित हैं। हे प्रभु, आपकी शरण में आकर हम सभी भक्तों को सुख मिलता है।

हमारा जीवन तो बहते पानी के समान है। अगर रास्ते में किसी को शीतलता दे पाए तो वो हमारा सौभाग्य होगा। तो आइए अपने जीवन को जनहित के काम में लगा दें, क्योंकि जो काम व्यर्थ चला जाता है वो तो कभी वापस लौट कर नहीं आता ना।

हे माँ गंगे, आपकी ममता की कोई सीमा ही नहीं है। माता के चरणों में ही हम सभी भक्तों को सुख मिलता है। माता की इसी ममतामयी छाया में आकर हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए जपते हैं गंगा मैया का नाम।

सही अर्थों में वास्तविक धर्म है मानव धर्म। हे मानव, यदि तू अपने हृदय में सत्य, शांति, दया व अहिंसा की भावना रखेगा तो ईश्वर तुझे अपने हृदय में ही मिल जाएगा, क्योंकि ईश्वर ही सत्य है। ईश्वर आस्था और विश्वास का केंद्र बिंदु है।

हम सभी पर ईश्वर की कृपा यूं ही बनी रहे और हम सभी का दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरा हो। इसी शुभेच्छा के साथ आज का भक्तिमय कार्यक्रम आराधना यहीं समाप्त होता है।

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। और अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस से आज का संगीतमय पाठ। आज सुनिए भाग 205।

भरत जी को चित्रकूट के मार्ग पर अग्रसर होते देख देवराज इंद्र के मन में जो सोच और चिंता हो गई थी, देवगुरु बृहस्पति के शीतल वचनों से उसका शमन हो जाता है। यमुना तट पर पहुंच प्रेम विफल भरत की आंखों में प्रेम और व्यथा के आंसू उमड़ आते हैं। श्री राम के विरह रूपी सागर में डूबते उतराते उनका विवेक जागृत होता है कि शीघ्र ही उन्हें अपने आराध्य के दर्शन होंगे। निषाद राज की सेवा और सहायता से उन्हें पूर्ण संतोष मिला है। मार्ग में जहां जहां श्री राम सीता तथा लक्ष्मण ने विश्राम किया था, उन स्थानों को वो श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। आसपास के गांवों के स्त्री पुरुष भरत का रूप और भ्रातृ प्रेम देख परम आनंदित हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से आज का संगीतमय प्रसंग। स्वर अनूप जलोटा और उत्तरा केलकर के थे और संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। श्रोताओं, सुबह के 6:55 होने को हैं। अब से बस थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले संस्कृत समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नेतृत्वं कुर्वन्ति। जापान देशस्य प्रधानमन्त्रिणा सह मिलित्वा श्रीमोदी अवधानं दत्तवान् यत् भारत जापान देशयोः सम्बन्धः विविधेषु क्षेत्रेषु निरन्तरं सुदृढं भविष्यति। फ्रांस देशस्य एवियन नगरम् अद्य वैश्विक कूटनीतेः केन्द्रः अस्ति यत् G7 शिखर सम्मेलनस्य महत्वपूर्णे चरणे अस्ति। भारतस्य सहभागी देशस्य रूपेण सहभागित्वेन सर्वेषां दृष्टिः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्पेन सह बहुप्रतीक्षितायां द्वैपाक्षिक सम्मेलने दृढतया निबद्धः अस्ति यत् अद्य शिखर सम्मेलनावधौ भविष्यति। 25,000 फरवरी मासे वाशिंगटन डीसी इत्यत्र अंतिम वारम मेलनानंतरम उभयोः मध्ये एतत् प्रथमं मेलनं भविष्यति। अद्यतनस्य संवादस्य समये तौ बहुविध क्षेत्रेषु द्वैपाक्षिक सहयोगं सुदृढं कर्तुं चर्चां करिष्यतः तथा च परस्पर हितानां क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु चर्चां करिष्यतः इत्यपेक्षा अस्ति। अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिना सह मेलनम् अतिरिच्य अद्य प्रधानमन्त्री श्रीमोदी सर्वेभ्यः लाभाय सन्तुलितं सर्वसमावेशं सुस्थिरं च आर्थिकवृद्धेः पुनरुत्थानम् इत्यस्मिन् विषये तथा कृत्रिमबुद्धिमत्तायाः सुरक्षितं द्रुतप्रभावी उपयोगं सुनिश्चेतुम् इति विषये G7 इत्यस्य कार्यसत्रे अपि भागं ग्रहीष्यति। प्रधानमन्त्री ईयू परिषदः अध्यक्षेण एंटोनियो कोष्टा इत्यनेन सह ईयू अध्यक्षस्य आयोगस्य अध्यक्षया फॉन डेर लेयन इत्यनया सह त्रिपक्षीय सम्मेलनं करिष्यति। जर्मन चांसलर फेडरिक मर्ज इत्यनेन सहापि द्वैपाक्षिकोपवेशनं भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः फ्रांस देशस्य एवियन नगरे G7 शिखर सम्मेलने नूतन सहभागित्वस्य निर्माणं तथा अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यभावस्य पुनर्निर्माणं इत्यस्मिन् विषये सत्रम् अभिसम्बोधितवान्। विदेशमन्त्रालयेन सूचितं यत् सत्रावधौ प्रधानमन्त्रिणा अन्तर्राष्ट्रिय सहभागित्व विनिर्माणे विशेषतः वर्धमान परस्पर सम्बद्ध विश्वे विश्वासस्य महत्वम् अधोरेखितम्। सभायां प्रधानमन्त्रिणा अधोरेखितं यत् भारतं सर्वदा मानवतायै प्रथमम् इति दृष्टिकोणम् अनुसरति। सः अग्रे अकथयत् यत् भारतस्य अन्ताराष्ट्रिय सहभागित्वस्य दूरदृष्टिः वसुधैव कुटुम्बकम् इत्यस्य कालातीतदर्शनस्य आधारेण अस्ति, विश्वमेकः परिवारः अस्ति इति। फुटबॉल क्रीडायां गतरात्रौ न्यूजर्सी क्रीडाङ्गणे प्रथमसमूहस्य आरम्भिक क्रीडायां फ्रांस देशेन सेनेगल देशं 3-1 इति अंकैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रही हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। श्रोताओं, हमारी दिनचर्या और हमारी रोजमर्रा की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना कितना जरूरी है, ये रोज हम आपको बताते हैं हमारी स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत। और श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में नीना सोनकर हमें बताने जा रही हैं स्वाद और सेहत का दुर्लभ संगम पत्थर फूल के बारे में। आइए सुनते हैं।
2: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं, हम बात करने जा रहे हैं आज एक ऐसे मसाले की जो नाम से जितना अनोखा लगता है उतना ही अनमोल भी है। ये है पत्थर फूल, जिसे कई लोग कालापासी या डैगर फूल के नाम से भी जानते हैं। आम मसालों की तरह न दिखने वाला ये काले रंग का फूलनुमा तत्व असल में हमारी पारंपरिक पाक शैली और आयुर्वेदिक ज्ञान का एक दुर्लभ रत्न है। पत्थर फूल कोई सुंदर सजावटी फूल नहीं है, बल्कि ये एक सूखी काली और असमान आकार वाली वनस्पति होती है, जिसे हिमालयी क्षेत्रों और विशेष रूप से दक्षिण भारत के जंगलों में पाया जाता है। इसे पेड़ों की छाल से निकाला जाता है और फिर सुखाकर संग्रहित किया जाता है। इसका उपयोग भारतीय रसोई के व्यंजनों में लंबे समय से होता आया है। ये कई प्रकार के औषधीय गुणों के लिए भी जाना जाता है। इसकी सुगंध थोड़ी तीखी होती है, कुछ कुछ धुएं जैसी, कुछ कुछ मिट्टी जैसी। जब इसे तेल या घी में भून

0: हैं तो ये एक अलग ही खुशबू छोड़ता है जो खाने में गहराई और गर्माहट लाता है। खास तौर पर कुछ एक व्यंजनों में इसका विशेष स्थान होता है, लेकिन शाकाहारी खाना बनाने वाले भी अगर इसे सही मात्रा में इस्तेमाल करें तो इसकी सुगंध और प्रभाव से सब्जियों, दालों या कढ़ी में भी स्वाद की एक नई परत जुड़ जाती है। अब बात करते हैं इसके स्वास्थ्य संबंधी गुणों की, जो शायद आम लोगों को बहुत कम ज्ञात हो। आयुर्वेद में पत्थर फूल को पाचन में सहायक, वात शामक और शरीर को भीतर से गर्माहट देने वाला मसाला माना गया है। जिन लोगों को भूख नहीं लगती है, गैस की समस्या रहती है या पाचन कमजोर है, उनके लिए ये बहुत फायदेमंद होता है। ये आंतों को मजबूत करता है और भोजन को आसानी से पचने लायक बनाता है। यही कारण है कि इसे अधिकतर हैवी और मांसाहारी व्यंजनों में डाला जाता है ताकि पेट पर बोझ न पड़े। पत्थर फूल में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण भी पाए जाते हैं, जो शरीर को संक्रमणों से लड़ने की शक्ति देते हैं। खासकर बरसात और गर्मियों से लेकर सर्दियों में, जब शरीर जल्दी जल्दी सर्दी, जुकाम या बदहजमी से परेशान हो जाता है, तब पत्थर फूल जैसे मसाले का संतुलित उपयोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकता है। ये शरीर की गर्मी को बनाए रखता है और विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है। सुनने में ये जरूर लगता है कि ये कोई कठिन, पेचीदा या शहरों में दुर्लभ मसाला होगा, लेकिन सच तो ये है कि पत्थर फूल अब ऑनलाइन और कई स्थानीय मसाला दुकानों पर भी उपलब्ध है। बस जरूरत है इसे पहचानने और इसके गुणों को समझने की। ये मसाला दिखने में भले ही अनगिनत और थोड़ा सख्त लगे, लेकिन इसके भीतर छिपी प्राकृतिक औषधीय शक्ति बहुत प्रभावशाली है। ये भी जरूरी है कि हम समझें, पत्थर फूल कोई ऐसा तत्व नहीं है जिसे रोजाना या बड़ी मात्रा में लिया जाए। इसका उपयोग सीमित मात्रा में, कभी कभी विशेष व्यंजनों में किया जाना चाहिए, क्योंकि इसकी प्रकृति तेज होती है। अत्यधिक सेवन करने से कुछ लोगों को जलन या एसिडिटी जैसी शिकायत हो सकती है, पर जब सही मात्रा में और समझदारी से इसे इस्तेमाल किया जाता है, तब ये भोजन को स्वादिष्ट भी बनाता है और सेहतमंद भी। श्रोताओं, हमारी रसोई सिर्फ स्वाद की जगह ही नहीं, बल्कि ये एक औषधालय भी है, जहाँ हर मसाला, हर बीज, हर पत्ता अपने भीतर कोई न कोई गुण समेटे हुए है। पत्थर फूल उनमें से एक ऐसा मसाला है जिसे अगर हम अपनी भोजन परंपरा में फिर से स्थान दें, तो यह न केवल हमारी थाली को समृद्ध करेगा, बल्कि सेहत को भी संतुलित रखेगा। तो अगली बार जब आप किसी खास व्यंजन की तैयारी करें, चाहे वो शाही पुलाव हो या किसी ठंडे दिन की गर्मा गर्म कढ़ी, पत्थर फूल को जरूर आजमाइए। इसके स्वाद की परत, इसकी खुशबू और इसके औषधीय गुण तीनों मिलकर आपके अनुभव को खास बना देंगे। आज की स्वास्थ्य चर्चा में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और देसी तत्व के साथ, जो आपके घर की रसोई में छिपा कोई भी रत्न हो सकता है। तब तक स्वाद में परंपरा और सेहत में समझदारी बनाए रखिए। नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: स्वाद और सेहत का दुर्लभ संगम पत्थर फूल, इस विषय पर अभी हमें जानकारी दे रही थी नीना सोनकर, हमारी स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। तो श्रोताओं, अब आइए डालते हैं एक नजर आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों पर।

न्यूज बुलेटिन विश्व दर्पण का अनुप्रसारण समय रहेगा सुबह 10:10 का। जिले की हलचल आप सुन सकते हैं सुबह 9:15 से, जिसमें आज आप सुनेंगे अंबेडकर नगर और बांदा जिले की हलचल। सुबह 9:30 का वक्त होगा उर्दू कार्यक्रम का। आज की पेशकश होगी आकाशवाणी प्रयागराज के मरकज से, और इस कार्यक्रम में आज पेश किया जाएगा मकाला, असगर गोंडवी की शायरी में सूफियाना आहंग। मकाला निगार होंगे डॉक्टर जहांगीर हसन और कला में शायर होंगी ताजवर सुल्ताना।

खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इस विषय पर विविधा प्रोग्राम में सुबह 7:10 से आपके साथ होंगी सीमा शाही। मातृ शिशु एवं स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम आंगनबाड़ी के अंतर्गत दोपहर 1:15 से चर्चा होगी जीवन के पहले 1000 दिनों का महत्व, सुरक्षित प्रसव और अस्पताल में डिलीवरी के फायदे। साथ ही राष्ट्रीय पोषण मिशन और स्वच्छ जल सुरक्षित जल, इस विषय पर आज की भेंट वार्ता आप सुनेंगे नीना सोनकर से। विषय रहेगा क्या होता है सनबर्न, गर्मी के मौसम में त्वचा का कैसे रखें ख्याल, इस विषय पर डॉक्टर प्रदीप शुक्ला की भेंट वार्ता आप सुनेंगे। भेंट करता होंगी नीना सोनकर।

विज्ञान और किसान, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 2:30 से, जिसमें आज आप सुनेंगे धान की उन्नत कृषि तकनीक विषय पर डॉक्टर राजेश कुमार कन्नौजिया की भेंट वार्ता। भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय।

श्रोताओं, युवा तरंग कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा शाम 5:10 का, जिसमें आज की बात क्रम के अंतर्गत आज चर्चा होगी तकनीकी शिक्षा पर, साथ ही छोटी बचत का बेहतर उपयोग विषय पर प्रोफेसर अशोक कुमार कैथल की भेंट वार्ता आप सुनेंगे। भेंटकर्ता होंगे डॉक्टर नागेंद्र सिंह रघुवंशी। नई उड़ान कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा शाम 5:45 का। हेलो किसान, किसान भाइयों के लिए ये सजीव फोन इन प्रोग्राम आज प्रसारित किया जाएगा शाम 6:30 से, जिसमें आज के किसान भाई सुनेंगे खरीफ उत्पादन की योजना और तैयारी विषय पर चर्चा, साथ ही साथ गन्ने की फसल में सामयिक प्रबंधन विषय पर निदेशक आज जानकारी देंगे डॉक्टर सत्यानंद सुशील, जो कि निदेशक हैं भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान के। प्रस्तुति एवं संचालन होगा डॉक्टर सुशील कुमार राय का। तो श्रोताओं, ये थी हमारी केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। तो श्रोताओं नमस्कार, लखनऊ के इस खास सेगमेंट में अब पेश है विविधा, आइए सुनते हैं

नमस्कार। लखनऊ के इस खास सेगमेंट में आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, आभार। विविधा, ये खास प्रोग्राम लेकर आज हाजिर हूँ मैं सीमा शाही। कि बुंदेली हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ, आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिनका नाम भारतीय इतिहास में साहस, शौर्य और देशभक्ति के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा चुका है। जी हाँ, ये हैं खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जब भी भारत की स्वतंत्र

0: स्वतंत्रता संग्राम की बात होती है तब एक नाम पूरे सम्मान और गर्व के साथ लिया जाता है और वो है रानी लक्ष्मीबाई का नाम। उनका जीवन साहस, आत्मसम्मान और राष्ट्र प्रेम का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि देशभक्ति और वीरता किसी एक वर्ग या फिर लिंग की पहचान नहीं होती, बल्कि ये एक दृढ़ संकल्प और आत्मबल की पहचान होती है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। उनका बचपन का नाम था मणिकर्णिका, जिन्हें प्यार से मनु कहा जाता था। बचपन से ही साहसी, निर्भीक और आत्मविश्वासी थीं हमारी रानी लक्ष्मीबाई। उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कौशल का विशेष प्रशिक्षण भी प्राप्त था और आगे चलकर उनका यही गुण उन्हें भारतीय इतिहास की सबसे वीर महिलाओं में शामिल कर चुका है।
1: चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी।
0: मणिकर्णिका यानी मनु के विवाह के बाद वो झांसी की रानी बनी, लेकिन उनके जीवन में एक कठिन समय तब आया जब उनके पति महाराजा गंगाधर राव का निधन हो गया और इसी बात का फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने अपने लैप्स के सिद्धांत के आधार पर झांसी को अपने अधिकार में लेने का प्रयास किया, लेकिन उस समय रानी लक्ष्मीबाई ने दृढ़ता से इस बात का घोर विरोध किया और घोषणा कर दी कि मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी।
2: मैं लक्ष्मीबाई हूँ, झांसी की रानी, झांसी को अंग्रेजों के हाथों में नहीं जाने दूंगी।
0: ये केवल एक वाक्य नहीं था, बल्कि ये भारत की स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की एक बुलंद आवाज थी। सन 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक माना जाता है। इस संघर्ष में रानी लक्ष्मीबाई ने अद्भुत नेतृत्व और वीरता का परिचय दिया था। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ मिलकर अंग्रेजी सेना का डटकर सामना किया। युद्ध के मैदान में उनका साहस देखकर क्या मित्र क्या शत्रु दोनों ही आश्चर्यचकित रह जाते थे। इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में आज भी दर्ज है कि रानी लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र को पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार होकर वो युद्ध भूमि में उतरी थीं। ये दृश्य केवल एक माँ का नहीं बल्कि एक वीर योद्धा का भी प्रतीक था, जो अपने कर्तव्य और मातृभूमि की रक्षा के लिए हर चुनौती का सामना करने को बिल्कुल तैयार थीं।

रानी लक्ष्मीबाई का जीवन केवल युद्ध की कहानी नहीं है, ये आत्मसम्मान, नेतृत्व, साहस और राष्ट्रभक्ति की प्रेरणादायक गाथा है। उन्होंने उस समय महिलाओं की शक्ति और क्षमता का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जिसने आने वाली पीढ़ियों को एक प्रेरणा दी। महान कवित्री सुभद्रा चौहान ने उनकी वीरता का वर्णन कुछ यूं किया है कि बुंदेली हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। जी हाँ, इन पंक्तियों ने रानी लक्ष्मीबाई को जन जन के हृदय में अमर बना दिया। आज भी जब साहस, त्याग और राष्ट्र प्रेम की चर्चा होती है, तब तब रानी लक्ष्मीबाई का नाम सम्मान पूर्वक लिया जाता है। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि यदि मन में दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी बाधा हमें अपने लक्ष्य से नहीं डिगा सकती। तो दोस्तों, हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने कर्तव्यों का निष्ठा पूर्वक पालन करना चाहिए। अंत में चलते चलते बस इतना ही कहना चाहूंगी कि वीरता केवल रणभूमि में नहीं बल्कि सत्य, न्याय और कर्तव्य के लिए खड़े होने में भी होती है। आइए हम सभी रानी लक्ष्मीबाई के साहस, आत्मसम्मान और राष्ट्र प्रेम से प्रेरणा लें और अपने जीवन में दृढ़ संकल्प और सकारात्मक सोच को अपनाएं। इसी प्रेरणादायक विचार के साथ आज के विविधा कार्यक्रम से सीमा शाही को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे नमस्कार लखनऊ का ये खास प्रोग्राम विविधा। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। अब से बस थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे गोरखपुर केंद्र से रिले प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था, आगामी त्योहारों, नीट यूजी पुनः परीक्षा और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर की समीक्षा बैठक। 21 जून को प्रस्तावित नीट यूजी पुनः परीक्षा में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में अभ्यर्थियों को 50% छूट के दिए निर्देश। नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक लगाया प्रतिबंध। संदेश संपादन सुविधा भी 30 जून तक रहेगी बंद। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 19 जून को पूर्वांचल को देंगे 3 रेल सेवाओं की सौगात। अब छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन का मऊ के रास्ते होगा संचालन। और राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े स्कूलों और मान्यता प्राप्त स्कूलों में 24 जून तक बढ़ाया ग्रीष्मकालीन अवकाश। अब 25 जून से शुरू होंगी शैक्षणिक गतिविधियां। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था, आगामी पर्व त्योहारों, नीट यूजी पुनः परीक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि 21 जून को प्रस्तावित नीट यूजी परीक्षा में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में प्रवेश पत्र दिखाने पर किराए में 50% की छूट

0: छूट दी जाए। मुख्यमंत्री ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों एवं 762 नगरीय निकायों में अमृत सरोवरों एवं ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थलों पर योग कार्यक्रम आयोजित करने के भी निर्देश दिए। बैठक के दौरान श्री योगी ने मुहर्रम के दौरान निर्धारित नियमों व मानकों का पालन करवाते हुए शांति एवं सौहार्द बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा आगामी 21 जून को होने वाली नीट यूजी की पुनर्परीक्षा में पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। एनटीए ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले दशक में बुनियादी ढांचे का रिकॉर्ड स्तर पर उन्नयन हुआ है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने देश के लोगों के लिए अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया ताकि विकसित भारत के स्वप्न को साकार किया जा सके। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आधुनिक अवसंरचना किसी भी विकसित राष्ट्र की पहचान होती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के यशस्वी नेतृत्व में भारत ने बीते 12 वर्षों में इस दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धियां अर्जित की हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश भर में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के संसदीय कार्य और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कल लखनऊ में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5,37,00,000 आवास का आवंटन किया है, जिसमें से 62,00,000 से अधिक परिवार यूपी के शामिल हैं। श्री खन्ना ने कहा कि इस दौरान स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
1: 2014 से पहले हमारे देश में इतने मेडिकल कॉलेज नहीं थे, इतने डॉक्टर्स नहीं थे कि हम ठीक प्रकार से सभी लोगों को इलाज की सुविधा दे सकें। तो उसके पहले उन्होंने ये मन बनाया कि हम ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स पैदा करेंगे और डॉक्टर्स पैदा होते सिर्फ मेडिकल कॉलेजों में 818 मेडिकल कॉलेज, जिसमें से 431 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का उन्होंने मन बनाया। और MBBS में कुल 1,28,976 सीटें थी, जिसमें से 77,628 सीटों की वृद्धि की गई।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
2: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में रेल सेवाओं के विस्तार और यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने से जुड़ी कई मांगों को रेल मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है। ये जानकारी प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आगामी 19 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश को कई रेल

0: सेवाओं की सौगात देंगे। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में रेल मंत्री बिहार के छपरा से ऑनलाइन जुड़कर जनता को संबोधित भी करेंगे। नगर विकास और ऊर्जा मंत्री श्री शर्मा ने बताया कि उनकी मांग पर दोहरेघाट ओडियार नई मेमू ट्रेन का वाराणसी तक संचालन, मऊ आनंद विहार स्पेशल ट्रेन का मऊ से नियमित संचालन और छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन मऊ के रास्ते किए जाने को मंजूरी मिल गई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है वहाँ पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए और राज्य सरकारों के समन्वय से फसलवार आकस्मिक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए जिससे मौसम संबंधी किसी भी चुनौती की स्थिति में किसानों को तत्काल विकल्प, सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच आज लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम में दूसरा एक दिवसीय मैच खेला जाएगा। मैच को लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: इकाना क्रिकेट स्टेडियम में श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय मैच के लिए दोनों टीमें लखनऊ पहुंच चुकी हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय मैच के मद्देनजर स्टेडियम के अंदर और बाहर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। लखनऊ ट्रैफिक पुलिस ने स्टेडियम के आसपास कई मार्गों पर यातायात डायवर्जन भी लागू किया है जो कि सुबह 9 बजे से रात में मैच की समाप्ति तक लागू रहेगा। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रदेश में बढ़ते तापमान और लू की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े स्कूलों और मान्यता प्राप्त स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश को 24 जून तक बढ़ा दिया है। बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक अब हर साल गर्मियों की छुट्टियां 20 मई से 24 जून तक रहेंगी और नियमित शैक्षणिक गतिविधियां 25 जून से शुरू होंगी। हालांकि शिक्षक, शिक्षा मित्र, प्रशिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी 22, 23 और 24 जून को स्कूलों में उपस्थित रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था, आगामी त्योहारों, नीट यूजी पुनर्परीक्षा और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर की समीक्षा बैठक। 21 जून को प्रस्तावित नीट यूजी पुनर्परीक्षा में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में अभ्यर्थियों को 50% छूट के दिए निर्देश। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक लगाया प्रतिबंध। संदेश संपादन सुविधा भी 30 जून तक रहेगी बंद। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 19 जून को पूर्वांचल को देंगे 3 रेल सेवाओं की सौगात। अब छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन का मऊ के रास्ते होगा संचालन और राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े स्कूलों और मान्यता प्राप्त स्कूलों में 24 जून तक बढ़ाया ग्रीष्मकालीन अवकाश। अब 25 जून से शुरू होंगी शैक्षणिक गतिविधियां। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
0: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत, जिसमें आइए आज सुनते हैं अंकित सिंह का ख्याल गायन। राग है भैरव, विल एक ताल में और द्रुत तीन ताल में निबद्ध है। आइए सुनते हैं।

0: शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रही थी अंकित सिंह का ख्याल गायन। राग था भैरव, द्रुत तीन ताल में निबद्ध थी। आपके साथ तबले पे संगत करता थे सौरभ सिंह व हारमोनियम पर संगत थी दिनकर द्विवेदी की। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव के मीटर पर इस वक्त आप सुन रही हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। सुबह के 8 बजने को है, अब से बस थोड़ी ही देर में रिले किया जाएगा समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। संघर्ष वाले इलाकों में नाविकों की सुरक्षा पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों को नीट पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के फर्जी दावों पर भरोसा न करने की अपील की। पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच

0: सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसीलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा भी की। श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल पहचान और तकनीक के जरिए लोगों के सशक्तिकरण तथा महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने में सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का मंत्र बहुत कारगर रहा है। श्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। G7 के सदस्य देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को भी मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की इस मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है के दर्शन पर आधारित है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत कनाडा संबंधों में आई सकारात्मक तेजी का स्वागत किया है और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विजन 2035 के तहत आपसी संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने राष्ट्रपति अल नाहयान को इस वर्ष भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने का न्योता भी दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने केन्या और मिस्र के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के साथ बैठक में कहा कि दोनों देशों के संबंधों में व्यापार और निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस मौके पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के इस विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
3: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
2: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में

0: राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। 5.5 एकड़ में फैली इस परियोजना ने पहुंच को सुगम बनाया है और भारत के सबसे पूजनीय आध्यात्मिक केंद्रों में से एक को नया स्वरूप दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आसान और सुविधाजनक पहुंच प्रदान कर रहा है।
1: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
0: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह फैसला यमुना को स्वच्छ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
3: NTA यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। NTA ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
4: एंड वी विल इंश्योर दैट द एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड इन अ फ्लॉलेस मैनर।
2: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने परीक्षा से जुड़ी अफवाहों, भ्रामक जानकारी या झूठे दावों को फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स की कड़ी निगरानी करने का भी आदेश दिया है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय से लगे क्षेत्रों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे और कराईकल के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। वहीं राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ आंधी की संभावना बन रही है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम फिलहाल 1-0 से आगे है। धर्मशाला में खेला गया पहला मैच भारत ने जीता था। और आवाज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
5: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों ने जी

0: सेवन शिखर सम्मेलन और नीट यूजी पुनर्परीक्षा के आयोजन से जुड़ी खबरों को सुर्खियों में जगह दी है। कुछ अखबारों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए तैयार की गई बड़ी योजना को भी मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। लोकसत्ता की पहली खबर का शीर्षक है G7 का आगाज, पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की हुई मुलाकात। अखबार ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से उनके देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को भी प्रमुखता से छापा है। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है मोदी ट्रंप की 16 माह बाद मुलाकात, वार्ता आज। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भेंट का चित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है G7 में मोदी ने उठाया भारतीय नागरिकों का मुद्दा। पत्र ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर स्थायी प्रतिबंध की खबर को भी अपना शीर्ष समाचार बनाया है। दैनिक भास्कर सहित सभी अखबारों ने इस खबर को विस्तार से पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है पेपर लीक ना हो इसलिए 22 तक टेलीग्राम बंद। पत्र ने इस वजह से आम उपयोगकर्ताओं को होने वाली परेशानी का भी विस्तार से विश्लेषण प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर द न्यूयॉर्क टाइम्स की पत्रकार आजादे मुआवेनी के लेख को प्रकाशित किया है। शीर्षक है क्या ये तेहरान की जीत है। इस लेख में कहा गया है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ज्यादातर अमरीकी सैन्य दखल जटिल संघर्ष में बदलती गई जिसे शायद ही कोई जीत कहे।
1: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे मुलाकात। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किछाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला में दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, प्रातः के 8:15 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम यंग बरेली।

0: कार्यक्रम यंग परेड में शिष्टा गिहाजी और आप ताइक्वांडो खिलाड़ी हैं जी, तो आप श्रोताओं को बताएं कि कब से खेलना आपने शुरू किया?
1: जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम निष्ठा गिहार है और मेरी एज अभी 19 इयर्स हो गई है और मैंने जो टाइकोंडो स्टार्ट किया था वो मैंने 9 इयर्स की एज में स्टार्ट किया था।
0: जी बहुत अच्छी बात है कि आपने बहुत जल्दी स्टार्ट किया और 9 वर्ष की उम्र बहुत छोटा बच्चा ही होता है जी। तो ये बताइए जब आपने फर्स्ट टाइम खेलना शुरू किया तो शुरू शुरू में बहुत लगा होगा ये ऐसे करना है वैसे करना है, तो शुरू में अच्छा लगा या बाद में धीरे धीरे इंटरेस्ट आ गया वो बताएं।
1: स्पोर्ट्स को लेके हमारा इंटरेस्ट तो पहले से था क्योंकि स्कूल में एक हमारे कैंप चला था जिसमें मार्शल आर्ट्स को लेके अवेयर किया गया था हमें। फिर मैंने अपने पेरेंट्स से बात की कि मार्शल आर्ट करके एक आर्ट फॉर्म होता है जिसका नाम ताइक्वांडो है और वो मुझे सीखना है, तो फिर मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया था इस चीज को लेके कि आपको जाना चाहिए।
0: जी तो मतलब आपके पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया और आपने भी उनकी जो इच्छाएं थी उनको भी पूरा किया। तो ये बताओ एक जब कोई भी खिलाड़ी हुआ जो भी बच्चा इस खेल में आना चाहता हो तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि इस खेल में आने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है?
1: बेसिकली हमारा जो स्पोर्ट है वो बहुत ही डिसिप्लिन वाला है। अगर आपको स्पेशल टाइकोंडो ज्वाइन करना हो जो एक फाइट फॉर्म है मार्शल आर्ट की जिसमें आप एक फाइटर बनते हैं स्पेशली एज अ प्रोफेशनल एथलीट, तो आपको माइंडसेट भी उसी तरीके से लाना हो, विनिंग माइंडसेट होने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है इस खेल में।
0: तो इसमें साथ ही ये भी पता होना चाहिए कि जब बहुत सी चीजें वहाँ पे वो हो जाती हैं, दिक्कतें भी होती हैं बहुत सी चीजों में, तो क्या वो रहना चाहिए ये बताएं आप।
1: दिक्कतें जैसे
0: कि दिक्कतें ये आती हैं कि हमें नहीं कर पा रहे हैं या परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, मेंटली प्रेशर भी होता है, कोच भी कहते हैं ऐसे करो वैसे करो, तब आप

0: ऐसे रिएक्ट करते हैं, कैसे उसको एडजस्ट करते हैं.
1: जी आपका रियल रियल टेस्ट तो आपका खुद से ही होता है. जब आप खुद से आने लगते हो, आपका माइंडसेट वीक होने लगता है, उसी टाइम पे आप जो परफॉर्म करते हो, जो आपने आपको बिल्ड करता है, वही डिफरेंट क्रिएट करता है एक प्रोफेशनल एथलीट में और एक ऐसे लाइक कॉमन एथलीट में.
2: जी जी. तो और सबसे ज्यादा आपके जो गेम का जो मोटो रहता है वो यही रहता है कि दूसरा अटैक कर पाए उससे पहले आप अटैक कर दो.
1: जी, इससे पहले हमें सिखाया ही जाता है, इससे पहले कि आपका ओपोनेंट आपको बीट करे, आपको उसको बीट करना है.
2: जी जी. तो ये बताएं निष्ठा, आपने खेलो इंडिया के लिए भी क्वालिफाई किया हुआ है.
1: हाँ जी, लास्ट ईयर मैंने उसके लिए क्वालिफाई किया था.
2: जब आपने खेलो इंडिया के लिए क्वालिफाई किया, उसके लिए आपका अनुभव क्या रहा? क्योंकि वहां तक पहुंचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है कैंडिडेट के लिए.
1: हाँ जी, हाँ जी, वहां तक पहुंचने में आपको बहुत इयर्स की प्रिपरेशन चाहिए होती है, वो माइंडसेट चाहिए होता है, कंसिस्टेंसी चाहिए होती है वहां तक पहुंचने के लिए. तो स्पेशल मोमेंट होता है कि आप जब आपकी मेहनत आपको दिखती है कि हाँ वो सक्सेस पा रही है स्लोली स्लोली बट यस.
2: जी जी, बिल्कुल सही बात है. और हम आपको यही शुभकामनाएं देंगे कि आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ें और तरक्की करें. इन शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका.
1: थैंक यू.

श्रोताओं, फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम यंग बरेली में। और इस समय ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। और श्रोताओं, आपको बता दें यानी आज है 17 जून, तो आज ही के दिन जो है हमारे आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई थी, जिसके लिए हम सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। और अभी इस समय केंद्र पर जो है योगा सेशन भी हुआ, साथ ही साथ वॉकेथॉन भी हुआ। तो आप सभी लोगों की जो है शुभकामनाएं भी आपको देते हैं, और आपकी शुभकामनाएं तो हमारे साथ ही हैं। और इसके लिए हमारे पूरे आकाशवाणी परिवार का सहयोग तो रहा ही रहा, साथ ही जो हमारी ट्रैफिक व्यवस्था, एसपी ट्रैफिक व्यवस्था है, उन लोगों ने भी, हमारा सभी ने बहुत सहयोग दिया। और जिसके लिए आप जल्दी अभी जो है प्रसारण चलता रहेगा, और आप सुनेंगे भी कि किस समय क्या हुआ। और आनंदमय जीवन बस आधे घंटा योग, दैनिक जीवन में संतुलन बनाए रखने का तरीका सिखाता है योग। इससे बीमारियों की चिंताओं से तो मुक्त होते ही हैं, साथ ही हर छोटे बड़े कार्यों में अपनी बढ़ती कुशलता को भी महसूस करने लगते हैं। तन मन को कैसे साधता है योग अभ्यास, किस तरह जीवन में बदलाव लाता है, आप बस एक शुरुआत तो कीजिए। आप बस ये शुरुआत कीजिए कि पहले शुरुआत ये करिए कि मुझे सुबह 5 बजे तक बिस्तर तो छोड़ ही देना है। जब आप एक अच्छी शुरुआत करेंगे ना, तो बाकी की अच्छी शुरुआत खुद बा खुद हो जाएगी। और सभी के लिए जरूरी है योग। आना वाला जो दिन है, दिवस है 21 जून, जिसे हम विश्व योग दिवस के रूप में मनाते हैं, वो तो एक हम दिवस मनाते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो सभी दिन हमारे लिए जरूरी हैं योग के रूप में, अपने जीवन के जो दिन हमें ईश्वर ने दिए हैं उन्हें सुचारू रूप से चलाने के लिए। आज की दिनचर्या हमारे शरीर और मन की सेहत के लिए निर्दयी बनती जा रही है। बढ़ती बेशुमार बीमारियां इसी की देन है। आसन व्यायाम से जीवन में थोड़ी बहुत सक्रियता लाने का प्रयास भी करें तो कूल्हे, हैमस्ट्रिंग, कंधे, रीढ़ और टखने अवरोधक बनने लगते हैं। इसके बाद कुछ लोग व्यायाम करने का उद्देश्य वहीं छोड़ देते हैं। दरअसल लगातार बैठे रहने, गलत मुद्रा में स्क्रीन या टीवी देखने और तनाव भरी दिनचर्या के चलते शरीर व्यायाम करने के लायक ही नहीं रह

जाता। और होता क्या है, अब करें क्या, इसका आसान उपाय है। सबसे पहले शरीर को गतिमान अवस्था में लाएं ताकि रक्त संचार सही हो व शरीर में लचीलापन लाएं। इसके साथ ही टहलने, सूक्ष्म व्यायाम करने की जरूरत है। धीरे धीरे महसूस करेंगे कि योगासन जिंदगी को आसान बनाने लगते हैं। शारीरिक सक्रियता को बनाएं, जरूरी है ये उद्देश्य। शरीर की जरूरत ही सक्रियता है। योग, दौड़, जिम, किसी भी रूप में ये सक्रियता होनी ही चाहिए। जरा सोचिए, आपके पास एक सुंदर शरीर तो है, लेकिन अगर वो स्वस्थ नहीं है तो वो शरीर किस काम का? आपको खुद से ही लगेगा। दूसरों पर तो हम बोझ बनने ही लगते हैं जब हम खुद स्वस्थ नहीं होते हैं। साथ ही साथ हमें खुद भी महसूस होता है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं और हम मानसिक रूप से भी अस्वस्थ होने लगते हैं। इसलिए सबसे पहले आप शारीरिक रूप से स्वस्थ होइए तो आप मानसिक रूप से तो स्वस्थ खुद ब खुद ही ऑलरेडी हो ही जाएंगे। इसीलिए सुनते रहिए आकाशवाणी बरेली। और अब ये गीत आपके लिए।

0: तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।

और श्रोताओं, अब बरेली शहर की खास खबरें। इंतजार हुआ खत्म, 35 दिन बाद आज खुलेगा चौपला पुल, लाखों लोगों को मिलेगी राहत। NHAI ने 12 मई से शुरू कराई थी मरम्मत, एक्सपेंशन ज्वाइंट्स के भरवाए गए गैप, बदायूं और रामपुर रोड के निकल सकेंगे वाहन। चौपला पुल के मरम्मत के लिए बंद होने से लाखों लोगों की दिनचर्या बदल गई थी। 15 मिनट का रास्ता तय करने में 45 मिनट तक लग जा रहे थे और बदायूं की तरफ से आने वाले वाहनों को कई किलोमीटर अतिरिक्त का चक्कर काटना पड़ रहा था। सुभाष नगर करगेना क्षेत्र के लोगों के लिए एक एक दिन भारी गुजर रहा था। पुल तो पहले 45 दिन के लिए बंद कराया था, लेकिन लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए तेजी से मरम्मत कार्य कराकर 10 दिन पहले ही कार्य पूर्ण करा लिया गया और अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई हैं। बुधवार से पुल आम जनमानस के लिए खोल दिया जाएगा। एयरपोर्ट का होगा विस्तार, खड़े हो सकेंगे 10 विमान। भवन का भी होगा विस्तार, जमीन खरीद की प्रक्रिया पूरी, सर्वे को जल्द आएगी AAI की टीम। बरेली एयरपोर्ट से जुलाई में 4 शहरों की उड़ान शुरू हो जाएगी। भविष्य में गोवा, सूरत, चेन्नई, अहमदाबाद, कुशीनगर सहित अन्य शहरों के लिए भी उड़ान शुरू की जाएगी। इसके लिए एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा। इसके लिए जमीन खरीद की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। 2 महीने के अंदर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI की टीम बरेली आकर सर्वे करेगी और एयरपोर्ट के विस्तार से यहां पर 10 एयरबस विमान खड़े हो सकेंगे।

0: गर्मियों में बच्चे डायरिया से परेशान, मरीजों की संख्या भी है बड़ी और गर्मी बढ़ते ही बच्चों में डायरिया के केस बढ़ गए हैं। जिला अस्पताल में बाल रोग की ओपीडी में मंगलवार को भी 125 बच्चे परामर्श को पहुंचे, जिसमें अधिकांश डायरिया के रहे हैं और अधिकांश बच्चे मोशन वगैरह से दिक्कत में थे। बच्चों को परामर्श देने के साथ गंभीर को वार्ड में भर्ती किया गया और साथ ही डॉक्टर ने कहा है कि बच्चों के मामले में बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें पेरेंट्स। 85 दिन में मिले टीबी के 4,859 मरीज, उपचार शुरू। टीबी मुक्त भारत के लिए 100 दिन का अभियान चलाया जा रहा है और अभियान के दौरान 1,406 मरीज बिना लक्षण वाले भी मिले हैं। टीबी मुक्त भारत के लिए 100 दिन का अभियान शुरू किया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनमें टीबी के कोई लक्षण नहीं थे फिर भी लोगों को बुला करके मरीजों का इलाज शुरू कर दिया गया है और इनका कोर्स पूरा कराया जाएगा ताकि इन्हें टीबी से मुक्त किया जा सके। टीबी मुक्त भारत अभियान 23 मार्च से शुरू हुआ था, ये अभियान 1 जुलाई तक चलेगा। अभियान के तहत 512 हाई रिस्क गांव को चिन्हित किया गया है। इन गांवों में हैंड हेल्ड एक्सरे मशीन से लोगों की स्क्रीनिंग कर टीबी की पहचान की जा रही है।
1: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स, सरकारी नौकरियों के लिए

0: मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।

बरेली बदायूं हाईवे पर बड़ी वाहनों की रफ्तार। बरेली बदायूं हाईवे चौड़ीकरण में जगह जगह अवरोध समाप्त होने लगे हैं और वाहनों की रफ्तार बढ़ने लगी है। चौबारी से सरदारनगर के बीच डायवर्जन ज्यादा है, लेकिन उसके आगे जगह जगह एक साइड में सड़क बन जाने से वाहन तेजी से निकलने लगे हैं। गंगा एक्सप्रेस पर पहुंचने में भी अब समय कम लग रहा है। इस रोड पर कोई टोल नहीं है, लेकिन हाईवे बन जाने के बाद बरेली से कचला के बीच दो जगह नए टोल प्लाजा शुरू हो जाएंगे।

और श्रोताओं, राइफल क्लब को खेलो इंडिया की मान्यता। जी हाँ, ओलंपिक नियमों के आधार पर सभी तीन रेंजों में यूपी के पहले केंद्र की स्थापना, और साथ ही प्रथम बरेली स्मार्ट सिटी शूटिंग चैंपियनशिप के समापन अवसर पर राइफल क्लब फायरिंग रेंज स्थित पैसिफिक शूटिंग क्लब में उत्तर प्रदेश की पहली खेलो इंडिया मान्यता प्राप्त शूटिंग अकादमी का शुभारंभ किया गया। महापौर डॉक्टर उमेश गौतम ने अकादमी को उद्घाटन करते हुए इसे प्रदेश के खेल जगत की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया है। डिजिटलकरण में देश के शीर्ष 6 संस्थानों में रुहेलखंड विश्वविद्यालय भी है शामिल। रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने डिजिटल शिक्षा और छात्र सेवाओं के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। भारत सरकार के डिजिटलकरण के साथ ही नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी पोर्टल पर उपलब्ध नवीनतम संस्थागत प्रदर्शन सूची के अनुसार विश्वविद्यालय देश के शीर्ष 6 संस्थानों में स्थान पाने में सफल रहा है।

0: तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: और आप सुनिए ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम यंग बरेली। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। प्रातः के 8:45 हुए हैं और अब आप आनंद लेंगे लोकगीतों का। आज कलाकार हैं सावित्री दीक्षित।

मैं गंगा सिंह रावत रामपुरोड़ हल्द्वानी से आकाशवाणी बरेली को उसकी स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आकाशवाणी बरेली के प्रारंभिक दिनों से, जब से इस केंद्र की शुरुआत हुई, मैं इससे बतौर श्रोता जुड़ा रहा हूं और आज भी जुड़ा हुआ हूं। पहले रेडियो के माध्यम से प्रोग्राम सुना करते थे, आजकल ऐप के माध्यम से प्रसारण सुनाई दे रहा है, काफ़ी साफ सुनाई देता है। बरेली के सारे उद्घोषक बहुत मेहनती हैं, कर्मठ हैं और बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, जिसकी वजह से मैं ही नहीं, कई श्रोता भारत से भी और भारत के बाहर से भी बहुत सारे श्रोता से जुड़े हुए हैं। मैं नाम देना चाहूँगा उद्घोषक देवेंद्र रावत जी का, जो बहुत अच्छी प्रस्तुति देते हैं, जिनकी आवाज़ में काफ़ी मिठास है। इसके अलावा परवेज भाई, शिप्रा, अमृता जी और हरीश भाई बहुत अच्छे उद्घोषक हैं, जिनकी प्रस्तुति बहुत शानदार होती है। मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा युवाओं का, जो कार्यक्रम आता है 6:30 बजे युवाणी, वो भी बहुत रोचक होता है, जिसमें भेंट वार्ताओं के साथ साथ जो मुलाकात की जाती है हमारे युवा श्रोता से, एंटरप्रेन्योर से, वो बहुत अच्छी होती है, ज्ञानवर्धक, रोचक और प्रेरक होती है। तो जो संगीत के कार्यक्रम हैं, फरमाइशी कार्यक्रम हैं, सोशल मीडिया ऐप के जरिए हम अपनी फरमाइश भेजते हैं, पूरी भी होती है, और कई विचारोत्तेजक कार्यक्रम हैं जिसमें श्रोता अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, सभी बहुत अच्छे हैं। तो पुनः मैं आकाशवाणी बरेली को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। धन्यवाद।

0: देवर पे भरवावे, पैर बालम पे दबावे। मैं तो
1: श्रोताओं, इसी के साथ लोकगीत अब यहीं संपन्न होते हैं।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे लोकगीतों का। आज कलाकार थी सावित्री दीक्षित। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। प्रातः के 9 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। बस कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: जिंदगी सचमुच एक सुहाना सफर है, क्योंकि हर रोज विविध भारती आपका हम सफर है।
1: हम सफर मेरे हम सफर।
0: टहले यादों की वादियों में संग संग, दिन में 11 बजे सुनते हुए रंग तरंग।
2: दिल में एक लहर सी।
0: ऐसे गाने जो चुरा ली आपका दिल, दिन में 12 बजे यादों की महफिल।
3: तेरा मुझसे है पहले का नाता।
0: दिन में 1 बजे एक अनूठी इबारत की डगर, सुरीला सफर।
3: तुम आ गए।
0: घड़ी की सुइयां जब बजाती है 2:30, तो बजती है सदाबहार नगमों की शहनाई। जिंदगी सचमुच एक सुहाना सफर है, क्योंकि हर रोज विविध भारती आपका हम सफर है। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, आपका जीवन संगीत।
4: और यही कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।

ये है विविध भारती। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों की बात।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित या मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल स्वर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: दोस्तों नमस्कार, यूनुस खान की ओर से।
1: ये कौन है? कबाब में हड्डी।
0: आज के फनकार कार्यक्रम में आज जिक्र उस अभिनेता का जिसने सन 1955 में बनी बिमल रॉय की फिल्म देवदास में चुन्नी लाल की यादगार भूमिका निभाई थी।
2: हाय हाय, तुम क्यों रुक गई? तुम रुकी क्या, दिल हमारा रुक गया, गम के मारे आसमां भी झुक गया।
3: ए देवदास, तुम कहाँ चले, घबराने की क्या बात है? बैठो बैठो बैठो। हाँ तो शुरू हो जाओ उसका।

0: सच है क्या, जिंदगी ख्वाब है।
1: मोतीलाल को हिंदी फिल्मों के बेहद सौम्य और शिष्ट अभिनेताओं में गिना जाता है। सन 1910 में शिमला में उनका जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम था मोतीलाल राजवंश। सन 1934 में आई फिल्म शहर का जादू से मोतीलाल की अभिनय यात्रा की शुरुआत हुई थी। सागर मूवी टोन के बैनर तले बनी इस फिल्म के निर्देशक थे केपी घोष। 30 के दशक में नायिका सविता देवी के साथ फिल्मों में उनकी जोड़ी बड़ी मशहूर रही। इस जोड़ी की कुछ खास फिल्में थीं डॉक्टर मधुरिका, जिसके लेखक थे जाने माने साहित्यकार कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी। रंजीत मूवी टोन की फिल्म अछूत, जयंत देसाई की फिल्में दीवाली और शादी, जिनमें मोतीलाल और सविता देवी नायक नायिका थे। बाद में चतुर्भुज जोशी की सन 1941 में आई फिल्म परदेसी और ससुराल में वे अभिनेत्री माधुरी के साथ दिखाई दिए। भारतीय सिनेमा की यात्रा पर शुरुआती दौर में पारसी रंगमंच और नौटंकियों के बेहद कलाबाजी भरे अभिनय की गहरी छाप पड़ी थी। अभिनय में अति नाटकीयता का समावेश होता था, लेकिन कहा जाता है कि मोतीलाल ने हिंदी सिनेमा में स्वाभाविक और सहज अभिनय की शुरुआत की, जिसमें संवादों की अदायगी उतनी नाटकीय न होकर बिल्कुल आम जिंदगी की बोलचाल जैसी होती थी।
2: देखते हो रंगीन जिंदगी, ये वो लोग हैं जिन्हें सड़कों पर बटुए मिले और उन्होंने लौटाए नहीं।
3: इसे मुझे जानने की जरूरत नहीं, मुझे इजाजत दीजिए।
2: क्या काम करते हो?
3: बेकार।
2: नौकरी चाहते हो?
3: मुझे नौकरी मिलेगी।
2: इस पते पे कल चले जाना और मैनेजर साहब से मिलना।
1: जाने माने फिल्मकार महबूब खान की शुरुआती फिल्मों में मोतीलाल नायक रहे थे, जैसे सन 1943 में आई तकदीर, सन 1937 में आई जागीरदार और सन 1938 में आई फिल्म हम तुम और वो। केदार शर्मा की फिल्म अरमान और कलिया में भी मोतीलाल ने काम किया था। सन 1945 में आई थी फिल्म पहली नजर, जिसमें वीणा मोतीलाल की नायिका थी। हम आपको याद दिला दें कि इसी फिल्म से पार्श्व गायक मुकेश की गीत यात्रा शुरू हुई थी। मोतीलाल मुकेश के चचेरे भाई थे और वे ही मुकेश को फिल्म संसार में लाए थे। फिल्म पहली नजर में संगीतकार अनिल विश्वास के निर्देशन में मुकेश ने गाया था अपना पहला नगमा।

सन 1949 में आई रूप शौरी की फिल्म एक थी लड़की। इसमें मोतीलाल की नायिका थी मीना शौरी। आपका ये दोस्त इस फिल्म का एक दुर्लभ गीत ढूंढ कर लाया है खास तौर पर आपके

0: मोतीलाल की सबसे उल्लेखनीय फिल्म मानी जाती है सन 1952 में आई जेमिनी प्रोडक्शंस की मिस्टर संपत। आर के नारायण के प्रसिद्ध उपन्यास पर बनी इस फिल्म में मोतीलाल ने एक शरीफ बदमाश का किरदार निभाया था।
1: इतना ही नहीं जनाब, मैं कहता हूँ कि आज आधी से ज्यादा दुनिया 420 है। जिधर निगाह उठा के देखिए, चोर बदमाश डाकू नजर आते हैं, और मजा यह है कि देखने में आपसे और हमसे ज्यादा शरीफ मालूम होते हैं। कौन जाने यहाँ हम लोगों में कौन शरीफ है और कौन 420। न जाने क्या होने वाला है दुनिया का। 8 आने के 12 केले, लूट मची हुई है चारों तरफ, जिसको देखो ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है। आपने वो केले वाले को मुझे ना बताया, सीधा पुलिस की हिरासत में भेज देता उसको।
2: अच्छा
1: जी हाँ, आप लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और क्यों हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि मैं थर्ड क्लास पैसेंजर हूँ। जी नहीं, मैं चाहूँ तो फर्स्ट क्लास में सफर कर सकता हूँ, सलून में भी सफर कर सकता हूँ, लेकिन चाहता नहीं। पूछिए क्यों। मैं ये जानना चाहता हूँ कि थर्ड क्लास के पैसेंजरों को क्या क्या तकलीफें हैं, उनको किन किन सहूलियतों की जरूरत है। मैं आप लोगों का हूँ, जनता का हूँ। बाय द वे, जनता एक्सप्रेस के बारे में तो आपने सुना होगा, वो मेरा ही आइडिया था।
2: आपका आइडिया?
1: ऑफ कोर्स।
2: टिकट प्लीज, टिकट, टिकट प्लीज।
1: पास।
2: क्या मैं देख सकता हूँ?
1: ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। मैंने तुम्हें कहीं देखा है, शर्मा जी के घर।
2: कौन शर्मा?
1: अरे भाई, वो तुम्हारे DTS।
2: आपका मतलब वर्मा जी से है?
1: वर्मा जी, वर्मा शर्मा में क्या फर्क है, दोनों मेरे जिगरी दोस्त हैं। क्या तनख्वाह मिलती है तुम्हें?
2: 125 रुपए।
1: 125 रुपए। और डियरनेस अलाउंस और भत्ता?
2: 50 रुपए।
1: 50 और 125, 175 रुपए मिलते हैं, और दिन रात बैल की तरह से काम करते हो। जुल्म है ये, सरासर जुल्म है। मैं तुम्हारे लिए वर्मा जी से बात करूंगा। क्या नाम है तुम्हारा?
2: रामप्रसाद।
1: रामप्रसाद, मैं वर्मा जी से तुम्हारे लिए बात करूंगा और तरक्की कराने का इंतजाम करूंगा। अब तुम जा सकते हो।
2: थैंक यू सर, थैंक यू।

सन 1954 में एचएस रावेल की फिल्म मस्ताना में मोतीलाल ने एक यादगार भूमिका निभाई। इस फिल्म में उनकी नायिका थी निगार सुल्ताना।

0: सन 1955 में आई मोतीलाल के फिल्म जीवन की सबसे यादगार फिल्म देवदास।
1: अरे देवदास, अरे चुनिंदा हो तुम, ये क्या सूरत बना रखी है, पहचाने भी नहीं जाते, क्या खबर है?
2: खबर बस यही है कि जिंदा है। तुम यहाँ कैसे?
1: भाई कलकत्ता हमें रास नहीं आया, दिल्ली में एक नौकरी कर रखी है, उस सिलसिले में दौरे पर जा रहे हैं, आज यहाँ कल वहाँ। तुम कहाँ जा रहे हो?
2: ये भी कुछ तय नहीं किया।
1: मकसद?
2: जिंदगी में अब कोई मकसद ही नहीं रहा चुनी बाबू।
1: तुम रहे वही देवदास। अच्छा ठहरो, इतने दिनों के बाद मिले हैं, मुलाकात को रंगीन किया जाए, क्या ख्याल है? अब तो हम सोडा मिलाने के भी कायल नहीं रहे, क्यों फजूल सोडे पे पैसे जाया किए जाए, लेकिन तुम्हें तकलीफ होगी, थोड़ा पानी मिला लो।
2: मैंने बिना छोड़ दिया है चुनी बाबू।
1: किसी ने अपने सर की कसम तो नहीं दिला दी?
2: ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस नहीं पीऊंगा।
1: अरे अरे, मगर ये गिलास कहाँ ले जाते हो? तुम नहीं पियोगे तो मैं पी लूंगा। अच्छा ये वो पुराना मर्ज है या कोई नया रोग लगा लिया? अरे कुछ कहते क्यों नहीं?
2: क्या कहूँ चुनी बाबू, मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, अब तो बस यही अच्छा लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं लगे।
1: तुम्हें क्या दुख है? मैं अच्छी तरह समझता हूँ देवदास, लेकिन ये ना समझो कि सिर्फ तुम ही इस दुख के शिकार। जब इस दुख की आग सीने में भड़कती है तो इसी का सहारा लेना पड़ता है, इसी आग से उस आग को बुझाया जा सकता है, और कोई चारा नहीं।
0: सन 1956 में फिल्म जागते रहो, जिसमें मोतीलाल के अभिनय की मिसाल आज भी दी जाती है।

0: सच है क्या जिंदगी ख्वाब है।
1: सन 1957 में आई फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं।

0: सन 1959 में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनाड़ी में मोतीलाल एक कड़क बिजनेसमैन के किरदार में नजर आए थे।
1: आजी इस घर में हो क्या रहा है? तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ।
2: ये क्या गाना पूछी हो रही तुम लोग?
3: कुछ नहीं चाचा जी, यूं ही बात कर रहे थे। वो राजकुमार नीचे आए हैं ना।
2: तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि उसका नाम राजकुमार है?
3: जी मुझे आशा ने बताया।
2: आशा को कैसे मालूम हुआ कि वो कौन है, क्या है, कहाँ काम करता है?
3: जी मैं जी आरती। घबराओ नहीं आशा, चाचा जी तुम्हें काट थोड़ी खाएंगे, बताओ ना।
2: हाँ, डरने की क्या बात है, राजकुमार को तो मैं खुद पसंद करता हूँ, मेरे यहाँ तो काम करता है वो।
3: सॉरी।
2: हाँ मैं क्या कह रहा था, राजकुमार बड़ा काबिल लड़का है, बड़ा होनहार है, बड़ा ईमानदार है।
3: हाँ और बड़े अच्छे चित्रकार भी हैं और गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं।
2: अच्छा,
3: मुझे आशा ने बताया।
0: सन 1959 में दिलीप कुमार और मोतीलाल एक साथ नजर आए फिल्म

0: 1960 बिमल रॉय की फिल्म परख, मोतीलाल का यादगार अभिनय।
1: ये क्या पागलपन फिर से शुरू कर दिया है तूने? कहाँ था डेढ़ महीने से?
2: तुम्हारे ही काम के लिए गया था मैं।
1: मेरा काम?
2: हाँ, तुम्हें याद नहीं, पिताजी की वसीयत के मुताबिक वो 5 लाख रुपए का चेक जो राधा नगर में भेजा था, उस वक्त तुम्ही ने कहा था कि ये रुपया किसी गलत आदमी के हाथ में ना पड़ जाए, इसलिए मैं वहाँ गया। वहाँ जाके पोस्ट ऑफिस में एक डाकिया की नौकरी कर ली और वहाँ से छुट्टी लेके अब अपनी माँ के दर्शन करने के लिए आया हूँ।
1: लेकिन तुझे इस पोशाक में देखकर मुझे

0: बड़ा डर लगने लगता है।
1: डर लगने लगता है क्यों माँ?
0: कुछ ऐसी ही पोशाक में तेरे पिताजी को वो गांव छोड़ना पड़ा था, इसलिए अब तुझे उस जिंदगी के नजदीक जाके देख मेरा रोम रोम कांपता है।
1: माँ तुम बहुत ही भोली हो, मैं को असली डाकिया थोड़ी बन गया हूँ, ये तो एक स्वांग है, देखो तुसी तमाशा क्या क्या होता है।
2: सन 1965 में मोतीलाल ने एक फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया था। ये फिल्म थी छोटी छोटी बातें, जिसमें नादिरा उनकी नायिका थी।

0: कहता है।
1: ये फिल्म नाकाम रही थी और मोतीलाल को इससे गहरा सदमा पहुंचा था। इसी साल यानी सन 1965 में मोतीलाल का देहावसान हो गया था।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता मोतीलाल पर। अब यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती पर हर रोज दिन में एक बजे विविध भारती की गीतमाला आपके साथ।
1: जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा।
0: इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी।
1: हम और तुम,
0: तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ।
2: हम साथ साथ है,
0: जुड़े रहे। एक बेटी की यादों में उसके पिता
3: 77-78 में मेरे

0: पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
0: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
0: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा
2: रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं प्रातः के 10 बजे हैं और अब आप सुनेंगे आपकी पसंद में अपनी पसंद के गीतों को।

श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपकी पसंद में। और साथी, कीजिए स्वीकार हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोगों का पहला कमेंट हम तक पहुंचा हुआ है। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्लापुर उत्तर प्रदेश से हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह का। सब्जी मंडी कस्बा उसावा वार्ड नंबर 1 जिला बदायूं से हैं धर्मवीर कश्यप, उषा कश्यप, ध्यानपाल कश्यप, संजय, अनमोल, उषा, अंश, करिश्मा और मुस्कान कश्यप का। गंज डुंडवारा से हैं मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी। सेक्टर नंबर 2 आवास विकास कासगंज से हैं पवन गौर, सुयेश गौर, आशीष गौर, तन्मय और अपूर्वा का। और ये कमेंट हमारे पास पहुंचा है करानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक का। नाज रेडियो क्लब करेली से है निसार अहमद अंसारी, मैजबी निसार अंसारी, नुजत फातिमा, अब्यार अहमद अंसारी, इसरार अहमद अंसारी, इकबाल अहमद अंसारी, तस्लीम रजा और पप्पू भाई का। ज्योति नगर नोखा राजस्थान से हैं पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोर्धन धरा, घनश्याम भार्गव, बाबू गौरी और हसन सिक्का का। ग्राम खंडिया गेट कॉलोनी जिला रामपुर से हैं अमरजीत, शिवम, सुखलाल, अमरपाल, ऋषिपाल, सिद्धार्थ और यश का। जसपुर उत्तराखंड से हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा विकम सिद्दीकी, रियाज हुसैन सिद्दीकी, रिफाकत हुसैन सिद्दीकी। कस्बा पराडा जिला अंबाला हरियाणा से हैं रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह और राहुल का। ग्राम व पोस्ट हररपुर मटकली से हैं आप सभी लोग शाहनूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीसी, मोइन अंसारी, तस्सीम अंसारी और डीजे प्रधान का। धनौली तेलीवाला उत्तराखंड से हैं इसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू का। पाकुड़ झारखंड से हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद। बोड़ागाछी पश्चिम बंगाल से हैं मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। गांव कलमंडी खुर्द जिला झालावाड़ राजस्थान से हैं अनूप सिंह नथावत और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से हैं अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमारी और नियति कुमारी का। पुराना तल्ला डुमराव से हैं वली उल्ला अंसारी, असमानाज अंसारी और शबनम बानो। जेल रोड बक्सर से हैं राज एसडी अंसारी और फातिमा नाज का। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत।

0: बच्चे बूढ़े और जवान सौ बात की एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए क्यूआर स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
1: RBI कहता है क्यूआर कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।

नमस्कार, ये आकाश सुमन अब आप संजय मिश्रा से दिल का हाल सुन। दिल का हाल ये है कि आकाशवाणी बरेली का स्थापना दिन है और मैं आकाशवाणी की तरफ से अपनी तरफ से उन तमाम आकाशवाणी सुनने वालों को धन्यवाद दूँ। थैंक यू, सुनते रहिए, आकाशवाणी हमारा है, हमको इससे बताना है। थैंक यू बरेली। आप

श्रोता, ये कमेंट हम तक पहुंचा है आप सभी लोगों का। कटरा चांद खा मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से हैं आप सभी लोग। अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही और स्वाति मौर्य का। जसपुर उत्तराखंड से हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रेहान, समरीन, परवीन, माहिरा नूर का। और श्रोताओं, आप सभी लोगों की विशेष हम तक बहुत भारी मात्रा में पहुंच रही हैं फेसबुक कमेंट के माध्यम से। और आकाशवाणी के स्थापना दिवस की हार्दिक बधाइयां आपको भी, आप सभी श्रोताओं को तहे दिल से। आप आकाशवाणी बरेली के हैं और आकाशवाणी बरेली आपकी है। जहां हैं आप वहां हैं हम, ओनली 100.4 FM पर। और पूरी पूरी कोशिश रहती है हमारी कि हम आपकी फरमाइश पूरी करें। गांव अली मोहम्मद, जिला सिरसा, हरियाणा से हैं सुभाष लूना, ओमपति, चिंटू स्वामी और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। और ये कमेंट हमारे पास पहुंचा है आप सभी लोगों का, उन्होंने बधाइयां भी भेजी हैं। झुमका गिरारे बरेली के बाज़ार में से ये जिन्होंने ये बधाइयां भेजी, हमारे प्रदीप कुमार पाल, नमन, पिंकी, माही, रिंकी, गरीब भाई, श्री राम राठौर और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त, साथी हैं प्रभु भी। और ये कमेंट हमारे पास पहुंचा है ज्योति नगर नोखा राजस्थान से हैं पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोवर्धन धरा, घनश्याम भार्गव, बाबू गौरी और हसन सिक्का का। बधाइयों से हैं रोमांची शाके, उत्तम नगर दिल्ली से हैं कमला रानी, पोधराज खोरवाल, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश का। गिरगांव

महाराष्ट्र से हैं गजानन नादरे, मारोतराव पांचाल, रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, शेरकोट बिजनौर से हैं नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम अजीम, अदीम अब्दुल गनी और अलमीर का साथी हैं जन्नत, शाहजीनगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे का, बागपत उत्तर प्रदेश से हैं संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, अपार ढिंगिया और साथी गांव चरोदा बार नवापारा से हैं आप सभी लोग नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू ज्योति और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से हैं अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमारी, नियति कुमारी और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त पद्मा टाकेश नेपानगर से हैं मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल, नीति शाह, सुरभि, अश्विन शाह, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह का, लाहौर डडा जिला बागपत से हैं जगमोहन सिंह प्रजापत, अर्जुन भारती, अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर नूतन, प्यारी पोती भुवनेश्वरी देवी, करावल नगर दिल्ली से हैं रामनाथ प्रजापति, श्रीमती सुमन देवी। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत। फिल्म का नाम है फर्ज और इस गीत को गाया है मोहम्मद रफी ने।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आपकी पसंद आकाशवाणी के बरेली केंद्र से, जहां हैं आप वहां हैं हम, ओनली ऑन 100.4 FM पर। और ये कमेंट आप सभी का हम तक पहुंचा हुआ है। दही गांव नादुरा से हैं धोडू भातुरकर, मंगला भातुरकर, विवेक भारती और प्रतीक्षा कोमल, साथी हैं समाधान भातुरकर।

गढ़ी कोटाहा जिला पंचकूला हरियाणा से हैं सराजुद्दीन अंसारी, नसीबन बेगम, अक्रम अंसारी, शानिया अंसारी, मोहम्मद इलियास, मुशाहिद हुसैन, अक्सा अंसारी और उमर अंसारी का। साथी हैं समीना अंसारी, ग्राम शंकरपुर पोस्ट उसावा जिला बदायूं से हैं सोमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र यादव, आनंद यादव, सनोज यादव, अमन, सोनी, अंकिता, विनीता, अनीता, सुरीता और सूरज श्री यादव का। गांव रासी जिला हिसार से हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी और बहरूलाल बाख्तरिया धाकड़, भोलालाल बाख्तरिया, प्रवीण बाख्तरिया, रियांश बाख्तरिया और प्रतीक बाख्तरिया का। ये कमेंट हम तक पहुंचा है उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से। और श्रोताओं, आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आकाशवाणी बरेली की 33वीं स्थापना दिवस की। आप सब लोग तो हमें शुभकामनाएं भेज ही रहे हैं और आप सभी लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से हैं मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोडाना और सुदामा नगर खंडवा से हैं लक्ष्मी नंदिनी, रोहित ऋतु और मुकेश जगताप का। और बेचे लाल जी का ये कमेंट हम तक पहुंचा है आप सभी लोगों का, गंगवार बैगलाइन से हैं आप सभी लोग, बेचे लाल गंगवार, गुड्डी देवी गंगवार। और सुल्तान रजा जी का कमेंट हम तक पहुंचा है अच्छा प्रोग्राम से हैं आप सभी लोग, कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से सुल्तान रजा, इकबाल रजा, जीशान रजा, अफजल रजा, मोनिश सादिक और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। सादुल शहर राजस्थान से है राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़। दादा बाबू रोड ग्रीडी झारखंड से हैं मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, विफरा नवाज और बेबी चाहत का। मुजफ्फरनगर बिहार से हैं आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार। चरडोगरी बरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से हैं दुर्गा राम साहू, अजय कुमार साहू, जयकिशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी साहू। और ये कमेंट हम तक पहुंचा है आप सभी लोगों का, गंगा सिंह रावत रामपुर रोड हल्द्वानी से हैं आप सभी लोग और आपके परिवार के सभी सदस्य। गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा से हैं राधेश्याम शर्मा, इंद्रा शर्मा और सार्थक शर्मा। राजधानी रायपुर से हैं नीलू मेघ और डॉक्टर वंदना कुमार, साथी हैं बिट्टू कुमार। नालापार बाग छोटे साहब रामपुर से हैं नवाबुद्दीन, निजामुद्दीन, मोहम्मद जमालुद्दीन, सादिया, अक्सा और हम मात का। कुडलेश्वर वार्ड खंडवा से हैं योगेश गुजराती और अभय गुजराती का। जिला मुरादाबाद ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश से हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसार और अरगीज खातून का। बीजा मुरादाबाद से हैं राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव, यूनुस खान और सोफिया खान का। बोर्डसरा निरा छत्तीसगढ़ से हैं प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी साहू और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। साथी हैं विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू का। बैंक सेंटर चनेठी के पास बरेली कैंट से हैं रागनी श्रीवास्तव, विनेश कुमार श्रीवास्तव और मुस्कान का। पलारी छत्तीसगढ़ से हैं आप सभी लोग नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग, तनुजा देवांगन और ईशान देवांगन का। गांव कलमंडी खुर्द जिला झालावाड़ राजस्थान से हैं अनूप सिंह नथावत और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से हैं मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल का। अरविंद कुमार जी का कमेंट हम तक पहुंचा है, राजेश कुमार अकेला जी का कमेंट हम तक पहुंचा है, यशोदा यादव, राजीव यादव और संजीव यादव का। पलेरा हाल टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हैं और बाबूदीन का हम तक ये कमेंट पहुंचा हुआ है मेरठ कैंट से और आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत। फिल्म का नाम है झुमका गिरा रे और फिल्म का नाम है मेरा साया और गीत के बोल है झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। इस गीत को गाया है आशा भोसले ने।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: नमस्कार, मैं राजेंद्र प्रसन्ना। आज बहुत खुशी की बात है कि बरेली आकाशवाणी का स्थापना दिवस है और इस उपलक्ष में मुझे याद किया गया है। वहाँ की ऑडियंस मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मैं कुछ साल बरेली में रहा तो उसका जो आनंद है वो आप सभी के साथ शेयर करने जाता हूँ। अभी मैं वैसे पेरिस में हूँ, कुछ कार्यक्रम के लिए आया था, तो मैंने कहा कि भाई मैं बिल्कुल ऑनलाइन क्या मैं वीडियो करके भेजता हूँ, इसमें आप आकाशवाणी में सुनाएं या वीडियो में लगाएं, तो इसलिए अब मैं आपके समक्ष थोड़ा सा बांसुरी भी बजाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि बरेली में जब हम वहाँ कुछ साल रहे 76 से 78 तक, तो उसे बहुत आनंद आया। बहुत हम काफी प्रोग्राम भी किए हैं, अभी भी हम अक्सर जाते हैं वहां पे बरेली दरगाह में, दर्शन करने भी जाते हैं, मंदिर में भी जाते हैं। तो जो बरेली का आनंद है वो एक अपने आप में बड़ा अद्भुत है। तो आप सभी श्रोताओं को मैं अपना बांसुरी वादन सुना रहा हूँ।

श्रोताओं, इस समय आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी का बरेली केंद्र। और ये कमेंट हम तक पहुंचा है आप सभी लोगों का, जिला पटियाला पंजाब से हैं सोमदत्त कैरव।

ज्योति, रानी, गुरमंत कौर, मनु और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी, इनके दोस्त गांव हीरावाली फजलका पंजाब से हैं। आप सभी लोग सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा और गांव नंगलफेड़ा से फगवाड़ा पंजाब से हैं। बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीष शर्मा, राहुल शर्मा, जिला बेगूसराय बिहार से हैं। आप सभी लोग नंदन कुमार सिंह, अंकित कुमार सिंह, संजय कुमार, संदीप कुमार सिंह, जिला मोतिहारी बिहार से हैं आप लोग। और सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से हैं डीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज। और कस्बा सेथल जिला बरेली से हैं फरियाद हुसैन अंसारी, ताहिर हुसैन अंसारी, तासिफ हुसैन अंसारी, मोहम्मद अजान अंसारी, अलमीर बशर अंसारी। और गली सिकलापुर बरेली मौर्य मंदिर से है रतनवाला मौर्य, मुकेश मौर्य, प्रिंस प्रियांशी, पुष्पा, गौरव मौर्य और चंद्र प्रकाश मौर्य का। छत्तीसगढ़ सरगांव बाजार से है नसीब मोहम्मद, सलमा बेगम, रेहान मोहम्मद और फैजान मोहम्मद। जनकपुरी सहारनपुर से हैं जॉन डिक्रेस्ट्रो, रोजी डिक्रेस्ट्रो, पर्ल डिक्रेस्ट्रो और विलिस डिक्रेस्ट्रो का। बन्ने बुजुर्गों पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हैं ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष और विश्वकर्मा। और चनौरा जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से हैं बनवारी लाल कुशवाहा, मंजुलता कुशवाहा, राम और श्याम, रवि आर्यन, रंजीत कुशवाहा, रामानंद कुशवाहा और साथियों का। मोताला महाराष्ट्र से हैं विजय सुलरकर, रतनमाला सुलरकर, आरती गौरी और ओम का। गांव भोजपुर तगा चिलकाना सहारनपुर से हैं मोहम्मद अदीब, अब्दुल हन्नान, जीनत जावेद, नाहिद रानी, आयत, मोहम्मद इंतजार। गंज डुंडवारा से हैं शमसुल कमर राही, शाइन फातिमा, अनु खान, अदनान खान। और शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा से हैं आप सभी लोग आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी। और सदर बाजार कुरावाली से हैं अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा का। सालर पहलगाम कश्मीर से हैं पीरजादा मिराज उद्दीन और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से हैं उमा सिंह, श्रीमती महेश्वरी देवी, सोनू मोनू, राहुल, रश्मि, प्रियंका, सृष्टि, बन्नी, आरुष, शौर्य और दिनेश का। कटरा चांद का प्राण शहर बरेली से हैं जमुना प्रसाद मौर्य, किरण मौर्य, दृष्टि मौर्य और मानवी मौर्य का। गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से हैं स्वर सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अभिराज सिंह और पोत्रे गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह का। शाजापुर अल्लागंज से हैं आप सभी लोग डॉक्टर आरवी सिंह, अरजीत यादव, प्रशांत यादव, उदित यादव, अभय यादव, दीक्षा यादव। गनगोला दातागंज से हैं इसरत खान, शायरा बेगम, रहूब खान, सावरी बेगम, शाहबाज खान, सैफ खान, ईशान खान, आजम खान और अरहान खान का। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत। फिल्म का नाम है जान और इस गीत को गाया है मनहर उदास और अलका याग्निक ने।

श्रोताओं, ये कमेंट हम तक पहुंचा है आप सभी लोगों का आपकी पसंद में। बाबा कुटी रायगढ़ से हैं शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार राजेश्वरी और उत्कर्ष चौहान का। अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से हैं चंद्रेश गौहर, श्रीमती वंदना गौहर, मयंक गौहर और तन्वी गौहर का। साथी हैं जयपाल यादव। गुजरात गांधीग्राम से हैं प्रवीण सोनी और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। सनावत से हैं शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बोडाना। आदर्श नगर मलोट पंजाब से हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, सौरभ शर्मा और शाइना शर्मा का। साथी हैं मैंडी शर्मा और अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक, आदित्य कसाना। काठ रोड लदावली से हैं आप सभी लोग। लाल कुर्ती रुड़की कैंट से हैं राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा का। नीलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से हैं पीएस नवाकर, निर्मला नवाकर, विशाल नवाकर और सोपान तायड़े। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से हैं फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण। और पंचकुला सेक्टर 9 से हैं आशु चुग, अश्वनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान और राधे भाविक ढिंगरा का। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से हैं आप सभी लोग। ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुविहा नेवादा जिला गाजीपुर से हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय का। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज्य पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से हैं राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से हैं मुन्ना भाई सोनकार, पिंकी सोनकार, आर्यन कृष्णा और पीहू सोनकार का। बी चेयर महाराष्ट्र से हैं नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महत्रे, अंजलि करवा और बाला साहेब करवा का। बाजार रोड मुंगीसापुर से हैं मोहम्मद जाकिर मसूरी, कमरू निशा, शबिस्तान मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी का। चक 14 पीएसबी जिला श्रीगंगानगर से हैं कुलदीप सिंह, राजविंदर कौर, संदीप सिंह, जसकरण सिंह, हरदीप सिंह, वनराज विक और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा और अजीत अमित वर्मा का। महाराष्ट्र से हैं नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े और आकाश कुमार का। विरमगांव गुजरात से हैं अजित भवसार, प्रमीला भवसार और प्रवीण।

सुल्ताना का लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से हैं, उत्तम कुमार बघेल रुक्मणी बघेल साहिल बघेल और भारती बघेल का उदयपुर राजस्थान से हैं, बाबू भाई भारती देवी रमेश नाचानी विनीत और मिथिल नाचानी का। और ये कमेंट हम तक पहुंचा है आप सभी लोगों का। गांव वांडी वाला फजिलका पंजाब से हैं आप सभी लोग। ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, योगेश बगड़िया, रजत और बेबी गरिमा बगड़िया का और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से हैं गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, ताज मोहम्मद अंसारी और उनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। ग्राम बगबुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से हैं नरेन नेताम, कुसुम नेताम और पुरानी भिलाई 3/14 छत्तीसगढ़ से हैं डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम अमीदुन सिद्दीकी, जीशान सिद्दीकी, जीशान अहमद सिद्दीकी, शाहनवाज अहमद सिद्दीकी और उनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। आप सभी लोगों ने पसंद किया है नींद हमारी और ख्वाब तुम्हारे फिल्म का ये गीत। इस गीत को गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आपकी पसंद में अपनी पसंद के गीतों को आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। जहां हैं आप वहां हैं हम, ओनली 100.4 एफएम पर। और ये कमेंट हम तक पहुंचा है आप सभी लोगों का। A5B ब्लैक जनकपुरी से, न्यू नई दिल्ली से हैं आप सभी लोग, प्रदीप सलूजा जी और संगीता सलूजा, प्रथम सलूजा और उनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। शास्त्री नगर बीच शहर से हैं किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया और विशाल सपकाल का। और सोलापुर महाराष्ट्र से हैं आप सभी लोग, विष्णु मस्किन, रितिका मस्किन, वाणी मिस्किन और आरव मिस्किन का। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगरी राजस्थान से हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और बेबी बॉय हिमाक्ष का। धीरज भाई राबड़ी का ये कमेंट हम तक पहुंचा है गुजरात पाटन से और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। ये कमेंट हमारे पास आया है आप सभी लोगों का। श्रोता हैं हमारे रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, अलीजा नायाब और लड्डू का। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से हैं नारायण भाऊ खड़से, ललिता आशा रानी खड़से, संजना परी खड़से, गणेश कार्तिक खड़से, लड्डू चौधरी, स्वाति प्रज्ञा और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। नई बस्ती गंजुंडवाड़ा से हैं मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, तैमूर हाशमी और कलीम अंसारी का। अमरावती से हैं आप सभी लोग पैराडाइज कॉलोनी से, सईद भाई, सूफियान, अनस, आयजा, सरोज चौक अमरावती से हैं कमरुल्ला ठेकेदार और नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, आफिया और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। पोत्रा मुस्ताबा खान बटिंडा रोड मंडी डबवाली से हैं राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग का। ये कमेंट हमारे पास आया है आप सभी लोगों का। सफेदो सिटी हरियाणा से हैं नानक खन्ना, चंचल खन्ना, लाड़ो लवली खन्ना, रजत खन्ना, लव खन्ना, कुश खन्ना और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। मलियाना सरधना मेरठ से हैं अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जी वी एम जैन का। सेक्टर 18 जगाधारी जिला यमुनानगर हरियाणा से हैं विनय मोहन खारवान, मीनाक्षी प्लोमा व ईशानी का। गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से हैं सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम और अदीब का। खेल बाजार पानीपत से हैं नरेश मल्होत्रा, नीटू मल्होत्रा, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा इनके पापा जी, शिवाजी करोज रोहतक से हैं पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का का। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत। फिल्म का नाम है सीता और गीता। इस गीत को गाया है आशा भोसले और किशोर कुमार ने। आपकी पसंद की ये आखिरी पेशकश है। अरे, अरे।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आपकी पसंद में अपनी पसंद के गीतों को। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर, और प्रातः के 11 बजे हैं। अब आप सुनेंगे सब रंग, और सब रंग में हम आपको सुनाने जा रहे हैं ये भजन बेला सुलाखे के स्वर में।

0: 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: श्रोताओं लीजिए सुनिए अब ये भजन अनुप जलोटा और साथियों की आवाज में।

0: श्रोताओं, इसी के साथ सबरंग ही संपन्न होता है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सबरंग। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर।
1: ये आकाशवाणी, अब आप संजय मिश्रा से दिल का हाल सुन। दिल का हाल ये है कि आकाशवाणी बरेली का स्थापना दिन है और मैं आकाशवाणी की तरफ से, अपनी तरफ से उन तमाम आकाशवाणी सुनने वालों को धन्यवाद दूँ। थैंक यू, सुनते रहिए। आकाशवाणी हमारा है, हमको इसे बताना है। थैंक यू बरेली।
2: मैं गंगा

0: सिंह रावत रामपुर रोड हल्द्वानी से आकाशवाणी बरेली को उसकी स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आकाशवाणी बरेली के प्रारंभिक दिनों से, जब से इस केंद्र की शुरुआत हुई, मैं इससे बतौर श्रोता जुड़ा रहा हूं और आज भी जुड़ा हुआ हूं। पहले रेडियो के माध्यम से प्रोग्राम सुना करते थे, आजकल ऐप के माध्यम से प्रसारण सुनाई दे रहा है, काफ़ी साफ सुनाई देता है। बरेली के सारे उद्घोषक बहुत मेहनती हैं, कर्मठ हैं और बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, जिसकी वजह से मैं ही नहीं, कई श्रोता भारत से भी और भारत के बाहर से भी बहुत सारे श्रोता से जुड़े हुए हैं। मैं नाम लेना चाहूँगा उद्घोषक देवेंद्र रावत जी का, जो बहुत अच्छी प्रस्तुति देते हैं, जिनकी आवाज़ में काफ़ी मिठास है। इसके अलावा परवेज भाई, शिप्रा, अमृता जी और हरीश भाई बहुत अच्छे उद्घोषक हैं, जिनकी प्रस्तुति बहुत शानदार होती है। मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा युवाओं का, जो कार्यक्रम आता है 6:30 बजे युवाणी, वो भी बहुत रोचक होता है, जिसमें भेंट वार्ताओं के साथ साथ जो मुलाकात की जाती है हमारे युवा श्रोता से, एंटरप्रेन्योर से, वो बहुत अच्छी होती है, ज्ञानवर्धक।
1: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, प्रातः 11:30 हुए, अब आप सुनेंगे केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला में ये कार्यक्रम।
2: ये आकाशवाणी है, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
3: नमस्कार। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार देश के नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाली थी। तब से अब तक इन 12 सालों में भारत में कई बड़े बदलाव हुए हैं और हर क्षेत्र में अनगिनत उपलब्धियां हासिल की गई हैं। आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, जन कल्याण के में आज हम पर्यावरण के क्षेत्र में हुई उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव। मंत्री जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
4: धन्यवाद।
3: भूपेंद्र जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हाल ही में 12 वर्ष पूरे किए हैं, इस पूरी यात्रा में, इन 12 सालों में आप किन बदलावों को सबसे ज्यादा परिवर्तनकारी मानते हैं, जिन्होंने भारत में गुड गवर्नेंस की एक नई परिभाषा गढ़ी है?
4: आपने जो शुरुआत में दो शब्द कहे थे
3: जी,
4: विश्वास और जन कल्याण
3: जी,
4: मुझे लगता है 12 साल की कहानी विश्वास और जन कल्याण की है। विश्वास इस बात का कि सरकार ऊपर से जो 100 रुपये भेजेगी वो जनधन खाते में पूरा 100 रुपया जाएगा, ये पहली बार हुआ है, वरना खुद देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हम 100 रुपया भेजते हैं, 85 रुपया गायब हो जाता है। विश्वास इस बात का कि सरकार जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेगी उसका उद्घाटन भी यही सरकार करेगी। 12 साल पहले जब प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने एक प्रगति नाम का कार्य शुरू किया तो कई सौ समय से पड़े हुए प्रोजेक्ट नहीं पूरे हुए
3: जी।
4: मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में केन बेतवा प्रधानमंत्री जी के समय में पूरा हुआ, राजस्थान में ERCP प्रधानमंत्री जी के समय में प्रारंभ हुआ, या आपके ऊपर पुल बनाने का विषय हो या गुवाहाटी के पुल बनाने का विषय हो, तो दूसरा विश्वास कि सरकार जिसका उद्घाटन करेगी उसको जनता को समर्पित भी करेगी। तीसरा, जो लोगों का विश्वास है कि भारत का आत्मसम्मान और गौरव दुनिया में बड़ा है। फिर ऐसा जब अच्छा समय होता है तो आपकी परीक्षा भी ली जाती है।
3: बिल्कुल।
4: तो दुनिया में जब कोरोना की महामारी का संकट आया तो इस बात का विश्वास कि हम अपनी दवाई भी खुद ढूंढ सकते हैं और अपना रास्ता भी खुद तय कर सकते हैं। फिर भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी तो इस बात का विश्वास कि हम जिस रास्ते पे चले हैं वह रास्ता विकसित भारत की ओर जा रहा है। और दूसरा जो शब्द आपने कल्याण कहा था, कल्याण
3: जी,
4: गरीब कल्याण, 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी के खाते से निकाला, 80 करोड़ लोगों को समय पर राशन पहुंचाने का काम किया, किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया। और कल्याण के इस कार्य में जो कभी लोहिया जी 60 के दशक में कहा करते थे कि पानी और पखाना, ये भारत के महिलाओं की इतनी बड़ी त्रासदी रही है कि उनको मीलों दूर से पानी लाना पड़ता है, और अपनी इज्जत

0: को बचाने के लिए अपने नेचुरल क्रिया को रोकना पड़ता है। घर घर शौचालय बनाने जैसा छोटा लेकिन एक लंबा कार्य और जल जीवन मिशन को पहुंचाना, और इसलिए विश्वास और जन कल्याण ये 12 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और सफलता को बता रहा है।
1: भूपेंद्र जी, जलवायु संरक्षण के प्रयास के क्षेत्र में भारत एक बहुत बड़ी वैश्विक आवाज बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री मोदी खुद भी इसके बहुत बड़े पक्षधर हैं। तो आपके मुताबिक भारत ने विकास की अपनी जरूरतों और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे बनाया है?
0: विषय ये उठता है कि हम वैश्विक आवाज किसकी बने? हम वैश्विक आवाज ग्लोबल साउथ की बने
1: जी।
0: तो जलवायु परिवर्तन के संकट की असमानता और असंतुलन क्या है? जलवायु परिवर्तन संकट की असमानता ये है कि जो विकसित देश हैं उन्होंने अपने स्पेस से ज्यादा धरती का कार्बन स्पेस घेरा हुआ है, और आज अगर वो पर्यावरणीय विषयों में विकासशील देशों को कुछ निर्देशित करना चाहते हैं तो पहले उनको जो उनका हिस्टोरिकल रॉन्ग है वो देना पड़ेगा
1: जी।
0: और भारत ने इसलिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ग्लोबल साउथ की आवाज को प्रखरता के साथ उठाया है, लेकिन हमने ग्लोबल साउथ की आवाज को केवल लड़ने के लिए नहीं उठाया। प्रधानमंत्री जी हमेशा हमें निर्देशित करते हैं कि भारत दुनिया की जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में समाधान का मार्ग प्रशस्त करे, समस्या ना बने
1: जी।
0: और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम, चाहे कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, अकाल सूखे और बाढ़ के कारण होने वाले दुष्परिणामों के कारण दुनिया में कैपेसिटी बिल्डिंग और नॉलेज शेयरिंग का विषय हो, क्या इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक वैकल्पिक ऊर्जा जिसको नवकरणीय ऊर्जा कहते हैं उसका विषय हो, चाहे जो कार्बन एमिशन जिन इंडस्ट्रीज से निकलता है उनके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लीडरशिप और इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन जैसा विषय हो, और चाहे बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल विकेट अलायंस जैसा विषय हो। तो भारत ने दुनिया में ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर के उनके हकों की बात करी है, क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम का हिस्सा बनकर और उसका नेतृत्व करके समाधान, नॉलेज शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग का विषय अपनाया है, और मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे अभियान चलाकर ये समस्या हम सबकी समस्या है और अपनी अंतरचेतना को जगाकर अपना व्यक्तिगत योगदान क्या दे सकते हैं उसमें एक बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निभाने का कार्य किया है।
1: आपने अभी जो कुछ पॉइंट्स कहे हैं, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की बात की, आपने नेट जीरो इमिशंस की बात की, इन पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे, पर उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि प्रदूषण आज एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, खासकर की दिल्ली जैसे महानगरों में, और ये जो है वो हमारे पर्यावरण पे बहुत इसका बुरा असर पड़ रहा है। सरकार अपनी तरफ से इसके लिए कई प्रयास कर रही है, जैसे भी हमने हाल ही में देखा कि यूनियन कैबिनेट ने दिल्ली एनसीआर में पुराने ट्रकों और बसों को फेज आउट करने के लिए एक स्कीम जो है अप्रूव की है, साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवीज को बहुत बड़े पैमाने पर प्रमोट किया जा रहा है। आप खुद भी ईवी में ट्रैवल करते हैं, तो इन प्रयासों को आप कैसे देखते हैं?
0: नहीं, ये सकारात्मक प्रयास है, जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव, भौगोलिक परिस्थिति के कारण पर्टिकुलर समय में दिल्ली में वातावरण में प्रदूषण फैलता है। अभी तो आपको अच्छा लगा होगा कि मई तो हमारा क्लीनेस्ट डे रहा है, अखबारों में भी आया है, लेकिन जहां पर मनुष्य आधारित गतिविधियां होती हैं वहां पीएम 2.5 और पीएम 10 ये दो जो तत्व, मतलब पीएम 2.5 में कार्बन, ओजोन, बाकी जो गैसेस निकलती हैं उद्योगों से, व्हीकल से, और पीएम 10 में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उसके कारण ये प्रदूषण फैलता है। और जब मौसम में ऐसी स्थिति आती है, विशेष रूप से दिल्ली में जब हवाएं चलनी बंद होती है और सर्दी होती है, और सर्दी भी हो हवा भी ना चले, तो वो जो वायु में जो तत्व है जिसको एयर पार्टिकल कहते हैं वो जम जाता है, और जमने के कारण वो एक वातावरण का जो एक्यूआई है उसको खराब करता है। तो इसका उपाय विभिन्न क्षेत्रों में है, व्हीकल पॉल्यूशन के स्तर पर क्लीन और फ्यूल की बात कही गई है, पुराने व्हीकल्स को समाप्त किया गया है, स्मार्ट ट्रैफिकिंग की ओर सरकार का ध्यान गया है, दिल्ली से कमर्शियल व्हीकल के लिए ईस्टर्न और वेस्टर्न पैरेलल एक हाईवे बना करके बड़ा ट्रैफिक वहां से निकालने की बात की गई है, मेट्रो का विस्तार करके सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने का काम किया गया है, इंडस्ट्री के मॉनिटरिंग के लिए हर इंडस्ट्री में ओसीएम लगाने की बात की गई है, और उसके साथ ही साथ जो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो अनधिकृत क्षेत्र में हैं

0: उनको सख्ती से बंद करने की बात की गई है। उसके साथ ही दिल्ली के ग्रीनिंग के अभियान को चलाया गया है। डस्ट के लिए जो मैकेनाइज मशीन की जो सफाई है उसके लिए लगभग 100 से ज्यादा मशीनें मंगाई गई हैं। फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम किया है। फिर आर्टिकल जो P10 है इसका बड़ा कारण डस्ट है, तो कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन के लिए साइट्स को बनाने का काम किया गया है। इन सारे विषयों को करते हुए आज शाम को ही कृषि मंत्रालय में हमारी बैठक है कि पराली के बारे में अभी से प्रबंधन के विषयों के लिए बाकी राज्यों से बात करने की बात की गई है। दिल्ली के आसपास जो कॉरपोरेशंस हैं, चाहे गाजियाबाद हो, नोएडा हो, फरीदाबाद हो, सोनीपत हो, मानेसर हो, गुड़गावा हो या फिर अलवर हो, वहां के जो हमारे कॉरपोरेशंस हैं उनको अपना एडवांस में प्लानिंग बनाने को कहा है। व्हीकल पॉल्यूशन, इंडस्ट्री पॉल्यूशन, डस्ट कंट्रोल, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इन सब विषयों में एक अच्छे तरीके की नीति बनाने की बात की गई है और पब्लिक के सहयोग के लिए भी इस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है।
1: जी, प्रधानमंत्री का एक संकल्प है भारत को विकसित भारत बनाना 2047 तक। इस विजन में सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक महत्वपूर्ण पिलर है, तो भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में आपकी मिनिस्ट्री यानी कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मिनिस्ट्री जो है, मैं कहूंगी कि सबसे अहम है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
0: सबसे पहले तो सतत विकास का अर्थ है कि विकास की धारा निरंतर चलती रहे, इसमें इम्बैलेंस ना है, कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी रहे। लेकिन हम धरती से जो संसाधन निकालते हैं उन संसाधनों का हमें वापस से पुनः उपयोग करना चाहिए, इसलिए हमारा मंत्रालय जो है सर्कुलर इकोनॉमी पे बल देता है। सर्कुलर इकोनॉमी में चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से निकलने वाला पदार्थ हो, चाहे यूज्ड ऑयल से निकलने वाला पदार्थ हो, चाहे फ्लाई ऐश जो होती हैं उनके साथ बेकार फ्लाई ऐश का विषय हो, और ऐसे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जो कि हम पहले क्या करते थे, मेक टेक एंड वेस्ट, वो क्या करते थे, अब जो सर्कुलर इकोनॉमी है वो एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर चलती है, रिसाइकल, रीयूज एंड रिप्रोड्यूस, है ना। तो उसके लिए रेगुलेशन के लिए हमारे मंत्रालय ने रेगुलेटरी मिनिस्ट्री के नाते सारे रूल्स के फ्रेमिंग करने का काम किया। दूसरा, जो एक लंबे समय से इंडस्ट्री में बात की जा रही थी कि भाई आप इंडस्ट्री चला रहे हैं, आपकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, तो जैसे आपको अपना अकाउंट्स का ऑडिट देना पड़ता है, अब एनवायरमेंट ऑडिट की भी बात करी है और उनके ऑडिटर वो ऑडिट देंगे, ताकि हम जैसे आजकल रोज सुबह उठकर अपना इंसुलिन नाप लेते हैं ना कि हमारा आज कितना इंसुलिन है, हमारा आज कितना बीपी है, तो ये जो पर्यावरण का प्रदूषण भी एक किस्म का डायबिटीज ही है, इसके लिए अपना आपको एनवायरमेंट ऑडिट कराना चाहिए। और हमारे मंत्रालय ने रिफॉर्म्स के मानकों को काफी सरल करने का काम किया है, ताकि लोग नियम कठिन होने के कारण नियम को तोड़ते हैं। नियम जब सरल होते हैं और कॉन्शियसनेस होती है, उसके प्रति अवेयरनेस होती है, तो लोग उसको अपनाने का काम करते हैं। तो सर्कुलर इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी का उपयोग, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, देश के इको सेंसिटिव जोन का संवर्धन, देश में जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनका प्रोटेक्शन, एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाकर धरती को हरा भरा बनाने का विषय, उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन और कॉरपोरेट पार्टिसिपेशन को लेने के लिए ग्रीन क्रेडिट फंड जैसा प्रोग्राम, कैंपा के माध्यम से ग्रीन इंडिया मिशन पे कार्य, बायोडायवर्सिटी संरक्षण के लिए गांव-गांव में बायोडायवर्सिटी रजिस्टर बनाने का कार्य, इन सब विषयों को लेकर के हम कार्य कर रहे हैं।
1: शुरू में आपने बात की इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में फ्रांस के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की थी और ये आज दुनिया की सबसे बड़ी क्लाइमेट इनिशिएटिव्स में से एक है। तो वैश्विक जलवायु संरक्षण के प्रयास और भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को मजबूत करने में इस तरह के पहल के बारे में आप क्या कहेंगे?
0: ऐसा है कि दुनिया भर में ये कहा जाता है कि भाई आप दुनिया में अगर आपको कार्बन एमिशन कम करना है तो आपको फॉसिल फ्यूल जो है वो कम उपयोग करना पड़ेगा। भारत ने जो अपने NDCs टारगेट दिए थे उसमें हमने कहा था कि हमारी जो ऊर्जा की कैपेसिटी है उसका 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करेंगे, और रिन्यूएबल एनर्जी से हमने ये प्राप्त करने के लिए सोलर के क्षेत्र को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। भारत ने सोलर के क्षेत्र में अपने 53% जो है ग्रोथ किया है। मैं जब G20 में केप टाउन में गया था तो UNFCCC के माध्यम से एक प्रेजेंटेशन किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पेरिस एग्रीमेंट के 10 साल बाद दुनिया में कहां पर नया और अच्छा नवाचार हुआ, और उसमें

भारत की इस बात की प्रशंसा की गई कि भारत ने दुनिया को सोलर क्षेत्र में अपनी उपलब्धि से बताया है कि जिसको रिन्यूएबल एनर्जी या नवीनकरणीय ऊर्जा कहते हैं उसमें भारत ने अच्छा कार्य किया है। पर अभी तो जो इरना की जो रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी की, वो भी ये बताता है कि भारत दूसरे नंबर पे पहुंचा है। तो हम भी मानते हैं कि कार्बन एमिशन कम होना चाहिए, रिन्यूएबल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, और इसलिए जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है जिसका अब तो हेडक्वार्टर भी गुड़गांव है। एक समय होता था कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के हेडक्वार्टर हमें दुनिया के दूसरे देशों में दिखते थे। 12 साल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उपलब्धि हुई है तो इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर भी अब भारत में बनने लगे हैं। और रिन्यूएबल के क्षेत्र में भारत ने विशेष रूप से सोलर के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 12 साल में एक अच्छे

0: सोलर के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 12 साल में एक अच्छे मुकाम को हासिल किया है।
1: अगले सवाल के लिए मैं आपसे कुछ आंकड़े शेयर करना चाहूंगी कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक देश में फॉरेस्ट और ट्री कवर यानी कि वन क्षेत्र और वृक्षों का दायरा बढ़कर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% हो गया है और पिछली रिपोर्ट की तुलना में इसमें लगभग 1425 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है और साथ ही फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक जो है उसमें भी 8 करोड़ 10 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। बहुत बड़े बड़े आंकड़े हैं लेकिन अगर हम इसको समग्र रूप में देखें और अगर हम पर्यावरण की सुरक्षा और के रूप में देखें तो इन उपलब्धियों के पीछे आप कौन सी प्रमुख नीतियों और पहल की बात मानते हैं कि कौन सी पहल और उपलब्धियां रही हैं?
0: ऐसा है कि सतत विकास के साथ समग्र विकास भी होना चाहिए
1: जी।
0: और नेचर का ये नियम होता है कि जहाँ प्योरेस्ट नेचर होती है वहाँ पर जो अपेक्स प्रेडेटर है वो सरवाइव करते हैं
1: जी।
0: नेचर जो है उसमें जैसे एक छोटा माइक्रो जो स्पीशीज है उससे लेकर और जो अपेक्स प्रेडेटर है तो इसमें 7 बिग कैट्स हैं। तो भारत ने पिछले 12 साल में दिखाया है कि हमारे टाइगर की संख्या में वृद्धि हुई है, लेपर्ड की संख्या में वृद्धि हुई है, स्नो लेपर्ड का एस्टीमेशन हम लोगों ने कराया है, लॉयन जो है पूरे अफ्रीका में कम हो रहे हैं, भारत में उसकी संख्या में वृद्धि हुई है और एक स्पीशीज जो हमारे यहाँ से एक्सटिंक्ट हो गई थी चीता उसका भी हमने वापस से री इंट्रोडक्शन किया है। तो हमने ये जो फॉरेस्ट कवर बढ़ा है ये इस बात को दर्शाता है कि हमने अपने यहाँ ये अभियान चला करके वो नेचर के बैलेंस को बनाने का काम किया है। यही कारण है कि आप ये देखोगे कि 2014 के पहले कांग्रेस के समय में ये इको सेंसिटिव जोन का नोटिफिकेशन ही नहीं करते थे, पड़ा रहता था मामला। अभी अगर 2014 से और 2026 12 साल में देखेंगे तो उनकी संख्या बढ़कर 391 हो गई है, प्रोटेक्शन एरियाज की संख्या बढ़कर 509 हो गई है, जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनकी संख्या 47 थी वो बढ़कर के 58 हो गई है, जो एलिफेंट रिजर्व हैं उनकी संख्या बढ़कर के 33 हो गई है, जो हमारी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं चाहे एलिफेंट हो, टाइगर हो, लॉयन हो, डॉल्फिन हो, पहली बार डॉल्फिन का एस्टीमेशन किया गया, मोर देन 6500 डॉल्फिन का हमने एस्टीमेशन किया है, उसके साथ ही साथ घड़ियाल हो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो, तो ये सारी एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाने का, इनके प्रोटेक्शन का, प्रिजर्वेशन का काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ जो हमारी लोकल ट्राइब्स हैं उनके जो राइट्स हैं उसके लिए भी हम पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टों के वितरण का कार्य किया गया है। ये इस बात को पूरी तरीके से दर्शाने का काम करते हैं कि हम अपने इकोलॉजी के क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
1: आपने डॉल्फिन्स की बात की तो नमामि गंगे मिशन की बात करना जाहिर हो जाता है। तो जब नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो उसका मकसद था गंगा को स्वच्छ करना, लेकिन समय के साथ ये बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के एक बहुत बड़े और अहम मॉडल के रूप में उभरा है। हाल ही में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी इसका मेंशन किया था। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे मिशन के तहत देश की पहली डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस द्वारा एक गंगा डॉल्फिन के सफल बचाव किया गया और उन्होंने इसे आशा की किरण बताया और कहा कि गंगा डॉल्फिन की रक्षा गंगा के पूरे इकोसिस्टम की रक्षा है। तो नदी की स्वच्छता से लेकर उसके बायोडायवर्सिटी और इकोसिस्टम के संरक्षण तक की इस यात्रा के बारे में आप क्या कहेंगे और नमामि गंगे मिशन की सफलता को आप किस तरह देखते हैं, कितनी इम्पोर्टेंट है ये?
0: देखिए, सरकार ने तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी फाइल किया है कि जो गंगा का जो अपर एरिया है जहां ओरिजिनल गंगा बनने की शुरुआत होती है उनकी ट्रिब्यूटरी पे अब कोई फर्दर और कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। हम ये मानते हैं कि गंगा की सेंटिटी, गंगा के जल की शुद्धता, ये तो हमारा लक्ष्य रहा ही है और इसलिए नमामि गंगे मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और प्रोजेक्ट डॉल्फिन को भी हम इसीलिए चला रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि धरती पे भी अपेक्स प्रेडेटर तभी रहता है जब बाकी जो माइक्रो से लेकर के और मैक्रो सब सारा जो सिस्टम नेचर का सुरक्षित होता है, सेम डॉल्फिन के बारे में भी है और इसलिए हमने डॉल्फिन मित्र बनाने का भी काम किया। सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो एक संस्थान है ICFR, उसने अभी एक पिछले तीन चार साल से एक रिपोर्ट पे हम काम कर रहे हैं कि हमारे नदियों के किनारे जो पेड़ लगाने के विषय हैं उस पर उन्होंने एक पूरी DPR तैयार करी है और हम नदियों के किनारे भी वृक्षों के संरक्षण को लेकर के काम कर रहे हैं। मैं कुछ दिनों पहले जो पीलीभीत से ऊपर एक

0: जगह है कतरनिया घाट, वहां पे सबसे अच्छी डॉल्फिन साइटिंग भी है और हमारे घड़ियाल के लिए भी मैं गया था। तो ये वाटर कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं। और जो अमृत सरोवर, तो प्रधानमंत्री जी के हृदय के बड़ा नजदीक है। अगर आप एटलस भी देखेंगे तो जो छोटे सरोवर हैं उनकी संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन बड़े सरोवर भी, जो बड़ी झीलें भी हैं, उनके प्रति जागरूकता के लिए हमको रामसर साइट का दर्जा दिला रहे हैं। और 2014 में जहां देश में 24 रामसर साइट्स थी, अब उनकी संख्या बढ़कर 100 हो गई।
1: मंत्री जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था एक पेड़ माँ के नाम अभियान, आपने भी बात की, और वो आज एक जन आंदोलन बन गया है, इसे भी हम सब जानते हैं। तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस अभियान के तहत 140 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। बेशक की संख्या बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम इसे सिर्फ संख्या के नजरिए से ना देखें तो जन भागीदारी, एफॉरेस्टेशन और पर्यावरण जागरूकता के संदर्भ में इसके प्रभाव को आप कैसे देखते हैं?
0: मैं हमेशा अपने अधिकारियों को कहता हूं कि देखिए, जो हरित क्षेत्र का विस्तार है ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये पैशन का विषय है
1: जी।
0: और ये नेचर के साथ आपके कंपैशन का विषय है। अगर आपके साथ नेचर के साथ अगर आपका भाव होगा तो आप लगाओगे। पेड़ लगाना ये फोटो खिंचाने के लिए नहीं होना चाहिए, पेड़ लगाना ये प्रकृति को बचाने के लिए होना चाहिए। और एक पेड़ माँ के नाम अभियान जब प्रधानमंत्री जी ने शुरू भी किया था तो प्रधानमंत्री जी का एक संदेश था जिसको हम लोगों तक पहुंचाते हैं कि हमारे पे दो लोगों का बहुत एहसान है, एक हमारी माँ का जिसने हमें जन्म दिया और दूसरा धरती माँ का जिसने हमारा भरण पोषण किया। और इसके प्रति कृतज्ञता अर्पित करने का यही तरीका है कि हम वहां पर एक पेड़ कम से कम माँ के नाम लगाएं। देखिए, आप बहुत बड़ी किसी भी बड़े ब्रांड की गाड़ी खरीद सकती हैं, लेकिन वो गाड़ी ऑक्सीजन नहीं दे सकती। आप 10 मंजिल का मकान बना सकते हैं, लेकिन वो चिड़िया के लिए एक दाना नहीं बना सकता, है ना, पक्षियों को छांव नहीं दे सकता। तो पेड़ तो नैसर्गिक रूप से प्रकृति का दिया हुआ उपहार होता है। और मैं कई बार ये भी कहता हूं कि केवल पेड़ लगाना मतलब हॉर्टिकल्चर का विषय हो जाता है। जब हम वन की बात करते हैं, हम इकोलॉजी की बात करते हैं, तो पेड़ लगाना मतलब वुडलैंड तैयार करना। लेकिन जितना वुडलैंड का महत्व होता है उतना ही वेटलैंड का महत्व होता है पक्षियों के लिए, और उतना ही ग्रासलैंड का महत्व होता है। और ग्रासलैंड का जो हमारा एक बड़ा स्पीशीज था चीता, वो तो भारत से एक्सटिंक्ट हो गया था। तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने चीते के भी ट्रांसलोकेशन का कार्य किया है। तो एक पेड़ माँ का नाम अभियान प्रधानमंत्री जी का इस धरती की हरियाली से जुड़ने का अभियान है। और धरती की हरियाली वुडलैंड, ग्रासलैंड और वेटलैंड तीनों बायोडायवर्सिटी के समान रूप से संरक्षण में होगी, और हम तीनों के लिए कार्य कर रहे हैं।
1: भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, और अक्सर ऐसा माना जाता है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। ऐसे में जब हरित विकास भारत की स्ट्रैटेजी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गया है, तब सरकार, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार, आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विकास और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बीच संतुलन कैसे सुनिश्चित कर रही है?
0: देखो, विकास तभी समृद्ध होता है जब नेचर समृद्ध होता है। मान लो आप पानी से बिजली बनाते हो
1: जी,
0: पानी नहीं होगा तो बिजली कहां से बनाओगे? आप कोयले से बिजली बनाते हो, कोयला ही नहीं होगा तो बिजली कहां से बनाओगे
1: जी?
0: दुनिया की कौन सी ऐसी दवाई है जिसका लास्ट सोर्स नेचर ना होता हो? आप फैक्ट्री में ब्रेड बना सकते हो लेकिन गेहूं तो पैदा नहीं कर सकते। कोई ऐसी फैक्ट्री थोड़ी होती है कि जिसमें गेहूं बनता है। गेहूं से आटा बनता है लेकिन वो तो नेचर से आता है। तो हमारा फूड, हमारा एनर्जी रिसोर्स, हमारी औषधि, ये तो नेचर से आती है। तो नेचर सुरक्षित और संरक्षित होगी तो विकास भी होगा
1: जी।
0: आप एक बात बताइए कि जैसे आप सड़क बना रहे हैं या आप मकान बना रहे हैं, तो मकान में जो भी चीज लगा रहे हैं आप, दरवाजा है तो लकड़ी तो नेचर से आती है, ये कहां से आती है
1: जी।
0: तो विकास भी तभी होगा जब हम संसाधनों का बुद्धिमता तरीके से उपयोग करेंगे। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है
1: जी?
0: कि कितना लंबे समय तक आप धरती को से खोद खोद कर केवल खनिज का उपयोग करोगे? कभी तो ऐसा समय आएगा कि इस खनिज का पुनर्उपयोग करने का काम आप करोगे। तो मेरा मानना है, जिसको आजकल कहते हैं नेचर बेस्ड सॉल्यूशन
1: जी,
0: नेचर बेस्ड सॉल्यूशन।

0: पोल्यूशन, नेचर बेस्ड लाइफ स्टाइल और नेचर के साथ विकास करने का काम हम लोग करेंगे। और इसलिए इकोलॉजी और इकोनॉमी ये एक दूसरे की विरोधी नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक है।
1: जी, हम बात कर रहे थे शुरू में नेट जीरो एमिशंस की, तो जो भारत ने वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य तक लाने की यानी कि नेट जीरो एमिशंस के लक्ष्य सहित कई महत्वाकांक्षी क्लाइमेट गोल्स को निर्धारित किया है खुद के लिए, सो इस दिशा में अब तक कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं और आगे के क्या हमारे लक्ष्य हैं?
0: देखो, जो रिन्यूएबल एनर्जी में हमारी क्षमता है ये नेट जीरो के है
1: जी,
0: जो ग्रीन सिटीज की बात है ये नेट जीरो की है, जो मेट्रो का विस्तार है ये नेट जीरो के लिए है, जो ईवी का विस्तार है वो नेट जीरो के लिए है, जो ग्रीन हाइड्रोजन नए एनर्जी रिसोर्स को ढूंढ रहा है वो नेट जीरो के लिए है, जो बायोफ्यूल अलायंस कर रहे हैं वो नेट जीरो के लिए है, जो सोलार की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं वो नेट जीरो के लिए है। नेट जीरो का अर्थ है कि हम एक ऐसे अर्थव्यवस्था के मुकाम पे पहुंचे जो कार्बन एमिशन और कार्बन उत्सर्जन कम हो, हमारी जीवन शैली और हमारे विकास का आधार पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली हो। और इसलिए जैसा आपने बताया कि 1477 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ा है तो वो नेट जीरो के लिए है।
1: पर्यावरण लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार अपनी तरफ से पूरा काम कर रही है, लेकिन इसके साथ ही जो हम जब पर्यावरण की बात करते हैं, उसकी सुरक्षा की बात करते हैं, तो उसमें इंडस्ट्री का, कॉरपोरेट जगत का कितना इम्पोर्टेंट आप एक रोल देखते हैं?
0: अभी हमने ग्रीन क्रेडिट फंड में कॉरपोरेट को लगाया है, उनके जो ESG है वो भी है। कॉरपोरेट जगत में बात होती है, भारत में कॉरपोरेट जगत में एक उत्साह का भाव बना है कि वो ग्रीन ट्रांजिशन की ओर जाए, अपनी इंडस्ट्री को ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाए। पर मैं उम्मीद करता हूं कि विकास ऐसा होना चाहिए जो लंबे समय तक चले और धरती को बचाने के लिए हो। इसलिए कई बार ये कहते हैं ना कि ये ग्रह हमें अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में नहीं मिला है, अपने बच्चों से उधार में मिला है
1: जी।
0: तो ये हरा भरा ग्रह छोड़ के जाए
1: जी।
0: वरना एक दिन, जैसे आप ये कहते हैं ना कि मनुष्य ये सोचता है कि मंगल पे कभी जीवन था, तो ऐसा नहीं हो कि दूसरे ग्रह के लोग कहें कि पृथ्वी पे भी कभी जीवन था।
1: क्योंकि आपने बच्चों की बात की तो आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि आम नागरिक और आज खासकर की जो देश के युवा हैं, जो देश का भविष्य है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इस अभियान में क्या योगदान दे सकते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है?
0: पहला तो एक फिर माँ के नाम अभियान से जुड़े, और दूसरा प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ में जो आयाम दिए हैं, सेव फूड, सेव वाटर, सेव एनर्जी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, हेल्दी लाइफ स्टाइल, ऐसे विषयों पे ज्यादा से ज्यादा काम करें, इसको अपनी जीवन पद्धति पे अपनाएं, तो मिशन लाइफ को अपना जीवन का आधार बनाएं, एक पेड़ माँ के नाम लगाएं और ग्रीन टेक्नोलॉजी के विकास में अपना योगदान करें।
1: मंत्री जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और पर्यावरण के क्षेत्र में पिछले 12 साल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुई उपलब्धियों के बारे में और लक्ष्यों के बारे में बातचीत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आकाशवाणी में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ विशेष साक्षात्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत ये विशेष कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, दोपहर के 12 बजने वाले हैं। अब आपको हम जोड़ेंगे अपने अगले कार्यक्रम से, लेकिन थोड़ी ही देर में। तब तक आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: राजेंद्र प्रसन्ना, आज बहुत खुशी की बात है कि बरेली आकाशवाणी का स्थापना दिवस है और इस उपलक्ष्य में मुझे याद किया गया है। वहाँ की ऑडियंस मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं कुछ साल बरेली में रहा तो उसका जो आनंद है वो आप सभी के साथ शेयर करने जाता हूँ। अभी मैं वैसे पेरिस में हूँ, कुछ कार्यक्रम के लिए आया था, तो मैंने कहा कि भाई मैं बिल्कुल ऑनलाइन क्या मैं वीडियो करके भेजता हूँ, इसमें आप आकाशवाणी में सुनाएं या वीडियो में लगाएं, तो इसलिए अब मैं आपके समक्ष थोड़ा सा बांसुरी भी बजाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि बरेली में जब हम

वहाँ कुछ साल रहे, 76 से 78 तक। तो उससे बहुत आनंद आया, बहुत हम काफी प्रोग्राम भी किए हैं। अभी भी हम अक्सर जाते हैं वहां पे, बरेली दरगाह में दर्शन करने भी जाते हैं, मंदिर में भी जाते हैं। तो जो बरेली का आनंद है वो एक अपने आप में बड़ा अद्भुत है। तो आप सभी श्रोताओं को मैं अपना आशीर्वादन सुना रहा हूँ।

नमस्कार, ये आकाश सुमन। अब आप संजय मिश्रा से दिल का हाल सुनिए। दिल का हाल ये है कि आकाशवाणी बरेली का स्थापना दिन है और मैं आकाशवाणी की तरफ से, अपनी तरफ से उन तमाम आकाशवाणी सुनने वालों को धन्यवाद। थैंक यू। सुनते रहिए, आकाशवाणी हमारा है, हमको इसे बताना है। थैंक यू बरेली।

0: मैं गंगा सिंह रावत रामपुरोड हल्द्वानी से आकाशवाणी बरेली को उसकी स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आकाशवाणी बरेली के प्रारंभिक दिनों से, जब से इस केंद्र की शुरुआत हुई, मैं इससे बतौर श्रोता जुड़ा रहा हूँ और आज भी जुड़ा हुआ हूँ। पहले रेडियो के माध्यम से प्रोग्राम सुना करते थे, आजकल ऐप के माध्यम से प्रसारण सुनाई दे रहा है, काफ़ी साफ सुनाई देता है। बरेली के सारे उद्घोषक बहुत मेहनती हैं, कर्मठ हैं और बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, जिसकी वजह से मैं ही नहीं, कई श्रोता भारत से भी और भारत के बाहर से भी बहुत सारे श्रोता इससे जुड़े हुए हैं। मैं नाम लेना चाहूँगा उद्घोषक देवेंद्र रावत जी का, जो बहुत अच्छी प्रस्तुति देते हैं, जिनकी आवाज़ में काफ़ी मिठास है। इसके अलावा परवेज भाई, शिप्रा, अमृता जी और हरीश भाई बहुत अच्छे उद्घोषक हैं, जिनकी प्रस्तुति बहुत शानदार होती है। मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा युवाओं का, जो कार्यक्रम आता है 6:30 बजे युवाणी, वो भी बहुत रोचक होता है, जिसमें भेंट वार्ताओं के साथ साथ जो मुलाकात की जाती है हमारे युवा श्रोता से, एंटरप्रेन्योर से, वो बहुत अच्छी होती है, ज्ञानवर्धक, रोचक और प्रेरक होती है। तो जो संगीत के कार्यक्रम हैं, फरमाइशी कार्यक्रम हैं, सोशल मीडिया ऐप के जरिए हम अपनी फरमाइश भेजते हैं, पूरी भी होती है, और कई विचारोत्तेजक कार्यक्रम हैं जिसमें श्रोता अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, सभी बहुत अच्छे हैं। तो पुनः मैं आकाशवाणी बरेली को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। धन्यवाद।
1: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे हमारे अगले कार्यक्रम, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। बस कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

दोस्तों, मौसम गर्मी का हो और खाने पीने की बात की जाए तो बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात होती है। इसीलिए हम लेकर आए हैं आपके लिए आसान, स्वादिष्ट और हेल्दी रेसिपी। जी हाँ, जिसे आसानी से हम घर पे बना सकते हैं। अच्छा बताइए, गर्मियों का मौसम जब चल रहा हो और ऐसे मौसम में मन करता है कि कुछ ठंडा, स्वादिष्ट और साथ ही साथ हेल्दी भी हो, खाने पीने का मन करता है ना, तो सबसे पहले जब ठंडी की बात आती है तो आप समझ गए होंगे कि कुछ हम बढ़िया सा पीने वाला बनाने वाले हैं। तो हम सबसे पहले आपको मैंगो से रिलेटेड, हाँ, बहुत सारी चीजें आप बनाते हैं, मैंगो की खीर बनाते हैं, मैंगो का शेक बनाते हैं, मैंगो को ऐसे ही ठंडा करके खाते हैं, स्मूदी, कई सारी चीजें बनाते हैं, लेकिन हम आपको आज मैंगो लस्सी बताने वाले हैं। जी हाँ, जिसके लिए क्या क्या चाहिए आपको? आपको मैंगो चाहिए पक्के हुए, बढ़िया मीठे वाले, मुंह में पानी आ जाता है ना मैंगो की बात करते हैं। और आपको एक कप ठंडा दही चाहिए, थोड़ा सा दूध चाहिए और टेस्ट के अनुसार आपको शहद चाहिए, क्योंकि शक्कर नहीं बताने वाले हम, चीनी नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि अगर वो बताएंगे तो क्या होगा, हेल्दी कम हो जाएगा। और बर्फ के कुछ टुकड़े भी

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

दोस्तों 12:27 और 17 सेकंड का वक्त, शालिनी है आपके साथ प्रोग्राम शत्रुपा में और अब हम बताने वाले हैं आपको मैंगो लस्सी। जी हाँ, तो चीजें इकट्ठा कर ली थी ना आपने। अब आप सोच रहे होंगे वो तो बहुत देर से करके रखी है भाई, गाने भी तो आप तक पहुंचाने, फिर आप कहेंगे लो हम गाने नहीं सुनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या सामान रखा? 1 कप पके आम के टुकड़े हो गए, 1 कप आपका ठंडा दही हो गया, 1/2 कप ठंडा दूध हो गया, और शहद अगर आप उसमें डालना चाहते हैं, और नहीं तो मीठे मीठे आम टेस्ट कर लीजिए और वो ही सही है, उसमें कुछ अलग से आपको मीठा कुछ नहीं ऐड करना है। और हाँ, टेस्ट करने के चक्कर में ये ना हो जो काट के आपने आम के टुकड़े रखे हैं वो ख़त्म कर दें, और 3-4 बर्फ के टुकड़े छोटे छोटे रख लें। और अब क्या करना है, इन सारी चीज़ों को मिक्सी में डाल देना है और अच्छे से चला देना है, और फिर जब सारी चीजें मिल जाएंगी लस्सी तैयार है भाई, कुछ करना ही नहीं है। और फिर ग्लास में निकालना है, उसमें और थोड़े से बर्फ के टुकड़े डाल देने हैं, ऊपर से अगर आपको स्माइली बनाना है, जो भी चीजें हैं, थोड़ी सी आइसक्रीम भी अगर आप ऐड करना चाहते हैं, थोड़ी सी ज्यादा नहीं, वो भी आप ऊपर से सर्व करने से पहले कर सकते हैं। कुछ ड्राई फ्रूट्स को काट कर रखिए और ऊपर से डालकर सर्व करिए। क्या बात है भाई, हमने तो पीली बहुत टेस्टी बनी है, और आप भी ऐसा कर सकते हैं, बनाकर देखिए तो जरा एक बार। जी हाँ, और आम जो है ना, क्या करता है, स्वाद के साथ साथ हमें ऊर्जा भी देता है, दही गर्मी में ताजगी का एहसास दिलाता है। बस हाँ, ये ध्यान रखना है कि शक्कर चीनी मिठास की जगह आपको पके आम की जो नेचुरल मिठास है ना, बस उसी का इस्तेमाल करना है। तो इस गर्मी बाजार की ठंडी चीजों की जगह हम क्या करने वाले हैं, घर पर बनाने वाले हैं मैंगो लस्सी। और मैंगो लस्सी की मिठास के साथ अब सुनते हैं एक ऐसा गाना जो इस मौसम में ताजगी और मुस्कान दोनों दे दे, और ये प्यारा सा ट्रैक।

सुनने से दोस्तों उम्मीद है कि जो आज हमने ठंडी ठंडी मैंगो लस्सी रेसिपी आपको बताई है वो पसंद आई होगी। और गर्मियों में घर की बनी चीजों का मजा अलग होता है ना। और इसी तरह स्वाद और सेहत से जुड़ी बातें हम हमेशा लेकर आते हैं हर बुधवार। और अब हम कुछ और भी आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम में शरीर को ठंडक और ताजगी देना बहुत जरूरी है। और जब बात हो पारंपरिक और आसान पेय पदार्थ की, तो और कौन सा ऑप्शन हमारे सामने दिखता है बताइए तो जरा। बिल्कुल सही पहचाने, सत्तू का शरबत। जी हाँ, और इसे भी हम आपको बताएंगे कि घर में कैसे कितना आसानी से बन जाता है। सत्तू का शरबत बनाना बहुत आसान है। क्या क्या चीजें चाहिए आपको? बस सत्तू चाहिए, पानी चाहिए, नींबू चाहिए, भुना जीरा चाहिए, और टेस्ट के अकॉर्डिंग यानी कि स्वादानुसार आपको काला नमक चाहिए। इतनी सारी चीजें अगर आपके घर में है, एहसास दिला दे। और जब नींबू की बात हो गई है ना दोस्तों, तो कौन सा गाना सुनना बनता है? ये वाला।

और दोस्तों तैयारी हो चुकी है सत्तू का शरबत बनाने की। तो क्या क्या चाहिए हमें? 3 बड़े चम्मच सत्तू चाहिए, 1 ग्लास ठंडा पानी चाहिए, आधा नींबू चाहिए, थोड़ा सा 2-3 चुटकी भुना जीरा पिसा हुआ और काला नमक आपके टेस्ट के अनुसार चाहिए। क्या करना है, 1 ग्लास में सत्तू ले लेना है और उसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के घोलना है। एक साथ 1 ग्लास पानी में पूरा डायरेक्ट अगर आप 3 चम्मच सत्तू डालते हैं तो क्या होगा, वो घुल नहीं पाएगा ना, उसकी कहते हैं गुलतियां पड़ जाती है ना, छोटी छोटी वैसी हो सकती हैं। और जब अच्छी तरह से वो घुल जाए, मिल जाए, तो आपको क्या करना है, बाकी का जो पानी है वो डालना है, नींबू का रस डाल देना है, निचोड़ देना है नींबू उसमें, और जीरा डालना है और काला नमक अपनी टेस्ट के हिसाब से मिलाना है और उसके बाद गट गट गट करके पी जाना है। अगर आपने अपने लिए नहीं बनाया है, किसी और के लिए बनाया है, तो उसे दे देना है, तब भाई देखिए क्या टेस्ट आएगा। और इस टेस्ट को और ज्यादा अच्छा बनाना है तो आपको क्या करना है ना, पुदीना, पुदीने की जो पत्तियां होती हैं उनको भी डाल देना है। इससे क्या होगा, आपका जो स्वाद है ये और बढ़ जाएगा। है ना, देखा आपने सत्तू का शरबत बनाना कितना आसान है, बस कितनी चीजें ही चाहिए। और ये जो रेसिपी, ये भी आपको बहुत पसंद आई होगी। कभी कभी पारंपरिक चीजें भी रोजमर्रा में सबसे काम की साबित होती हैं। और अब क्या करना है, अब आपको हम एक और फटाफट बनाने वाली रेसिपी बताएंगे, लेकिन एक प्यारे से ट्रैक के बाद। और हाँ, साथ में ये बताइए, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं कि नहीं करते हैं? खाली टेस्टी टेस्टी खाने की ही बात करते हैं और सोचते रहते हैं क्या आसान सी चीज़ और अच्छी चीज़ बनाई जाए। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज भी करते हैं, योग भी करते हैं, और उसके बाद समोसे, पकौड़ियाँ, पूड़ियाँ खूब मजे से धड़ल्ले से उड़ाते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, आप बताइए। दोस्तों जैसे कहते हैं ना कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, उसी तरह से हमारी भी लाइफ है। आप एक तरफ बहुत अच्छी चीजें कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह की अगर हैबिट है आपकी, तो जो आप अच्छा काम कर रहे हैं उसका भी कोई फायदा नहीं है। और योग और खान पान, इन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती है। अगर आपने अच्छे से योग किया है, खाना उसी हिसाब से आप खा रहे हैं, आप बहुत ऑयली नहीं खा रहे हैं, जंक फूड्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो योग जो आप कर रहे हैं वो फायदा करेगा। और देखिए, योग की बात क्यों हो रही है, क्योंकि 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: 12:51 में ना 4:50 का वक्त हो चला है और ये वक्त कह रहा है कि शालिनी फटाफट और जो भी बातें हों चटपटी वाली वो सारी कर लो, क्योंकि इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने का समय हो गया है। लेकिन हम कोई भी समय ऐसे नहीं जाने देंगे। अच्छा बताइए, गर्मियों के मौसम में अक्सर मन करता है ना कि कुछ ऐसा खाना हो जो हल्का हो, स्वादिष्ट हो और जल्दी से बन जाए। तो चलिए, बहुत आसान वाली रेसिपी हम आपको बताने वाले हैं, दही चावल। जी हाँ, जो कम सामान भी लगता है उसमें जल्दी भी बन जाती है और बहुत पसंद भी की जाती है और हेल्दी भी होती है। तो इसके लिए आपको पता है क्या क्या चाहिए? आपको केवल 1 कप पके हुए चावल चाहिए, 1 कप दही चाहिए, थोड़ा सा नमक चाहिए, आप जो भी नमक इस्तेमाल करती हो वो कर सकती हैं, और 1 छोटा चम्मच तेल चाहिए। अगर देसी घी का इस्तेमाल करती हैं तो बहुत ही अच्छा है। थोड़ी सी राई चाहिए, करी पत्ता चाहिए और छोटी सी लाल मिर्च या हरी मिर्च जिसका भी आपको इस्तेमाल करना हो। और बहुत आसानी से कैसे बनता है ये आपको पता है? क्या करना है आपको, जो आपका ठंडे किए हुए चावल हैं और उन चावल को एक बर्तन में लेना है, उसमें दही डाल देना है और नमक डाल देना है उसमें, और अच्छे से हाथों से उसको मिला लेना है और इसको एक्साइट कर देना है। उसके बाद एक छोटे से पैन में जो आपने घी या तेल लिया है थोड़ा सा डालना है, गैस ऑन करनी है और जब वो गर्म हो जाए उसमें राई डाल दें, करी पत्ता डाल दें और मिर्ची जो आप तड़का लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो डाल दें, और जब ये तड़का एकदम तैयार हो जाए उसको दही वाले राइस में मिला दीजिए, और फिर क्या बात है, क्या खुशबू आ रही है ना करी पत्ता की, आपके आप भी महसूस कर सकते हैं। और अगर आपको और स्वाद बढ़ाना है इसमें तो बारीक कटा हुआ खीरा भी बारीक काट के मिला लीजिए, अनार के दाने भी मिला सकते हैं, और थोड़ा सा ऊपर डेकोरेशन के लिए हरा धनिया मिला लीजिए। और देखिए, दही चावल गर्मियों का सबसे हल्का भोजन जो माना जाता है और दोपहर के खाने में काफी पसंद किया जाता है, आप घर में जरूर बनाइए। ना ज्यादा देर लगनी है, ना होनी है किसी तरह की परेशानी। तो दोस्तों, आज की रेसिपी यहीं तक। उम्मीद है कि दही चावल की जो आसान और स्वादिष्ट विधि है ये आपको बहुत पसंद आई होगी और आप इसे जरूर बनाएंगे, ये मेरा मानना है। तो बस इस प्रोग्राम को करते हैं यहीं पर वाइंड अप। नेक्स्ट वेडनेसडे आपको और ढेर सारी रेसिपी फिर से सुनने को मिलेगी। लेकिन हाँ, हमारी बात याद रखना, खान पान और योग दोनों से है गहरी दोस्ती। जो थोड़ा बहुत डगमगाएगा तो दूसरा हमारा साथ नहीं देगा, इस बात का ध्यान रखना है।
1: भूख लगी जोरों की भूख लगी, मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी।

हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, दोपहर के 1 बजने वाले हैं और अब आप सुनेंगे अनुरोध गीत।

श्रोताओं बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनुरोध गीत में, और साथ ही कीजिए स्वीकार हमारा प्यार भरा नमस्कार। और श्रोताओं, जैसा कि आज है 17 जून और आज हम मना रहे हैं अपने आकाशवाणी बरेली का 33वां स्थापना दिवस, तो आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं इस स्थापना दिवस की। और साथ ही साथ हमारे सभी जो श्रोता हैं, आप सभी लोग हमारा परिवार हैं, तो हमारे आकाशवाणी परिवार की ओर से हमारे श्रोताओं के सभी परिवारों को इस दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पहला पत्र आज सभी लोगों का आपका हम तक पहुंचा हुआ है, आदर्श नगर मलोट पंजाब से हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेहंदी शर्मा, सौरभ और शाइना शर्मा का। बरी जंक्शन से हैं गरीब भाई, नासिर भाई, सादिक भाई, विक्की भारद्वाज, अमन भारद्वाज, महीपाल, प्रदीप पाल, नमन, संतोष, नीतीश, सोनू। दौलतबाग मुरादाबाद से हैं जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनेद अब्बासी और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी। इनके दोस्त परी महल कासगंज से हैं आवाद खान, अल्ताफ खान, नबील, असलम सैफी, यही खान। गंजुंडवारा से हैं शमसुल कमर राही, शाहीन कमर, अस्तुपुरा

0: वो यूपी से हैं, मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, सादिक और साजिद, बहादुरगंज गाजीपुर उत्तर प्रदेश से हैं, आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आजाद, और महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से हैं राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे, खुर्दी रोड मानपुर से हैं विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। प्रमीलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा का। पिपरपारा पालचुवा मुंगेरी छत्तीसगढ़ से हैं उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता दिवाकर, नितिन वंशिका दिवाकर का। पुराना हुली चौक ग्राम करगेना करेली बरेली से हैं गणेश कुमार, शगुन शर्मा, कार्तिक शर्मा, युवराज शर्मा, इशिता शर्मा, वीर शर्मा, संदीप संचल, सूरज शर्मा, चिंकी और अबरार अंसारी और लाल मोहम्मद अंसारी। कटरा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से हैं अनोखेलाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी मौर्य, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही और स्वाती मौर्य का। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत, फिल्म का नाम है मोहब्बतें और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और साथियों ने।
1: एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं अनुरोध गीत, आपके पत्रों पर आधारित। और ये पत्र हम तक पहुंचा है आप सभी लोगों का। मोहल्ला हलवाइयाँ शेरकोट जिला बिजनौर से हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर का। लक्षनपुर से हैं रामजी साहू, जीवन लाल रज्जक, मोपका भट्टापारा से हैं भेवेंद्र कुमार साहू, लक्की हर्षित और सुमित्रा साहू का। गड़ैया बरेली मस्जिद के पास से हैं मोहम्मद केसर शमसी, अजीम शमसी, सलीम शमसी, मोहम्मद नवेश शमसी, रजिया शमसी और बेबी का। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां। बिलराम गेट कासगंज से हैं एम असलम सैफी, जेबुनिशा बेगम, अकरम सैफी, आवाद खान। डावर तालाब लोनी से हैं रजा अहमद, आरिश हुसैन, ईशान हुसैन, मरियम और बुशरा का। सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलडाणा महाराष्ट्र से हैं नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े और आकाश कुमार का। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हैं हरदेव मीका, बलविंदर विरक, चैतिक विरक और मीका विरक का। मलोट कैंप पंजाब से हैं सतीश मिगलानी, सीमा शाइना, विशाल मिगलानी, सुप्रिया, अनमोल, धर्मपाल और रमेश मिगलानी का। दिल्ली शेरमोरी गेट से हैं कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार का। और बड़ा पाम्बो गांव सुपाई साई से हैं देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा,

प्रकाश और देवेन जी का। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत। फिल्म का नाम है राजा भैया और इस गीत को गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने।

0: ये आकाश सुमन, अब आप संजय मिश्रा से दिल का हाल सुन। दिल का हाल ये है कि आकाशवाणी बरेली का स्थापना दिन है और मैं आकाशवाणी की तरफ से, अपनी तरफ से उन तमाम आकाशवाणी सुनने वालों को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू, सुनते रहिए, आकाशवाणी हमारा है, हमको इसे बताना है। थैंक यू बरेली।
1: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
2: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
3: मैं गंगा सिंह रावत, रामपुर रोड, हल्द्वानी से आकाशवाणी बरेली को उसकी स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आकाशवाणी बरेली के प्रारंभिक दिनों से, जब से इस केंद्र की शुरुआत हुई, मैं इससे बतौर श्रोता जुड़ा रहा हूं और आज भी जुड़ा हुआ हूं। पहले रेडियो के माध्यम से प्रोग्राम सुना करते थे, आजकल ऐप के माध्यम से प्रसारण सुनाई दे रहा है, काफ़ी साफ सुनाई देता है। बरेली के सारे उद्घोषक बहुत मेहनती हैं, कर्मठ हैं और बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, जिसकी वजह से मैं ही नहीं, कई श्रोता भारत से भी और भारत के बाहर से भी बहुत सारे श्रोता से जुड़े हुए हैं। मैं नाम लेना चाहूँगा उद्घोषक देवेंद्र रावत जी का, जो बहुत अच्छी प्रस्तुति देते हैं, जिनकी आवाज़ में काफ़ी मिठास है। इसके अलावा परवेज भाई, चिप्रा, अमृता जी और हरीश भाई बहुत अच्छे उद्घोषक हैं, जिनकी प्रस्तुति बहुत शानदार होती है। मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा युवाओं का, जो कार्यक्रम आता है 6:30 बजे युवाणी, वो भी बहुत रोचक होता है, जिसमें भेंट वार्ताओं के साथ साथ जो मुलाकात की जाती है हमारे युवा श्रोता से, एंटरप्रेन्योर से, वो बहुत अच्छी होती है, ज्ञानवर्धक, रोचक और प्रेरक होती है। तो जो संगीत के कार्यक्रम हैं, फरमाइशी कार्यक्रम हैं, सोशल मीडिया ऐप के जरिए हम अपनी फरमाइश भेजते हैं, पूरी भी होती है, और कई विचारोत्तेजक कार्यक्रम हैं जिसमें श्रोता अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, सभी बहुत अच्छे हैं। तो पुनः मैं आकाशवाणी बरेली को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। धन्यवाद।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं अनुरोध गीत आकाशवाणी के बरेली केंद्र से, जहां हैं आप वहां हैं हम, ओनली 100.4 एफएम पर। और ये पत्र हम तक पहुंचा है आप सभी लोगों का। औरंगाबाद से हैं राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश का। मौला दुर्गा प्रसाद बिसलपुर जिला पीलीभीत से हैं, विमल वर्मा, विनय वर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्य। छत्तीसगढ़ भाटापार अतरेंगी से हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा। गुरु नानक नगर मुरौठ पंजाब से हैं राजीव सेतिया, रजनी सेतिया, आरती सेतिया और तनिष सेतिया का। और ये पत्र हम तक पहुंचा है छावनी अशरफ खां मंदिर के सामने से हैं आप सभी लोग। रामप्रसाद शर्मा, जयश्री देवी, वंदना शर्मा, मनोरमा देवी, अजय शर्मा, वंश छोटी, गौरी काकू, रीता, विनोद कुमार और इनके परिवार के सभी सदस्य। साथ ही इनके दोस्त फूलवा किला छावनी बरेली से हैं विशन दत्त भारद्वाज, शिवदत्त भारद्वाज, गंगा दत्त भारद्वाज, विक्की भारद्वाज, वर्षा, कविता, कल्पना, यीशु, भावना, आदित्य, देवकी देवी भारद्वाज, शिप्रा नीलम भारद्वाज, मुन्नी देवी भारद्वाज और श्री राम राठौर का। बहादुरपुर रथ चौक जिला जलगांव से हैं संतोष कुमार सोनार, रविंद्र डंगवाल, रविंद्र सोनार, सन्नी मुन्ना और बंडू दादा का। राजनांदगांव से हैं याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा, इरफान आसमा। जेल रोड टाइगर से हैं रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी और आदिवा तिवारी का। चंडीगढ़ से हैं सतीश अनेजा और विमला अनेजा। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा

राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुविहा नेवादा गाजीपुर से हैं, प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय शेरपुर कला गाजीपुर से हैं, अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय का डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हैं, राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये का रेलवे कॉलोनी बठिंडा पंजाब से हैं, जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और इनके परिवार के सभी सदस्य। और ये पत्र हमारे पास आया है गंजुडवारा से है, मुनव्वर लल्ला भाई, मिर्जा नसरीन बबली, अरबाज खान, शहबाज खान, पप्पू भाई, अफसाना बेगम, महजबी शेख और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। आप सभी लोगों ने पसंद किया है साधना सरगम और पंकज उदास की आवाज़ में फिल्म मोहरा का ये गीत।

बात है कि बरेली आकाशवाणी का स्थापना दिवस है और इस उपलक्ष्य में मुझे याद किया गया है। वहाँ की ऑडियंस मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मैं कुछ साल बरेली में रहा तो उसका जो आनंद है वो आप सभी के साथ शेयर करने जाता हूँ। अभी मैं वैसे पेरिस में हूँ, कुछ कार्यक्रम के लिए आया था, तो मैंने कहा कि भाई मैं बिल्कुल ऑनलाइन क्या मैं वीडियो करके भेजता हूँ, इसमें आप आकाशवाणी में सुनाएं या वीडियो में लगाएं, तो इसलिए अब मैं आपके समक्ष थोड़ा सा बांसुरी भी बजाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि बरेली में जब हम वहाँ कुछ साल रहे 76 से 78 तक, तो उसे बहुत आनंद आया, बहुत हम काफी प्रोग्राम भी किए हैं। अभी भी हम अक्सर जाते हैं वहां पे बरेली दरगाह में, दर्शन करने भी जाते हैं, मंदिर में भी जाते हैं। तो जो बरेली का आनंद है वो एक अपने आप में बड़ा अद्भुत है। तो आप सभी श्रोताओं को मैं अपना बांसुरी वादन सुना रहा हूँ।

0: सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: शुभम, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली। जी हां, आकाशवाणी बरेली का आज है स्थापना दिवस, यानी कि 17 जून 1993 को आकाशवाणी का प्रसारण शुरू हुआ था आकाशवाणी बरेली से। तो और इस वक्त आप सुन रहे हैं करके हम रसरंग।

मैं गंगा सिंह रावत रामपुरोड़ हल्द्वानी से आकाशवाणी बरेली को उसकी स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आकाशवाणी बरेली के प्रारंभिक दिनों से, जब से इस केंद्र की शुरुआत हुई, मैं इससे बतौर श्रोता जुड़ा रहा हूं और आज भी जुड़ा हुआ हूं। पहले रेडियो के माध्यम से प्रोग्राम सुना करते थे, आजकल ऐप के माध्यम से प्रसारण सुनाई दे रहा है, काफ़ी साफ सुनाई देता है। बरेली के सारे उद्घोषक बहुत मेहनती हैं, कर्मठ हैं और बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, जिसकी वजह से मैं ही नहीं, कई श्रोता भारत से भी और भारत के बाहर से भी बहुत सारे श्रोता इससे जुड़े हुए हैं। मैं नाम लेना चाहूँगा उद्घोषक देवेंद्र रावत जी का, जो बहुत अच्छी प्रस्तुति देते हैं, जिनकी आवाज़ में काफ़ी मिठास है। इसके अलावा परवेज भाई, शिप्रा, अमृता जी और हरीश भाई बहुत अच्छे उद्घोषक हैं, जिनकी प्रस्तुति बहुत शानदार होती है। मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा युवाओं का, जो कार्यक्रम आता है 6:30 बजे युवाणी, वो भी बहुत रोचक होता है, जिसमें भेंट वार्ताओं के साथ साथ जो मुलाकात की जाती है हमारे युवा श्रोता से, एंटरप्रेन्योर से, वो बहुत अच्छी होती है, ज्ञानवर्धक, रोचक और प्रेरक होती है। तो जो संगीत के कार्यक्रम हैं, फरमाइशी कार्यक्रम हैं, सोशल मीडिया ऐप के जरिए हम अपनी फरमाइश भेजते हैं, पूरी भी होती है, और कई विचारोत्तेजक कार्यक्रम हैं जिसमें श्रोता अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, सभी बहुत अच्छे हैं। तो पुनः मैं आकाशवाणी बरेली को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। धन्यवाद।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रसरंग। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से प्रसारित किया गया। अब आपको जोड़ रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, सुनवाते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को।

आजाद फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, सी रामचंद्र का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नक में विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: जोरू का भाई फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। तलत महमूद की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल, जयदेव का संगीत।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी

0: सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
0: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
0: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहाँ पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: जानिसार अख्तर के बोल आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। सी रामचंद्र का संगीत फिल्म यास्मीन के इस गीत में आपने सुना।
1: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना।

0: उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
0: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
0: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: वचन फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले की आवाज थी, प्रेम धवन के बोल, रविशंकर का संगीत।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूँ मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नकमे। आइए सुनते हैं गीता दत्त की आवाज में CID फिल्म से ये गीत, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, OP नैयर का संगीत।

गीता दत्त की आवाज में सीआईडी फिल्म का ये गीत आपने सुना, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल ओपी नैयर का संगीत। अब कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं श्री 420 फिल्म से गीत। शैलेंद्र ने इसे लिखा है, शंकर जयकिशन का संगीत, आवाजें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, मुकेश और साथियों की। इस गीत को सुनिए, मुझे दीजिए इजाजत।

0: की सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजरी जी, आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी, आपको और सुनने वाले हमारे सभी सखियों और सखा भाइयों को बहुत ही प्यारा सा हरा भरा खिलखिलाता मुस्कुराता सा नमस्कार।
1: क्या बात है, ये मुस्कुराता नमस्कार से लग रहा है कि मुस्कुराहट खिल जाएगी सबके चेहरे पर, वरना तो गर्मी इतनी ज्यादा है कि लोग बस उफ, बहुत गर्मी है।
2: इसीलिए हमने ऐसा बोला,
1: धरती तप रही है, धरती गर्म हो रही है।
2: बहुत सारी चीजें हो रही है, प्रकृति में बदलाव हो रहा है, तो उसकी मार तो सभी लोग झेल रहे हैं देखिए। और उससे निपटने के लिए हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं, जैसे कि आज हम लोग बात करेंगे मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस जो है उस पर चर्चा करेंगे।
1: मंजरी जी, हम कहीं जब बाहर जाते हैं, अपने शहरों से महानगरों से बाहर निकलते हैं, तो हरे भरे पेड़ हमें लुभाते हैं, जंगल हमारा मतलब मन मोहते हैं और हम ठहर जाते हैं। लेकिन वहीं पर दूर दूर तक अगर सूखा दिखता है, कहीं कोई पेड़ नहीं है, बंजर धरती दिखती है, तो मन थोड़ा खिन्न होता है ना।
2: बिल्कुल।
1: तो हमें क्या करना चाहिए वहां पर हरियाली रोपने के लिए? कुछ निजी स्तर पर कोशिशें करनी चाहिए। बहुत सारे लोग मुहिम चलाते हैं हरियाली को, धरती की हरियाली को बचाए रखने के लिए, जाते हैं रस्तों में तो बीज ढेर सारे ले जाते हैं और बीज बोते हैं, फेंकते हैं तो जगहों पर जहां पर पेड़ पौधे नहीं है। तो ये सब हम सब भी कर सकते हैं,
2: बिल्कुल कर
1: और
2: सकते हैं।
1: घर के आसपास तो ये काम हम कर ही सकते हैं।
2: बिल्कुल। और हम लोग जब इस विषय पर और बातें करेंगे और चर्चा करेंगे, तो आपने जो कहा है वो बहुत सही है बात है। ऐसा हम लोग सोचें तो हमारी धरती का कोना कोना हरा भरा हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही हमारा जो अगला विषय ममता जी वो बता देते हैं कि शब्द हमारा विचार आपके, इसमें हमने आज लिया है प्रोत्साहन शब्द। तो इस पर हमारे सभी साथियों ने लिखकर भेजा भी है और जो सुन रहे हैं वो भी लिखकर भेज सकते हैं।
1: किस तरह से प्रोत्साहित करते हैं, खासतौर से बच्चों को? बच्चों को प्रोत्साहन की बहुत जरूरत होती है, ना कि ये तुम्हें ये नहीं आता है, तुम्हें वो नहीं आता है। ये तो प्रोत्साहन की जरूरत बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी पड़ती है। अगर कुछ किसी से काम करवाना है तो हम जरा तारीफ कर देते हैं और कहते हैं, अरे आपको ये काम बहुत अच्छा आता है, आप तो बहुत एक्सपर्ट है। तो ये आप क्या करते हैं, मतलब हम श्रोताओं से पूछ रहे हैं कि आप क्या करते हैं जब आपको प्रोत्साहित करना होता है, तो किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और कौन से वाक्य प्रयोग करते हैं,
2: और माएं बच्चों को कैसे प्रोत्साहित करती हैं ना,
1: और उसका असर क्या होता है ये भी बताइए। कहीं कई कोई घटना है कि आपने किसी को प्रोत्साहित किया और काम बन गया, वो भी बता सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर, है ना।
2: और डायरी लिखने की आदत बड़ी खूबसूरत सी आदत होती है, तो आप लोग कितना लिखते हैं वो भी बताइए।
1: पूरा मन उड़ेल देते हैं
2: जी,
1: क्योंकि दिल में जो कुछ भरा है गागर, वो सारा उड़ेल देना है। मन में जो सागर भरा हुआ
2: जी,
1: वो गागर में उड़ेल देना है।
2: बिल्कुल।
1: तो डायरी आपकी ऐसी दोस्त है कि डायरी से बहुत कुछ बातें कर सकते हैं। कई बार हम डायरी में वो लिख सकते हैं जो किसी से कह नहीं पाते हैं, कहना चाहते हैं लेकिन एक संकोच होता है, अरे लोग क्या कहेंगे, इसका क्या मतलब निकालेंगे। कई बार अनबन होती है आपस में, रिश्तों में दरार आती है, कई बार बहुत खुशी के लम्हात होते हैं, तो ये सब कुछ हम डायरी में अंकित करते हैं। अब ये हम सब करते हैं, हमारे श्रोता क्या करते हैं वो अपने विचार हमें बताएं कि डायरी लिखने की जो आदत है वो उनकी कितनी आदत है, और आने वाली पीढ़ी को डायरी से कितनी दोस्ती कराई है ये भी बताएं।
2: उनके लिए तो मोबाइल ही डायरी हो गई है।
1: ठीक है, तो मोबाइल की डायरी में एक नोटपैड बनाएं और उसमें भी डायरी लिख सकते हैं।
2: बिल्कुल,
1: वो भी एक जरिया है, क्योंकि आप जबरदस्ती कागज कलम तो नहीं पकड़ा सकते।
2: ये बात तो सही है, लेकिन जो मजा कागज और कलम है डायरी में है वो मोबाइल में नहीं है। तो देखिए, अगली बात हम करने वाले हैं साड़ियों का संसार में। आज मैंने बांधनी साड़ी जो राजस्थान और गुजरात में काफी बनाई जाती, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इन सब विषयों से पहले, चर्चा करने से पहले गीत
1: सुनते हैं, और श्रोताओं को क्योंकि इंतजार होगा गीत का, और हमें इंतजार है कि डायरी वाली जो बात है उसका कोई किस्सा, कि कोई डायरी यादगार डायरी है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ घर परिवार की, कई बार अपने राष्ट्रीय स्तर की डायरी बहुत चर्चित हो जाती है, किताब की शक्ल में आती है डायरी, तो वो भी आप बता सकते हैं कि क्या आपने कोई ऐसी किताब पढ़ी है जिसमें जो डायरी की शक्ल में लिखी गई है। फिलहाल ये गाना।

0: पवन दीवानी न माने डॉक्टर विद्या फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज थी, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और सचिन देव बर्मन का संगीत था। भाई मोबाइल की दुनिया से बाहर आई है मंजरी जी,
1: देखिए उसकी
0: श्रोताओं की टिप्पणियों में खो गई है पता है।
1: ममता जी देखिए उधर भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम जब उनके विषय जो संदेश लिखते हैं उनको भी हमें वहां से निकाल के लाना है अपने पास और आपको भी देना है, तो उधर उलझे हुए थे। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरा दिमाग लगा हुआ है कि आज जो हम बात करने वाले हैं विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस के बारे में। तो देखिए धरती पर जो हरियाली है उसकी सुंदरता को चार चांद जो है वो हरियाली ही पेड़ पौधे ही लगाते हैं, और इसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम सभी को जो भोजन मिलता है या पानी औषधियां फल फूल सब इन्हीं वृक्ष पेड़ पौधों के द्वारा ही तो मिलता है ना ममता जी।
0: बिल्कुल सही बात है, प्रकृति है तो हमारा वजूद है, इसके बिना जीवन कुछ है ही नहीं, अधूरा है। हमारे पूर्वजों ने जो प्रकृति को संरक्षण के लिए जो कोशिशें की है उसका ख्याल हमें भी रखना चाहिए। असंख्य जो पौधे उन्होंने लगाए हैं पेड़ के रूप में फलित हो रहे हैं, जो जैसे आम है, जामुन है और तरह तरह के पेड़ हैं, और खेतों में जो फसलें उन्होंने उगाई हैं और वो खेत अब आज भी लहलहाते हैं, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी बाग और खेत चले आ रहे हैं। लेकिन हमारी क्या भूमिका होती है उसे उपजाऊ बनाए रखने के लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें भी अपने स्तर पर कोशिश करनी चाहिए। आधुनिकता की दौड़ में इस कदर हम भागे जा रहे हैं कि सोचते भी नहीं कि शहरों के नवीनीकरण से जो धरती है वो चोटिल हो रही है, जंगलों में पेड़ की कटाई हो रही है, खेतों को शहरी विकास के चक्कर में खत्म किए जा रहे हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या छोड़ेंगे ये आज ही सोचना होगा हमें, वरना जो धरती

0: उर्वरा क्षमता है वो
1: बिल्कुल
0: नष्ट हो जाएगी, बची नहीं
1: बिल्कुल
0: रहेगी।
1: बिल्कुल सही बात है। और जब क्या कहते हैं कि जब धरती जो उपजाऊ शक्ति खो देती है, तो उसमें ना भी आप पेड़ पौधे लगाने की सोचिए, उसमें से कुछ भी निकलता नहीं है, तो वो स्थिति बहुत हृदय विदारक हो जाती है। और जो प्रकृति है, तो हमारा वजूद भी उसी से है, क्योंकि उसके बिना जीवन बिल्कुल संभव नहीं है कहा जाए। और इस दिन की जो मनाने की शुरुआत है, वो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1994 में की थी, जब उसने मरुस्थलीकरण के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को अपनाया, और इसलिए एक मुहिम चलाएगी और विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस हर साल 17 जून को मनाने के विषय में सोचा गया था।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और इस दिन की घोषणा 30 जनवरी 1995 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। उस दिन के बाद जब मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेक्शन का मसौदा तैयार किया गया था, जिससे बंजर होती भूमि, भूमि के क्षरण और सूखे के वैश्विक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 1995 में से ये दिवस घोषित किया था, और तब से ये प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। और इसका उद्देश्य भी है कि हम उन जगहों को पर भी ध्यान दें जहां पर सूखा है, तो वहां पर पेड़ पौधे लगाने का सोचें, और साथ में वहां पर पानी हम कैसे उनको देंगे, इसकी भी व्यवस्था पूरी तरह से करनी चाहिए।
0: बिल्कुल। सूखा एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक वर्षा अगर नहीं होती है तो वहाँ सूखा पड़ता है। कृषि, पशुपालन और जैविक विविधता और मानव जीवन पर बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं।
1: बिल्कुल
0: लेकिन जो सूखे प्रदेश हैं जहां पर हम अपने हाथ से जो हरियाली रोप सकते हैं वो मुहिम हम चला सकते हैं
1: बिल्कुल। और
0: किसी न
1: ममता
0: किसी
1: जी,
0: रूप में।
1: जो जो हमारे जो खेत वगैरह होते हैं, उसमें खाद का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। जो प्रकृति के द्वारा जो बनाते हैं खाद, पत्ते गोबर वगैरह से डाल के जो खाद बनाई जाती है, उससे ज्यादा अच्छा रहता है पेड़ पौधों को उगना। लेकिन उसकी जगह रासायनिक खाद का भी उपयोग करने लग गए हैं, तो कहीं ना कहीं तो उनकी पैदावार पर, फसलों पर असर तो पड़ता ही पड़ता है। और जैविक खेती को अगर अपनाते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। और साथ में वर्षा का जल, जब वर्षा बरसती पानी का मौसम आएगा, तो हमें जल संचय कैसे करना है, उसके लिए भी हमें सोचना चाहिए कि तालाब बनवाना है, कुएं हैं, बावड़ी, इस तरह की चीजों को हमें बनाना चाहिए।
0: पानी को बचाने के लिए और जल संरक्षण के लिए बहुत अच्छा उदाहरण होता है जब हम पहाड़ों की ओर जाते हैं,
1: जी
0: जहां पर बहुत ज्यादा जो ग्रामीण इलाके हैं पहाड़ों पर, जो छोटे छोटे गांव हैं वहां पर ऐसा नहीं कि आपने स्विच ऑन किया और गीजर चालू हो गया, स्विच ऑन किया पानी शुरू हो गया। तो वहां हमने देखा है कि टपरी बनी है, मान लीजिए छोटी छोटी चाय की
1: जी
0: दुकान है या कुछ समोसे बिक रहे हैं, बन रहे हैं, छोटी सी टपरी बनी हुई है, तो टपरी के नीचे बड़े बड़े बकेट रख दिए जाते हैं, बाल्टियां या ड्रम। तो जब बारिश होती है, क्योंकि पहाड़ों पर तो बारिश
1: बिल्कुल
0: बहुत ज्यादा होती है और कब होती है ये बिल्कुल तय नहीं होता, अचानक बारिश अचानक धूप हो जाती है, तो वो लगा रहता है, बाल्टी रखी रहती है, बारिश हुई तो वो जो बारिश का पानी है उस बाल्टी में इकट्ठा होता है।
1: क्या
0: तो
1: बात
0: हमने कई बार पूछा भी लोगों से, तो उनका यही कहना है कि ये पानी हम इकट्ठा करके बाकायदा इसका उपयोग करते हैं और पानी एकदम स्वच्छ होता है,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि उधर पहाड़ों की ओर गंदगी कम होती है, तो ना के बराबर होती
1: ना
0: है,
1: के
0: जो एकदम
1: बराबर होती
0: जहां पर
1: बिल्कुल
0: लोगों की पहुंच नहीं है वहां तो बिल्कुल नहीं कूड़ा कचरा दिखाई देता है।
1: बिल्कुल
0: तो ये सब हम अपने घर आंगन में भी कर सकते हैं, जो
1: बिल्कुल
0: आंगन
1: नहीं।
0: वाले घर हैं
1: हाँ ममता
0: वहां
1: जी,
0: हम कर सकते हैं।
1: अपने आप याद कीजिए कि हम लोग के घरों में भी ये चीज होती थी कि बारिश के पानी के लिए मतलब अपना लगा दी बाल्टी वगैरह, रख दी, और बारिश का पानी इकट्ठा कर रहे हैं, कहीं छत से वो आ रहा है पानी उस जगह से, ढलान से, तो वहां इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो बर्तन धोने, फर्श धोने,
0: हाँ,
1: इन सब के काम बहुत
0: बचपन
1: आता
0: में तो
1: था।
0: खेल खेल में भी पानी इकट्ठा किया
1: हाँ
0: जाता था, छोटे छोटे
1: बिल्कुल
0: बर्तन रख दिए जाते थे, देखते हैं किसके बर्तन में पानी ज्यादा इकट्ठा होता है, और ये कहा जाता था कि बादल हम पर ज्यादा मेहरबान है, पानी हमारे तसले में ज्यादा भर
1: जी,
0: गया।
1: और हम बच्चे तो छाता उल्टा कर देते थे,
0: हाँ,
1: तो उसको
0: तो
1: इकट्ठा कर
0: ये
1: लेते
0: जो
1: थे।
0: खेल खेल में पानी इकट्ठा करने की आदत है, ये आने वाली पीढ़ी को भी सिखाना
1: जी
0: चाहिए कि पानी का उपयोग किस तरह से करें। बहुत सारे लोग हैं कि नल खोल देते हैं, क्या नल खोल दिया तो पानी बह रहा है, तो जब धरती जहां बंजर होती है, धरती जहां जहां पर हरियाली नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, जो सूखा है, वहां उनसे पूछिए कि क्या अहमियत है
1: बिल्कुल
0: हरियाली की और पानी की।
1: बिल्कुल। और इन सब चीजों के पीछे हम लोग ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोग घर बनाते जा रहे हैं, बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं, खेतों को नष्ट करते जा रहे हैं, वनों को काटते जा रहे हैं, पेड़ों को काटते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग भी बहुत
0: अभी
1: जिम्मेदार
0: अभी
1: हैं।
0: आपने कहा कि खाद की बात कही थी ना
1: जी जी
0: मंजरी
1: जी
0: जी, कि जैविक खाद और रासायनिक खाद भी

0: इकट्ठा करें। अभी अभी हेलो फरमाइश में,
1: जी
0: हेलो फरमाइश प्रोग्राम में एक श्रोता ने हमें बताया कि वो लोग गोबर से खाद बनाते हैं, मतलब गोबर एक गड्ढा बनाते हैं जहां पर गाय भैंस के गोबर इकट्ठा करते हैं, और ये गांव में होता है
1: होता ही
0: अमूमन।
1: होता ही
0: तो
1: जी
0: वो अपना अनुभव बता रहे थे कि वो इकट्ठा करते हैं और उसे ले जाकर खेतों में डालते हैं, और ये कॉल एक महिला का था।
1: जी
0: तो अब ये कृषक महिला भी हो रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात
1: बहुत
0: है,
1: अच्छी बात है
0: और
1: जी
0: अब बहुत अच्छी बात ये होगी कि हमें गाना सुनवा दे अपने
1: जी
0: श्रोताओं को।

0: मंजरी जी, साड़ियों के संसार पर चर्चा हो रही है इन दिनों, और एक सेगमेंट है बाकायदा सखी सहेली में, तो आज हम चर्चा करेंगे। साड़ी वैसे भी पारंपरिक
1: जी
0: पोशाक है,
1: बिल्कुल,
0: और जब भी कहीं कोई फंक्शन होता है, कहीं घूमने जाना होता है, तो कौन सी वाली साड़ी पहनी जाए, बहुत पहले से चयन किया जाता है,
1: बिल्कुल
0: साड़ियों का बक्सा खुल जाता है। आप
1: बिल्कुल
0: क्या
1: खुल
0: करती
1: जाता है,
0: हैं?
1: मेरा भी खुल जाता है। और उसमें देखते हैं, तरह तरह की साड़ियां देखते हैं, लेकिन कहते हैं ना, जैसा मौसम होता है उस हिसाब से साड़ी पहनने का मन करता है। तो अगर जैसे बारिश का मौसम होगा तो लगेगा कि भाई हरा भरा मौसम रहता है, तो लगेगा कि भाई ऐसी साड़ी पहने जिसमें कलर बहुत चटक रंग हो। तो ध्यान तो मेरा तो सीधा इसी पे चला जाता है कि बांधनी की साड़ी, लहरिया की साड़ी, बंधेज वाली साड़ी पहना चाहे, तो उनका पहनने का एक अपना अलग मजा होता है। और जैसे आजकल गर्मी का मौसम है तो इस समय बस याद आता है कि हल्के कलर पहने, आसमानी, गुलाबी, और क्या कहते हैं, हल्का हरा धानी कलर पहने, और वो सूती साड़ियां हों जो बहुत अच्छी लगे। और सूती साड़ी पर अगर बांधनी का काम हो तो बहुत ही अच्छा लगता है, फिर तो लगेगा ये भी पहन लेते हैं, है ना।
0: सही बात है।

0: तो कहते हैं ना, ममता जी बांधनी जो साड़ी है, इसका जो इतिहास है वो बहुत ही पुराना है, प्राचीन काल से इसका समझ लीजिए चला आ रहा है। और बांधनी जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है, बंध से लिया गया है, और बांधनी या बंधेज भी इसको कहा जाता है। साड़ियाँ ये जो है मुख्य रूप से भारत के गुजरात में जामनगर और वहां पर कच्छ, भुज और अहमदाबाद में बांधनी के सबसे बड़े और प्रमुख केंद्र हैं। और वही राजस्थान में भी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और सीकर अपने बेहतरीन कामों के लिए, बंधेज के कामों के लिए, बांधनी साड़ी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और जब हम वहां जाते हैं तो देखते हैं दुकानों पर इतने सुंदर सुंदर साड़ियां टंगी रहती है, और साथ में जो महिलाओं को हम देखते हैं विशेष त्योहारों पर, तो वो उनके जो रंग होते हैं बांधनी साड़ियों के, तो बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही बारीकी तरीके से बांधा जाता है। और इन साड़ियों को ममता जी टाई डाई तकनीक के से हाथों के द्वारा धागों से बांधकर बनाया जाता है, और जिसके रंगकार जो है बेहद आकर्षक डिजाइन तैयार करते हैं, और बिल्कुल हाथ से और पतला पतला करके बांधा जाता है। कई लोग चने बांधते हैं, कई लोग दाल बांधते हैं, कोई छोटे छोटे पत्थर भी बांधते हैं उसमें डिजाइन अलग अलग तरह से देने के लिए।
1: मतलब
0: तो
1: काफी मेहनत लगती है
0: मेहनत
1: और समय
0: लगती
1: भी
0: है।
1: लगता है, ऊर्जा भी लगती है। बांधनी बनाने की प्रक्रिया बड़ी मेहनत वाली होती है। सबसे पहले साड़ी के लिए कपड़ा चुना जाता है और कपड़े पर हल्के निशान बनाए जाते हैं ताकि डिजाइन बिल्कुल सटीक बने। कारीगर कपड़े की छोटी छोटी पोटलियां बना लेते हैं, उन्हें धागे से कसकर बांधते हैं। अब कपड़ों को रंगों में इसके बाद डुबोया जाता है। कई बार तो अलग अलग रंगों के लिए ये प्रक्रिया दोहराई जाती है। रंग सूखने के बाद धागे खोले जाते हैं और सुंदर गोल, लहरदार या फूल जैसे डिजाइन दिखाई देते हैं।
0: बिल्कुल। और बांधनी साड़ी जो है वो कई प्रकार के कपड़ों पर बनाई जाती है, जैसे कि रेशम से आपको दिखेगी, जॉर्जेट, कॉटन, मलमल से भी बनाया जाता है, शिफॉन, क्रेप और सिल्क पर भी बांधनी का काम होता है। और राजस्थान में बांधनी में पारंपरिक राजस्थानी रंग और बड़े पैटर्न देखने को मिलते हैं, जबकि गुजरात में बंधेज में बारीक डिजाइन और चमकीले रंग खास माने जाते हैं। और ये बांधनी साड़ी विभिन्न रंगों और प्रिंटों में आती है, और खोमबी, पटोरी, घरचोला और चंद्रोखानी, इसके अलावा ये काम साड़ी, कुर्ता, सलवार कमीज और चनिया चोली में भी पाया जा सकता है। यानी कि अब इसका जो काम है, इसका वर्क है, बहुत तरीके से बढ़ गया है, हर तरीके की, उसमें कांच से भी, सितारों से भी काम होगा और जरी के भी गोटे लगे रहते हैं, तो बहुत खूबसूरत बनाई बना दी जाती है इन साड़ियों को।
1: गुजराती बांधनी रेशम या कपास से बनी इस शैली में मोर होते हैं, फूल और हाथी जैसे आकर्षक पैटर्न बनाए जाते हैं। ये नवरात्रि और शादियों के दौरान बहुत ही लोकप्रिय होते हैं। और राजस्थानी बांधनी में जैसे कि भरे चटक लाल, पीला रंग, लहरिया और जैसे चक्करदार रूपांकन होता है, मोथरा जिसे कहते हैं, ये खास पहचान
0: जी
1: है राजस्थानी बांधनी की।
0: बिल्कुल।
1: और बाकी राजस्थानी बांधनी या गुजराती बांधनी के और जो प्रकार हैं, और जो हमारे जो राजस्थान और गुजरात के श्रोता हैं वो भी बता सकते हैं कि
0: बिल्कुल
1: क्या खासियत है साड़ियों की। भुज में खास तरह की बांधनी होती है। कच्छ के आदिवासी आकृतियां आमतौर पर काले और लाल रंग में, जिनमें बारीक ज्यामितीय बिंदु होते हैं। मॉडर्न बांधनी समकालीन सौंदर्य बोध के लिए डिजिटल प्रिंट के इस्तेमाल किए जाते हैं और पेस्टल रंगों का उपयोग भी किया जाता है और कुछ
0: बिल्कुल
1: फ्यूजन डिजाइन भी बनाई जाती है।
0: जी। और हमारे साथी भी लिखते हैं कि बांधनी साड़ी प्रमुख रूप से राजस्थान और गुजरात में पहनी जाती है, और उसका डिजाइन बहुत ही सुंदर होता है, इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और साथ में हमारे साथी और भी लिख रहे हैं कि बांधनी साड़ी भारत की सबसे प्राचीन और जीवंत टाई डाई वस्त्र कलाओं में से एक है, और मुख्य रूप से गुजरात और राजस्थान राज्यों में बहुत प्रचलित है, और बिंदियां बहुत बारीक होती हैं और चटक रंग की होती हैं, तो इसका जो है सांस्कृतिक महत्व भी है, त्योहार उत्सव पर भी खूब पहनी जाती है।
1: और इन साड़ियों के साथ चूड़ी का भी कॉम्बिनेशन होता है,
0: बिल्कुल, साज
1: और
0: श्रृंगार तो
1: वैसे
0: बहुत जरूरी है।
1: और उसी रंग की अगर चूड़ी पहन ली जाए तो फिर और लुक एकदम अलग आ जाता है। अब ये
0: बिल्कुल
1: बात तो ये इस गाने के साथ हम जोड़ रहे हैं,
0: जी
1: तो सुनते हैं ये गाना, हरे कांच की चूड़ियां, फिल्म का नाम है।

0: सखी सहेली कार्यक्रम में अब ले रहे हैं एक ब्रेक छोटा सा।
1: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं, 100.4 FM पर लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार कीजिए स्वीकार। करते हैं शुरू एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल जी ने।
2: लिखते हैं, सकारात्मक सोच हर समस्या में समाधान खोज लेती है।
0: वाह, बहुत सुंदर विचार। आपके इस विचार से सच में हम सबको प्रेरणा मिलती है। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
2: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
0: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास।
2: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
0: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। तो जैसा कि हमने कहा था, इस सप्ताह हम बात करेंगे कुछ अनूठी झीलों के बारे में। तो श्रोताओं, आइए जानते हैं आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आज का विषय बहुत रोचक होने जा रहा है।

आज हम एक ऐसी झील के बारे में बात करेंगे जिसे बहुत ही रहस्यमय और पवित्र माना जाता है। श्रोताओं, जरा अंदाजा लगाइए मैं किस झील की बात कर रहा हूँ। आपको संकेत तो मिल ही गया होगा कि वो झील रहस्यमय भी मानी जाती है और पवित्र भी। जी हाँ श्रोताओं, यदि आपके मन में मानसरोवर झील का नाम है तो आपने बिल्कुल सही सोचा है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि ये दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झीलों में से एक है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4,590 मीटर है और इसका क्षेत्रफल करीब 320 वर्ग किलोमीटर है। आइए अब जानते हैं कि ये झील है कहाँ। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि ये झील तिब्बत और चीन के पर्वतीय क्षेत्र में पड़ती है। इसका सबसे निकटतम पर्वत है कैलाश पर्वत। आपको ये भी बता दें कि भारत की ओर से कैलाश मानसरोवर की यात्रा उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे या सिक्किम के नाथुला पास से की जाती है। यदि भौगोलिक दृष्टि से देखें तो इसके निर्माण का कारण है भारतीय और यूरेशियन प्लेट की टक्कर। इस टक्कर के कारण भूमि ऊपर उठी, पर्वतों में दरारें और बड़े बड़े गड्ढे बने जिससे हिमनदों का पानी जमा हो गया। इसीलिए मानसरोवर झील को टेक्टोनिक झील भी कहते हैं। अब एक बहुत ही रोचक तथ्य आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ। अभी आपने सुना कि ये मीठे पानी की झील है, लेकिन श्रोताओं, इसी झील के बिल्कुल पास एक और झील है जिसका पानी खारा है। इसे राक्षस ताल कहते हैं। ये एक बंद झील है। जल के निकास और वाष्पीकरण की भिन्न प्रक्रियाओं के कारण यहाँ का पानी खारा है, क्योंकि यहाँ का पानी वाष्पित होता रहता है जिसके कारण लवण और अन्य खनिज इसी में रह जाते हैं। दोनों सरोवरों को कैलाश पर्वत, हिमनदों और वर्षा से ही जल मिलता है। एक छोटी नदी इन दोनों सरोवरों को आपस में जोड़ती है जिसे गंगा चू नदी कहते हैं। तिब्बती भाषा में नदी या जलधारा को चू कहते हैं। जी हाँ, सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है श्रोताओं। आइए अब सुनते हैं एक और बड़ी रोचक बात इस झील के बारे में। वहाँ गए यात्रियों के अनुसार मानसरोवर झील रंग बदलने वाली झील है। सूर्योदय के समय ये नीले और हरे रंग की दिखाई देती है, लेकिन सूर्यास्त के समय इस झील का रंग सुनहरी आभा में बदलता हुआ दिखाई देता है। आपको एक और बात बता दें कि मानसरोवर झील सर्दियों में पूरी तरह से जम जाती है। जहाँ तक धर्मों की बात है, ये झील हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में विशेष स्थान रखती है। श्रोताओं, एक और बड़ी खास बात, मानसरोवर झील को कैलाश पर्वत का दर्पण भी कहा जाता है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। जी, इसका उत्तर है मानसरोवर झील में पास के कैलाश पर्वत का प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देता है, खासकर साफ और शांत मौसम में। मानसरोवर और कैलाश पर्वत क्षेत्र से सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियां निकलती हैं। बौद्ध धर्म में मानसरोवर झील को मापाम युमत्सो कहते हैं, जबकि जैन मान्यता में इस झील को ऋषभ देव से जोड़ा जाता है जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। आइए बात करते हैं इस झील में पाए जाने वाले जलीय जीवों की। तो श्रोताओ, यहाँ ठंडी जलवायु और दुर्गम परिस्थितियों के कारण जैव विविधता सीमित है, फिर भी कुछ अनुकूलित जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। इस झील में मछलियों की बड़ी अच्छी मात्रा है। पानी इतना साफ है कि अंदर तैरती हुई मछलियाँ भी 14 मीटर की गहराई तक करीब करीब साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। यद्यपि मान्यताओं के कारण यहाँ मछली पकड़ना या मारना निषिद्ध है। ये झील पर्वतीय पक्षियों और पशुओं के लिए एक आदर्श ठिकाना है। दुर्लभ प्रजाति के हंस, ब्राह्मणी बतख और पहाड़ी कौवे यहाँ मिलते हैं। जहाँ तक पशुओं की बात है, छोटे तिब्बती गधे और दुर्लभ प्रजाति के याक भी यहाँ मिलते हैं। तो श्रोताओं, अब करते हैं आज की चर्चा को समाप्त, लेकिन जाते जाते एक और रोचक तथ्य आपके साथ साझा करता हूँ। मानसरोवर झील जीवन से भरपूर है। यहाँ पशु पक्षी और दुर्लभ वनस्पतियाँ प्रचुरता से मिलती हैं, लेकिन पास के राक्षस ताल में खारे पानी के कारण लगभग कोई मछली या जलीय वनस्पति नहीं होती। इसीलिए लोक मान्यता में मानसरोवर झील को अच्छाई और राक्षस ताल को बुराई का प्रतीक माना जाता है। कुल मिलाकर मानसरोवर न केवल अध्यात्म और आस्था का केंद्र है, लेकिन ये ऊंचे दुर्गम स्थान की पारिस्थितिकी तंत्र का भी बेजोड़ उदाहरण है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है। आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। तो श्रोताओं, ये थी रोचक जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है। आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio

0: info@cieet.nic.in। हमारा IBRS नंबर भी नोट कर लें, 8800440559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की रोजाना की उपयोगी जानकारी मिलती रहेगी। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, आइए सुनते हैं कार्यक्रम मंगल पांडे।
1: ये कार्यक्रम अमर शहीद मंगल पांडे के जीवन और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी अहम भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा सूचना देता है।
2: दादी जी।
3: अरे आशीष, दीपिका, आओ आओ। कहाँ से आ रहे हो भाई, बैठो।
2: दादी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था।
3: हाँ पूछो।
2: ये 1857 क्या है? आजकल अखबारों में कई लेख देखे हैं।
3: ऐसा है आशीष बेटा, ये कहानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की है, जब हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान में बहुत बड़ा विद्रोह किया था।
2: अच्छा।
3: सभी देशवासी देश को आजाद कराने के लिए कूद पड़े थे। अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह हुआ क्योंकि सभी देशवासी ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को मुक्त कराना चाहते थे।
2: अच्छा।
3: यानी आजादी आजादी आजादी। राजे महाराजे, नवाब, किसान, मजदूर, अमीर गरीब, छोटे बड़े, सभी लोग और जांबाज सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। उस समय हिंदुस्तान के लोगों पर एक जुनून सवार था। देश की आजादी के लिए हर व्यक्ति मर मिटने के लिए तैयार था।
4: अच्छा।
3: ऐसा ही एक जांबाज सिपाही था, मंगल पांडे।
2: मंगल पांडे
3: 1857 के आरंभिक विद्रोहियों में से ये सबसे पहला विद्रोही था। उसने आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया।
4: अच्छा।
3: उस समय ये लड़ाई भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लड़ी जा रही थी।

0: दादी जी, लड़ाई में कौन कौन थे?
1: दीपिका, इस लड़ाई में कई नायक और नायिका थे, जैसे अवध में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला खां, तात्या टोपे और राजा कुंवर सिंह जैसे वीर योद्धा थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी।
2: बड़े बहादुर थे ये।
1: स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई गीत भी लिखे गए।
0: दादी दादी, हमें मंगल पांडे की कहानी सुनाओ ना।
2: वो कहाँ के रहने वाले थे?
1: सुनाती हूँ। देखो बच्चों, मंगल पांडे बलिया जिले के रहने वाले थे।
2: अच्छा।
1: बचपन में उनकी माँ उन्हें देश प्रेम की कहानियाँ सुनाती थी। मंगल पांडे फौज की नौकरी बहुत पसंद करते थे।
0: अच्छा।
1: वो कलकत्ता गए और बैरकपुर छावनी में सिपाही के रूप में भर्ती

0: और धीरे धीरे वो एक होनहार सिपाही बन गए।
1: दादी उनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई?
0: भाई उनकी ट्रेनिंग हुई बैरकपुर छावनी में, और ट्रेनिंग के बाद वो सिपाही नियुक्त हो गए। फिर उन्होंने कई साल फौज की नौकरी की।
1: अच्छा दादी जी, लेकिन वो हीरो कैसे बने?
0: बेटा उन्होंने बैरकपुर छावनी में बड़े बड़े कारनामे किए।
2: अच्छा क्या क्या, जरा सुनाओ ना दादी।
0: सुनाती हूँ। देखो बच्चों, 25 फरवरी 1857 का दिन था। बैरकपुर छावनी के सिपाही बहुत नाराज थे।
2: ऐसा क्यों?
0: अंग्रेज गाय और सुअर की चर्बी लगा कारतूस चलवाते थे। इसके कारण हिंदू और मुसलमान दोनों ही परेशान थे। देसी सिपाही एकजुट हो गए और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत पर उतारू हो गए।
3: अरे अब तक तो अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बनाकर लूट रहे थे, अब वो हमारा धर्म भी भ्रष्ट करना चाहते हैं, इसीलिए कारतूसों में चर्बी लगाई गई है।
1: दादी फिर क्या हुआ?
0: फिर दूसरे दिन खाने के लिए मेस में सभी सैनिक इकट्ठे हुए और कारतूसों की चर्चा करने लगे। सैनिक गुस्से में चूर थे। उन्हीं में से एक सैनिक बोला,
3: हमें अपने धर्म की रक्षा खुद करनी होगी।
2: फिर क्या हुआ दादी?
0: फिर धीरे धीरे ये खबर देश की अन्य छावनियों में भी फैल गई। सैनिकों की बैठक पर बैठक होने लगी।
1: फिर क्या हुआ दादी?
0: सैनिकों की नाराजगी देखकर अंग्रेज मंगल पांडे वाली 19वीं देसी रेजिमेंट को तोड़ना चाहते थे।
2: अच्छा?
0: सिपाहियों को अंग्रेजों की इस चाल की भनक पड़ गई। 26 मार्च रविवार का दिन था। सैनिकों में और असंतोष बढ़ गया।
1: उसके बाद क्या हुआ?
0: बैठक के बाद बैठक हो रही थी। माहौल बहुत गर्म था। एक भरी बैठक में मंगल पांडे ने सिपाहियों को ललकारा और कहा,
4: ये गोरे भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। अब ये हमारे तीन धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। हम उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जिसमें महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी जैसे वीरों ने जन्म लिया। हम कदापि अपना धर्म भ्रष्ट न होने देंगे।
5: नहीं होने देंगे, बिल्कुल
4: नहीं। भले ही हमें फांसी के तख्ते पर झूलना पड़े।
0: सैनिकों में गुस्सा और तनाव था, शायद कुछ होने वाला है। बच्चों रोज की तरह परेड के मैदान में मंगल पांडे भी आया। उसका पारा बहुत गर्म था, गुस्से से चेहरा लाल था। मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों की परवाह न करके परेड की लाइन से निकलकर सिपाहियों को ललकारा।
4: भाइयों उठो, किस चिंता में पड़े हो? मैं आप लोगों को धर्म की सौगंध दिलाता हूँ। आओ भारत माँ की आजादी के लिए इन अधर्मी अत्याचारियों पर टूट पड़ो।
0: सैनिकों में और जोश भर गया। परेड के मैदान में

0: अंग्रेज ऑफिसर मंगल पांडे का रौद्र रूप देखकर कांप उठा। कांपते स्वर में उसने सैनिकों से कहा,
1: हम पांडे को अरेस्ट मांगता है।
2: मंगल पांडे
3: जिंदाबाद,
2: मंगल पांडे
3: जिंदाबाद,
2: इंकलाब
3: जिंदाबाद,
2: इंकलाब
3: जिंदाबाद।
0: तुरंत ही मंगल पांडे ने अंग्रेज ऑफिसर पर गोली दाग दी। ऑफिसर तो वहीं गिर पड़ा। गोली की आवाज सुनकर लेफ्टिनेंट वॉर्म आया। मंगल पांडे ने उस पर भी गोली चलाई।
4: ए मंगल पांडे, वाच आउट!

0: Hei, Mangal Pandey, watch out!
1: सारी छावनी में खलबली मच गई।
2: उसके बाद क्या हुआ दादी?
1: उसके बाद तुरंत ही कर्नल व्हीलर आया और मंगल पांडे को अरेस्ट करने का हुक्म दिया।
0: अरेस्ट करो! मंगल पांडे को किसी के हाथ नहीं लगने देंगे।
2: दादी जी, फिर क्या हुआ?
1: कर्नल व्हीलर वहाँ से तुरंत लौट गया। तुरंत ही जनरल हियर्स एक फौजी टुकड़ी के साथ मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए आए। मंगल पांडे ने गोरों की टुकड़ी आते देखकर अपनी बंदूक से खुद को गोली दाग दी। और मंगल पांडे जमीन पर गिर पड़ा।

0: Hum, beide Kuh, die können man geheim. Durant, Hospital Pedro!
1: उसके बाद क्या हुआ?
2: उसके बाद ठीक होने पर सैनिक अदालत में उस पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के समय मंगल पांडे ने छाती तानकर खुले शब्दों में कहा,
3: हाँ, मैंने अंग्रेज अफसर पर गोली दागी थी, पर मेरा उनसे किसी प्रकार का निजी द्वेष नहीं था। ये लड़ाई व्यक्ति की नहीं, राष्ट्र की है। मैं अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करना चाहता हूँ।
1: क्या कोई कार्रवाई हुई?
2: हाँ, क्योंकि अंग्रेज हिंदुस्तानियों में खौफ का माहौल बनाना चाहते थे, इसलिए तुरंत ही सैनिक अदालत बैठी।
4: दादी जी, सैनिक अदालत का फैसला क्या था?
2: सैनिक अदालत ने मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई। 18 अप्रैल सन 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। ये इस आंदोलन की पहली कुर्बानी थी। पूरे देश में फांसी की खबर फैल गई। भारत माता का वो सपूत था जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गया। इसके बाद आजादी की लड़ाई जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई।
4: इसके बाद क्या हुआ दादी?
2: इस बलिदान के कारण आज सारा देश मंगल पांडे को याद करता है। उन पर फिल्में बनाई गई। लोक साहित्यकारों ने तो उन पर कई गीत भी लिखे। मंगल पांडे पर प्रसिद्ध नारायण सिंह की कविता, जो भोजपुरी भाषा में लिखी है, ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस कविता में क्रांतिवीर मंगल पांडे का गौरव गान किया गया है।
5: जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भैल, बलिया का मंगल पांडे के बलबेदी से ललकार भई, मंगल मस्ती में चूर चलल, पहला बागी मसहूर चलल, गोरिनी का पलटनी का आगे, बलिया के बांका सूर चलल, गोली के तुरंत निशान भईल, जननी के भेंट परान भईल, आजादी का बलबेदी पा, मंगल पांडे बलिदान भईल।

0: जब संतावनी के रारी भैली वीरन के वीर पुकार।
1: दादी, इस लोकगीत का अर्थ क्या है?
2: इस लोकगीत में उल्लेख है कि 57 के युद्ध में वीरों को क्रांति में शामिल होने का आह्वान किया गया।
1: अच्छा।
2: बलिया के मंगल पांडे मस्त होकर क्रांति के लिए गोरों की सेना के सामने छाती तान कर खड़े हो गए। इससे भारत की सोई हुई वीरता जाग गई, जिसने बैरकपुर की बैरकों में अंग्रेजों की सेना में खलबली मचा दी।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम मंगल पांडे और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बहादुर कशी का।
4: ये कार्यक्रम भारत के बहादुर बच्चों पर निर्मित कार्यक्रमों की श्रृंखला से लिया गया है, जिसमें एक बहादुर बच्ची कशिका के जीवन और उसकी बहादुरी को विस्तार से बताया गया है और किस प्रकार इस बहादुर बच्ची ने अपने जीवन को दांव पर लगाकर दूसरों को एक बड़ी विपत्ति से बचाया।
5: देवेंद्र, नाश्ता कर लो।
6: माँ, आज तो छुट्टी है, आज भी जल्दी।
5: देखो बेटी, तुम्हारे पापा भी नाश्ता करके दुकान पर चले गए हैं। तुम लोग भी नाश्ता कर लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। मुझे बहुत सारा काम करना है और खाना भी तो बनाना है।
6: ठीक है माँ, हम नाश्ता कर लेंगे, पर देवेंद्र को तो आ जाने दो।
5: अच्छा ठीक है, देवेंद्र आ जाए तो तुम दोनों नाश्ता कर लेना, मैं पूजा करने जा रही हूँ।
6: अच्छा माँ।
7: माँ।
6: लो, देवेंद्र भी आ गया।
7: दीदी, मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है।
5: चलो तुम दोनों नाश्ता कर लो और अब मैं पूजा के लिए जा रही हूँ, मुझे परेशान मत करना, समझे?
6: ठीक है माँ।
7: नाश्ता नाश्ता यही ले आओ दीदी, ठीक है? मैं यही टीवी के पास बैठकर खाऊंगा।
6: ठीक है, मैं अभी लाती हूँ।
7: ये देखो दीदी, ये मारा।
6: देवेंद्र चुप रहो, मैं भी देख रही हूँ।
7: अरे ये मारा।
6: अच्छा, तुमने दरवाजा बंद किया था या नहीं?
7: बंद कर दिया होगा, ये तो देखो।
6: याद नहीं आ रहा तो जाओ देख कर आओ। मुझे लग रहा है कि दरवाजे पर कोई है। टीवी की आवाज कम करो।
7: कोई नहीं है दीदी, ये गिरा।
5: लगता है कोई आया है। काशु बेटी, देखो दरवाजे पर कौन है।
6: अच्छा माँ, कौन? आप लोग कौन? कहिए किससे मिलना है? अरे
8: हमें अंदर आने दो।
6: अरे क्यों?
9: ए लड़की, रास्ते से हट जा।
6: क्या काम है? ठहरो ठहरो, मैं माँ को बुलाती हूँ।
8: लड़की हट। माँ, ये चाकू देख रही है ना?
9: ज्यादा होशियारी मत दिखा।
6: अरे
9: मैं इस बंदूक की गोली तेरी खोपड़ी के पार कर दूंगा। हट रास्ते से।
6: माँ, क्या हुआ?
5: ये क्या है? अरे अरे, कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को?
8: ए शोर मत मचा, जल्दी से चाबी निकालो। तुमने अभी तक चाबी नहीं निकाली।
6: हाँ, मेरी माँ को छोड़ दो।
8: ये चाकू देख रही है ना?
6: छोड़ दो।
5: मुझे मत मारो,
6: कुछ मत करो।
5: चाबी चाबी मुझे नहीं मालूम, याद नहीं कहाँ रखी है।
9: ये बहाने बाजी करती है, जल्दी से चाबी दे दे वरना गोली मार दूंगा।
5: अरे मेरे पास छोड़ो,
6: मेरी माँ को छोड़ो।
8: चुप चुप, आवाज से गाली तो यही ढेर कर दूंगा। चुप, आवाज नहीं।
9: सुनो सुनो, इसको उठा के दूसरे कमरे में ले चलते हैं। पकड़ो इसको, पकड़ो। अब इसकी आवाज बस यही सुन पाएगी। चाबी तो हम खुद ही ढूंढ लेंगे। चलो।
5: हे भगवान, अब मैं क्या करूं?
6: देवेंद्र।
7: हाँ दीदी।
6: चोर तो उस कमरे में गए, चलो इस कमरे से फोन करते हैं।
7: अच्छा, हाँ।
6: पापा को फोन करती हूँ। देवेंद्र, तुम खिड़की से देखते रहो, ठीक है?
7: अच्छा।
6: हेलो।
8: हाँ बेटा, बोलो।
6: पापा।
8: हाँ।

0: हाँ बोल रहा हूँ।
1: जल्दी से घर आ जाओ पापा, चोर घुसाए हैं।
2: कौन घुसा है?
1: माँ को बहुत मार रहे हैं।
2: अच्छा तुम घबराओ नहीं, नहीं नहीं तुम ऐसा करो, पड़ोसियों को बुलाओ, तब तक मैं आता हूँ, ठीक है?
1: अब देवेंद्र मैं बाहर से शोर मचाती हूँ, तुम दरवाजा बंद करके यहीं बैठ जाओ।
3: अच्छा।
1: बचाओ बचाओ, घर में चोर घुस आए हैं, बचाओ
4: बचाओ।
5: और शोर सुनकर भाटिया साहब के पड़ोसी इकट्ठे हो गए और दोनों चोरों को पकड़ लिया। लोगों ने चोरों की खूब पिटाई की। इसी बीच काशु यानी कशिका के पापा भी आ गए और पुलिस भी आ गई।
6: कितना बहादुर बच्चा है, देखो तो सही इसको कशिका को। वाह वाह वाह, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया इस बच्चे ने।
7: आज तो हमारी जान कशिका ने बचा ली, उनके पास तो बंदूक भी थी, चाकू भी था, मैं तो डरी गई थी।
5: अगले दिन कशिका की बहादुरी के चर्चे सबकी जुबान पर थे। मोहल्ले, रिश्तेदारों और स्कूल में कशिका की ही चर्चा हो रही थी। और जानते हो बच्चों, इस बहादुरी के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से कशिका को 1,000 रुपए का इनाम और प्रमाण पत्र मिला।
8: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बहादुर कशिका, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
9: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
8: नमस्कार।
10: उमंग उमंग उमंग उमंग।
11: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं, 100.4 FM पर। अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT, और अब समय है कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ का। तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ।
12: श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ लेकर हाजिर हैं, और देखते हैं कार्यक्रम में सबसे पहले हमसे कौन जुड़ चुके हैं। जी स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
13: सर सबसे पहले आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार।
12: नमस्कार, हमारे कौन से श्रोता बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं?
13: मैं ग्रामबा पोस्ट बक्सीना डिस्ट्रिक्ट बदायूं तहसील दातागंज से विमल ठाकुर बात कर रहा हूँ सर, और आपको जितने भी सुनने वाले प्रेजेंटर सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार।
12: जी नमस्कार विमल जी, आपको भी नमस्कार। हमारे आप पुराने नियमित श्रोता है, और आज का हमारा विषय पता क्या है आपको बातचीत का?
13: जी सर बिल्कुल, आकाशवाणी का स्थापना दिवस है और ये टॉपिक आज का विषय है, बहुत अच्छा है सर।
12: जी विषय हमारा कि कौन सी आपकी ऐसी यादें हैं ना जो आप हमसे साझा करना चाहते हैं हमारे श्रोताओं से?
13: बिल्कुल, आकाशवाणी की कई यादें हमसे जुड़ी हुई हैं, और आकाशवाणी सुन के तो हमारा दिन अच्छा गुजर जाता है, और यादें तो बहुत इस तरह से रहेंगी। जैसे कि सबसे फर्स्ट टाइम पहले 2008 में मैंने आकाशवाणी बरेली को हेलो फ्रेंड्स के जरिए फोन लगाया था, और मेरा फर्स्ट कॉल लगा था। उस समय मुझे अनुभव नहीं था कि इसमें कॉल लगा के बात की जाती है। जब मेरा कॉल लगा तो मुझे यकीन हो गया ये बिल्कुल सच बात है, फोन लगा के गाने सुने जा सकते हैं। वो याद अभी भी मेरे रूह में चलती रहती है सर।
12: तो आपको यकीन हो गया था कि हाँ कॉल लगती है और गाना सुनने को मिलता है ना?
13: बिल्कुल बिल्कुल सर, पहले मैं समझता था ये सब पता नहीं कैसे होता है, मुझे समझ में नहीं आता था। जब मेरी खुद बात हुई डायरेक्ट, कुछ समय हेरा मैम थी ये प्रोग्राम में, तब मेरी बात हुई थी सर।
12: बहुत अच्छी बात है, आपने अपने विचार साझा किए हमसे इस अवसर पर। कहिए आज कार्यक्रम में कौन सा गीत रहेगा?
13: जब आकाशवाणी बरेली में हमारा फोन लग चुका है और बेहतरीन गानों की वर्षा तो होने ही वाली है प्रोग्राम में, तो मूवी का नाम रहेगा जीत, और इसमें बेहतरीन सा नगमा है दिल का क्या करें साहब, ये सॉन्ग सुनवा दीजिएगा सर। बहुत दिनों के बाद आज आपसे बात हो रही, बहुत अच्छा लग रहा है सर।
12: ठीक है विमल जी, धन्यवाद हमें फोन करने के लिए। तो हम भेज रहे हैं आपकी पसंद पर ये गीत, एंजॉय कीजिए।

0: कार्यक्रम आपकी बात आकाश मणि के साथ में आपका स्वागत है। हमारे कौन से श्रोता बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: राम लाइब्रेरी शमशाद अली बात कर रहा है सर।
0: शमशाद जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपको मालूम है हमारी और आपकी जो बातचीत उसका क्या विषय है आज?
1: आज का विषय है 33 साल हो गई है आज।
0: जी जी,
1: अगला है आज आकाशवाणी बरेली।
0: कोई यादें आपकी हैं जो हमें आप बताएंगे हमारे श्रोताओं को?
1: आपका एक काम चल गया था आकाशवाणी से, हम 1992 से सुन रहे हैं आपकी। आज शुरू हुआ था तो हमारे पाप कहते थे आकाशवाणी लाल फाड़क पे शुरू हो रही है, बन रही है। हमारे वालिद साहब आते थे।
0: जी जी,
1: वैसे गाड़ी पे कैसे काम चल गया तो ये गाने आ रहे हैं सड़क पे चल के और बेटा फिर गाने आते।
0: जी,
1: सबरी बोलता था, ससराड़ी होती थी।
0: जी जी
1: होती थी
0: जी। तो इसकी स्थापना हुई थी 17 जून 1993 में। तो और कोई खास याद आपको याद आ रही है आकाशवाणी बरेली को लेकर?
1: फिर उसके बाद शाम को आया था 5:05 पे आज साफ कार्यक्रम आया कर का। विविध भारती बोलता था वहाँ में चित्र कार्यक्रम आते थे, विविध भारती से पिटारा हुआ था।
0: जी,
1: रिले करते थे आप लोग।
0: जी बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया है लवेड़ा से। आज कार्यक्रम में आपका फोन लग चुका है और आपकी यादें ताजा हो गई। देखिए, आपने बताया कि हमारे आपके वाले साहब के जमाने से आप रेडियो सुन रहे हैं। आज गीत कौन सा होगा इस कार्यक्रम में?
1: फिल्म का सुना दो, रखवाला पिक्चर का, बच्चे को सुना दो गाना।
0: ठीक है ठीक है, तो हम भेज रहे हैं आपकी पसंद पर ये गीत। एंजॉय कीजिए, ठीक है।

0: आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आपका स्वागत है। हमारे कौन से श्रोता बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मौलागढ़ नई बस्ती मधेपुरा जिला बरेली से तराना अंसारी बोल रही हूँ।
0: तराना अंसारी बात कर रहे हैं। तराना जी, आप

0: आपको मालूम है हमारी और आपकी जो बातचीत है क्या विषय है, पता है आपको?
1: जी सर, आकाशवाणी बरेली की स्थापना दिवस पे क्या यादें साझा
0: जी जी
1: करनी
0: शाह,
1: चाहिए?
0: बहुत अच्छी बात है। तो क्या आपको याद आता है, कौन सी यादें आपकी ऐसी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, हमें आप हमारे श्रोता हैं उनसे आप साझा करिए।
1: सर मुझे तो यही याद आती है, यही साझा करना चाहती हूँ। पहले मैं स्कूल जाती थी तो मीना की दुनिया नाटक आता था, तो स्कूल में हमारे सुनाते थे और हम घर पे आते तो हमारी बहनें भी सुनती थी, तो सुनते थे बहुत अच्छा लगता। अब नहीं आता है तो वो यादें बहुत
0: बिल्कुल
1: आती हैं।
0: सही कहा आपने, वो कार्यक्रम था मीना की दुनिया, है ना?
1: जी सर,
0: और उसका समय था 11:30 समय शायद था
1: जी
0: उसका।
1: सर, वो
0: बहुत अच्छी आपने,
1: एक कार्यक्रम आता था तोता वाला, सुदेख सैनिक सर शो करते थे, वो भी
0: हाँ
1: देखते
0: हाँ
1: थे।
0: हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी आपकी यादें हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा, इस कार्यक्रम आते थे यहाँ से। तो तराना जी, देखिए आपने अपनी यादें यहाँ तो शेयर कर दी हैं, साझा कर दी हैं, तो कहिए अब बारी गाने की है, तो कौन सा किशोर वादे आपको इस कार्यक्रम में? अब
1: सर फिल्म का नाम है जानकी कसम और गाने के बोल भी हैं, जो हम ना मिलेंगे तो गुल ना खिलेंगे।
0: ठीक है, तो हम भेज रहे हैं आपकी पसंद पर ये गीत, एंजॉय कीजिए।

0: कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आपका स्वागत है। हमारे
1: जी नमस्कार सर,
0: नमस्कार, कौन सा बात कर रहे हैं?
1: मैं सुल्तान अजा बात कर रहा हूँ सर।
0: सुल्तान जी, कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। आज का विषय पता क्या आप?
1: जी आकाशवाणी के स्थापना दिवस के ऊपर है ना सर।
0: जी, जो आपकी यादें हैं जुड़ी हुई हैं हमारे केंद्र से, आकाशवाणी बरेली से, उन्हें आप साझा
1: सर
0: करिए। ठीक है,
1: सबसे पहले तो हमारी आकाशवाणी बरेली को जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: जी,
1: ये हमेशा ऐसी तरक्की करे, हम श्रोताओं का मनोरंजन करती रहे जानकारी के साथ साथ।
0: जी
1: जी, इसकी यादें तो सर हमारे करीब 2012 से जुड़ी हुई है। सिर्फ सुनते थे लेकिन 2012 से हम सही से जुड़े हैं, जो कि हम फोन भी करते रहते हैं अपने आकाशवाणी को। जी, और इसके जो प्रोग्राम है वो सारे हमें अच्छे लगते हैं, चाहे भंकुर हो, नमस्ते बरेली हो, किसान वाणी, युवाणी, ये सुनते रहते हैं तो लाभ भी मिलता है हम लोगों को।
0: बिल्कुल
1: जी, और इसकी जो एक खास बात है कि
0: जी,
1: ये जो हमारा सुबह 6 बजे चालू होता है और रात को 11:10 से ये ऑफ होता है।
0: बिल्कुल,
1: तो हम बिल्कुल इसके साथ जुड़े रहते हैं, इस समय समय के ज्यादा हम काम समय में करते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है, आपने अपनी यादें साझा की। और अब
1: और यहाँ के सारे उद्घोषक आरते जो भी हैं, मनोपर जी हूँ, चित्रा मैम हूँ, या फिर हरीश भाई हैं, बजर जी हैं, परवेश जी हैं, सारे मेहनत अच्छी करते हैं
0: जी।
1: हम लोगों के लिए अच्छे प्रोग्राम लेके आते हैं अच्छी आवाज के साथ।
0: बहुत शुक्रिया
1: अच्छा
0: आपका,
1: लगता है।
0: बहुत शुक्रिया।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ, और अब बारी है हमारे उन साथियों को जिन्होंने हमें कमेंट किया है। और ये साथी हमारे हमें लिख रहे हैं, लाल मोहम्मद अंसारी साहब लिख रहे हैं कि कार्यक्रम पेश करने वाले श्री हरीश जी को हमारी तरफ से नमस्कार आदाब। तो आपको भी आदाब अर्ज है, और हमें कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, हम हर रोज कार्यक्रम को सुनते हैं। आज का विषय है स्थापना दिवस पर कोई याद, यूं ही बहुत सी यादें हैं हमारे पास। ये लिखते हैं कि एक खास बात जरूर बताना चाहेंगे कि वो ये कि आज से 33 साल पहले पहले अनाउंसर रामपुर केंद्र से आए थे, उनका नाम था चंद्रमोहन सक्सेना जी, जो कि आज हमारे बीच नहीं है। उन्होंने जो पहला गाना बजाया था आकाशवाणी बरेली से, वो था तूने प्यार की बीन बजाई। तो ये गाना आपने पसंद किया है। ये हमारे साथी हैं ग्राम करली से, पुरानी मस्जिद से, लाल मोहम्मद अंसारी और लाल मुस्ती अंसारी। गाना हमको सुनवाएंगे ज़रूर। और ये हैं मनोज कुमार, जिन्होंने आकाशवाणी बरेली के इस स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। और आप साथी हमारे हैं, ये हैं कट्टाचंद खां से भाई अनुराग मौर्य साहब, लिख रहे हैं कि आज का विषय अच्छा है।

वो सुनवाएंगे ज़रूर। और ये है मनोज कुमार, जिन्होंने आकाशवाणी बरेली के इस स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। और आप साथी हमारे हैं, ये हैं कट्टा चंद खां से भाई अनुराग मौर्य साहब, लिख रहे हैं कि आज का विषय अच्छा है, और ये कहते हैं कि आकाशवाणी बरेली को हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं, बहुत धन्यवाद आपका। और ये हैं साथी हमारे राजेश अकेला जी, जो हमें एमपी से शुभकामनाएं भेज रहे हैं, धन्यवाद आपका। जगदीश धाकड़ जी भी हमें शुभकामनाएं भेज रहे हैं, आपका भी बहुत धन्यवाद। और कोका भिलाई से उत्तम सिंह साहब हैं, मोहर जंगेल, अनिल जी जंगेल, अजीत कुमार, आयुष जंगेल और नंदिनी जंगेल हमें ये भेज रहे हैं। और ये हैं गंगा सिंह रावत साहब का संदेश भी हमें मिल चुका है, और साथ ही आप हमें कमेंट में भी स्थापना दिवस की शुभकामनाएं भेज रहे हैं, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और आप राम कुमार रेवाड़ जी, पूरे आकाशवाणी बरेली परिवार को 33वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां भेज रहे हैं, धन्यवाद आपका भी बहुत, राम कुमार रेवाड़ जी। आरबी सिंह हमें स्थापना दिवस की बहुत शुभकामनाएं भेज रहे हैं, और ये लिखते हैं कि हम आकाशवाणी मोबाइल के माध्यम से सुनते हैं। पहले जब गांव में एक रेडियो होता था तो हम लोग सभी लोग साथ बैठकर कार्यक्रम सुनते थे, लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं। और साथ में डॉक्टर आरबी सिंह, थाने के सामने अलहगंज जनपद शाहजहाँपुर, धन्यवाद आपका आरबी सिंह साहब। और ये हैं किशगढ़ से शाहरुख खान, हाशिम खान, अरहम बाबू और किशवा नूर लिख रहे हैं कि आकाशवाणी बरेली को स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लिख रहे हैं कि हम आकाशवाणी बरेली को पिछले 14 वर्षों से सुन रहे हैं, जब मेरे पास रेडियो था तो उस समय पर हम सुनते थे, पर अब आ गया है न्यूज़ ऑन एयर ऐप तो उस पर सुनते हैं। और मुझे सबसे अधिक पसंद है आने वाला कार्यक्रम संडे के दिन अंकुर, जी हाँ, इसमें भैया निमचंद और नजमा दीदी को बेहद दिल से सुनते हैं ये लोग, बहुत धन्यवाद आपका, ये इनके फेवरेट हैं, तो बहुत धन्यवाद। और जी कहते हैं कि हमारा कार्यक्रम हेलो बरेली बहुत पसंदीदा है, इसका टाइम इन्हें नहीं मालूम है कि कब ये रिकॉर्डिंग होती, तो शनिवार को 9:20 से आप इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग करवा सकते हैं, धन्यवाद आपका। और साथ में सुनते हैं गीत और कमेंट शामिल करेंगे इस गीत के बाद।

और ये साथी हमें लिख रहे हैं विनेश कुमार श्रीवास्तव जी, निकट बैंक सेंटर चैरिटी बरेली से। एक नई शिक्षा सूचना और मनोरंजन से भरपूर आकाशवाणी बरेली परिवार को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं। यादें तो बहुत जुड़ी जुड़ी हैं आकाशवाणी बरेली के साथ, पर एक याद झूमका गिरा प्रोग्राम का पहला शो बरेली के घंटाघर पर, जहाँ उद्घोषक और कार्यक्रम अधिकारी मौजूद थे स्टूडियो में, स्टेशन डायरेक्टर फोन लाइन पर मौजूद थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको झुमका मिला क्या? तो हंसी के अंदाज में मैंने कहा कि मैं बहुत ही समय से गिरे हुए झुमके को ढूंढ रहा हूं, पर मुझे आज तक नहीं मिला और कोशिश जारी रखेंगे। वास्तव में उस समय से मुझे बहुत अच्छा लगा जब सभी लोग रिंग रिंग रिंगे बलगीत के साथ डांस कर रहे थे। वो दृश्य आज तक मेरे दिमाग में बसा हुआ। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आप हैं वी आई धाकड़ लिख रहे हैं, सर्वप्रथम शुभकामनाएं, और लिखते हैं कि आकाशवाणी बरेली से हम मोबाइल ऐप पर प्रसारण शुरू होने के बाद से जुड़े हैं। जब से आकाशवाणी बरेली से ने श्रोताओं की भावनाओं को ध्यान रखकर फेसबुक के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया और फरमाइश भेजने का जो अवसर प्रदान किया है, उससे आकाशवाणी के श्रोताओं में एक उत्साह बना है। यहाँ से हर वर्ग के कार्यक्रम तैयार कर प्रस्तुत किए जाते हैं और यहाँ के अधिकारी और उद्घोषक श्रोताओं की बात को ध्यान रखकर ही कार्यक्रम करते हैं। तो बहुत धन्यवाद आपका। लिखने वाले साथी हमारे हैं बिरुलाल वाकतिया धाकड़, उन्हेल जिला एमपी उज्जैन से, और लिखा है कि आकाशवाणी अपने ध्येय वाक्य भोजन हिताय भोजन सुखाय के साथ इसी तरह आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। आप हैं साथी हमारे रितिका मिस्कीन, वानी आरव, चंद्रकला गणेश, काशीनाथ, तसकिता मिस्कीन, आरोही, प्रिया सोन लिख रहे हैं हमें, दयानंद कौली भवानी पेठा सालापुर महाराष्ट्र से। आप लिख रहे हैं कि बरेली केंद्र को बहुत शुभकामनाएं, और आप लिखते हैं कि मेरी सबसे प्यारी यादें वे हैं जब रेडियो की मधुर आवाज़ घर घर में गूंजती थी, सुबह के कार्यक्रम, मनपसंद गीत, श्रोताओं के संदेश और उद्घोषकों की आत्मीय प्रस्तुति आज भी मन को ताजी से भर देती है। और लिखते हैं कि आकाशवाणी बरेली ने केवल मनोरंजन नहीं दिया बल्कि जानकारी, संस्कृति और समाज को जोड़ने का भी महत्वपूर्ण कार्य किया है। इसकी मधुर यादें दिल में बसी हैं। और सुनाते हैं आपको ये साथी हमारे हैं शाहरुख खान की पसंद पर गीत, फिल्म का नाम तेरे नाम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ, आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 104.4 FM पर। शाम के 5 बज चुके हैं और आइए अब आपको बता दें, हमारे केंद्र से आज की सभा में प्रसारित एवं कल की सभा में प्रसारित बरेली होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। आज शाम 6:30 पर हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत हेडिंगले लीड्स से भारत और नीदरलैंड के मध्य खेले जाने वाले मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण। जी हाँ, आज शाम 5:05 सुनवाएंगे कार्यक्रम आपको भजन संध्या और कार्यक्रम संसार सुनवाएंगे आज शाम 5:30 पर। इसमें वार्ता होगी स्वयं सहायता समूह का योगदान, वार्ताकार होंगी कुसुम। इसके अलावा होंगे पेरेंटिंग टिप्स और इनसे मिलिए भी आप तक पहुंचाएंगे। आज शाम 6 कार्यक्रम युवाणी में निहल कर आएंगी चक्रव्यू और आज शाम 7:31 सुनवाएंगे कार्यक्रम आपको रेडियो हेल्पलाइन। इसमें विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर आशीष शंखधार।

कल सुबह 8:15 पर सुनवाएंगे कार्यक्रम आपको नमस्ते बरेली। इसमें सुनवाएंगे आपको बरेली की सारी खबरें और फोनो कार्यक्रम। इसके अलावा लोग भी सुन पाएंगे आप कल सुबह 8:45 पर कार्यक्रम आपकी पसंद, जो कि होगा सोशल मीडिया पर आधारित कार्यक्रम। इसको आप सुन पाएंगे कल सुबह 10 बजे से। सबरंग कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे कल दिन 11 बजे से। कार्यक्रम झुमका गिरा रे कल पूर्वाह्न 11:15 पर हम आप तक पहुंचाएंगे। कार्यक्रम सुनवाएंगे आपको अनुरोध गीत कल अपराह्न 1 बजे से। रसरंग कार्यक्रम कल दिन में 2 बजे हम आप तक पहुंचाएंगे। और कार्यक्रम एनसीईआरटी कल अपराह्न 3:30 पर हम आप तक पहुंचाएंगे।

अलावा कार्यक्रम युवाणी में कल नेहा सिंह आप तक लेकर आएंगी ओए लक्की। प्रोग्राम किसानवाणी में कल शाम 6:30 पर कार्यक्रम में आज की बात होगी भूमिगत जल संरक्षण, खेत बचाओ अभियान और होगी कृषक गोष्ठी, खेत बचाओ अभियान मृदा की सेहत सुधारें। इसमें प्रता करेंगे शशि कुमार वर्मा, विजय कांति देवी। इसके अलावा कृषि समाचार, मौसम नसीहत और सवाल, साथ में होंगे लोकगीत भी। कार्यक्रम ग्राम जगत में कल चर्चा का विषय रहेगा नशा नाश की जड़। वार्ता सुनाएंगे आपको नशा मुक्त समाज की आवश्यकता, वार्ताकार होंगी अनुष्का गुप्ता। इसके अलावा सुनाएंगे आपको लोकगीत और कल शाम 7:31 पर सुनाएंगे आपको कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन। इसमें विषय होगा डायबिटीज अथवा शुगर की बीमारी एवं में नया क्या शंकाएं एवं समाधान। मेहमान होंगे डॉक्टर सुमेश मेहरोत्रा। तो श्रोताओं, ये जानकारी थी हमारे केंद्र से आज की सभा के शेष और कल की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। अब सुन रहे हैं आपको भजन।

कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ कल शाम 4 बजे से आप सुन सकते हैं। कार्यक्रम होगा भजन संध्या कल शाम 5:05 पर, और कार्यक्रम ऐसा कल शाम 5:30 पर हम आप तक पहुंचाएंगे। इसके

ईश्वर की कृपा से यह शरीर प्राप्त हुआ है। अब इस शरीर को गुण रूपी रत्नों से सजाना हमारा कर्तव्य है। ज्ञान, ध्यान, तपस्या, प्रेम, सेवा, ये वो रत्न हैं जिन्हें एक बार प्राप्त कर लिया जाए तो सदैव साथ रहते हैं। दुनिया के अन्य रत्न शरीर छूटते ही हमें छोड़ देते हैं, तो क्यों ना उन रत्नों को प्राप्त करें जो जन्म जन्मांतर हमारे साथ रहेंगे।

0: श्रोताओं, आज है आकाशवाणी बरेली का स्थापना दिवस। जी हाँ, और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भजन संध्या। लेकिन उससे पहले ये सूचना सुनिए श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले फोन कार्यक्रम रेल प्लाइन में शुक्रवार दिनांक 19 जून 2026 को शाम 7:31 कार्यक्रम का विषय है गुर्दे की पथरी एवं पेशाब संबंधी समस्याएं और उनका आधुनिक इलाज, शंकाएं एवं समाधान। रिकॉर्डिंग करेंगे हम गुरुवार दिनांक 18 जून 2026 को शाम 4 बजे, यानी कि कल। इस संबंध में यदि कोई प्रश्न हो तो हमें टेलीफोन नंबर 0581251720 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के यूरोलॉजिस्ट एवं एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर नीरज कुमार अग्रवाल मौजूद रहेंगे। विवरण एक बार पर सुन लीजिए। विषय रहेगा गुर्दे की पथरी व पेशाब संबंधी समस्याएं और उनका आधुनिक इलाज, शंकाएं एवं समाधान। रिकॉर्डिंग की तारीख हम बता दें आपको, रिकॉर्डिंग करके हम कल यानी कि गुरुवार दिनांक 18 जून 2026 को शाम 4 बजे से। टेलीफोन नंबर हमारा 0581251720।
1: नमस्कार, मैं राजेंद्र प्रसन्ना। आज बहुत खुशी की बात है कि बरेली आकाशवाणी का स्थापना दिवस है और इस उपलक्ष्य में मुझे याद किया गया है। वहाँ की ऑडियंस मुझे बहुत पसंद है।

क्योंकि मैं कुछ साल बरेली में रहा तो उसका जो आनंद है वो आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अभी मैं वैसे पेरिस में हूँ, कुछ कार्यक्रम के लिए आया था, तो मैंने कहा कि भाई मैं बिल्कुल ऑनलाइन क्या मैं वीडियो करके भेजता हूँ, इसमें आप आकाशवाणी में सुनाएं या वीडियो में लगाएं, तो इसलिए अब मैं आपके समक्ष थोड़ा सा बांसुरी भी बजाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि बरेली में जब हम वहाँ कुछ साल रहे 76 से 78 तक, तो उसे बहुत आनंद आया, बहुत हम काफी प्रोग्राम भी किए हैं। अभी भी हम अक्सर जाते हैं वहां पे, बरेली दरगाह में दर्शन करने भी जाते हैं, मंदिर में भी जाते हैं। तो जो बरेली का आनंद है वो एक अपने आप में बड़ा अद्भुत है। तो आप सभी श्रोताओं को मैं अपना बांसुरी वादन सुना रहा हूँ।

श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन करके रेडियो हेल्पलाइन में शुक्रवार दिनांक 19 जून 2026 को शाम 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है गुर्दे की पथरी या पेशाब संबंधी समस्याएं और उनका आधुनिक इलाज, शंका एवं समाधान। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे गुरुवार दिनांक 18 जून 2026 को शाम 4 बजे से। संबंध में यदि कोई प्रश्न हो तो हमें टेलीफोन नंबर 0581251700 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के यूरोलॉजिस्ट एवं एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर नीरज कुमार अग्रवाल मौजूद रहेंगे। विवरण एक बार फिर लीजिए, विषय रहेगा गुर्दे की पथरी व पेशाब संबंधी समस्याएं और उनका आधुनिक इलाज, शंका एवं समाधान।

रिकॉर्डिंग की तारीख हम आपको बता दें, रिकॉर्डिंग करेंगे हम कल यानी गुरुवार दिनांक 18 जून 2026 को शाम 4 बजे से। और टेलीफोन नंबर है हमारा 0585-1251702 00।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भजन संध्या। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से प्रसारित किया गया। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी संसार।

0: नारी संसार सुनने वाली सभी सखियों का स्वागत है आपके अपने संसार यानी नारी संसार में। कैसी हैं सखियों? उम्मीद है कि हमारी सखियां अच्छी होंगी और मस्त होंगी और साथ ही एंजॉय कर रही होंगी अपने परिवार के साथ। और हाँ, आज तो एक बहुत ख़ास दिन है, एक ऐसे रिश्ते का जो दिखाई नहीं देता लेकिन उम्र भर साथ चलता है। जी हाँ सखियों, आज आकाशवाणी बरेली का स्थापना दिवस है। 17 जून 1993 को ये सफ़र शुरू हुआ और आज भी बहुत 3 दशकों से ज़्यादा समय हो चुका है लेकिन फिर भी ये अपनी आन बान शान को बनाए रख रहे हैं। सखियों, आज का दिन आकाशवाणी बरेली के लिए बेहद खास है। 17 जून 1993 को शुरू हुआ ये सफ़र आज भी उसी अपनत्व, उसी भरोसे और उसी मेहनत के साथ और उसी मोहब्बत के साथ जारी है। बरसों से आकाशवाणी बरेली ने अपनी आवाज़ के जरिए खुशियां बांटी हैं, जानकारी पहुंचाई है और हर सुख दुख में अपने श्रोताओं का साथ निभाया है। स्थापना दिवस के इस मुबारक मौके पर हम पहुंचे हैं अपनी सखियों के बीच ताकि जान सकें कि उनकी जिंदगी में आकाशवाणी बरेली की क्या अहमियत है और इस सफर से जुड़ी उनकी कौन कौन सी खूबसूरत यादें हैं। तो आइए मिलते हैं अपनी पहली सखी से। क्या नाम है आपका?
1: जी, मेरा नाम खुशबू है।
0: खुशबू, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप आकाशवाणी बरेली कब से सुन रही हैं?
1: जी, बहुत टाइम से, मैं बचपन से ही सुन रही हूँ ये आकाशवाणी। मम्मी मेरी सुनती थी तो उनके साथ में ही मैं भी सुनती थी।
0: खुशबू जी, क्या करती हैं आप?
1: मैं होम मेकर हूँ।
0: आकाशवाणी बरेली का कौन सा कार्यक्रम आपको सबसे ज्यादा पसंद?

0: है और क्यों?
1: सच कहूं तो बचपन की पूरी एक तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। बचपन से ही जब हम लोग शाम होती थी घर के आंगन में चारपाइयां बिछाकर और रेडियो के प्रोग्राम सुनते थे, उसमें सबसे अच्छा लगता था हेलो फरमाइश और रंग भरे गीत। इन सारे प्रोग्रामों का भी बहुत बेसब्री से इंतजार रहता था। उसके साथ में है नारी संसार, बहुत पसंद है। एक गृहिणी होने के नाते लगता है कि जैसे कोई अपनी बहन या सहेली बैठकर बातें कर रही हो। घर परिवार, बच्चों की परवरिश, स्वास्थ्य, आत्मनिर्भरता, हर विषय पर इतनी सहजता से बातचीत होती है कि लगता ही नहीं है कि हम आकाशवाणी पे प्रोग्राम सुन रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम परिवार में बैठे हुए बातें कर रहे हैं।
0: जी, आकाशवाणी के स्थापना दिवस पर आप हमारी सखियों से क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आकाशवाणी सिर्फ एक मनोरंजन का ही साधन नहीं है, ये हमारे हर सुख दुख में शामिल, हमारी हर परेशानी की दूर करने वाला, हमारा बिल्कुल अपनापन लगता है यहाँ पे। बिल्कुल एक बड़ा परिवार सा है हमारा यहाँ पे, हमें अपनी सारी परेशानियों का हल मिल जाता है यहाँ।
0: जी, आपसे बात की बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत सखियो। इस वक्त हमारे साथ एक और सखी है, हम आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे।
2: मेरा नाम स्वाति है।
0: सखियो, स्वाति हमारी ग्रामीण क्षेत्र में रहती हैं। स्वाति, ये बताइए कि ग्रामीण क्षेत्रों में आकाशवाणी की पहुंच को आप किस तरह महसूस करती हैं?
2: ग्रामीण क्षेत्रों में आकाशवाणी की जो पहुंच है उसकी अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि जो भी किसानों से संबंधित प्रोग्राम होते हैं वो किसानों के लिए बहुत ज्यादा लाभ पहुंचाते हैं।
0: आकाशवाणी कार्यक्रम के बारे में आपके क्या विचार हैं?
2: जो किसानवाणी कार्यक्रम है वो विशेष रूप से किसानों के लिए है। हमारे जो किसान भाई हैं वो खेती बाड़ी करते हैं, पशु पालते हैं, तो उनके लिए है। जो किसानवाणी कार्यक्रम है वो बहुत अच्छा कार्यक्रम है और हम उसे सुनते भी, हमारे जो परिवार के सदस्य हैं, हमारे पति हैं, हमारे चाचा लोग हैं, सब उसे सुनते हैं। और सुनते ही नहीं है बल्कि उससे जानकारी भी बहुत अच्छी मिलती है, चाहे वो मौसम की जानकारी हो, चाहे वो किसी फसल की हो या किसी विशेषज्ञ की राय हो। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो किसानों तक सीधा हमें लाभ पहुंचाती हैं।
0: आपके परिवार ने, जो आपका परिवार है, वो किस तरह से इसका लाभ लेता है?
2: जैसे कि अगर कोई जानकारी है, चाहे वो किसी मतलब किसी फसल से संबंधित है या किसी पशुपालन या किसी से भी संबंधित है, अगर कोई जानकारी हम सुन रहे हैं उसको ध्यान से और हमें उसको लाभ पहुंचता है सुन के।
0: स्वाति जी, आप ग्रामीण क्षेत्र में रहती हैं, तो वहां हमारी फ्रीक्वेंसी प्रॉपर आपको सुनने को मिलती है?
2: जी हाँ, प्रॉपर वहां तक सुनने को मिलता है हमें।
0: क्या कहना चाहेंगे आप स्थापना दिवस के अवसर पर हमारी सखियों से?
2: मैं यही कहना चाहूंगी कि जो हमारा आकाशवाणी बरेली है, आप सभी इसको सुनिए और लगातार सुनते रहिए। इसमें बहुत बहुत अच्छी हमें जानकारी मिलती है, चाहे वो कोई भी प्रोग्राम हो। बहुत सी ऐसी जानकारी होती है जिन्हें हम घर बैठे सुन सकते हैं और उनसे बहुत सारी हमें मदद भी मिल सकती है। और आकाशवाणी जो ये इसका जो स्थापना दिवस है ये ऐसा है जैसे कि हमारे परिवार में किसी सदस्य का जन्मदिवस।
0: साथी जी, आपसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं कि आप यूं ही आकाशवाणी के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्थापना दिवस के इस मौके पर हमारी मुलाकात हुई एक और सखी से, जो पेशे से शिक्षिका है। तो सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे।
3: हाँ जी, मेरा नाम गार्गी सिंह है।
0: गार्गी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी होने के नाते आप आकाशवाणी बरेली की भूमिका को किस रूप में देखती हैं?
3: जी, मेरे लिए आकाशवाणी तो एक चलती फिरती पाठशाला जैसी है जिसकी कोई भी एक सीमित चार दीवारी नहीं है। मुझे लगता है एक शिक्षक होने के नाते मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि शिक्षा सिर्फ किताबों से नहीं मिलती है बल्कि हमें जीवन के अनुभवों और संवादों से ही मिलती है। एक शिक्षक होने के नाते मैं ये सब महसूस करती हूँ कि शिक्षा सिर्फ किताबों से नहीं मिलती बल्कि जीवन के अनुभवों और संवादों से भी मिलती है। और आकाशवाणी बरेली एक मनोरंजन का और ज्ञानवर्धक चीजों का एक सशक्त माध्यम है।
0: गार्गी जी, बच्चों के
3: जी
0: लिए एक कार्यक्रम प्रसारित होता है हमारे केंद्र से, अंकुर, उसके
3: जी
0: बारे में आपका क्या कहना है?
3: हाँ, जब मैं अंकुर सुनती हूँ और मैं बच्चों की नन्ही नन्ही प्रस्तुतियां जब सुनती हूँ तो ऐसा लगता है कि कितनी सारी प्रतिभाएं हैं जो इस मंच के जरिए बाहर आती हैं।
0: युवाओं और युवाणी के लिए आपके क्या विचार हैं?
3: हाँ, जो हमारा युवा बाड़ी प्रोग्राम है उसके जरिए जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको सोचने का, समझने का और अपने विचार व्यक्त करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है ये युवा।

0: बड़ी उन्हें अवसर देता है कि वो अपने विचारों को व्यक्त करें और मार्गदर्शन प्राप्त करें इस तरह से।
1: आज आकाशवाणी बरेली के स्थापना दिवस पर आप हमारे सखियों से क्या कहना चाहेंगी?
0: हाँ, आकाशवाणी बरेली के सारे कार्यक्रम मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और मैं आकाशवाणी बरेली में यही कहना चाहती हूँ कि आकाशवाणी बरेली शिक्षा और जागरूकता की ये मशाल हमेशा ऐसे ही जलाए रखे और हमारी युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन देता रहे और जागरूक करता रहे।
1: गार्गी जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि हमारी सखियों के साथ और सभी श्रोताओं के साथ नाता यूं ही बना रहे और हमारा आकाशवाणी बरेली दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता रहे। आपने
0: जी,
1: अपना कीमती वक्त हमें दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: शुक्रिया।
1: और हमारी मुलाकात हुई हमारी एक ऐसी सखी से जिनकी आंखें भले ही दुनिया को नहीं देख पाती हैं, लेकिन रेडियो की आवाजों के सहारे वो दुनिया को महसूस जरूर करती हैं। क्या नाम है आपका? आपका
2: तुम्हारी प्रिय दृष्टि रानी, दृष्टि वाले, धन्यवाद।
1: बहुत बहुत स्वागत है और आप हमें अपने बारे में कुछ बताइए।
2: मैं जन्म से ही जो हूँ दोनों आंखों से हूँ, लेकिन मैं काम करने में सक्षम हूँ और मुझे किचन गार्डन का बहुत शौक है। मैं किचन गार्डन में सब्जियां लगाती और ताजा सब्जियां खाती हूँ।
1: प्रिय दर्शनी जी, आप दुनिया को अपनी आंखों से नहीं देख सकती, लेकिन क्या आकाशवाणी बरेली की आवाजें आपको अपने आसपास की दुनिया से जोड़े रखती हैं?
2: देश दुनिया की जानकारी मिलती है समाचारों के माध्यम से और मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धन भी होता है।
1: क्या आपको कभी ऐसा लगा कि रेडियो ने उन चीजों की तस्वीर आपके मन में बना दी है जिन्हें आप देख नहीं सकती?
2: जी, ऐसा महसूस होता है, बिना देखे भी ऐसा महसूस होता है कि हम उन चीजों को देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। और मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धन तो होता ही है और समय पास भी रेडियो के माध्यम से अच्छा हो जाता है।
1: आकाशवाणी बरेली के कौन से कार्यक्रम आपको सबसे ज्यादा अपनेपन का एहसास करवाते हैं?
2: नारी संसार, युवा वाणी, किसान वाणी, ये प्रोग्राम ज्यादा अच्छे लगते हैं।
1: आपके लिए रेडियो क्या है? एक दोस्त, एक साथी या दुनिया की खिड़की?
2: रेडियो एक अच्छा मित्र है। रेडियो से जो है समय तो पास हो ही जाता है, लेकिन उससे ज्ञानवर्धन बहुत होता है और देश दुनिया की जानकारी, मौसम की जानकारी, वो सब जानकारी मिल जाती है घर बैठे ही, जो कहीं जाके भी एक ही स्थान पे नहीं मिल पाई।
1: स्थापना दिवस के अवसर पर आप आकाशवाणी बरेली के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: सर्वप्रथम तो मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगी आकाशवाणी बरेली के लिए। पिछले 3 दशकों से ज्यादा से आकाशवाणी की सेवाएं हमें बरेली केंद्र की मिल रही हैं और बेहतर प्रसारण मिल रहे हैं। पहले मीडियम वेव हुआ करता था तो उसमें डिस्टरबेंस आता था, इसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं है, बहुत साफ प्रसारण आते हैं और अच्छे आते हैं, जिनको जो है ज्यादा अच्छी तरह सुनो समझ पाते हैं।
1: प्रियदर्शनी जी, आपसे बात की बहुत अच्छा लगा। सखियों, आंखें भले न देख सके लेकिन आकाशवाणी बरेली की आवाजें हर रंग, हर एहसास और हर मुस्कान को महसूस करा देती हैं।
2: जी,
1: जी, आपसे ये मुलाकात बहुत यादगार रही, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। सखियों, मौका है आकाशवाणी बरेली के स्थापना दिवस का और हमारी मुलाकात हुई हमारी बहुत पुरानी श्रोता और रेडियो से हमेशा जुड़ाव रखने वाली वरिष्ठ नागरिक साथ ही समाज सेवी पूर्णिमा शर्मा जी। पूर्णिमा जी, आपने आकाशवाणी का लंबा सफर देखा है, कोई ऐसी याद जो आज भी आपके दिल के करीब हो?
3: जी, सबसे पहले तो मैं आपको और अपने श्रोताओं को सबको नमस्कार कहना चाहूंगी। और दूसरे पहले पूरा परिवार एक साथ बैठकर कार्यक्रम सुना करता था, वह अपनापन आज भी याद आता है।
1: आपको कौन कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं?
3: जी, हमें तो सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, खास तौर से इसमें श्रोताओं की प्रतिक्रियाएं आती हैं, अनुरोध गीत वगैरह सुनकर अच्छा लगता है कि पूरा परिवार, हम सभी लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उनके विचार साझा करते हैं और बहुत ही सुंदर प्रोग्राम, सभी प्रोग्राम बहुत सुंदर है। जी,
1: आज स्थापना दिवस पर आकाशवाणी बरेली से क्या कहना चाहेंगी?
3: मैं सबसे पहले तो आकाशवाणी परिवार को बहुत हृदय से हार्दिक बधाई देना चाहूंगी, साथ ही ऐसे ही वो आगे अपनी ऊंचाइयां छूते रहें और हम सब लोगों का मनोरंजन ज्ञान वर्धन करते रहें। इस और आपकी आवाज, इसी तरह मधुर आवाज हमेशा हम यही सुनते रहें और आपकी आवाजें गूंजती रहें। और नई पीढ़ी को मैं खास तौर से कहना चाहूंगी कि वो भी आकाश

0: आकाशवाणी को सुने और उसके ज्ञानवर्धक प्रोग्राम से अपने जीवन में खुशियां लाएं।
1: पूर्णिमा जी, आपके ख्याल सुने, आपकी बात सुनी, बहुत अच्छा लगा। तो सखियो, आज की इस खास मुलाकात में हमने सिर्फ बातें नहीं सुनी बल्कि उन भावनाओं को महसूस किया जो वर्षों से आकाशवाणी बरेली और उसके श्रोताओं के बीच एक अटूट बंधन बनकर मौजूद हैं। किसी ने अपना साथी कहा, किसी ने अपनी पाठशाला, किसी ने प्रेरणा का स्रोत बताया और किसी ने अपनी यादों का सबसे खूबसूरत हिस्सा। यही तो आकाशवाणी की असली ताकत है। यह केवल कार्यक्रम प्रसारित नहीं करती बल्कि लोगों के जीवन में अपनी जगह बनाती है। वक्त बदला, तकनीक बदली, सुनने के तरीके बदले, लेकिन भरोसे की जो आवाज है वो आज भी उतनी ही मजबूत है। और शायद यही वजह है कि आकाशवाणी बरेली का ये सफर केवल वर्षों का सफर नहीं बल्कि पीढ़ियों का सफर बन गया है। और हमारी दुआ है कि आकाशवाणी की ये सुरीली आवाज यूं ही हर दिल तक पहुंचती रहे, ज्ञान की रोशनी फैलाती रहे, संस्कृति की खुशबू बिखेरती रहे और आने वाली पीढ़ियों को भी अपने पन के इसी धागे में परोती रहे। आवाजों का ये कारवां यूं ही चलता रहे, यादों का ये झरोखा यूं ही खुलता रहे और आकाशवाणी बरेली यूं ही हर दिल की धड़कन बनी रहे।

0: मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449113 पर संपर्क करें।

0: सखियों, कहा जाता है कि जब महिलाएं एक दूसरे का हाथ थाम कर आगे बढ़ती हैं, तो सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज का भविष्य संवर जाता है। और इसी क्रम में आज हमको एक ऐसी जानकारी मिली। हमारे साथ आई जानकारी साझा करने के लिए हमारी एक सखी कुसुम जी, आइए उनसे सुनते हैं उनके विचार स्वयं सहायता समूह के बारे में, कि स्वयं सहायता समूह किस तरह से सखियों की मदद करते हैं, किस तरह से स्वयं सहायता समूह का योगदान है।
1: मैं कुसुम सुकटिया से स्वयं सहायता समूह का योगदान के बारे में बताना चाह रही हूँ। महिलाओं के आर्थिक विकास के स्वयं सहायता समूह का बहुत ही योगदान रहता है, जिसमें कि औरतें सारा काम कर सकती हैं, अपने परिवार को सही तरह से चला सकती हैं, और विकास एवं स्वयं सहायता समूह की सहायता से गांव में सभी महिलाओं को सदस्य के रूप में 10 से 20 महिलाएं शामिल कर सकते हैं, जिससे कि स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत प्रतिदिन बैठक कर सकती हैं। अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत महिलाएं परिवार के अंतर्गत निरंतर बैठक करती हैं, जो कि अधिक बैठक करती हैं। महिलाएं आसपास एक दूसरे पर विश्वास करती हैं, दूसरों पर निर्भर रहती हैं, जिससे कि हम स्वयं सहायता समूह में औरतें अपना कुछ भी व्यवसाय खोल सकते हैं, जैसे कि कृषि पालन या मतलब मुर्गी पालन है, बकरी पालन है, जो भी है कर सकते हैं और समझा सकते हैं। स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत हमें अपने 3 पदाधिकारी की चुनौती करनी होती है, जिसमें अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष सचिव के द्वारा हमें बैठक लगानी होती है और अपने समूह को अच्छे तरह से चलाना होता है, जिसमें कि औरतें सब इकट्ठी होकर अपने बचत खाते और महीने में 40 रुपये या 50 रुपये बचत खाते में जमा कर सकती हैं। हमारा स्वयं सहायता समूह सही तरह से चल रहा है, जिसमें महिलाएं समय से 40 रुपये प्रति माह के रूप में जमा करती हैं और एक दूसरे की बात को मानती हैं। जो कि हमारा स्वयं सहायता समूह है, वो कोषाध्यक्ष दीदी के पास हम अपनी पैसा की नगदी इकट्ठा कर सकते हैं, जो कि खाते में तीनों के सहन के साथ जमा कर सकते हैं, और अध्यक्ष महिला का खाता खुलवाकर उसकी देखरेख करना व उसकी सही तरह से अध्यक्ष का सबसे बड़ा योगदान रहे। समूह को अच्छे तरह से चलाने की सारी जिम्मेदारी अध्यक्ष की होती है। समूह को द्वारा पंच सूत्र का भी पालन करना पड़ता है। सचिव का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है, जिसमें कि सचिव को खाते का संचालन करना पड़ता है। स्वयं सहायता समूह में महिलाओं के छोटे छोटे व्यवसाय को चलाने के लिए हमें धन व पैसा की जरूरत पड़ती है। स्वयं सहायता समूह के द्वारा ही हमें अपना कार्य करने का योगदान मिलता है, जिसमें कि हम अपना सारा कार्य लगा सकते हैं, बचत खाता करके अपना कार्य पूर्ण कर सकते हैं, व्यवसाय खोल सकते हैं। समूह की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि

0: दूसरे पर सहयोग देते हैं और अब अपना शुरू कार्य शुरू कर सकते हैं। स्वयं सहायता समूह का आमदन है कि जैसे अचार या पापड़ बनाना, हम अपने घर पे ही कोई कार्य कर सकते हैं और अपना सब औरतें इकट्ठा होकर अपना कोई बिजनेस खोल सकते हैं। स्वयं सहायता समूह में जैसे हस्तशिल्प में कार्य करना, हाथों वाली कढ़ाई करना, घर पे बैठकर ही स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अनेक रूपों में कार्य कर सकती हैं। समूह में लेन देन में ब्याज और मूलधन तो में वापस करना पड़ता है। समूह की पुस्तक सचिव के पास रखनी हो चाहिए। समूह का लगभग एक सामाजिक एवं आर्थिक वाले 10 से 20 गरीब ग्रामीण महिलाओं को जोड़कर स्वयं सहायता समूह का गठन किया जा सकता है। स्वयं सहायता समूह का 10 सप्ताह में हिसाब करना पड़ता है जो सीसीएल का पैसा कितना आता है। सीसीएल का पैसा 1.5 लाख आता है। 7,011 महीने में जमा करना पड़ता है और स्वयं सहायता समूह केवल आर्थिक विकास होता है जो बालिका सार के योजना प्राप्त होती रहती है। स्वयं सहायता समूह बैठक में महिला शिक्षा एवं स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देती हैं, जिसमें हमें अपने बच्चों और प्रत्येक औरतों के बीच में बात को रखना होता है, बैठक में समझाना होता है और स्वयं सहायता समूह को विभिन्न प्रकार एवं राज्य सरकार को स्वयं समूह सहायता चला रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, NRLM का माध्यम, CLF संकुलित स्तरीय संघ, 25-30 ग्राम संगठन अधिकतम करना पड़ता है। NRLM का उद्देश्य किया जाता है ग्रामीण परिवारों की गरीब महिलाओं के समूह को जोड़कर उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिससे कि वह अपना स्वयं रोजगार कर अपनी आजीविका का बड़ा मिशन बना सके, आत्मनिर्भर बन सके और जिससे उसकी आर्थिक स्थिति को सुधार सके। पंचसूत्र स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कि नियमित साप्ताहिक बैठक करना, अध्यक्षों कोषाध्यक्ष के बीच हमें वार्तालाप रखना और कि नियमित रूप से ऋण वापसी का लेखा जोखा और रजिस्टरों में उसका रख रखाव रखना।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य,
3: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: सखियों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? और साथ ही आप हमें बताइए, आपसे हमने पूछा था एक सवाल, उस सवाल का जवाब आपको हमें बताना था और हमारे पास जवाब आए हैं

दिनेश वर्मा जी का और करुणा वर्मा जी का रिंगनी छत्तीसगढ़ से, और साथ ही प्रवीण चौहान जी का, उन्होंने कहा है कि आनंदी बाई गोपाल राव जोशी भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। तो सखियो, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा अपने पत्रों के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। आज के कार्यक्रम का सफर बस यहीं। दीजिए अपनी सखी नूर फातिमा को इजाजत। नमस्कार।

श्रोतो, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नरसंसार। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम है आप सभी का प्रोग्राम युववाणी में आपकी आज की रेडियो हम सफर नेहा सिंह के साथ। दोस्तों, ये सब तो हम देख ही रहे हैं ना कि गर्मी अब डे बाय डे कितना तेज़ी से बढ़ रही है और हर साल गर्मी ज़्यादा ही होती जा रही है। और गर्मी के मौसम में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जो हम सब की लाइफ की बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट नीड है, वो है पानी। हर जीव जंतु पेड़ पौधों को पानी की आवश्यकता होती है और उनके बिना, पानी के बिना हम सबका जीवन पॉसिबल ही नहीं है। कई जगहों पर तो पीने लायक साफ पानी भी उपलब्ध नहीं, जिसके कारण कई सारी परेशानियों का उन सबको सामना करना पड़ता है। डे बाय डे जो पॉल्यूशन है और हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनका हम यूटिलाइजेशन है वो हद से ज़्यादा कर रहे हैं, जिसके कारण पानी भी जो है वो कम हो रहा है, साथ ही सूखा भी पड़ रहा है। और हर साल इसलिए 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1994 में 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण निवारण दिवस मनाने की घोषणा की थी। तब से ये दिवस हर साल आज के दिन मनाया जाता है, ताकि इस विषय के बारे में सामुदायिक जागरूकता बढ़ाई जा सके और विशेष रूप से गंभीर सूखे या मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण निवारण सम्मेलन को लागू किया जा सके। और वर्ष 2019 से हम इसे डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे के नाम से जानते हैं। और इस वर्ष की जो थीम है इस दिवस की, वो है रेंज लैंड्स रिकॉग्नाइज रिस्पेक्ट एंड रीस्टोर। श्रोताओं, अपने प्रोग्राम को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे, बट आज है युववाणी में प्यार की धुन म्यूजिकल सेगमेंट, तो चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, 100 बात की एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
1: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
2: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
3: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
4: तो कल है, ये लाइन हमने न जाने कितनी बार पढ़ी और सुनी है, बट क्या इस लाइन की इम्पोर्टेंस को हमने कभी समझा और अपनाया? शायद नहीं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रीति सिंह है, मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। आज हम जानेंगे आज के समय में सबसे ज़रूरी विषय के बारे में, जो जल संरक्षण है। पृथ्वी पर सभी के जीवन के अस्तित्व के लिए पानी आवश्यक है। हम खाने के बिना तो कुछ दिनों तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना 3 दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते। अगर हम सब आज के समय में वाटर कंजर्वेशन को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो हमारे आने वाली जनरेशन को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। वैसे तो 70% पार्ट ऑफ अर्थ पानी से घिरा हुआ है, जिस कारण पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, लेकिन इसका अधिकांश भाग समुद्र में है जो कि खारा है एंड पीने योग्य केवल 1% वाटर है। ऑन एन एवरेज पर डे एक इंसान को अप्रॉक्स 250-400 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है अपने दिन भर के काम से लेकर खाने पीने तक। एंड हम में से मोस्टली लोग इसी पानी को यूं ही बहा देते हैं, वेस्ट करते हैं। हमें तो जीवित रहने के लिए पानी की ज़रूरत है ही, साथ ही जीव जंतुओं पेड़ पौधों के लिए भी ये एसेंशियल है। अब से काफ़ी सदी पहले मनुष्य को ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जल पर्याप्त था, बट जैसे जैसे आबादी बढ़ी पानी की मांग भी बढ़ गई, जिससे आज 25% लोगों के पास फ्रेश वाटर पहुंचा ही नहीं। जहां काफ़ी लोगों को पानी इजीली मिल जाता है, कई लोग ऐसे भी हैं जिनको पानी लेने कुएं तक जाना पड़ता है या गवर्नमेंट वाटर टैंक के आने पर घंटों लाइन में लगना पड़ता है। कई बार तो सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाती है कि वर्षा होने का इंतज़ार करना पड़ता है समर्स में। पानी की कमी के कारण काफ़ी हैं, जैसे कि पहला, हमारे घरों और उद्योगों में पानी का ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करना। दूसरा, फैक्ट्रीज से निकला वेस्ट डायरेक्ट नदियों में जाता है जो फ्रेश वाटर को पल्यूट करता है और कृषि पर भी प्रभाव डालता है। तीसरा, ग्लोबल वार्मिंग। इसलिए पानी का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर ध्यान से करें और जल संरक्षण के तरीकों अपनाएं, जैसे कि बर्तन धोते टाइम, ब्रश शेविंग करते टाइम वाटर टैप तभी खोलें जब ज़रूरी हो, ना कि पूरा टाइम चलने दें। नल से पानी टपक रहा हो तो उसे ज़रूर ठीक करवाएं। नहाने के लिए शावर की जगह बाल्टी यूज़ करें। वॉशिंग मशीन डिश वॉशर का यूज़ कम से कम और तभी करें जब उसमें पूरा लोड हो। बारिश के पानी को इकट्ठा कर उसे आप बाद में पेड़ पौधों कार वॉश साफ़ सफाई के लिए यूज़ कर सकते हैं। कपड़े धोने के बाद बचा हुआ पानी घर में सफाई के लिए यूज़ कर सकते हैं। वाटर प्यूरीफायर फिल्टर से

पानी जो निकलता है उसको कलेक्ट कर आप अन्य कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वाटर कंजर्वेशन के तरीके तो अनेक हैं, बस उन्हें अपनाना ज़रूरी है और लोगों में जागरूकता लाना भी। एंड ये सब चीज़ें आप अपने घर के मेंबर्स, स्पेशली बच्चों को ज़रूर समझाएं। आजकल बच्चे खेलने के लिए वाटर टब, मिनी पूल्स घर में ले आते हैं, जिसमें ना जाने कितना पानी डालकर वो बस कुछ देर खेलने के लिए उसको वेस्ट कर देते हैं। एंड ये वो डेली बेसिस पर करते हैं। सो दूसरों को समझाने से पहले अपने घर में शुरुआत करें, खुद तो वाटर सेव करें, साथ ही अपने बच्चों को भी इसके फायदे के बारे में सिखाएं। जल हमारी मूलभूत आवश्यकता है, इसके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। जल हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है और इसका भंडार भी सीमित है, इसलिए इसका संरक्षण आवश्यक है। सो सेव वाटर, सेव लाइफ। थैंक यू फ्रेंड्स।

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: श्रोताओं, आज है बुधवार और हर बुधवार को होता है कार्यक्रम युववाणी में चक्रव्यूह, हमारे श्रोताओं की जनरल नॉलेज को थोड़ा बूस्ट अप करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि हम आज के लिए आपके लिए कौन कौन से सवाल लाए हैं। आज का पहला सवाल है कि भारत की पहली 8-लेन सुरंग जो जून 2026 में काफ़ी चर्चा में रही है, किस बाघ अभयारण्य के नीचे बनाई गई है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कृष्णा रिवर का जो ओरिजिन है वो कहाँ से होता है। साथ ही थर्ड क्वेश्चन ये है कि प्रिक्स वर्साइलीज 2026 द्वारा जारी दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों की सूची में 2026 में भारत के किन दो हवाई अड्डों को शामिल किया गया है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में हाल ही में लॉन्च की गई प्लूविक्टो दवा ये किस बीमारी के उपचार के लिए उपयोग की जा रही है। साथ ही जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि अमेरिका के किस शहर में भारत के वाणिज्य दूतावास में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि GI टैग प्राप्त करने वाला 52 बूटी साड़ी एंड फैब्रिक किस राज्य से संबंधित है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई दुनिया की पहली वर्किंग न्यूक्लियर क्लॉक किस एलिमेंट पर बेस्ड है। श्रोताओं, इनके जवाब आपको मिलेंगे अगले हफ्ते। और अब सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत।

श्रोताओं, आपको हमारा आज का सवाल याद है ना, जो हमने सोशल मीडिया के थ्रू पूछा था। हमारा आज का सवाल था कि गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, ये जो गुरु शिखर पर्वत है, ये राजस्थान में स्थित है। और हमारे आज के सवाल का जवाब मुकेश कश्यप, दिनेश वर्मा, सुमेंद्र यादव, विजय सुरालकर, उमेश कुमार गौड़, राजेश वर्मा व अन्य कई सारे लिसनर्स ने अपने कमेंट्स के थ्रू हमारे AIRFB बरेली के पेज पर बिल्कुल ही सही दिया है। वेल, कार्यक्रम का जो समय है ना, वो बहुत ही सीमित बचा है। तो प्यार की धुन म्यूजिकल सेगमेंट में सुनते हैं आज का आखिरी गीत।

श्वेता, अपनी रीडर फ्रेंड नेहा सिंह को दे अनुमति और कमेंट्स करके जरूर बताते रहें कि आपको हमारा युवानी कार्यक्रम कैसा है लगता है, और हमारे सवालों के जवाब भी ऐसे ही देते रहें। बाय बाय फ्रेंड्स, कल आपसे फिर से बातें होंगी इसी समय युवानी में, एंड टेक केयर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। और अब आप बोले चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली, सुनवाते हैं ICC वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत हेडिंगले लीड्स से भारत और नीदरलैंड के मध्य खेले जाने वाले मैच का आंखों देखा हाल।

0: का लीलाधर चोपड़े बात कर रहा हूँ कारंजा घाटी से।
1: जी एक बार फिर से आपका स्वागत है।
0: अब पहले मैच में तो हमारा परफॉर्मेंस इस तरह बात सही है, लेकिन हमारा जो पेस बॉलिंग का मसला है उसमें थोड़ा हम कहीं से भी कमजोर लग रहे बाकी टीमों से, और शेफाली वर्मा और जिमिमा रैडिक्स का जो फॉर्म है उसमें थोड़ी चिंताजनक बात है। तो इसके लिए क्या आविष्कार कार्यवाही इन दोनों पेस बॉलरों के लिए कुछ करेंगे, इसके ऊपर मेरा सवाल है।
1: जी धन्यवाद आपके सवाल के लिए। एक तो तब्दीली हो चुकी है, नंदिनी आई है, WPL में काफी प्रभावित किया था। उसके अलावा शेफाली का ये जो साल रहा है, पिछले साल बहुत कंसिस्टेंट थी T20s में, लेकिन इस साल कंसिस्टेंसी मिसिंग रही है।
2: ठीक है, बट शी इज अ प्रूवन कस्टमर, काफी रन बना चुकी है तो, एंड शी इज गॉट क्रेडिबिलिटी और बैकग्राउंड उनका जो है। क्रिकेट में ऐसा नहीं होता कि आप एक सीजन रन नहीं किया कि उसको बिठा दो, और ऐसा नहीं होता। सो कंसिस्टेंसी, द सिलेक्टर्स हैव शोन कंसिस्टेंसी, टीम मैनेजमेंट ने कंसिस्टेंसी दिखाई, एंड देयर आर सो मेनी मैचेस और क्रिकेटर्स नीड टू बी बैक्ड, स्पेशली समबडी लाइक शेफाली। दैट्स व्हाई द टॉस इज इंपॉर्टेंट। इंडिया गोइंग टू बैट बिग टेस्ट, बट अगेन एज हरमनप्रीत सेड, यू हैव टू स्टिक टू योर विकेट एंड प्ले टू द कंडीशंस।
3: एब्सोल्युटली। And coming back to Vaishali here, now Nandini Sharma will be seen in the ball in hand a little later. You mentioned 150, and you also mentioned that the spinners are the ones who are doing the talking here. So gone are the days where if you talk about England, it's the pacers who raise their collar up?
4: Maybe, but I can say ki यहाँ पे सबसे मेन है दोनों टीमें आज पहला मुकाबला खेल रही हैं T20 का, एंड इस मुकाबले को हम सेकंड मैच की तरह नहीं, एक जीत के मुकाबले की तरफ देखते हुए नज़र देख सकते हैं, क्योंकि हम दोनों टीमें एक दूसरे के प्लेयर्स को नहीं जानती हैं, ODIs में खेला है उन्होंने, बट ये मुकाबला बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड जितना स्कोर हमारे बैटर और पार्टनरशिप बनेगी वो हमारे आगे आने वाले मैच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो साउथ अफ्रीका टीम के साथ आने वाला है। तो यहाँ की पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, शेफाली वर्मा का बल्ला चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जेमिमा का भी बल्ला चलना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि अभी स्मृति का चल रहा है, क्योंकि पार्टनरशिप अगर बनती है तो ही रन आगे हमारे बढ़ते हैं और स्कोरबोर्ड पर दिखते हैं। तो ये अगर नंदिनी शर्मा की बात करें तो नंदिनी एक बहुत अच्छा चांस मिला है उनको खेलने का, और रेड्डी की जगह पे उनकी, अगर उनकी लास्ट मैच की अगर फील्डिंग की बात करें और बॉलिंग की बात करें तो वो उतनी खास रही नहीं एज़ कम्पेयर टू आप इंडियन टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड नंदिनी उस जगह को, उस स्थान को बखूबी निभाएंगी। और आज जिस तरह की पिच है तो देखा जाता है कि स्किट भी होता है इस बॉल, इस पिच पे, तो वो चीज़ देखने को भी मिल सकती है नंदिनी शर्मा से, एंड उसके साथ हमारी जो स्पिनर्स है वो लाइनअप जो है हमारे स्पिनर्स का वो काफ़ी अच्छा है, बॉलिंग स्ट्रेंथ हमारी बहुत अच्छी है, तो ये एक बेनिफिट है हमारी इंडियन टीम के लिए।
1: शेफाली ने पिछले मुकाबले में शुरुआत एक छक्के के साथ की थी, 3 डॉट बॉल खेला और उसके बाद अपना विकेट गवा दिया। हरमनप्रीत ने टॉस पे कहा था कि विकेट ऐसा है कि वक्त दे सकते हैं, विकेट को समझ के बड़े शॉट्स फिर खेलने की कोशिश कर सकते हैं। क्या शेफाली की तरफ से वो अप्रोच आप देखते हैं?
5: देखिए, शेफाली की गेम ऐसी है कि वो हर बॉल पे बड़ा शॉट मारने की कोशिश करती है, लेकिन अगर थोड़ा टिक के खेले तो शी कैन गेट ए वेरी बिग स्कोर टुडे।
1: जी बिल्कुल। और इस बीच हमारे साथ कुछ और कॉलर्स जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं, तो जल्दी ही बात करते हैं, लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, एंड वी टॉक्ड अबाउट स्मृति मानधना। इनफैक्ट इन द बिल्डअप टू द टूर्नामेंट सौमित्रो, स्मृति लुक लाइक स्ट्रगलिंग, बट स्मृति इज नेवर एक्चुअली स्ट्रगलिंग, बिकॉज वेन एवर इट्स बिग गेम्स स्मृति ब्रिंग्स हर ए गेम।
2: 100 most influential sportspersons in the world. Only 2 cricketers to find their place in Time magazine. Smriti Mandhana can never go wrong, right? अभी RCB को उसने tournament champion किया, एक बार नहीं दो बार किया, 17 centuries. You never question her credibility, right? Pedigree, credibility, and even last match she got runs, right? She's not that she's out of form. क्योंकि या शी इज अ परफेक्ट बैट्समैन टू टेक द इनिंग्स फॉरवर्ड। और देखिए, शेफाली वर्मा को तो हम बात कर रहे हैं कि उनकी ज़रूरत है उनको रन बनाना, कंडीशंस को फेस करना, जैसे कर्नल सेड, यू कांट हिट 6 इन एवरी बॉल, यू हैव टू प्ले द बॉल टू इट्स मेरिट। और देखिए, आई थिंक द डच हैव डन द राइट थिंग बाई चूजिंग एन एक्स्ट्रा पेसर, सो इट इज, दे आर गोइंग टू बी टेस्टेड, एंड इट्स गुड फॉर अस, गुड फॉर इंडिया, बिकॉज बिफोर यू नीड दिस काइंड ऑफ टेस्ट, you need this kind of competition to play the bigger matches.
3: Indeed. And Mr. Bhupendra, Colonel Bhupendra, we were mentioning that Yastika is also

0: करेंगे तो नेक्स्ट वर्ल्ड कप में हम ऑटोमेटिक क्वालिफाई करेंगे. सो दे हैव सेट रीजनेबल टारगेट्स, अचीवेबल टारगेट्स, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस डच प्लेयर्स. ऑल दिस प्लेयर्स हु कम टू प्ले, दे डोंट पुट अननेसेसरी स्ट्रेस कि इसको आउट करना है, इसको रन बनाना है, ऐसा नहीं है. दे कम टू एंजॉय. And that's the beauty of these teams.
1: And sometimes being an underdog does free you from all
0: absolutely
1: the other pressure that you might carry, absolutely. Isn't it? Isn't it like the car headlights then, Megha? It just shows you the next couple of feet, but that's what you need to see in order to reach your destination eventually.
0: And no high beam.
1: No high beam. Yes, no high beam.
2: Absolutely. एक और बात जो वो लगातार कह रहे हैं कि इंडियन टीम से इंस्पायर हुई है उनकी ये जर्नी और काफी सारी महिला क्रिकेटर्स के लिए वो खुद इंस्पिरेशन के तौर पर आती हैं. अब अगर हम बात करें वापस भारतीय टीम की और आज के 11 की, दीप्ति शर्मा जिस तरह से बल्लेबाजी में योगदान दिया, छोटा कैमियो ही खेला लेकिन ऋचा घोष के साथ वैशाली वो वहां पे साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण थी और उसके बाद तो 5 विकेट निकाले.
3: जी बिल्कुल, क्योंकि दीप्ति शर्मा एक सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर है इस टीम के अंदर हरमन के साथ, और एक एक्सपीरियंस प्लेयर का होना बहुत ज़रूरी होता है टीम के साथ, और उन्होंने वो दिखाया है कि एक एक्सपीरियंस प्लेयर की बॉलिंग किस वे में होती है. एंड उसके साथ अगर बात करूँ उनकी दूसरी विकेट की, तो उन्होंने जैसे आपने देखा होगा कि लास्ट मैच में उन्होंने स्वीप स्क्वेयर लेग रखा था और वहाँ पर स्मृति मंदना ने कैच किया था. दैट वॉज मतलब जो एक थॉट होता है वो उनका वो कम्प्लीट हुआ वहाँ पर, एंड वो माइंड में जो सोचती हैं वैसा वो अकॉर्डिंग टू फील्ड लगाती है और वही बॉल डालती है. ये एक एक्सपीरियंस प्लेयर की खासियत है जो हमने लास्ट मैच में देखा भी है, और मैं होप करूँगी कि आज के मैच में भी 5 नहीं उससे ज़्यादा विकेट ले. एंड उसके साथ साथ उनकी अगर बैटिंग की बात करें, उनका जो हमने इंटरव्यू सुना तो उसमें उन्होंने बोला कि हमारे जो कोच हैं उन्होंने बोला कि आपके लिए 5th नंबर ही अलाउ है बैटिंग का. एंड सी सेड मैं वहाँ पे रेडी हूँ, फिट हूँ वहाँ पे मैं खेलने के लिए. एंड उन्होंने वो शो भी किया.
2: शुरुआत की थी गुलफिरोजा के विकेट के साथ रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश उनके तरफ से, और उसके बाद आलिया को भी आउट किया था अपने अगले ही ओवर में. टॉकिंग अबाउट वॉकिंग दी टॉक, हरमनप्रीत कौर पिछले मुकाबले में जब पारी थोड़ी लड़खड़ाती भी नजर आ रही थी, 2 जल्दी विकेट गिर गए थे, तब पारी को संभाला स्मृति मंदना के साथ. 91 रन की साझेदारी हुई थी भूप वहां पर, और राणा बॉल ही खेल रही थी लेकिन उनका उस वक्त पे टिकना महत्वपूर्ण था.
4: या दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर एक विकेट और वहां गिर जाती तो हमारी टीम कुछ ज्यादा ही अंडर प्रेशर हो जाती. बट दोनों जो से हैं बिग मैच प्लेयर्स हैं और उन्होंने सिचुएशन को संभाला और अच्छा खेला. 91 रन्स की पार्टनरशिप, और उसके बाद फिर से 2-3 विकेट जल्दी गिरे, बट ऋचा घोष ने पूरी इनिंग फिर दोबारा संभाली और हमारे को एक बड़ा टारगेट की तरफ ले गई.
1: जी, और बात करें अगर स्मृति मंदना की तो फिर हल्की सी जो हलचल उठती है ना इधर उधर से, लोग बोलते जरूर हैं कि मे बी शी गेट्स फाउंड आउट व्हेन देयर इज एन ऑफ स्पिनर इन ऑपरेशन. क्या अभी ऐसा देखते हैं कि सीगर्स हो गई नेदरलैंड्स की तरफ से या फिर ओवरडाइक हो गई, कहीं ना कहीं एक चुनौती प्रदान कर सकती हैं?
0: क्यों नहीं, एनीथिंग इज पॉसिबल. You all you need are 10 good balls or 10 bad shots. So that, and in T20, the margin of error बहुत ही कम है. आपको तो चाहिए एक ही बॉल आउट करने के लिए, एंड व्हाई नॉट, इट्स गुड टू सी इंडियंस अंडर प्रेशर. अगर जितना प्रेशर डालिएगा नेक्स्ट मैच के लिए उतना प्रिपरेशन बेटर होगा. सी क्रिकेट इज आफ्टर ऑल अ माइंड गेम. यू कैन बी कॉम्प्लेसेंट, यू कैन बी ओवर कॉन्फिडेंट. एंड यू नो आई ऑलवेज से टीम्स लाइक नेदरलैंड्स लाइक द बनाना स्किन, की केला का छिलका आप कभी भी फिसल सकते हैं. और जैसे मैंने शुरुआत में कहा है कि केव वर्ल्ड फुटबॉल वर्ल्ड कप में जो हम एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, कुछ भी पॉसिबल है स्पोर्ट में.
4: लुक, दिस विकेट इज स्लाइटली ग्रीनिश, एंड व्हेन ए स्पिनर इज बॉलिंग इन द ओपनिंग ओवर्स द बॉल मे नॉट टर्न, इट विल गो, इट विल स्किड थ्रू, देयर इज अ चांस दैट इट कैन टेक ए आउटर एज एंड पर्सन कैन गेट कॉट इन द स्लिप्स.
3: एंड अभी आपने बात की रॉबिन की, अभी मैंने जो देखा है रॉबिन काफ़ी टाइम से बॉलिंग नहीं कर रही है, ऑफ स्पिन वो डालती हैं और वो काफ़ी टाइम से बॉलिंग नहीं कर रही है, तो हो सकता है कि इस मैच में भी वो ना बॉल डाले. क्योंकि एक रिदम में होना बहुत ज़रूरी होता है बॉलर के लिए, और वो अभी तक वो रिदम दिख नहीं रहा है क्योंकि वो काफ़ी लॉन्ग टाइम से बॉलिंग में नहीं है.
2: और यहाँ से पावर प्ले में क्या रणनीति निकल कर उतर सकती है भारत की टीम भूप, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, ग्रीन विकेट है, कप्तान ने कह दिया है कि थोड़ा संभल के समझ के खेलना होगा.
4: लुक, वी हैव टू बी केयरफुल इन द फर्स्ट 1 or 2 ओवर्स, एंड

0: not go totally defensive, try to score runs and put up a big score in the power play.
1: And do you have a number in mind? The big score?
0: Yeah, it'll be over 60.
1: Over 60?
0: Yeah.
1: And this is Shefali going bang bang from the word go.
0: Both players will score, and even if a wicket falls, the number 3 batsman will also go for runs. And it's going to be a biggest score. It'll be much more than 60.
2: So you don't need to go bang bang.
1: Okay.
2: What is 10? 10, when you say 60, is 10 per over? You need 2 boundaries and 2 singles. Then do we have to go bang bang? No. And it's not necessary ki pehla over se aap 10 12. See, the Dutch will come with a plan. When they select an additional fast bowler, obviously they'll have a plan. Or don't forget they're good fielders.
1: Correct.
2: Right? And fielding does matter. Ki aapko pata hai ki agar jaise maine pehle bola ki 10 gend chahiye aur 10 bad shots chahiye. So I think pedigree
1: जी.
2: Application, experience, जैसे आपने बोला कि हरमनप्रीत कैसे पकड़ के खेला, कैसे, if they don't do, a person is going to play 200 matches, international matches, if that person is not going to apply or herself as a skipper, then who will?
1: Right.
2: Right.
1: You want to lead from the front.
2: Yes. So application has to be the buzzword, the keyword, and the Dutch will definitely come out with the plan.
1: और इस ग्राउंड में अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो कैलिस उनकी तरफ से कई मैचेस खेल चुके हैं इसी ग्राउंड पे. शी वुड अंडरस्टैंड द एंगल्स बेटर. आपको लगता है उसमें जरूर मदद करेंगी वो कप्तान की कि फील्डर को यहाँ प्लेस कीजिएगा, यहाँ रन्स भी बच सकते हैं, कैचेस भी बन सकते हैं.
2: डेफिनेटली सी इंग्लिश कंडीशंस आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंडियन कंडीशंस और एल्सवेयर. बॉल विल स्विंग एंड इट्स ओवरकास्ट. इट्स टिपिकली समर इंग्लिश कंडीशंस. And Callis, I mean, you say Callis, it reminds me of another Callis who used to never, was not expressly fast.
1: Mm-hmm.
2: He would just bowl to the line and length and let the batsman make all the mistakes. That's why, as you said, I'm sure with her inputs, her captain Babbitt would definitely put the fielders at the right places.
3: And we've seen Babita, they lead. Being very inspirational throughout this journey of the Netherlands team. वापस भारतीय टीम पर आते हैं और जो बल्लेबाजी का क्रम है वो आप कैसे देखती हैं, क्योंकि यस्तिका भाटिया वापस आ गई हैं टीम में भारती फुलमल्ली के जगह पे और दीप्ति शर्मा को कहा गया है कि 5वें नंबर पर वो जनरली बल्लेबाजी करेंगी, तो क्या तब्दीलियां होंगी क्रम में?
4: मुझे लगता है जहां पर अभी देखा गया है कि जैमी फर्स्ट ही डाउन आएगी एंड सेकंड उसके बाद हरमनप्रीत कौर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आती है. अगर जैमी की पहले विकेट अगर गिर जाती है तो उसके बाद हरमन आएगी, अदरवाइज हमारे मुझे लगता है कि यस्तिका भाटिया आएगी. और अगर ओवर्स कम होंगे तो डेफिनेटली ऋचा घोष वहाँ पे आएंगी बैटिंग करने, क्योंकि वो टीम का एक्स फैक्टर है और वहाँ पर वो अगर जहाँ भी आती है वहाँ से वो रन कैलकुलेट करते हैं, तो वो सिंगल को डबल में कैलकुलेट करती है और डबल से वो फोर में कैलकुलेट होता है. तो ये एक बेनिफिट मिलेगा लास्ट के 4-5 ओवर्स में ऋचा घोष से हमें.
3: जी, और क्या यही बल्लेबाजी का क्रम आप भी देखते हैं?
0: लुक, इफ यू आर गोइंग टू प्ले Jastika Bhatia at number 5 or number 6, I think we are wasting her talent. If she has to play, she has to play number 3.
3: बिल्कुल. और इसके साथ ही हम यहाँ पर अपने चर्चा की समाप्ति के तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि मुकाबले की शुरुआत होने ही वाली है. तो जाने से पहले जल्दी से predictions लेते हुए चलते हैं. सौमित्रो, आपसे शुरुआत करते हैं.
2: 170,
3: not too dissimilar from the last game.
0: Oh yes, it'll be, score will be over 170.
4: नीदरलैंड के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास बनाने के लिए बहुत कुछ है. तो I'm thinking 180.
3: So it's broadly around 175 if we try and draw an average over here. Thanks a lot to each one of you for your analysis. And we shall now turn our attention to live action as the two Indian openers, Smriti Mandhana and Shefali Verma, are heading out into the middle. Would it be 170 or 180? We'll try and find that out over the next an hour and a half.
0: Thank you.
4: Thank you.
2: Thank you.
1: First ball, 20.

0: नमस्कार। हेडिंगले क्रिकेट स्टेडियम लीड्स लंदन में इस समय T20 विश्व कप, महिला विश्व कप के तहत भारत और नीदरलैंड्स के बीच मैच शुरू होने जा रहा है। दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज या बैटर्स जिनको हम कहते हैं बीच मैदान में पहुंच चुके हैं, सैफ अली वर्मा, स्मृति मंधना, दोनों ही बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्मृति मंधना ने पिछले मैच में एक शानदार अर्धशतक जमाया था और भारत को पाकिस्तान के विरुद्ध जीत में मदद मिली थी। जहां तक नीदरलैंड्स का सवाल है, नीदरलैंड्स की कप्तान ने आज बेवेट डिलीड जो विकेटकीपर भी हैं उन्होंने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने के बजाय उन्होंने सोचा कि वो एक टारगेट को चेज करेंगी और उन्होंने पहले भारत को मौका दिया है कि आइए आप बल्लेबाजी कीजिए, हम आपके विरुद्ध जो टारगेट है उसे पूरा करेंगे। नेपाल में जो क्वालिफायर्स खेला गया था महिला विश्व कप के लिए उसमें इन्होंने पहले किया आयरिस ज्वेलिंग जो 24 साल की हैं और दाएं हाथ की मध्यम गति की तेज़ गेंदबाजी करती हैं। 101 विकेट वो अब तक ले चुकी हैं। ज्वेलिंग बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रही हैं। हालांकि नीदरलैंड्स का ये पहला विश्व कप है, इससे पहले बांग्लादेश के विरुद्ध इनको पराजय का सामना करना पड़ा था। देखना है भारत जैसी सशक्त टीम जो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में महिलाओं की चैंपियन हैं इस समय तैयार हो रही हैं नीदरलैंड की गेंदबाज और सामना करने के लिए भारत की स्मृति मंधना बाएं हाथ की, दाएं हाथ से उनकी पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी और उस धीरे से पुश किया था वाइड स्मिडॉन की तरफ, लेकिन रन लेने का वहां पर कोई भी प्रयास नहीं किया। ज्वेलिंग जो मध्यम गति की तेज़ गेंदबाजी करती हैं इस समय तैयार हैं और जैसे जैसे हमको मौका मिलेगा हम आपको पूरी टीम का विवरण भी देंगे। फिलहाल क्योंकि मैच शुरू हो चुका है स्मृति मंधना तैयार हैं। एक बार फिर से उनकी गेंद लेग स्टंप के बाहर था, संभवतः वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से, एक अतिरिक्त रन तो भारत का खाता खुला एक अतिरिक्त रन के माध्यम से, वाइड के जरिए मिला है ये रन और अभी तक दोनों ही बल्लेबाज एक नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़ी हैं, सैफ अली वर्मा और स्मृति मंधना ने केवल एक गेंद अब तक खेली है और रन लेने का सिलसिला अभी उनका शुरू नहीं हुआ है। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, उसे पुल किया था, शॉर्ट आर्म पुल मिड विकेट बाउंड्री की तरफ बहुत तेजी के साथ गेंद को फील्ड किया और थ्रो किया, लेकिन इससे पहले बल्लेबाजों के पास इतना मौका था कि वो दो रन जुटा लें। भारत का स्कोर हो गया 3 रन बगैर किसी नुकसान के। नीदरलैंड्स ने टॉस जीता था, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। उन श्रोताओं की जानकारी के लिए जिन्होंने किसी कारणवश अपने रेडियो सेट्स कुछ देरी से खोले हैं, हम आपको बता दें कि भारत और नीदरलैंड्स के बीच ये मैच गेंद धीरे कुछ धीमी गेंद थी, अपनी रफ्तार पर थोड़ा नियंत्रण किया और गेंद को हवा में छोड़ दिया, स्विंग होने के लिए अंदर की तरफ आ रही थी गेंद, इन स्विंग गेंद बाएं हाथ के बैटर के लिए और स्मृति ने उसे सुरक्षात्मक तरीके से खेल दिया। नीदरलैंड और भारत के बीच T20 महिला विश्व कप का ये दूसरा मैच, ये गेंद फिर लेग स्टंप के बाहर थी और वाइड का इशारा एक बार फिर से अंपायर की तरफ से और एक रन और भारत के खाते में जुड़ा है। भारत का स्कोर हो गया 4 रन बगैर किसी नुकसान के। हेडिंगली का ये विकेट, जहाँ पर इससे पहले भी एक मैच हो चुका है, बादल मैदान में छाए हुए हैं लेकिन पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि बल्लेबाज इसमें कुछ बैन में। इस बार ओवर पिच गेंद थी, ड्राइव किया ऐसे और बहुत तेज़ी के साथ दौड़ते हुए दोनों ही बल्ले बैटर्स ने अपना छोर बदला, स्मृति के खाते में एक रन और जुड़ गया, 3 रन उनका कुल स्कोर हो गया, भारत का स्कोर हो गया 5 बगैर किसी नुकसान के। पहला ओवर चल रहा है, ज्वेलिंग जो कि बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज लंबे कद की खिलाड़ी हैं और पूरी तरह से प्रयास कर रही हैं कि विश्व चैंपियन भारत के विरुद्ध वो अपने आत्मविश्वास को समेटें और अच्छी नियंत्रण के साथ 94% उनकी गेंदबाजी में नियंत्रण रहता है उनका और देखना है ज्वेलिंग अपनी इस अगली ओवर गेंद में क्या कुछ कर पाती हैं। दाएं हाथ के ओवर द विकेट गेंदबाजी करने वाली, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, बैक फुट पे गए, कट किया उसे और डीप थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है 4 रन के लिए।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: ज्वेलिंग की ये गेंद जो कि ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ जा रही

0: पांच गेंदों का सामना किया। स्मृति मंधाना इस समय खेल रही हैं 12 रन के स्कोर पर और भारत का स्कोर 24 रन बगैर किसी नुकसान के। 2.1 ओवर का खेल अब तक पूरा हुआ है। भारतीय टीम जो इस मैच में खेल रही है हम आपको बहुत तेज़ी से बताएंगे इसके इस ओवर के बाद में। और एक बार फिर से ज्विलिंग दाएं हाथ से ओवर द विकेट, उनकी गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, बैकफुट पे गई और शॉर्ट कवर्स की पोजीशन पे गेंद को फील्ड कर लिया गया, कोई मौका नहीं रन लेने का। और एक बार फिर से ज्वेलिंग हल्के हल्के कदमों से अपने गेंदबाजी के रनअप की ओर आ रही हैं। स्मृति मानना, शैफाली वर्मा, यास्तिका भाटिया, जेमिमा रॉड्रिक्स, हरमनप्रीत कौर जो कप्तान हैं, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, श्रेयंका पाटिल, श्रीचरणी, क्रांति गौड़ और नंदिनी शर्मा इस समय भारतीय टीम में खेल रही हैं। ज्वेलिंग एक बार फिर से दाएं हाथ से उनकी गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, बैकफुट पर गई, ड्राइव किया स्क्वायर लेग की तरफ, लेकिन फील्डिंग वहां पर हो गई है। फील्डर खड़ी थी, बहुत तेजी के साथ उन्होंने गेंद पर झपट्टा मारते हुए फील्ड किया, लेकिन बल्लेबाजों के पास इतना समय था कि वो रन लेते हैं। भारत का स्कोर इसके साथ ही हो गया 25 रन। स्मृति का स्कोर है इस समय 13 रन और अब शैफाली वर्मा 10 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर सामना करने के लिए ज्वेलिंग की अगली गेंद का हल्के हल्के कदमों से दौड़ते हुए जा रही हैं। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद फिर से और धीरे से उसे प्लेस किया था डीप स्क्वायर लेग की तरफ, फील्डर हैं वहां पर, एक ही रन मिलेगा और एक रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाजों ने अपना अपना छोर बदला और शैफाली का स्कोर इसके साथ हो गया 11 रन। स्मृति अब सामना करने के लिए तैयार हो रही हैं 13 के व्यक्तिगत स्कोर पर। हालांकि पहली बार नीदरलैंड्स को इस विश्व कप में मौका मिला है, नेपाल में खेले गए क्वालिफायर्स में चौथी टीम के रूप में उन्होंने क्वालिफाई किया था और उनकी कप्तान इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि वो इस विश्व कप में भारत जैसी सशक्त टीम के सामने जो कि विश्व चैंपियन है एक दिनी क्रिकेट की, उनके सामने अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकें। ज्वेलिंग एक बार फिर से पांचवीं बार इस ओवर में आ रही हैं, दाएं हाथ से ओवर द विकेट, उनकी गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, फिर से अपनी जगह पर खड़े होकर वाइड मिड ऑन की पोजीशन की तरफ खेल दिया, रन लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। और स्मृति मंधना जो कि भारत की बेहतरीन बल्लेबाजों में शुमार है और इससे पहले पाकिस्तान के विरुद्ध बहुत ही शानदार अर्धशतक 68 रन उन्होंने बनाए थे, एक बार फिर से तैयार हो रही हैं ज्वेलिंग की अगली गेंद के। ओवर पिच गेंद थी, ड्राइव किया लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में, मिड ऑफ पे वहां पर केप खड़ी थी, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया और रन लेने का कोई सवाल नहीं उठा। तो इस समय ओवर समाप्त हो चुका है और भारत की टीम अभी भी कोई नुकसान उनको नहीं हुआ है, अच्छी तरह से खेल रही है। विश्वनाथ,
1: yeah, I think they're not looking very threatening. You know, they bowled very short on either side of the wicket. They're going to pitch the ball up. Leeds is a ground where it's going to assist the fast bowlers. There will be something for the bowlers. Pitch the ball up and make the bowler move around. But I tell you, June has been a significant month for sports lads all across. You've seen the French Open getting ended, Wimbledon to start the end of the month, and the World Cup football in place, T20 Women's World Cup going on, and of course plenty of cricket in test matches, also England playing New Zealand. I tell you, it's an amazing month, isn't it? The schools are open now. It's going to be a change in bowling as Vander Warning, she's replaced Seager. Seager's first over was a little expensive. She was bowling very friendly delivery. Smithy on 13, Shafali 11. She's the right-hander on strike, and it's none for 26 from 3. Up comes Vander Warning. Runs an early bowl, short, and she pulls away on the onset out through square leg. Didn't time it the way she wanted to do, and that ball is running away down towards the square leg fence for 4.
2: Ye laga, Abha ka choka.
1: Well, I like the delivery. Short ball climbing onto Shafali Varma, and boy, that was a very high bouncer, but she was never in control of that shot, but still just gets 4 more runs. So Shafali now, she's got only 2 gears to play, 1 or 5, and now she probably will get into an automatic mode. And the captain standing well back, D-lead. She's just 26 years of age, and I tell you, she's led the team by an example. She played well in the last game against Bangladesh. She got a half century. Here it is, 30 on the board. We are on the 4th over. The captain D-lead standing well back to the pace of Vander Warning. Up she comes now, fairly long run-up for a fast bowler, bowls, and she goes back and cuts the ball into the ground towards backward point, no run, and no wicket, for 30. So just looking at the last game.

0: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
1: PLI है ना?
2: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
3: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
4: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। आज ही रजिस्टर करें PMSooryaghar.gov.in पर।
7: घर सूर्य घर।
8: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में 930 कंप्यूटर ऑपरेटरों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा बेहतर सुरक्षा से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिली रफ्तार। नीट पुनर्परीक्षा के उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में मिलेगी 50% की छूट। मुख्यमंत्री ने जरूरतमंद उम्मीदवारों के लिए ठहरने की अस्थायी व्यवस्था करने के भी दिए निर्देश। बदायूं में सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, 3 घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने दुर्घटना पर जताया दुख। और लखनऊ में खेला जा रहा है भारत अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय मैच। टीम इंडिया ने जीत के लिए खड़ा किया 403 रनों का लक्ष्य। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोजगार के तहत आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा चयनित ग्रेड ए के 930 कंप्यूटर ऑपरेटरों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आप सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत विजन को बढ़ाने के सारथी हैं। श्री योगी ने कहा कि ड्यूटी के प्रति सजगता और हर कार्य में गंभीरता होनी चाहिए। ड्यूटी के दौरान रील बनाना अनुशासनहीनता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा के बेहतरीन वातावरण में अर्थव्यवस्था को गति मिली है। 9 वर्ष में यूपी की अर्थव्यवस्था तथा प्रति व्यक्ति आय 3 गुना से अधिक बढ़ी है।
9: हमने प्रदेश के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी लाने का कार्य किया भर्ती आयोगों में, बोर्डों में, उसके परिणाम आए हैं। हमने 9 लाख से अधिक तो केवल सरकारी नौकरी दी है। प्रदेश के अंदर सुरक्षा का जो वातावरण बना है, लाखों नौजवानों को उसके माध्यम से निवेश से और उद्योगों की संख्या, आप सोचो कि यूपी के अंदर कुल 14,000 बड़े कारखाने थे, कुल 14,000, इतनी बड़ी आबादी का राज्य। एमएसएमई लगभग बंद हो गया था। आज हमारे पास बड़े कारखानों की संख्या इन 9 वर्ष में 32,000 से अधिक हुई है।
8: प्रदेश में नीट पुनर्परीक्षा के उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा में लगभग 3.5 लाख उम्मीदवारों के शामिल होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि परीक्षा के लिए दूसरे जिलों में जाने वाले और वहां ठहरने के लिए स्थान की समस्या से जूझ रहे उम्मीदवारों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाए। इस संबंध में परिवहन निगम ने निर्देश जारी कर दिए हैं। किराए पर छूट की व्यवस्था 20 और 21 जून को लागू रहेगी। उधर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
10: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
8: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों को रेखांकित किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में रक्षा क्षेत्र में हुई प्रगति, आत्मनिर्भरता के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की पर भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी

0: आदित्यनाथ ने कहा कि सुरक्षित भारत ही विकसित भारत की आधारशिला है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में भारत ने सुरक्षा और सामरिक सामर्थ्य के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। इसी क्रम में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने वाराणसी में कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँच रहा है।
1: जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने बिना किसी भेदभाव के सबका साथ सबका विकास के तर्ज पर सबका साथ देने का काम किया है, इसलिए प्रधानमंत्री जी को और हम लोग दीर्घायु होने की कामना भी करते हैं, ताकि आने वाले भविष्य में जो प्रधानमंत्री जी का सोच है कि 2047 तक हमें विकसित राष्ट्र बनाना है, उसमें हमका योगदान हो सके।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के मौके पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के इस विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
3: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
2: वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आसान और सुविधाजनक पहुँच प्रदान कर रहा है।
4: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
2: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश सरकार ने राज्य में लगातार बढ़ रही गर्मी और हीट वेव की परिस्थितियों को देखते हुए बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि बढ़ाकर 24 जून तक कर दी है। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग पार्थ सारथी सेन शर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब प्रत्येक वर्ष 20 मई से 24 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा और 25 जून से विद्यालयों में नियमित पठन पाठन आरंभ होगा। एक रिपोर्ट।
5: नई व्यवस्था से पूरे प्रदेश में एक रूपता सुनिश्चित होगी और विद्यार्थियों, अभिभावकों तथा शिक्षकों को स्पष्ट शैक्षणिक कैलेंडर उपलब्ध हो सकेगा। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि विद्यालय खुलने से पहले सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली जाएं। अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 220 कार्य दिवस और नियमित पठन पाठन सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारियों को भी स्थानीय स्तर पर अवकाश घोषित करने से पूर्व इस विधिक प्रावधान को ध्यान में रखने के निर्देश दिए गए हैं। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: बदायूं जिले के थाना उजानी क्षेत्र में ग्राम बुटला के पास आज एक ट्रैक्टर और ई रिक्शा में हुई टक्कर में 6 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 3 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदायूं में हुई दुर्घटना में जान माल के नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और कहा कि उनकी सहानुभूति उन सभी के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे में हुई जनहानि पर गहरा शोक जताया है। लखनऊ में

भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में आज भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच खेला जा रहा है। शुभमन गिल और ईशान किशन के शतकों की बदौलत भारतीय टीम ने अफगानिस्तान के सामने जीत के लिए 403 रनों का लक्ष्य रखा है। समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 2 विकेट के नुकसान पर 86 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में 930 कंप्यूटर ऑपरेटरों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, बेहतर सुरक्षा से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिली रफ्तार। नीट पुनर्परीक्षा के उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में मिलेगी 50% की छूट। मुख्यमंत्री ने जरूरतमंद उम्मीदवारों के लिए ठहरने की अस्थायी व्यवस्था करने के भी दिए निर्देश। बदायूं में सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, 3 घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने दुर्घटना पर जताया दुख। और लखनऊ में खेला जा रहा है भारत अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय मैच। टीम इंडिया ने जीत के लिए खड़ा किया 403 रनों का लक्ष्य। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
1: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 104.4 एफएम पर। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन। इस कार्यक्रम में आज विषय है डायबिटीज और हृदय रोग में संबंध। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर आशीष शंखधार, आपसे बातचीत कर रहे हैं श्री गौरव कुमार। तो सुनते हैं ये कार्यक्रम।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक रोहेलखंड का आधुनिकतम सुपर स्पेशलिटी अस्पताल गंगाशील हॉस्पिटल डीडीपुरम बरेली।
3: मानसिक तनाव, अत्यधिक चिड़चिड़ापन, सोचते सोचते खो जाना, याददाश्त की कमी, परेशान रहना, रोज के कार्य करने में असक्षमता, मेंटल ट्रॉमा जैसी किसी भी समस्या में परामर्श एवं सुझाव करें गंगाशील अस्पताल के मानसिक रोग विभाग में डॉक्टर अभिलाषा गुप्ता से।
4: कैंसर के इलाज का अति आधुनिक अस्पताल,
2: गुर्दे और पेशाब संबंधी बीमारियों के इलाज की सभी सुविधाएं,
4: महिलाओं के बांझपन और जठरांत्र की सभी बीमारियों के इलाज की सुविधा,
2: स्किन अथवा त्वचा के रोगियों का संपूर्ण इलाज,
4: 24 घंटे इमरजेंसी सेवा,
2: आयुष्मान कार्ड धारक मरीजों के इलाज के लिए सरकार द्वारा अधिकृत अस्पताल गंगाशील हॉस्पिटल डीडीपुरम बरेली। इमरजेंसी सेवाओं के लिए डायल करें 8273254444।
5: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में। आज का विषय है डायबिटीज और हृदय रोग में संबंध, कारण, लक्षण और उपचार। और इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए आज उपस्थित हैं डॉक्टर आशीष शंखधार, गंगाचरण हॉस्पिटल सिविल लाइंस अपोजिट गांधी उद्यान। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
6: धन्यवाद गौरव जी फॉर इंट्रोडक्शन।
5: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो डायबिटीज है आजकल दिनों दिन बढ़ती जा रही है, एक समस्या का एक रूप ले चुकी है, तो सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि है क्या चीज़ ये
6: डायबिटीज, जिसको हम शुगर की बीमारी आम भाषा में बोलते हैं कि शुगर की बीमारी हो गई है। तो इसमें क्या रहता है कि दो तरीके की डायबिटीज हो सकती है। एक जन्मजात डायबिटीज, मतलब कि बॉडी इंसुलिन बना ही नहीं रही है, इंसुलिन जो कि हमारे ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है, तो उसको सेल के अंदर ले जाने के लिए जिससे कि ऊर्जा निकल पाए, ग्लूकोज जो कि एक बॉडी में जो एक करेंसी है, जो ऊर्जा की करेंसी है, उसका जो उपयोग हो पाए, वो इंसुलिन काम करता है। इंसुलिन ग्लूकोज को सेल के अंदर ले जाता है और उसके उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब अगर इंसुलिन, पहला टाइप हो गया कि इंसुलिन बन नहीं पाना, बहुत काफी इंसुलिन टाइप वन जिसको बोलते हैं, तो इसको पता लगाने में काफी देर हो सकती है, क्योंकि कई बार पेशेंट को पता ही नहीं होता है, बच्चा होता है, जब वो गंभीर रूप से कुछ बीमार होता है या गलती से उसका शुगर चेक कर लिया जाता है, पता चलता है डायबिटीज है, शुगर बढ़ी हुई मिलती है। दूसरा टाइप होता है जो कि ज्यादा कॉमन है, वो है जिसमें इंसुलिन तो है लेकिन इंसुलिन का रेसिस्टेंस हो गया है, जितने भी कोशिकाएं हैं शरीर में जहां पे इंसुलिन की जरूरत है वहां पे रेसिस्टेंस जाके हो गया, वो टाइप 2 डायबिटीज हो गई। वो हमारे पॉपुलेशन में ज्यादा

0: मिलती है, लोगों में ज़्यादा मिलती है। मुख्य कारण इसका ये है, बढ़ती हुई जो हमारी ओबेसिटी है, हमारे जो शिथिल दिनचर्या है, मतलब पहले घर से बच्चा निकलता था, साइकिल चलाता था, खेलता था, टहलता था, दौड़ता था, वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं, हम लोग मोबाइल में सीमित होते जा रहे हैं, तो ये डायबिटीज़ होने का एक मुख्य कारण है। तो ये डायबिटीज़ ही क्या, मोटापा बेसिकली,
1: जी जी
0: वो एक
1: बिल्कुल
0: मेटाबॉलिक सिंड्रोम नाम की चीज़ को जन्म देता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है? मेटाबॉलिक सिंड्रोम में मोटापा हो गया, हाइपरटेंशन हो गया मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ा रहना, डायबिटीज़ हो गया मतलब कि ग्लूकोज का गड़बड़
1: ग्लूकोज बढ़
0: होना,
1: जाना
0: और
1: बिल्कुल
0: तीसरी चीज़ है कि डिसलिपिडीमिया मतलब कि कोलेस्ट्रॉल का गड़बड़ हो जाना। तो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम के पार्ट होते हैं। डायबिटीज़ देखा जाए तो एक दीमक की तरह है,
1: बिल्कुल
0: डी फॉर डायबिटीज, डी फॉर दीमक, है ना? तो वो धीरे धीरे चट करता रहता है, बॉडी का कोई ऑर्गन नहीं है जो इससे अफेक्ट नहीं होता, शुरुआत में लोग ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा, एक और बड़ी भ्रांति की शुगर से क्या नुकसान है, बढ़ी हुई शुगर एक दीमक की तरह है, धीरे धीरे धीरे धीरे मारती है, लेकिन कम शुगर एकदम से मार देती है। कम शुगर होना ज़्यादा हानिकारक है बजाय ज़्यादा
1: ज्यादा
0: शुगर।
1: शुगर
0: दवा, एक जो फिजिशियन है आपका, वो एक ट्रेंड फिजिशियन होना चाहिए, वो अच्छा डॉक्टर होना चाहिए, नहीं तो जो उसकी दी हुई दवाइयाँ हैं उससे कई बार गांव में ऐसा देखा जाता है कि सोए थे उठे ही नहीं, क्या किया था, दवाई लेके आए थे। मेरे पास अभी मरीज आया, बोलता कि 3 दिन बेहोश रहे थे, एक गोली खा ली उसके बाद 3 दिन बेहोश रहे, डायबिटीज थी नहीं।
1: बिल्कुल।
0: तो ये एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है।
1: जैसे कि डॉक्टर साहब आपने बताया कि Type 1 तो बहुत रेयर केसेस में मिलती है कि वो जन्मजात होती है, लेकिन जैसे कि जो हमारे देश में भी जो कॉमन है वो Type 2 डायबिटीज है, तो इसके बेसिकली क्या लक्षण होते हैं और किस उम्र से ये दिखना शुरू हो जाती है?
0: आजकल तो देखा जाए तो काफ़ी कम उम्र से, इवन 25-30 साल के नौजवान भी आ रहे हैं डायबिटीज़, Type 2 डायबिटीज़ लेके। वैसे पहले होता था कि भाई 50, 55, 60 क्रॉस कर गए तब जो जीवन दिनचर्या है वो शिथिल होना शुरू हुई, बैठना, पहले जो घूमना फिरना कम हुआ, एक्सरसाइज कम हुई, तो उससे फिर डायबिटीज़ डेवलप हो गई। विद एज
1: बिल्कुल
0: भी कभी कभी डायबिटीज़ डेवलप हो जाती है। आपका अगला क्वेश्चन था कि लक्षण क्या हैं। लक्षण यह है कि एक मोटापा देख के ही अपने आप पे शक कर लेना चाहिए कहीं डायबिटीज़ तो नहीं है। दूसरा ये है कि इसमें पेशाब की मात्रा ज़्यादा होने लगती है कई लोगों में, देखा जाता है। अगर ये लंबे समय तक रहती है तो हाथों पैरों में झंझनाहट, सुन्नपन, ये सब रहने लगता है। और अगर हम जांच कराते हैं तो कई बार देखते हैं कि किडनीज भी इससे अफेक्ट हो गई हैं।
1: अफेक्ट।
0: इसके साथ साथ चूंकि डायबिटीज़ मेटाबॉलिक सिंड्रोम का पार्ट है, बॉडी के शिथिल होने से होता है, तो इन इनमें एक जुड़ी हुई चीज़ मिल जाती है, हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर का बढ़ा हुआ होना। और जब हम लिपिड प्रोफाइल कराते हैं मतलब कोलेस्ट्रॉल की जांच कराते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी गड़बड़ पाया जाता है। तो
1: बिल्कुल
0: ये सारी चीज़ें हो गई, तो ये डायबिटीज़ के जो लक्षण हैं और जो जाँचों में जो आता है वो हो गया।
1: तो इसके लिए जो आपने जांचें कराई हैं समय समय पर कराते रहना चाहिए, मुझे
0: कराते रहे,
1: लगता है
0: मेरे
1: कि
0: हिसाब से
1: बिल्कुल
0: 40 के बाद, 6 महीने, 1 साल पे जो जनरल जांचें हैं वो एक बार करा के देख लेना चाहिए, कोई बुराई नहीं है उसमें, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
1: अच्छा। इसका सामान्य तौर पर अगर कोई मरीज है डायबिटीज का तो उसे किस तरह की दवाएं हम लोग देते हैं?
0: सबसे पहले तो ये देखना होता है कि मरीज की शुगर है कितनी,
1: जी
0: खाली पेट कितनी है, भरे पेट कितनी है, मतलब खाना खाने के
1: बिल्कुल
0: दो घंटे
1: बिल्कुल
0: के
1: जी
0: बाद कितनी है शुगर, 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज देने के बाद हम देखते हैं पोस्ट प्रेंडल ग्लूकोज उसका कितना पहुंच रहा है। एक और जांच कराते हैं, उसको बोलते हैं HbA1c,
1: जी
0: मतलब कि
1: बिल्कुल
0: वो 3 महीने का रेड ब्लड सेल से जितना जुड़ गया है ग्लूकोज, उससे हम पता लगाते हैं कि क्योंकि रेड ब्लड सेल की खुद की आयु करीब 90 से 100 दिन होती है, 3 महीने का आप ये समझ लीजिए कि एवरेज शुगर उससे हमें अंदाजा हो जाता है, एवरेज शुगर इसकी कितनी रह रही होती है, उसी हिसाब से हम दवाइयाँ देते हैं। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं डायबिटीज़ की जो कि ब्लड शुगर को किसी भी सूरत में कम कर देती हैं, चाहे बढ़ा हो चाहे कम हो। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जब बढ़ा होता है तभी काम करती हैं, जब कम होता है तो काम नहीं करती हैं। तो हम शुरुआत मेनली ऐसी ड्रग से करना चाहिए जिसमें कि अगर मरीज से गलती भी हो जाए तो कम से कम एकदम से कम ना हो। तो देहातों में कई जगह देखा जाता है, स्पेशली मैं जब से बरेली आया हूँ तब से मैं देख रहा हूँ कि कई सारे लोग जो कि पेरिफेरी में प्रैक्टिस कर रहे हैं और यहाँ से बरेली में कहीं बैठ लिए थे, डॉक्टर के साथ बैठ लिए थे, उन्हें 2-4 दवाओं के नाम पता चल गया, मरीज़ उनके पास पहुँचा, उन्हें दे दी दवाई और मरीज़ बेहोश हो गया, कई बार डेथ देखी गई है।
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: डायबिटीज़ की दवाई लेने से किसी से भी दवाई नहीं लेनी है, या उन्होंने कहा कि हमारे चाचा की चल रही तो हम भी वही ले लें, ऐसा नहीं करना है ना। डॉक्टर से सलाह लें, थोड़े से पैसे हो सकता है ज़्यादा लग सकते हैं, अगर पैसे नहीं

0: तो सरकारी में भी
1: बिल्कुल जा सकते
0: जा
1: हैं।
0: सकते हैं, लेकिन डॉक्टर से ही, पढ़े लिखे डॉक्टर से ही लें, इतना दवाई ज्यादा महंगी होती देन कंसल्टेशन।
1: बिल्कुल बिल्कुल, कई बार देखने में आता है कि कुछ लोग बस एक बार चेक कराया और रेगुलर शुरू कर दी, उस चीज
0: शुरू
1: को
0: कर
1: ले रहे हैं,
0: दिया।
1: डायबिटीज की
0: हाँ,
1: दवाएं, वो चीज
0: पहले
1: रहती
0: पहले
1: है।
0: जब डायबिटीज की जैसे दवाइयां शुरुआत करते हैं तो कम से कम आपको डॉक्टर से 2 महीने तक लगातार संपर्क में रहना चाहिए। हर सप्ताह उसके पास जाएं। जो ग्लूकोमीटर है, डायबिटीज वाला पेशेंट अगर सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट कोई लाइफ टाइम कर सकता है वो ले कर सकता है 1,000 रुपए का ग्लूकोमीटर। ग्लूकोमीटर मतलब शुगर नापने वाली मशीन। अगर वो ले लेता है और खाना खाने से पहले और 2 घंटे बाद की शुगर का एक अपना मीटर बनाई है, एक चार्टिंग बनाई है, उस चार्टिंग के पास डॉक्टर के पास लेके पहुंच जाओ 5-7 दिन में
1: जी
0: कि भाई अब इतनी रह रही है डॉक्टर साहब, अब इतनी रह रही है, तो आपको वो डॉक्टर जो है वो एक सेट करके दे देगा आपको ये दवाइयां चलनी है। मरीज क्या करता है, उनसे दवाइयों से फायदा नहीं हुआ, उन्हें डॉक्टर चेंज कर दे, किसी और के पास पहुंचा, उसके पास भी चार्टिंग नहीं है, तो इसके चक्कर में शुगर कभी ठीक से हो नहीं पाती। एक और चीज देखने में आती है कि पिल बर्डन, पिल शेमिंग
1: जी
0: जिसको बोलते हैं, कि डॉक्टर उसे मरीज को पता लगा कि भाई जो दवाइयां हैं तो जीवन भर चलनी है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जीवन भर चलनी है। अगर डायबिटीज की शुरुआत हुई है तो रिवर्सिबल भी होती है। आप अगर शुगर का परहेज करते हैं, जो जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली जो चीज़ें हैं, डॉक्टर आपको बता देगा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ाने वाली चीज़ें कौन सी होती है जिससे शुगर एकदम से बढ़ जाती है, तो उन चीज़ों का परहेज करके, एक्सरसाइज करके, थोड़ी बहुत मेडिकेशन लेके डायबिटीज़ रिवर्स भी हो सकती है। हमेशा रिवर्स हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कभी कभी रिवर्स हो जाती है, कभी कभी रिवर्स नहीं हो पाती, तो दवाइयाँ लेनी बड़ी ज़रूरी हैं डायबिटीज़ के केस में।
1: अच्छा, जैसे ये कहा जाता है कि अगर माता पिता को डायबिटीज़ है तो ये माना जाता है 1.5 सवेर बच्चों में ये डायबिटीज़
0: दे आर
1: आएगी, कहाँ
0: 50%
1: तक?
0: चांसेस,
1: अच्छा, कोई 100% आप नहीं कह सकते
0: नॉट
1: कि
0: हंड्रेड
1: आना है
0: परसेंट
1: ना। अच्छा,
0: 50% चांसेस होते हैं डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज जो है वो उसको उनकी अगली पीढ़ी में जाने के।
1: और दूसरी चीज़ आपने एक अच्छी ये बताई है कि ये पूरी ज़रूरी नहीं है कि पूरी ज़िंदगी हम लोगों को ये दवा खानी पड़े, बीच में रोक
0: जरूरी
1: सकते
0: नहीं
1: हैं,
0: है,
1: ज़रूरी नहीं
0: ये
1: है ये
0: भी
1: चीज़
0: ये
1: में।
0: भी ये भी होता है कि, लेकिन चेक करना बहुत जरूरी है। अगर आपकी अभी अभी डायबिटीज की शुरुआत हुई है,
1: जी
0: कई सारे मेरे मरीज ऐसे हैं जिनमें अभी अभी डायबिटीज की शुरुआत हुई थी, उन्होंने अपना वजन कम कर लिया, एक्सरसाइज बढ़ा दी, खाने पीने में कंट्रोल कर लिया, दवाइयों से मुक्त हो गए, दवाइयां नहीं खानी। लेकिन अगर दवाइयां चल भी रही हैं, कोई दिमाग पे ऐसा लोड लेने की जरूरत नहीं है कि दवाइयां भाई एक बर्डन है, एक बहुत भाई आयुर्वेद की दवाई लेने में आदमी को कोई दिक्कत नहीं होती, उसे
1: बिल्कुल
0: लगता है कहां,
1: बिल्कुल
0: उसे लगता है कि एलोपैथ की दवाइयां नुकसान कर
1: नुकसान
0: जाएंगी,
1: करती हैं।
0: नुकसान कर जाएंगी। एक एक साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है, उसको लगता है जीवन भर दवाइयां। तो मैं ऐसे लोग को ये मैसेज देना चाहूंगा कि जब आप पैदा हुए थे तब अगर कोई बता देता कि जिंदा रहने के लिए 3 टाइम खाना खाना रहेगा, पूरी टाइम पूरा जीवन आपका इसी मेहनत में लग जाएगा कि 2 वक्त की रोटी कमा के खा लें, तो शायद पैदा होने से ही मना कर देते। तो अगर कुछ ऐसी चीज, ऐसी कुछ दवाइयां जो कि आपके जीवन को बेहतर बना सकते हैं, तो लेने में कोई हानि नहीं होगी।
1: अच्छा, केवल केवल अगर हम लोग आहार विहार चेंज कर लेते हैं, अपना बदलाव लाते हैं अपनी जीवनचर्या में, तो इससे हम लोग डायबिटीज से लंबे समय तक बच सकते हैं?
0: अगर हम अपने जीवनचर्या में सब, मैं 3 चीजें बताता हूँ कि 3 Ds, 3 D, ड्रग्स मतलब दवाइयाँ,
1: बिल्कुल
0: डाइट खाना, और डेली रूटीन, आपकी एक्सरसाइज, आपकी डेली रूटीन क्या है, एक प्रॉपर डेली रूटीन होनी चाहिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ रहनी चाहिए, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, साइकिलिंग वगैरह, जो तो कार्डियो एक्सरसाइज वगैरह ये सब करके, और अच्छी दिनचर्या करके, खाना एक पौष्टिक आहार लेके जिसमें फाइबर्स की मात्रा ज़्यादा हो वो करके, और अगर ज़रूरत पड़े तो दवाइयों का ज़रूरत पड़ती है तो उनको भी लेने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, ले लेना चाहिए।
1: अच्छा, देखने में आता है कि जब हम लोग, कोई व्यक्ति डायबिटीज का पेशेंट होता है तो उसके साथ साथ उसके अन्य अंगों पर भी प्रभाव पड़ने लगता है, उसमें एक हार्ट एक बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे कि कैसे?
0: डायबिटीज हार्ट को कई तरीके से प्रभावित करती है। अगर हार्ट की नसों को प्रभावित कर रही है, मतलब नस मतलब मैं अभी अभी वाले नस
1: जी
0: से मेरा
1: बिल्कुल
0: मतलब है हार्ट की जो तार है,
1: जी
0: तो वो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मतलब होता है कि हार्ट जो अपने आप चल रहा है तारों की वजह से, इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो है उसकी वजह से चल रहा है, वो नस खराब होती है तो कभी धड़कन बढ़ना है, एकदम से धड़कन
1: जी
0: बढ़ गई वैसे करके आ गया, या एक हार्ट, जब हार्ट पूरे जब जब से आप पैदा होते हो जब तक आप रहते हैं, जिंदा रहते हैं, तब तक हार्ट हमेशा धड़कने वाला ऑर्गन है। कब आराम कब करता है, वो उसी धड़कन में ही एक हार्ट का कॉन्ट्रेक्शन होता है, एक रिलैक्सेशन फेज होता है, तो रिलैक्सेशन फेज में वो डायस्टोलिक फेज में रिलैक्स कर लेता है।

0: डायबिटीज उस रिलैक्सेशन फेज में भी टांग अड़ा देती है, वो रिलैक्स भी ठीक से नहीं करने देती, तो उसके कारण हार्ट पे ज्यादा ताकत पड़ती है, हार्ट कमजोर होता है। एक और तरीके से जो वो है जो परेशान कर सकती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अगर बढ़ जाता है तब भी हार्ट के रिलैक्सेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। या फिर लास्ट में मैं आता हूं जो सबसे कॉमन देखने को आजकल मिल रहा है, वो है हार्ट में फैट का जमाव। फैट मतलब
1: कोलेस्ट्रॉल,
0: चर्बी,
1: चर्बी
0: चर्बी जिसको चर्बी बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, उसका जमावड़ा हो जाता है। तो वो जब अगर ये जमावड़ा हो जाता है तब ये फिर पेशेंट इस तरीके से आता है कि डॉक्टर साहब चलते थे पहले तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, अब जब चल रहे हैं तो सांस फूल रही है ना, सीढ़ियां पहले जल्दी जल्दी चढ़ जाते थे अब उतना जल्दी नहीं चढ़ पा रहे हैं, अब थोड़ा टाइम लग जाता है, आराम रुकना पड़ता है, फिर रुकते हैं फिर चलते हैं फिर ठीक हो जाता है। तो जब इस तरीके से पेशेंट, या फिर चलने में दर्द होता है, या तो सांस फूलता है, दर्द होता है, गैस लगती है, गैस को ज्यादा बनने लगी है, तो ये भी एक लक्षण हो सकता है। अच्छा, ये जो सिम्टम्स हैं ये 70% में देखे जाते हैं, 30% खासकर डायबिटीज वाले पेशेंट्स में साइलेंट हार्ट अटैक भी हो जाता है।
1: अच्छा।
0: कुछ नहीं हुआ और एकदम से हार्ट अटैक आ गया और पसीना वसीना आ गया, सांस फूल गई, तो उसको पता लगा कि
1: हार्ट अटैक है,
0: अस्पताल पहुंचे पता लगा हार्ट अटैक है। हर इंसान की कितनी उसकी मेडिकल रीच, कितनी कैसी जगह पर रह रहा है, उसके मेडिकल साइंस के लिए वो कितना अवेयर है, कितना जानकार है उसकी दवाइयों के, मतलब इलाज के लिए, बीमारी के लिए, हर चीज़ के लिए कितने जानकार है, उसके यहाँ से जो सुविधाएं हैं, मेडिकल सुविधाएं हैं, वो कितनी दूर है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसपे डिपेंड करता है कि अभी कौन किस मरीज को कौन बीमारी कैसे उसको प्रभावित करेगी।
1: जी, हार्ट हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है और मुझे लगता है कि हर किसी को, हम में से हर किसी को इसका ध्यान रखना चाहिए। तो हम डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे कि हमारे श्रोता भी जानें कि कौन सी इलाज होता है या जांचें होती हैं जो हम समय समय पर कराते चलें इस चीज़ को।
0: एक तो कोलेस्ट्रॉल की जैसे
1: जी
0: जाँच होगी, कोलेस्ट्रॉल की जाँच हम करा सकते हैं, HbA1c से डायबिटीज़ का हम स्टेटस पता लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको चलने में, जैसे बताया कि चलने में सांस फूलने लगी, तो एक TMT नाम की जांच होती है वो करवा सकते हैं। ECG इको में अगर हार्ट में नुकसान हो जाता है या फिर रिलैक्सेशन एबनॉर्मलिटी होती है वो पता लग सकती है हार्ट की। और अगर हार्ट अटैक पड़ गया है
1: जी
0: तो कहानी थोड़ी सी जल्दी हो जाती है, फिर तेजी से हमें निर्णय लेने होते हैं, तेजी से हमको डिसाइड करना रहता है कि अब हमको आगे क्या करना है, क्योंकि हार्ट अटैक पड़ने के बाद मतलब हार्ट अटैक में 100% जो है वो नस बंद हो गई, जो आर्टरी जो है ब्लड सप्लाई उसकी 100% कट ऑफ हो गई। उस कंडीशन में आपको तुरंत निर्णय लेना चाहिए और 2 घंटे का गोल्डन आवर होता है
1: जी।
0: लोग सोचते रह जाते हैं, 24 घंटे तक संभावना रहती है कि जो हार्ट की मांसपेशी है वो वापस आ जाएगी, जो भी खराब हुई है वो वापस आ सकती है अगर नस खोल दी जाए तो।
1: अच्छा।
0: नस 2 तरीके से खोली जा सकती है, एक थक्का पिघलाने वाली दवा होती है, दूसरा छल्ला डालने में, स्टेंट डालना पड़ता है। तो 2 तरीके से खोली जा सकती है। तो जिस भी तरीके से अगर तुरंत पहुंच गया तो बेस्ट होता है कि छल्ला डालना, अगर नहीं हो पा रहा है, लग रहा है कि टाइम लगेगा, तो उसको विद इन टाइम थ्रोम्बोलाइसिस कर दो, थक्का पिघलाने वाली दवा दे दो, एकदम से ठीक हो जाता है। तो जैसे भी रहता है कि डिसीजन फास्ट लेना होता है, अब मरीज को लगता है कहीं ठग ना लिए जाए,
1: बिल्कुल
0: है ना, ये बात दिमाग में आती कहीं डॉक्टर बेवकूफ तो नहीं बना रहा है ना, कई बार होता भी है। लेकिन तो इसके लिए मैं ये कहूंगा कि हार्ट की इमरजेंसीज के लिए अपने दिमाग में एक कार्डियोलॉजिस्ट सोच के रखो, आपका जांचा परखा कार्डियोलॉजिस्ट, जो उस टाइम पे वो जो कहे वो आपको ये ना लगे कि मेरे साथ चीट हो जाएगा, मेरे साथ कोई भी मुझे ठग लिया जाएगा, कुछ इस तरीके की फीलिंग ना आए, तो उस टाइम पे जो वो बोले वो मान लो और जो जांच बोले वो करवा लो, अच्छा रहता है। आपके साथ चीटिंग नहीं हो सकता खासकर कार्डियोलॉजी में, क्योंकि जो भी प्रोसीजर हो रहा है उसकी CD भी बन रही है, आप वो CD मांग सकते हैं।
1: अच्छा।
0: डॉक्टर से वो CD मांग सकते हैं, वो आप दूसरे डॉक्टर से पूछ सकते हैं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है ना। तो इसमें इतना सोचने की जरूरत नहीं होती, एक विश्वसनीय डॉक्टर इस पे आप विश्वास करते हो उस टाइम पे उस विपत्ति की घड़ी में वो जो बोले उसको हम मानना चाहिए और पहले से सोच के रखना चाहिए हमें किसके पास जाना है।
1: बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब आपने। जैसे एक और चीज आती है देखने में, जैसे जब हार्ट अटैक पड़ता है तो सामान्यतः पेन या जलन की स्थिति होती है, यही स्थिति तब भी आती है कि कई बार हम लोगों को जलन कुछ तीखा खा लिया या फिर कई बार कफ हो गया या किसी और कारण से सीने में दर्द होने लगता है, तो लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए हमें?

0: ये बड़ा अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपने बहुत मतलब गहरा क्वेश्चन पूछा है। देखिए, जो फूड पाइप है जिसको इजोफेगस बोलते हैं,
1: जी
0: वो हार्ट से एकदम लगा हुआ जा रहा है। मतलब दैट अगर आप पूछें कि हार्ट और इजोफेगस जो फूड पाइप है, खाने की नली है, उसके बीच डिफरेंस कितना है, तो मैं बोलूंगा जीरो।
1: अच्छा
0: बिल्कुल सटा हुआ जा रहा है, बिल्कुल सटा हुआ। इतना सटा हुआ होता है कि हम ट्रांस इजोफेजल जो इकोकार्डियोग्राफी करते हैं, दिल का अल्ट्रासाउंड जो नली डाल के मुंह में करते हैं, वो इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि उसके बीच दूरी जीरो है, हार्ट और उसके बीच।
1: बिल्कुल
0: अच्छा, हार्ट अटैक पड़ा, हार्ट जला, अटैक पड़ता है तो हार्ट में इन्फ्लेमेशन होती है, हार्ट में सूजन होती है। वो सूजन, हार्ट के पास कोई डायरेक्ट तार नहीं है बताने के लिए, जैसे हमारे त्वचा के पास डायरेक्ट तार है, त्वचा को आप छुओ पता लग जाएगा छुआ, उसमें कुछ चुभाओ तुरंत पता लग जाएगा चुभा है, कुछ काटो पता

0: कुछ हुआ, उसमें कुछ चुभा तुरंत पता लग जाएगा चुभा है, कुछ काटो पता लग जाएगा काटा है। तो जलन कटन चुभन जो भी जितनी भी चीजें, हार्ट बेचारा उसके पास कोई डायरेक्ट सप्लाई है ही नहीं। वो इस तरीके से पुराने जमाने में जब फोन आता था तो पड़ोसी के घर पे जाते थे, वो कहते थे कि भाई फलानी जगह कांटेक्ट करना है। हार्ट भी अपने आसपास के स्ट्रक्चर को जला जला के इन्फ्लेमेशन दे के तमाम तरीके बताने की कोशिश करता है। अगर हार्ट की पीछे वाली आर्टरी में, पीछे वाली जो नस है जो कि फूड पाइप से एकदम लगी हुई, वहां पर जब जलन होती है, वो जब नस बंद होती है वहां की मांसपेशी जली, तो फूड पाइप को उसने बताया, फूड पाइप में भी जलन लगी। ये जलन बिल्कुल वैसी होती है जैसी
1: हार्ट की
0: गैस्ट्राइटिस, मतलब कुछ जब गैस बनती है तो गैस जैसी सिम्टम्स। लेकिन गैस के सिम्टम गैस की गोली खाने पे खत्म हो जाते हैं, इसके सिम्टम गैस की गोली खाने पे खत्म नहीं होते। दो दो गोली खा ली, आराम ही नहीं हो रहा। फिर जब उसको पसीना सीना आना शुरू होता है, ठंडा होना शुरू होता है, तब उसको लगता है चक्कर आना शुरू होता है, सांस फूलती है, तब वो आता है डॉक्टर के पास।
1: गैस कई दिनों तक भी चल सकती है,
0: ये गैस कभी कभी दो दिन तक गैस ही नहीं जा रही। तो मेरे हिसाब से ओवर डायग्नोसिस और ओवर ट्रीटमेंट इज बेटर देन अंडर डायग्नोसिस और अंडर ट्रीटमेंट। मतलब कि ज्यादा जांच कराना, और हर आदमी के, ये एक कटु सत्य है, कहने में बुरा है, लेकिन हर आदमी के जीवन की वैल्यू अलग अलग है। जो बिलियनियर्स हैं उनकी जीवन की वैल्यू
1: बिल्कुल
0: अलग है, एक आम आदमी, एक गरीब आदमी, एक मजदूर वर्ग, उसके जीवन की वैल्यू अलग है। कहने में बुरा है लेकिन कहीं ना कहीं सत्य
1: सच भी
0: है। तो आप का जो फाइनेंशियल स्टेटस है, या आपके अगर फाइनेंशियल स्टेटस नहीं भी है तो आयुष्मान कार्ड बना रहा, आपकी जागरूकता इस समय, आज के टाइम पे सरकार ने इतनी अच्छी चीज बता दी है आयुष्मान। अब आयुष्मान सारे अस्पतालों में एक्सेप्टेड नहीं है, आयुष्मान के थ्रू फ्री इलाज होता है और जो भी उचित उपचार होगा वो आपका वहां पे कर दिया जाएगा आयुष्मान कार्ड के थ्रू।
1: जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे श्रोताओं की तरफ से आपको। और एक प्रश्न बुजुर्गों की तरफ से ये है कि जैसे डायबिटीज जो होते हैं पेशेंट हैं, इसके अलावा ये हार्ट के जो पेशेंट होते हैं उन्हें नॉर्मली डॉक्टर बताते हैं कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, थोड़ा सा एक्टिव रहना चाहिए, लेकिन चूंकि एक उम्र एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि वो लोग चल फिर नहीं पाते उतना, चूंकि घुटने काम नहीं करते, आर्थराइटिस की भी दिक्कतें आती हैं, तो ऐसे में उनका क्या परहेज करना चाहिए, उन्हें किस तरह जीवन
0: शैली। मेरे हिसाब से सबसे सारी बीमारियों की जो जड़ स्टार्ट होती है वो होती है आपके मोटे होने से।
1: जी
0: अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो आप कम खा तो सकते हैं, कम भी मत खाइए। खाने की शुरुआत सलाद से करिए, एक प्लेट सलाद आप पहले खाइए। एक और इम्पोर्टेंट मैं टिप बताता हूँ, स्टमक से मतलब आमाशय से ब्रेन तक सिग्नल जाने में 20 मिनट का टाइम लगता है। पुराने बुजुर्ग कहते थे कि 32 बार चबाओ, 32 बार चबा के देखो बोर हो जाओगे। उनको ये बात पता थी कि जब 32 बार चबाओगे तो टाइम वेस्ट होगा, धीरे धीरे सिग्नल जाएगा ब्रेन तक कि पेट भर गया है ना। तो जल्दी ये सिग्नल आप खाओगे कम और सिग्नल पहुंच जाएगा कि पेट भर गया है। जल्दी जल्दी खाने वाले जल्दी मोटे होते हैं, जो स्लो खाते हैं सलाद से स्टार्ट करो, जिसमें सिर्फ फाइबर से कोई कैलरी है ही नहीं, सलाद से स्टार्ट करो, थोड़ा सा खाया, धीरे धीरे खाया, मोटे होंगे नहीं। अगर मोटे नहीं हो रहे हैं तो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट की डिजीज, सारी जड़ें ही खत्म। कहा पुराने एक हमारे मेडिकल साइंस में कहावत है, अच्छा डॉक्टर वो है जो मरीज की बीमारी सही कर दे, और सबसे अच्छा डॉक्टर वो है जो मरीज की बीमारी को होने ही ना दे। तो आज का जो मेन मैसेज ये है कि कम खाइए, मोटे मत होइए, और जितनी भी बीमारी मैंने अभी बताई यहां तक पहुंचोगे ही नहीं।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, और चलते चलते एक आपसे अपेक्षा है, एक संदेश हमारे श्रोताओं के लिए जो स्वस्थ रहने के लिए, कि हार्ट और बाकी पूरे मतलब शरीर के लिए स्वस्थ रहने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे एक आप?
0: संदेश एक नहीं दो है।
1: बिल्कुल दीजिए।
0: पहला संदेश तो ये है कि ड्रग्स, डाइट, डेली रूटीन, 3 D's है ना। आप अपने दिनचर्या को व्यवस्थित रखिए, डाइट जितना कम हो पाए। एक जापान में एक आइलैंड है ओकिगावा, वहाँ पे एवरेज लाइफ 100 years है ना। तो वो दिन भर में 1000 calorie लेते हैं। तो डाइट कम रखिए, कम खाएंगे कम बीमारी होगी आपको, और अगर ज़रूरत पड़े तो दवाइयों का सहारा ले लें। 3 D's पहला संदेश। दूसरा है इंश्योरेंस या आयुष्मान करवा के रखें। मैं ये हर बार बोलता हूँ, सबसे विपत्ति में साथ देने वाली चीज़ एक ये इंश्योरेंस, अगर या तो आपका इंश्योरेंस हो या आपकी आयुष्मान हो।
1: तो ये था हमारा आज का एपिसोड, और हमारे साथ उपस्थित थे डॉक्टर आशीष संगदार जी। और डॉक्टर साहब आप हमारे स्टूडियो में

0: हमारे श्रोताओं को बहुत बहुमूल्य जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक रोहेलखंड का आधुनिकतम सुपर स्पेशलिटी अस्पताल गंगाशील हॉस्पिटल दीदीपुरम बरेली।
3: मानसिक तनाव, अत्यधिक चिड़चिड़ापन, सोचते सोचते खो जाना, याददाश्त की कमी, परेशान रहना, रोज के कार्य करने में असक्षमता, मेंटल ट्रॉमा जैसी किसी भी समस्या में परामर्श एवं सुझाव करें गंगाशील अस्पताल के मानसिक रोग विभाग में डॉक्टर अभिलाषा गुप्ता से।
4: कैंसर के इलाज का अत्याधुनिक अस्पताल,
2: गुर्दे और पेशाब संबंधी बीमारियों के इलाज की सभी सुविधाएं,
4: महिलाओं के बाँझपन और जठरांत्र की सभी बीमारियों के इलाज की सुविधा,
2: स्किन अथवा त्वचा के रोगियों का संपूर्ण इलाज,
4: 24 घंटे इमरजेंसी सेवा,
2: आयुष्मान कार्ड धारक मरीजों के इलाज के लिए सरकार द्वारा अधिकृत अस्पताल गंगाशील हॉस्पिटल दीदीपुरम बरेली। इमरजेंसी सेवाओं के लिए डायल करें 8273254444।
5: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन। इस कार्यक्रम में आज विषय था डायबिटीज और हृदय रोग में संबंध, कारण, लक्षण और उपचार। डॉक्टर आशीष शंगदार से बातचीत कर रहे थे गौरव सक्सेना जी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से प्रसारित किया गया।
6: ये आकाशवाणी, अब आप संजय मिश्रा से दिल का हाल सुन। दिल का हाल ये है कि आकाशवाणी बरेली का स्थापना दिन है और मैं आकाशवाणी की तरफ से, अपनी तरफ से उन तमाम आकाशवाणी सुनने वालों को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू, सुनते रहिए, आकाशवाणी हमारा है, हमको इसे बताना है। थैंक यू बरेली।
7: मैं गंगा सिंह रावत, रामपुर और हल्द्वानी से आकाशवाणी बरेली को उसकी स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आकाशवाणी बरेली के प्रारंभिक दिनों से, जब से इस केंद्र की शुरुआत हुई, मैं इससे बतौर श्रोता जुड़ा रहा हूं और आज भी जुड़ा हुआ हूं। पहले रेडियो के माध्यम से प्रोग्राम सुना करते थे, आजकल ऐप के माध्यम से प्रसारण सुनाई दे रहा है, काफ़ी साफ सुनाई देता है। बरेली के सारे उद्घोषक बहुत मेहनती हैं, कर्मठ हैं और बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, जिसकी वजह से मैं ही नहीं, कई श्रोता भारत से भी और भारत के बाहर से भी बहुत सारे श्रोता इससे जुड़े हुए हैं। मैं नाम लेना चाहूँगा उद्घोषक देवेंद्र रावत जी का, जो बहुत अच्छी प्रस्तुति देते हैं, जिनकी आवाज़ में काफ़ी मिठास है। इसके अलावा परवेज भाई, शिप्रा, अमृता जी और हरीश भाई बहुत अच्छे उद्घोषक हैं, जिनकी प्रस्तुति बहुत शानदार होती है। मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा युवाओं का, जो कार्यक्रम आता है 6:30 बजे युवाणी, वो भी बहुत रोचक होता है, जिसमें भेंट वार्ताओं के साथ साथ जो मुलाकात की जाती है हमारे युवा श्रोता से, एंटरप्रेन्योर से, वो बहुत अच्छी होती है, ज्ञानवर्धक, रोचक और प्रेरक होती है। तो जो संगीत के कार्यक्रम हैं, फरमाइशी कार्यक्रम हैं, सोशल मीडिया ऐप के जरिए हम अपनी फरमाइश भेजते हैं, पूरी भी होती है, और कई विचारोत्तेजक कार्यक्रम हैं जिसमें श्रोता अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, सभी बहुत अच्छे हैं। तो पुनः मैं आकाशवाणी बरेली को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। धन्यवाद।

हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 104.4 FM पर। आइए एक बार फिर आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र सुनवाते हैं ICC T20 वुमेन 2026 के अंतर्गत हिडिंगले लीड से भारत और नीदरलैंड के मध्य खेले जाने वाले मैच का आंखों देखा हाल।

0: And finally she sends a return back to the wicketkeeper. 1 for 122 from 12.1 overs, and India heading towards a massive score. The, I think she had a nasty bounce coming up because of the, there was a hole dug over there, maybe a yard or two in front of her, and it just bounced on her. And luckily it was a nasty one. So Jemima, she's coming now, ball, face the first ball. She gets a tick outside edge and trying to work the ball on the offside, daps it in front of back for a square, no run. And India remain at 1 for 122. Mandana 47 from 34, and Jemima 6 from 3. And we've seen a large contingent of Indian followers, and a lot of followers from the Netherlands too. Sieges with a round arm action comes in bowls, and it's worked away on the onside, and they probably will settle for a single, not more than that. I feel Sieges has been the best of these bowlers in this Dutch side, and it's very tough to read their action, isn't it? When I look at someone like the other spinner, which is Heath Sieges, she remembers me of Paul Adams from South Africa. She's got that kind of an action. So it's that, I'm sure with a lot of data and video available, the Indian team, the Think Time team, would have done a lot of work in studying their action and playing them. But some of the actions, very tough to read, as Malinga, isn't it, with that slinging action. And you see a lot of this coming up in the IPL game. Next ball, short, and she pulls it away on the onside down towards deep mid-wicket. Just a single. Mandana up to 48 from 35. It's 1 for 124. I probably felt Richa Go should have been sent in now, because she's another dominating, right-hander. And I would love to see her, she can score this one so quickly. She's a powerful lady indeed, and a very strong match winner for many, many matches for India. Next ball, short, hammered away on the onside out towards deep mid-wicket. And it's one of those irritating pace for any batter to battle. So they're just coming on to you very slowly, half crackers, and you find it very tough to hit it or smash it to any part of the ground. And single pushes India up to 125, a run rate almost touching 10 and over. Well, they're doing well now. So we're just looking at the centurion. There's been one centurion in this game. 1 for 120. Next ball, Smithy comes down, gets it high over extra court. This is running down towards the fence. Will it go for four? And that's a great save indeed. She'll get a couple of runs for sure. And she gets to her 50 indeed. 50 from 36 as the Indian team stands up in the dugout, appreciating another half century. 35th 50. Manoj Kumar's decision is bang on. 30 never scored. 1 for 127.
1: स्मृति रानी का ये बहुत स्मृति मंधाना का बहुत ही शानदार प्रदर्शन इस समय 50 रन वो बना चुकी हैं और जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत की ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में स्मृति मंधाना का एक विशिष्ट स्थान है उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की है और जिस तरह से वो खेल रही हैं आज लगता है कि वो कभी बड़ा स्कोर करने की ओर बढ़ रही हैं हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है यहाँ किसी भी पल परिस्थितियाँ बदल जाती हैं शैफाली वर्मा बहुत ही आक्रामक तरीके से खेल रही थी लेकिन एक ही गेंद आउट होने के लिए काफ़ी होती है और इस तरह से शैफ अली ने अर्धशतक जमाया भारतीय के इन दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाजों ने आज बहुत अच्छा स्कोर यहां पर खड़ा किया एक ऐसा मजबूत आधार बना दिया है कि आने वाली टीम के खिलाड़ी इसको और अधिक मजबूत कर सकेंगे 127 रन एक विकेट के नुकसान पर इस समय भारत का स्कोर स्मृति खेल रही है 50 पर जेमिमा रॉड्रिक्स खेल रही हैं 8 रन के स्कोर पर 5 गेंदों का उन्होंने सामना किया है ओवर डिस्क अब गेंदबाजी करने के लिए आ रही हैं दाएं हाथ की इनकी गेंद अपस्ट्रम के बाहर गेंद को कट किया था कवर और कवर पॉइंट की तरफ पर इस समय फील्डर के हाथ में जाती तब तक बहुत तेजी के साथ दौड़ते हुए बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए और भारत का स्कोर इसके साथ ही बढ़कर हो गया 129 रन एक विकेट के नुकसान पर ओवर डिस्क इस समय गेंदबाजी का जिम्मा संभाल रही हैं स्पिन गेंदबाजी पर ज़्यादा भरोसा नीदरलैंड की टीम को नीदरलैंड्स की टीम जो कि पहली बार विश्व कप में अपना पदार्पण किया है नेपाल में खेले गए क्वालिफायर्स में उन्होंने अपने आप को इस योग्य बनाया इस बीच गेंद थोड़ी हवा में थी मिडॉन की तरफ लेकिन फील्डर बहुत पीछे खड़ी थी रन लेने का मौका दिया पूरा उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को स्मृति का स्कोर 50 रन अभी भी 36 गेंदें उन्होंने खेली हैं और जेमिमा का स्कोर हो गया 11 रन इस एक रन के साथ 130 रन एक विकेट के नुकसान पर इस समय भारत का स्कोर 9.75 के औसत से रन आ रहे हैं और काफ़ी मजबूत कहा जा सकता है एक आधार भारत ने रख दिया है और लगता है कि भारत नीदरलैंड्स के

0: विरुद्ध काफी मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए एक बड़ा स्कोर करने की ओर कदम बढ़ा रही है भारतीय महिला टीम, और देखना है कि किस तरह से ये राउंड द विकेट्स मारे आते हुए गेंद को ड्राइव किया है। हवा में थी गेंद, फील्डर के पास पहले टप्पे के साथ आई और बहुत तेजी के साथ दौड़ते हुए एक ही रन मिलेगा, 51 रन स्मृति मंधाना का स्कोर हो गया। इसके साथ ही 131 रन भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर। हेडिंग लेके इस क्रिकेट ग्राउंड में जहां 17,000 की क्षमता है, दर्शक क्षमता काफ़ी बड़ी संख्या में लोग और यहाँ पर महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में दिखाई दे रही हैं। इस बीच शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद, गेंद को लपेट के मारा है ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी, गेंद को मारा है ऑन साइड में जेमी माने, लेकिन एक ही रन उनको मिलेगा, 12 रन उनका व्यक्तिगत स्कोर हो गया। 132 रन एक विकेट के नुकसान पर भारत का स्कोर। 13.4 ओवर्स का खेल हो चुका है, और एक बार फिर से उन श्रोताओं को बताएं कि भारत ने जिस गति से रन बनाए हैं 9.66 रन प्रति ओवर उनकी। और इस बीच गेंद को ड्राइव किया है स्मृति ने, लेकिन पूरी तरह से कनेक्ट नहीं कर पाई थी, और अब जाके गेंद को फील्ड किया, एक ही रन मिलेगा उनको। स्मृति मंधाना का स्कोर इस समय 52 रन 38 गेंदों का सामना करने के लिए के बाद, और इस समय बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये 10वां संस्करण महिला T20 विश्व कप का। ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम जिसने सर्वाधिक बार इस टूर्नामेंट में अपना प्रदर्शन किया है, विश्वनाथ।
1: Well, the Australians have been the most dominant team in this World Cup so far.
0: ओवर डिस्क का ये आखिरी गेंद थी, उनके शॉट ऑफ लाइन गेंद थी, गेंद को मारा है बाउंड्री डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए।
2: ये लगा आभा का चौका।
0: 137 रन 14 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर, विश्वनाथ।
1: Well, I think, you know, if they don't hit 200 in this game, I'll be disappointed. So, I'm sure they're just scoring at almost 10 an hour. And it's one of those games where you probably, as a batter, if you're not found form, you can find form, because some of the bowling effort from Netherlands has been too friendly, and bowled a lot of half crackers, the spinners, and the fast bowlers unfortunately couldn't find the rhythm, and it's been so far India's way, and I think there's a break on going on actually as such. And if you just switched on your radio sets, what's the reason here? Netherlands won the toss and they preferred to bat second, and both the openers got half century, and Mandana continues a good form where she left against Pakistan, and the 50-50 World Cup champions now will find a great opportunity to break the jinx and then take over this World Cup. It's not so easy, but I think, you know, it's another World Cup where I feel 3 or 4 teams are very strong in contention, including I probably will say England, because England are playing the home soil. Then we got Australia, of course. India is also a strong contender, and on the other side, if you look at we've not seen much surprises in this World Cup in terms of lesser known opponents beating higher ranked teams. Though Bangladesh probably had a bit of a tough time against Netherlands in the first game on last Sunday. But I think Netherlands, I see a lot of promise in this Netherlands side. They got some good, serious talent. And just to tell you about this Dutch girls, you know, when they were playing the tri-series a couple of months before, most of them were flying in and out of Netherlands to finish their exams. So, which is quite extraordinary, isn't it? And the love for the game continues, no doubts. So in the last game against Bangladesh, their first World Cup match, they scored 139 for 8, and Bangladesh chased it in the last over, 19.1 overs. But D lead was wonderful to watch. 50 runs, he got a half century of 45. The wicketkeeper, batter, 26 years of age. Very promising player from a Dutch point of view. And I was just saying about the recent tri-series with Bangladesh and Scotland. The Dutch women were flying in and out of subcontinent to finish their exam. It was quite extraordinary. So that's what it's all about. The other cricketer, Caroline De Lange, I said about her. She's a doctor by profession. She's a neurosurgeon, I believe. And she skipped it. And she's continuing on with their orange attire to represent the country. So cricket is fast catching all across the country. I think BCCI is doing a great job, no doubt on that. And I feel, I keep saying in many of my matches that I come across, that T20 is a beautiful marketing tool. and for

0: lesser known countries to endorse the game, and it is the first step to climb when you go to the next set of games, the 50-50 and test matches.
1: विश्वनाथ इस टूर्नामेंट में जो कि ये दसवां संस्करण है, सर्वाधिक बार ऐसे छः बार ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 2010, 2012, 2014, 2018, 2020 और 2023 में छः बार कुल ऑस्ट्रेलिया की टीम T20 विश्व कप में चैंपियन रही है, जबकि इंग्लैंड ने 2009 में जो कि इसका पहला संस्करण था उस समय इंग्लैंड ने इसे जीता था, और वेस्ट इंडीज 2016 और न्यूजीलैंड जो कि पिछले साल दो साल पहले 24 में न्यूजीलैंड, तो वर्तमान में न्यूजीलैंड इसकी चैंपियन है, और अब देखना है कि नए ओवर के साथ सिल्वर सीजर्स एक बार फिर से आ रहे हैं, दाएं हाथ की लेग ब्रेक गेंदबाज गुगली भी डालते हैं, उनकी गेंद इस बार थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, एक कदम पीछे हटी और गेंद को मिड विकेट की तरफ धीरे से टर्न किया था, कलाइयों के सहारे से बहुत तेज़ी के साथ नहीं गई थी गेंद, एक रन और स्मृति मन ने ले लिया, 53 रन उनका स्कोर 39 गेंदों पर, भारत का स्कोर इस समय 138 रन एक विकेट के नुकसान पर। 14 ओवर का खेल जब समाप्त हुआ था उस समय रन रेट यानी रन औसत था 9.74। तो T20 विश्व कप में आज ये दोनों ही टीमें अपना दूसरा मैच खेल रही हैं। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, मिड विकेट की तरफ ड्राइव किया बहुत तेजी के साथ, लेकिन फील्डर वहां पर खड़ी थी, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया विकेट कीपर के पास, विकेट कीपर जो कि कप्तान ही है बबेट डी लीट, नीदरलैंड्स के कप्तान है, जिन्होंने आज टॉस जीतने के बाद पहली बार फील्डिंग करने का निर्णय लिया था, हालांकि बांग्लादेश के विरुद्ध ये टीम हार चुकी है और भारत ने पहले मैच में पाकिस्तान को पराजित किया था, दूसरे मैच में सामना कर रही है नीदरलैंड्स का। इस बीच एक गेंद फ्लाइट किया था, इसे ड्राइव किया बहुत तेजी के साथ, 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर।
2: ये लगा आभा का चौका।
1: स्मृति का स्कोर इस समय हो गया 57 रन और 143 रन, भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर। एक कदम आगे बढ़ी थी और बेहतरीन तरीके से प्रहार करते हुए डीप कवर्स बाउंड्री के बाहर गेंद को भेजा था सीजर्स के। अगली गेंद एक बार फिर से एक कदम आगे निकली और गेंद हवा में है बहुत तेजी के साथ जा रही है और अब जाके बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन का इशारा अंपायर की तरफ से।
2: ये लगा आभा का चौका।
0: मिड ऑफ एंड द एक्स्ट्रा गर्फ इन अ फील्डर ऑन द फेंस, आई थिंक इट्स अ बिग मिस्टेक टू हैव मिड ऑफ इनसाइड द सिग्नल बिकॉज शी इज डाउन द ट्रैक फ्रीइंग हर आर्म्स एंड गेट्स अ राइट फुट अवे एंड देन शी लिफ्ट्स इट इन द एयर विद ईज फॉर फोर्स एंड सिक्सेस।
1: जिस तरह से भारत की पारी बढ़ती जा रही है, आगे एक बार शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ बहुत तेजी के साथ जा रही है, 4 रन के लिए गेंद सीमा रेखा के बाहर।
2: ये लगा आभा का चौका।
1: भारत का स्कोर बढ़ता हुआ 151 रन एक विकेट के नुकसान पर, सीजर्स की गेंद को पूरी तरह से सबक सिखाते हुए भारतीय बल्लेबाज दोनों बीच मैदान पर खेल रहे हैं, रॉड्रिक्स और स्मृति मंधाना बहुत तेजी के साथ रन बन रहे हैं, 151 रन एक विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से सीजर्स आ रहे हैं, उनकी गेंद ओवर पिच गेंद थी, गेंद को डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ ड्राइव किया है 4 रन के लिए।
2: ये लगा आभा का चौका।
1: 4 चौके इस ओवर में विश्वनाथ लगे हैं भारतीय टीम की तरफ से।
0: Four boundaries in a row, and it's very expensive. I think that's the most expensive I've seen in this game so far. So, see, the Netherlands bowling has been taken apart by these Indian batters, and 200 looks very much on the cards now, and very expensive over by all means. But some of the deliveries I've seen bowled by Netherlands have been too, you know, probably below par, I would say, which even the Indian batters wouldn't have faced that kind of delivery in the net practice session. And I'm sure Netherlands as a team are going to learn this game quickly, the nuances of the game. And as I keep saying, T20 is one of the best, you know, the first step in the ladder. By the time maybe 10 years from now, they're probably going to play test matches. Short start of a new era, it's been played by Jemima off the back foot, cutting away on the offside for a single, and brings a left-handed Mandana on strike. Well, she's been very fluent today, and I really enjoyed seeing her play those shots on the offside, particularly in that cover area. She's an absolute wonder to watch indeed. The last year was pretty expensive indeed, Mandana. Well, 603 boundaries in a T20 career. That's quite amazing. 150.

0: Deliberations are wonderful to watch.
1: बिल्कुल इस समय मंधाना और शेफाली वर्मा रॉड्रिक्स तीन खिलाड़ी आउट हो चुके हैं. स्मृति मंधाना ने 74 रन बनाए, शेफाली वर्मा ने 51 रन बनाए और रॉड्रिक्स ने 23 रन बनाए. इस बीच गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ, गेंद को ड्राइव किया है ऑन साइड में मिड विकेट रीजन में, लेकिन एक रन ही मिलेगा. यस्तिका आई है नए बल्लेबाज के रूप में, एक रन के साथ अपना खाता खोला और भारत का स्कोर 163 रन 3 विकेट के नुकसान पर. जिस तरह से आज भारतीय प्रारंभिक बल्लेबाजों ने अपनी टीम के लिए एक मजबूत आधार यहां पर रखा था, लेकिन उसके बाद 3 विकेट भारत को गिरे और भारत का स्कोर बहुत मजबूत है इस समय 163 रन 3 विकेट के नुकसान पर. और रॉड्रिक्स गेंद को स्वीप करना चाह रही थी ऑन साइड में, लेकिन जैसे ही गेंद उनके बल्ले के नज़दीक से निकलती हुई ग्लब से टकराई और विकेट के पीछे बबेट ने उनको कैच किया. इस बीच ही अगली गेंद थी राजकीर, उस गेंद को ड्राइव किया है ऑफ साइड में और पीछे खिलाड़ी उन्होंने गेंद को फील्ड किया. कैलिस खड़ी थी वहां पर, स्टीर कैलिस, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया. 164 रन 3 विकेट के नुकसान पर इस समय भारत का स्कोर. रिचा खेल रही हैं एक रन के स्कोर पर और यस्तिका खेल रही हैं एक रन के स्कोर पर. तो इस समय भारत को और रनों की आवश्यकता है और जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता जा रहा है उम्मीद की जा रही है कि दोनों ही बल्लेबाज कुछ और रन जुटाएंगे. इस बीच ओवर पिच गेंद के डेरी से फ्लिक किया था डीप स्क्वायर लेग की तरफ, गेंद को फील्ड करती सीजर्स गेंद को फील्ड करके थ्रो किया विकेट कीपर की तरफ, लेकिन एक रन और यस्तिका ने लेते हुए अपना स्कोर कर लिया. 2 रन 2 गेंदों का सामना किया उन्होंने, 2 रन बनाए. 165 रन भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर इस समय चल रहा है. वापस गेंदबाजी करते हुए शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, लेकिन इस बार दोबारा डालनी पड़ेगी. वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से,
0: इट्स माय कर्स.
1: जैसे ही आपने तारीफ की, उन्होंने एक वाइड गेंद डालते हुए बताया है कि बहुत ज्यादा नियंत्रण अभी भी उनके पास में नहीं है. 166 रन 3 विकेट के नुकसान पर इस समय भारत का स्कोर. ऋचा खेल रही हैं, ऋचा घोष विकेट कीपर हैं भारतीय टीम की, एक रन के स्कोर पर. और यस्तिका खेल रही हैं 2 रन के स्कोर पर. 166 रन 3 विकेट के नुकसान पर यह गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी और गेंद को लेकिन बहुत ऊपर उठी है, देखना इसको नीचे फील्डर कैच करके पाते हैं. यहीं ड्रॉप कर दिया, ये गेंद छोड़ दिया बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण. मौलकबीर वहां पर खड़ी थी, उनको लगभग गेंद उनके हाथ में आ चुकी थी, लेकिन यस्तिका की किस्मत अच्छी रही कि गेंद एक आसान कैच छूट गया डच खिलाड़ियों के हाथ से. काफ़ी धीरे धीरे वो आगे बढ़ रही थी, थोड़ा सा कंफ्यूजन दोनों खिलाड़ियों के बीच में हुआ था. उन्होंने देखा कि मिड ऑफ पे खड़ी फील्डर आगे आ रही हैं, लेकिन जब देखा कि वो नहीं आ रही हैं तो वो आगे बढ़ी और उन्होंने गेंद को हाथ में ले लिया था, लेकिन छिटक कर कैच चला गया. इस तरह के कैच बहुत महंगे साबित होते हैं. इस बार लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को धीरे से डीप स्क्वायर लेंग की तरफ से सीजर्स के पास खेल दिया, एक रन और अपने खाते में जोड़ते हुए यस्तिका का स्कोर हो गया 3 रन. और ऋचा घोष खेल रही हैं 2 रन के स्कोर पर इस ओवर के समाप्ति पर.
0: Well, in the last over, it was not only a catch that was dropped, they also missed the run out. In fact, Richa was not running to the other end. She thought she's going to be out for sure. And it was a very easy chance that was spilled at cover area. I tell you, that was basic stuff. It was kid stuff indeed. And that should have been catchable at any standard. And unfortunately, she dropped it. It all happens in any form of cricket at any level. But they probably would have got back to basics in trying to run the batter at the other side. They missed both of them. It's a bit of an inexperience on the part of Netherlands side. But nevertheless, India in a very strong position. But I'm very impressed with Van der Waart come back. She had a horrendous first over. De Lange, she comes in bowls and will be stumped easily. Easily stumped indeed. It's Yastika, she's gone. Again, a lot of celebration in the Dutch camp. Lange gets her first wicket. She got 2 in the first game against Bangladesh. In India, 168 for 4. And wickets have started to fall at very, very frequent interval indeed. Nicely tossed table. And that one spinned with the arm and was an easy stumping for the captain, D. Late, to complete it. And that's got the batter standard by a mile. So, celebration all across. I could see the smile coming from everyone in the Dutch team. They're all enjoying every moment of this World Cup. They're enjoying every wicket of this. So it's Yastika Badia

0: caught, correction, stemmed my lead and off the mauling of De Lange. And I won't say India in a spot of bother with the fourth wicket going down, but I think, you know, with the exit of Mandana, the flow of runs have been controlled to a larger extent. If you haven't seen, the boundaries and the sixes getting in. So we'll just give you the bowling scorecard in a while from now. We're just getting it from a scorer. But the captain is in. Lange bowled short. And that's thrashed off the back with down towards deep extra cover. Oh, it's a nasty bounce for the fielder patrolling the boundary. I think the ball hit one of those playing turf indeed and bounced on to her. And the captain is over the mark. Harmanpreet Kaur, the 50-50 winning World Cup last year. And I tell you, she's usually really led the team by an example. There's a lot of discipline in the side. And she's been well respected within the side as a leader. And I think she's done a great job for the team. Lange, De Lange, she's in the last of bowls. This is hit high, straight down the ground. One go for five, presume. No, it's gone for four indeed. And a tremendous hit indeed by Richa Ghosh. That's a penalty you play when you drop her, because she smashes that run. In fact, it's gone for six, actually. And we couldn't pick it up very cleanly here. It's gone for six. Ye laga aabha ka chakka. Just managed to cross the boundary ropes over there. Flat indeed from Richa Ghosh. And boy, she's a very powerful lady. And when she hits them a long way. Pretty strong wrist indeed. Here's the next ball. Lange bowled short, wide. She has to wait and reach for that. And a good diving stop at backward square on the offside. And that takes Richa up to 9 from 4 deliveries. India 176 for 4. With 2.2 overs remaining in this game. They still managed to bowl with the least of penalty, I presume, because they had plenty of wides in this game. I saw 15 wides in this game. It brings the captain on strike, Harmanpreet Kaur. 178 matches, 4,112 runs. Amazing career indeed. First ball, she goes back, rocks off the backward, but unfortunately it goes straight to Heath Seegers at extra cover. No run. She's on 1 from 2. Look at the run rate, 9.87. Going steady. With the next match coming up after a few hours from now, Pakistan and South Africa. Harmanpreet Kaur off the backward cuts this one. They're running a tough single indeed. There's a chance of running out of this non-striker zone. They still complete the run. And at the end of 18 hours, it's 4 for 177.
1: 18 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर है 177 रन और भारत की तरफ से जो विकेट्स गिरे हैं पहला विकेट गिरा था 115 रन के स्कोर पर शैफाली वर्मा आउट हुई थी दूसरा विकेट 162 के स्कोर पर स्मृति मंधाना आउट हुई तीसरा विकेट 162 के स्कोर पर ही गिरा जेमिमा रॉड्रिक्स आउट हुई थी और उसके बाद चौथा विकेट यास्तिका भाटिया के रूप में गिरा था उस समय स्कोर था 17.168 रन स्कोर था और इस तरह से जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि जिस तरह की गेंदबाजी कर रही हैं नीदरलैंड्स की गेंदबाज वहां पर रनों की संख्या तो बढ़ाई भारत ने लेकिन विकेट भी गिरे हैं 18 ओवर के बाद 9.83 के औसत से रन जुटाए हैं भारतीय टीम ने इस समय भारत का स्कोर बहुत तेजी के साथ बढ़ते हुए 177 रन 4 विकेट के नुकसान पर और ये 19वां ओवर यानी इसके बाद भी इस ओवर के बाद एक ओवर और खेला जाएगा इस बीच डिराड गेंद को शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी धीरे से कलाइयों के सहारे से स्क्वायर लेग की तरफ खेला हरमनप्रीत ने और अपने खाते में एक रन और जोड़ दिया हरमनप्रीत का स्कोर इस समय 3 रन ऋचा घोष अब आ रही हैं बल्लेबाजी करने के लिए ऋचा घोष बहुत ही आक्रामक स्ट्रोक प्लेयर कही जाती हैं और कई मौकों पर भारत के लिए उन्होंने अंतिम क्षण में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए मुझे याद है गत वर्ष जब विशाखापट्टनम में विश्वनाथ और मैं एक दिनी विश्व कप में कमेंट्री कर रहे थे ऋचा घोष ने दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध बहुत ही शानदार स्कोर किया था इस समय ऋचा घोष तैयार हैं 9 के व्यक्तिगत स्कोर पर 178 रन 4 विकेट के नुकसान पर यह अगली गेंद थी उस गेंद को ड्राइव किया है गेंद बिल्कुल हवा में जा रही है और 6 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर ये लगा आभा का छक्का बहुत ही शानदार तरीके से जैसा हम बता ही रहे थे कि ऋचा घोष बहुत ही आक्रामक मूड से बल्लेबाजी करती हैं ऋचा घोष ने बिल्कुल स्लॉट पे पड़ी थी गेंद और पूरी ताकत के साथ गेंद को हवा में उछाल दिया था और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर

0: And I was flawless. We had a minor hiccup in the 16th and 17th overs where we lost three quick wickets. But that, I suppose, was that we wanted to go in for a big score, 200 plus. And we took some chances, and that is how we lost those three quick wickets.
1: Right, so no complaints there whatsoever. They had to bat that way.
0: No, not at all.
2: वैशाली, जब ये दोनों ओपनर्स शेफाली और स्मृति सॉन्ग पे होती हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रही होती हैं, तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स देखने को मिलता है, पावर और टाइमिंग.
3: जी, शेफाली पावर एंड स्मृति टाइमिंग. एंड सबसे अच्छी बात ये, फियरलेस बैटिंग करी आज शेफाली वर्मा ने, एंड ये उनके लिए बेटर है क्योंकि उनका जो बैट का स्विंग है वो साउथ अफ्रीका के लिए मैच के अगेंस्ट उनको बेटर वे में, उनको कह सकते हैं कि रन रेट उनका इक्वल कर सकता है. एंड उसके साथ साथ स्मृति मन्ना हमेशा ही इतना फियरलेस खेलती हैं, वो तो उसकी उनके बारे में क्या ही बात करें हम. और उसके साथ अगर मैं जैमिमा की बात करूं तो जैमिमा ने काफ़ी फियरलेस बैटिंग करी है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये लग रहा था कि उनको और बेटर पिच पे अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए था, क्योंकि साउथ अफ्रीका टीम जो आने वाला आपका नेक्स्ट मैच है उसके लिए आपको टीम पिच पे टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी था आज. एंड यस्तिका भाटिया, एज अगर हम कंपेरिजन करें भारती की और यस्तिका की, तो दोनों सिमिलर है, अभी दोनों एक ही जगह पर स्टैंड कर रहे हैं. एंड कोई भी खेले, बट हरमनप्रीत को उनकी जगह पे आना चाहिए था और बेटर हमारा रन रेट बढ़ सकता था. एंड उसके साथ अगर हरमन की बात करूँ तो लास्ट मैच और इस मैच में देखें तो उनका बैट उस तरीके से चल नहीं रहा है जो साउथ अफ्रीका के लिए हमें चाहिए बैटिंग.
1: राइट, अगर हम बॉलिंग की बात करें नेदरलैंड्स की, तो दिलांगा, उन्होंने दो विकेट चटकाए और सीगर्स ने भी एक विकेट चटकाया. उसके बावजूद अगर आप देखें तो इंडिया वर एबल टू टैकल द स्पिनर्स वेल. क्या उन विकेट्स के चलते आप कह सकते हैं ये कर्नल की इस विकेट में कुछ ना कुछ तो है स्पिनर्स के लिए, मदद जरूर है?
0: या देयर इज स्लाइट यू नो असिस्टेंस फॉर द स्पिनर्स. हालांकि विकेट थोड़ी फास्ट खेल रही है, लेकिन अगर आप राइट स्पॉट पे फ्लाइट करके बॉल डालोगे तो हल्की सी टर्न भी है जिससे बैट्समैन को खेलने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी.
2: Soumitra, it's also about who they are up against. For example, Asset Mandhana, even if it's an off spinner in front of her, is not going to be uncomfortable.
4: Absolutely. But just to add to what Colonel said, all the five wickets that India, all the wickets that fell, so all were bad dismissals. Have you noticed that? There was kind of strokes Jemmy played, you know. Richa was lucky because she was dropped on two.
1: Right.
4: I mean, imagine if Harmanpreet was also not dropped, we could have been in bigger trouble. It so happens ki ye jo hamara team hai, opposition hai, is Netherlands. Imagine, can you do this with Australia or South Africa? Answer is no. And spinners, yes, fine, but did you see if the ball turned too much? Not too much, maybe. Because the point is this, they were both trying to, that's what I said, ki in the 16th over onwards, the Dutch bowlers tried to get something back out of this game.
1: Right.
4: That's why Dilange got. But again, the wickets we gave Dilange were gifts.
1: Got it.
4: Except for the fact that Yastika stepped out, missed the line completely and was bowled and was stumped.
1: Right.
4: So the point is how you played the match. I think it's largely because the two batsmen in the top of the order, they got the runs. And if it's the contrast of the first match, where the middle order got the runs, the top order did not. Here it was a bit of a reverse. Mm-hmm. But things are, there are lessons to be learned from this match.
1: Harping about the spinners once again then, if it's not turning as much, Vaishali, jis tarike se chahalkadmi ki thi Smriti ne, the fact that she was able to use her feet to the spinners, that brought a lot of runs. Do you think the opposition will borrow a leaf out of her book? Wo bhi waise hi khelne ki koshish karenge jis tarike se Smriti ne pace out kiya tha apne innings ko?
3: Ye thoda doubtful question hai, but मुझे लगता है कि जहाँ पर अभी स्पिनर, अगर हम पूरा आंकड़ा निकाल के देखें तो अभी भी स्पिनर ने ही विकेट ज़्यादा ली है. एंड हमारी दीप्ति शर्मा, अगर वो जैसे उन्होंने लास्ट मैच में पकड़ के एंड स्पॉट बॉलिंग की थी, वही अगर वो उस तरीके से बॉल करती और श्री चरणी करते, तो हो सकता है आज दोनों ही बॉलर अपने नाम ये विकेट्स कर सके.
2: भूप, और खास करके हमने दीप्ति के केस में देखा है कि अगर वो कोई चीज को वेरी करती है, वो होता है उनका पेस, वो होता है उनके लेंथ, लेकिन लाइन हमेशा सटीक ही रहता है.
0: देखिए, शी इज ए वेरी गुड बॉलर. हम उसको जो नेदरलैंड्स के बॉलर हैं उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते. शी इज ए बिग मैच प्लेयर, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा विकेट्स ले रखी हैं, तो उसकी बॉलिंग यहाँ पे

0: इस विकेट पे बड़ी अच्छी होगी एंड मुझे लगता है कि जो नेदरलैंड्स के बैट्समैन हैं उनको काफ़ी ट्रबल करेंगी। और जिस प्रकार से ये विकेट खेल रही है, मुझे लगता है जो हमारे दोनों फास्ट बॉलर्स हैं वो भी विकेट लेंगे, क्योंकि बॉल स्किड हो रही है थोड़ी, तो फास्ट भी करते हैं हमारे बॉलर्स। एंड ये जो नेदरलैंड्स के बैट्समैन हैं इनके पास इतना थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है एक्सेप्ट फॉर वन आउट बैट्समैन।
1: राइट, और फान देर राड अगर आप देखें तो अराउंड द विकेट आ रही थी बतौर पेस बॉलर, वहां से भी मौके बनाए थे उन्होंने, क्योंकि उस एंगल को टैकल करना बहुत मुश्किल लग रहा था, खासकर तब जब बैटर्स नए थे क्रीज में। क्या नंदिनी शर्मा आज वो पैतरा अपना सकती हैं?
2: कर सकते हैं, as Colonel said that you know these are opportunities and English conditions आपके बहुत सारे एडवांटेज देते हैं लाइक फास्ट बॉलर्स। इफ यू सी द डच फास्ट बॉलर्स, आप इनिशियली जब वो बॉल कर रहे थे देयर ओवर्स वर 10 बॉल ओवर्स,
1: राइट right.
2: आपने नोटिस किया होगा कि इंग्लैंड में जो है कि लाइन एंड लेंथ कंट्रोल, स्पेशली लाइन को मेंटेन करना, स्पेशली व्हेन यू गो एंगल डिलीवरी, उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। वो इट विल बी अ टेस्ट फॉर द इंडियंस ऑफ कोर्स, एज कर्नल सेड दैट यू कांट कंपेयर इंडियन बॉलर्स विद डच बॉलर्स, यू नो दे आर जस्ट कमिंग आउट एंड प्लेइंग, दीप्ति शर्मा और ऑल आर फास्ट बॉलर्स। काफी
3: में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की और लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
4: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं।
3: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। एक रिपोर्ट।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के एवियो शहर की 2 दिन की यात्रा काफी महत्वपूर्ण रही। इस दौरान प्रधानमंत्री ने G7 के विभिन्न आउटरीच सत्रों में हिस्सा लिया, जहां भारत को एक साझेदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। यह G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की लगातार 7वीं भागीदारी थी। इस महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर भारत की निरंतर उपस्थिति यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि देश एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अब नई दिल्ली की ओर देख रहा है। आउटरीच सत्रों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस महत्वपूर्ण मंच के समक्ष ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से उठाया। कल के एक सत्र में उन्होंने तेजी से जुड़ती हुई इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए भरोसे के महत्व को रेखांकित किया और इस बात पर जोर दिया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। आज के एक सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को ऐसे तंत्र विकसित करने की जरूरत है जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान कर सके। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
3: पेरिस में वीवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री कल सम्मेलन में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज

0: बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी है। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कॉर्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दे दी है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत पात्र शहरी गरीब परिवारों के लिए 2,13,000 से अधिक अतिरिक्त आवास को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 7वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या अब 16,13,000 से अधिक हो गई है। योजना में महिलाओं को मालिकाना हक दिए जाने तथा वंचित वर्गों को आवास देने को प्राथमिकता दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को अपने विकास पथ का केंद्र बनाया है। श्री नड्डा ने कहा कि बढ़ी हुई सैन्य तैयारियों और स्वदेशी विनिर्माण पर विशेष ध्यान देने के कारण देश के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत इस तिमाही के अंत तक 300 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता हासिल कर लेगा। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ऊर्जा परिवर्तन क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
2: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
1: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा,
3: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
1: ये परिवर्तनकारी पहलें भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है।

0: गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए एआई और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दोष निवेशकों को ठगने वाले साइबर अपराधियों को परजीवी बताते हुए उनके साथ सख्ती से निपटने को कहा है। न्यायालय की पीठ ने विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों की एक साथ सुनवाई करने की याचिका पर यह टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि साइबर अपराध के शिकार लोग देश भर में हैं और ऐसे अपराधियों को जेल में बंद रखना समाज के हित में है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में पंजाब में लगभग 32,000 महिलाओं को उनके प्रवासी भारतीय नागरिकों एनआरआई पतियों ने छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ये राज्य में एनआरआई विवाह धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौती है। गुजरात में वडोदरा में तड़के एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे सहित 6 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दोपहर सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार की 6 महिलाओं की मौत हो गई और 3 महिलाएं घायल हो गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों दुर्घटनाओं पर गहरा शोक व्यक्त किया है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी तेज वर्षा की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी चलने की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है सुबोध मिश्र।
1: सेंसेक्स 347 अंक बढ़कर 77,156 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 97 अंक ऊपर 24,086 पर पहुंच गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 के मुकाबले 3 पैसे बढ़कर 94.53 रुपये पर बंद हुआ।
0: और अब बात खेलों की। लखनऊ में दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 39वें ओवर में 7 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारियां खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। लीड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 210 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड्स ने पहले ओवर में बिना किसी नुकसान के 7 रन बना लिए हैं। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। भारत ने विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने आज से 10 दिन के नशा मुक्त भारत सप्ताह का उद्घाटन किया। डॉक्टर कुमार ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने में सामुदायिक भागीदारी, युवा सहभागिता और अंतर मंत्रालयी समन्वय के महत्व पर बल दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। और मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Caroline De Lange 4, it was 2 for 20, the best of the bowlers, and Frederick Warner for 10. No slip in play, shot there, man, a point, deep cover, cover mid off inside the circle on the offside. And this one is flicked away, ball swinging away, and she flicked it wristily. And a bit of a juggle in the outfield on the onside. And Shefali on the completes the fielding. And that stays near Netherlands at 13 without loss. So, Claire Polasek is the umpire for this game. She's standing in her 75th game, which is quite extraordinary, isn't it? The number of T20 games are played. And the other umpire is Sue Redrofen. Next ball short, she pulls away. An unconvincing

0: Singlets going down towards the deep mid wicket fence. Couple of bounces and near the fence for four.
1: ये लगा आभा का चौका.
0: That's the third boundary of this Dutch innings. They've gone up to 17. And they've been a little severe on anything short now, saying in this whole game. And 17 on the board and after two overs. Promising start, I would say, Goswami, from a Dutch point of view. 17 from two. They haven't lost a wicket. They're not afraid to play the shots. And they're ready to take the risk. I think, you know, probably we'll see some entertainment.
2: अब तक के खेल में जिस तरह से एक मनोवैज्ञानिक दबाव था वो लगता है कम हुआ है बल्लेबाजी करते हुए नीदरलैंड्स की बल्लेबाजों के सामने, क्योंकि काफ़ी आक्रामक तरीके से वो खेलना उन्होंने शुरू किया है और विकेट की परवाह नहीं की. 209 रन का स्कोर उनके सामने लक्ष्य के रूप में खड़ा है, लेकिन वो देख रही हैं कि किस तरह से जल्दी जल्दी रन किया जाए. और क्रांति गौड़ के अगली गेंद को ट्रैप किया था, लेकिन एक्स्ट्रा वाइड स्मिडॉन की पोजीशन पर खड़ी फील्डर ने गेंद को, शैफ अली वर्मा थी वहां पर, गेंद को फील्ड कर लिया. कोई रन लेने का मौका नहीं दिया. भारत और नीदरलैंड्स के बीच 3-20 विश्व कप, जो कि इंग्लैंड के लीड्स में खेला जा रहा है, हेडिंगले क्रिकेट ग्राउंड. 17,000 की दर्शक क्षमता है, लेकिन काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर दर्शक आए हैं. महिलाओं की भीड़ बहुत ज़्यादा है. इससे अंदाज लगता है कि महिला क्रिकेट के प्रति न केवल भारत में बल्कि दुनिया के अन्य देशों में भी लोगों को रुझान बढ़ा है. इस बीच गेंद को धीरे से पुश किया था शैफ अली वर्मा के पास. फिर से गेंद उन्होंने थ्रो किया था, उनको लगा कि किसी के चोट ना लगे, अपने सर पे हाथ लगाया, लेकिन सब कुछ सुरक्षित थे. सीजर्स, हीथर सीजर्स 10 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर खेल रही हैं और मॉलकेन बोर इस समय खेल रही हैं 6 रन के स्कोर पर. 17 रन बगैर किसी नुकसान पे 2.2 ओवर का खेल अब तक पूरा हुआ है. 210 रन का एक लक्ष्य दिया गया है. क्रांति गौड़ दूसरा ओवर इस समय कर रही हैं अपना. पहली दो गेंदों पर उन्होंने कोई भी रन लेने का मौका नहीं दिया है दोनों ही डच बल्लेबाजों को. और अब देखना है कि सीजर्स तैयार हो रही हैं लंबे कद की. और सीजर्स एक बार फिर से गेंद लेग स्टंप की तरफ आती हुई गेंद को धीरे से उन्होंने स्क्वायर लेग की तरफ से टर्न कर दिया. पूरी तरह से देख लिया था उन्होंने गेंदबाज के इरादों को, भांप लिया था, और जैसे ही देखा कि गेंद लेग स्टंप की तरफ पड़ रही है, वो पहले से अपनी जगह से हटी और गेंद को धीरे से टर्न किया था कलाइयों के सहारे से स्क्वायर लेग की तरफ से. और 18 रन, एक रन और खाते में जुड़ा है नीदरलैंड्स के. सीजर्स का स्कोर है हो गया 11 रन. मॉलकेन बोर इस समय 6 रन के स्कोर पर सामना करने के लिए तैयार खड़ी हैं. दाएं हाथ से क्रांति गौड़ की अगली गेंद पैड पर टकराई थी, लेकिन लेग स्टंप के बाहर. हालांकि ऋचा घोष ने उम्मीद के साथ हाथ ऊपर किया था, लेकिन इस अपील में उत्साह ज़्यादा, आत्मविश्वास कम था. नीदरलैंड का स्कोर इस समय 18 रन बगैर किसी नुकसान के. और जिस तरह से मैं बात कर रहा था कि नीदरलैंड्स के दोनों ही बल्लेबाजों को ऐसा लग रहा था कि बड़े स्कोर के सामने थोड़ा संभल कर खेलेंगे, कुछ रुक कर खेलेंगे, लेकिन उन दोनों ही बल्लेबाजों ने अच्छे रन बनाने शुरू कर दिए. लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को फिर से अंपायर का इशारा, वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से, और एक रन और मिला. 19 रन, कोई नुकसान नहीं नीदरलैंड्स की टीम की. दोनों ही बैटर्स इस समय खेल रही हैं, सीजर्स और मॉलकेन बोर. दोनों बैटर्स बहुत ही बेटर तरीके से बल्लेबाजी कर रही हैं. और देखना है कि क्रांति गौड़ अपनी अगली गेंद पर किस तरह की विविधता लाती हैं. दाएं हाथ के ओवर द विकेट उनकी गेंद थी, अच्छी गेंद थी, स्लॉट पर पड़ी थी, हालांकि एक कदम आगे बढ़ी थी, गेंद को खेला था कवर पॉइंट की रीजन में. रॉड्रिक्स वहां पर खड़ी थी, गेंद को फील्ड कर लिया और कोई रन लेने का मौका बैटर को वहां पर नहीं मिला है. क्रांति गौड़ दाएं हाथ से मध्यम गति की तेज गेंदबाज हैं. पिछले विश्व कप में भी उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन किया था और यहां भी वो अच्छी गेंदबाजी कर रही थी. गेंद को जब वो डिलीवर करती हैं तो उनका हाथ काफ़ी ऊंचा जाता है, जिससे उनको एक अतिरिक्त उछाल बीच विकेट पे मिलता है. क्रांति गौड़ एक बार फिर से दाएं हाथ से ओवर द विकेट उनकी गेंद, और ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को ड्राइव किया था मिड ऑफ की तरफ, लेकिन बैटर को मौका नहीं मिला. 19 रन, 3 ओवर की समाप्ति पर नीदरलैंड का स्कोर.
0: Very economical over indeed from Kranti Grad, and what was 2 for 17, it's now, correction, none for 17 after 2, it's now none for 19 after 3, so they need to have some big overs indeed if they're going to get anywhere near 210, and if they don't take

0: नीदरलैंड्स के स्कोर में 4 रन का इजाफा, 4 रन की वृद्धि हुई, 34 रन बगैर किसी नुकसान के 4.1 ओवर का खेल अब तक हुआ है। देखना है कि भारत के गेंदबाज कितना नियंत्रण कर पाते हैं। इस बीच ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, गेंद थी, ड्राइव किया लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में गेंद जाके और स्मृति मानधना को ये वहाँ पर गेंद सीधे उनके हाथ में पहुँची। ये पहली सफलता मिली है, सीजर्स को आउट किया था नंदिनी शर्मा की इस गेंद पर, बहुत ही बेहतरीन तरीके से विकेट मिला। स्मृति मानधना ने एक बहुत ही बेहतरीन कैच लिया, ये गेंद शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, अपनी जगह पर खड़े होकर उन्होंने ड्राइव किया था, थोड़ी नीची गेंद थी लेकिन एक्स्ट्रा कवर की पोजीशन पर पहले छूटी थी हाथ से गेंद, लेकिन बाद में अपने आप को संभालते हुए स्मृति ने गेंद को पकड़े रखा और ये पहली सफलता नीदरलैंड्स के विरुद्ध मिली है। 34 रन पर पहला विकेट हीथर सीजर्स, 4 चौके की मदद से 21 रन, 16 गेंदों का सामना और अब जाके दूसरी बैटर बीच मैदान पे आएंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि T20 विश्व कप का ये 10वां संस्करण है, जहां आज भारत और नीदरलैंड्स का मैच हेडिंगले क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड में खेला जा रहा है। टॉस पहले नीदरलैंड्स के कप्तान ने जीता था और पहले आमंत्रित किया था भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने के लिए। 209 रन बनाए थे भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर, एक बड़ा स्कोर T20 के हिसाब से। और हमारे स्टैटिस्टिशियन मनोज कुमार ने बहुत तेज़ी से हिसाब लगाते हुए दिखाया कि 200 रन या इससे अधिक रन बनाने का ये तीसरा मौका है। दो मौके 2026 में 219 रन 1 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड ने श्रीलंका के विरुद्ध एडवेस्टन में बनाए थे। भारत ने 209 रन पर 5 विकेट भारत ने नीदरलैंड के विरुद्ध बनाए अभी इसी मैच में, और 213 रन 5 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड ने पाकिस्तान के विरुद्ध केपटाउन में 2023 में बनाए थे। अगली बल्लेबाज के रूप में बबेट डी लीडे जो कि कप्तान हैं नीदरलैंड्स के विकेट कीपर हैं अब बीच मैदान में आए हैं। इससे पहले बांग्लादेश में पराजित होने के बावजूद लीडे ने एक शानदार अर्धशतक जड़ा था वहां पर। दाएं हाथ से ओवर द विकेट नन्नी की गेंद, अच्छी गेंद थी, मिडिल स्टंप पर आती हुई गेंद को फिर से पीछे हटते हुए अपनी गेंद को पुश किया था मिडऑन की तरफ, वहां पर शैफाली वर्मा खड़ी थी, शैफाली वर्मा ने गेंद को फील्ड कर लिया और क्रांति गौड़ ने 111 किलोमीटर की से अधिक रफ्तार की ये गेंद डाली थी। एवरेज स्पीड या औसत उनकी जो गति है 111.8 रही है, इससे पहले 103 किलोमीटर की रफ्तार से वो गेंद कर चुकी हैं। इस बीच फिर से नन्नी को एक सफलता मिली थी, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, उसे धीरे से खेल दिया है शॉर्ट फाइन लेग की तरफ, लेकिन वहां पर खड़ी फील्डर ने गेंद को फील्ड कर लिया, रन लेने का कोई मौका नहीं। 35 रन 1 विकेट के नुकसान पर 4.5 ओवर का खेल इस समय पूरा हो चुका है। और जिस तरह से नंदिनी शर्मा और क्रांति गौड़ की गेंदबाजी का एक अगर दोनों का एक्शन देखा जाए तो दोनों का लगभग एक सा एक्शन लगता है, दोनों काफ़ी विकेट के ऊपर आकर काफ़ी ऊपर क्रीज से ऊपर आके हाथ उनका काफ़ी ऊंचाई पर रहता है। इस बीच नंदी शर्मा एक बार फिर से दाएं हाथ से ओवर द विकेट, उनकी गेंद इस बार धीरे से गेंद को पुश किया कलैयों के सहारे से मिड विकेट की तरफ पर, इससे पहले की फील्ड होती गेंद क्रांति गौड़ वहाँ पर खड़ी थी, 1 रन और ले लिया 5 ओवर की समाप्ति पर, 36 रन 1 विकेट के नुकसान पर नीदरलैंड का स्कोर।
1: So a reasonable start for Netherlands. They lost their opening player, Heath Segers. She played well indeed, 4 boundaries in that. And just when the pressure has started to mount on her. And some of the poor deliveries have gone for fours, and some of the poor deliveries also got them wickets too in this game. So I wouldn't say it was an impressive start from Nandini, her first over, but she somehow managed to find a rhythm in the second over. And got the wicket of Faith Seegers. So right now the captain steps into the centre. Babet De Ligt. She got a half century in the last game against Bangladesh. 50 from 45 deliveries. And wicket keeping was absolutely very clean. Took one low catch down the leg side. to get rid of Jemima Rodrigues. 26 years of age. So pretty young age. 174 needed from just 90 deliveries. That's it's a big ask indeed from a Netherlands point of view. They're chasing 210 to win this game to create the greatest upset of all time in T20 cricket. There's going to be change in bowling. Sri Lanka's going to bowl, and yes, it's.

0: स्मृति मंधाना, बोल्ड कीर्ति शर्मा, 21 रन उन्होंने बनाए और 4 चौके लगाए थे। काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। उसके बाद में मेलकिन बोर, जो इस समय 14 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर खेल रही हैं, 16 गेंदों का सामना किया, 2 चौके उन्होंने लगाए हैं। और कप्तान बबेट डिलेड 2 रन बनाकर खेल रहे हैं। तो इस समय 6 ओवर में 39 रन बनाए थे, 6.5 के औसत से भारत ने 59 रन बनाए थे, 9.6 से अधिक रनों से। जी, इस बीच ये गेंद एक बार फिर से, इसको गेंद को ड्राइव किया था मिडॉन की तरफ, पड़े मिडॉन से फील्ड करते हुए गेंद को ड्राइव किया था, थ्रो किया वापस, लेकिन तब तक एक रन और बनाया। 40 रन इस समय हो गया नीदरलैंड का स्कोर। 6.1 ओवर का खेल अब के अभी तक हुआ है। इस बीच गेंदबाजी करने के लिए फिर से तैयार हुई है श्री चरणी, बाएं हाथ की ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज हैं। ये गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, ड्राइव किया गेंद को, लेकिन सीधे 4 रन के लिए मिड विकेट बाउंड्री के बाहर।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: नीदरलैंड्स का स्कोर 44 रन के 1 विकेट के नुकसान पर इस समय हो चुका है। श्री चरणी, जो कि बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद डाली थी उन्होंने और बल्लेबाज के पास पूरा समय था कि वो गेंद को बेहतरीन तरीके से मिड विकेट रीजन के बाहर भेज दें। 5 रन अब तक श्री चरणी दे चुकी हैं। इस बीच एक गेंद थी, स्लॉट पर पड़ी, एक कदम आगे निकली, बल्लेबाज गेंद को ड्राइव किया था और वहाँ पर गेंद को फील्ड कर लिया, कोई मौका नहीं था। 166 रन की दरकार है अभी नीदरलैंड्स को 81 गेंदों का सामना करने करके। वो ये अगर स्कोर बना लेती हैं तो वो इस मैच में कुछ परिणाम और हो सकता है, लेकिन फिलहाल बहुत दबाव में 6.3 ओवर में ये गेंद थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद को धीरे से मिड विकेट की तरफ खेला और अब जाके 2 फील्डर उसके पीछे भागते हैं। गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया विकेट कीपर के पास रॉड्रिक्स ने और 1 रन और 45 रन 1 विकेट के नुकसान पर इस समय स्कोर है नीदरलैंड्स का। श्री चरणी, जो कि बाएं हाथ की लेग ब्रेक गेंदबाज हैं, ऑर्थोडॉक्स पारंपरिक तरीके से बाएं हाथ का जो लेग ब्रेक गेंदबाज होता है, ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज कहते हैं उसको, ये गेंद एक कदम आगे बढ़ के ड्राइव किया था लेकिन सीधे मिड ऑफ के हाथों में। कप्तान हरमनप्रीत वहाँ पर खड़ी थी, गेंद को फील्ड कर लिया, हालांकि छिटक की गेंद आगे गई और आगे आके धीरे धीरे कदमों से उन्होंने गेंद को उठा लिया, लेकिन बैटर को कोई मौका नहीं मिला कि वो इस पर कोई रन बना सके। 45 रन 1 विकेट के नुकसान पर इस समय डी लीड खेल रही हैं 7 रन के स्कोर पर, मॉलकिन बोर खेल रही हैं 15 रन के स्कोर पर और अब जाके अपना छोर बदला है। ओवर राउंड द विकेट फिर एक बार आ रही हैं, एक बार गुड लेंथ गेंद थी, सुरक्षात्मक तरीके से खेला और 7वें ओवर की समाप्ति पर नीदरलैंड्स का स्कोर 45 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
2: Well, the asking great has gone beyond 12.5, so this game is slowly getting out of the reach of the Netherlands. And they need to find some kind of big hitting in the next 3 or 4 overs to bring that run rate to run about 10 an over so that they can have a go in the remaining 10 overs. So you have all kinds of calculation. We're just looking at some of the IPL matches that got recently concluded. 200 was the benchmark. Now India have done this 200 benchmark now in the T20 World Cup. They are a lesser known opponent, Netherlands for sure, but I'm telling you somewhere in the coming years, there will also be a lethal force to contend. Deepthi Sharma, she's going to bowl, the player of the series in the 50-50 World Cup. She's an amazing contender, I tell you. All of a sudden, she bounces back. Round the wickets, the first ball comes in, bowls and driven beautifully between cover and extra cover by Delayed for 4.
1: Ye laga, abha ka choka.
2: A classical cover drive coming down and playing it wide of the flyers on the offside between cover and extra cover. Glorious stroke indeed. Up to the pitch of the ball. Beautiful timing. So that's a second boundary from D. Lead. She's a very busy player. She's gone quickly into double figures, 11 from 8. And now there's a bit of a discussion on. Play held up very briefly. It all settles down now. And Deepthi probably should fall down there because, yes, he does. Tossed up in the air, slow, and a batter comes down and pushes the ball up to mid-on for an easy single, and that takes D lead up to 12. That's a classical drive indeed, the last ball that we're talking about, and How good the

0: year. The Dutchwoman uses the feet. It's wonderful to watch when you do it against an off-spinner, particularly against the spin. Oh, the wicket she bowls, and now this is lifted in the air high, could be out, and now she's been taken by Roderick, so which means Malkinburgh is out, caught at mid-off, and off the bowling of Deepthi Sharma, the partnership breaker again. So the Netherlands team lose the second wicket. Both the openers are now head back to the pavilion. Malkinburgh caught by Jemima Roderick. She was down the track, but not to the pitch of the ball, and gets a very thick outside edge and a simple catch to Roderick's at mid-off. So which means wicket number two goes down, and it's 2 for 50. And Malkinburgh, she's been there for a while. Decent scoring, did 15 from 20 with the help of 2 fours. And India slowly, you know, getting the grip of this game now. They're 210. It's a massive score to win and chase in any T20 format, I tell you, at the international level. Right now, they're on top of this game. And nothing has gone wrong for India in this, except for one bad thing that has happened. Was the ankle injury to the off-spinner. She didn't play the last game against Pakistan, but now Patil, the off-spin bowler, she just bowled only one ball, Shreyanka Patil, and then she's back to the pavilion. So, Sturi Callis, she's the new veteran. She's a wonderful middle-order player. 66 innings, 1,953, got an extra strike rate of 104. First ball, she's back and defends up to shortest mid-wicket. The captain, Harmanpreet Kaur, the fielder. It's 2 for 50, we're in the 8th over. And the game slowly gripping away from the Dutch women. Deepthi Sharma. Up she comes, over, runs in a few paces and well short. And stumped stylishly off the back. A lovely stroke indeed. And this is going down towards the extra cover fence for 4.
1: Ye laga, abha ka choka.
0: Well, that was a quality stroke indeed. A beautiful shot off the back foot. And it looked very elegant, very graceful. And a nice shot indeed for Callis to get off the mark. She goes up to 4. And one ball remaining in the 8th over. 2 for 54 is the Netherlands scorecard, chasing 210. And now the sweeper goes on the fence on the offside. There's a deep cover now. Next ball. She played it. She came forward to play and then ended up playing from the crease. She was deceived in the flight. Beautifully bowled by Deepthi Sharma. A successful over, 1 for 9 from that over. And at the end of that over, over number 8, Netherlands 2 for 54.
2: नीदरलैंड्स के स्कोर इस समय 54 रन 2 विकेट के नुकसान पर. जो दो खिलाड़ी आउट होकर पेविलियन लौटे हैं, हीथर सीजर्स, कॉट स्मृति मंधाना, बोल्ड कीर्ति शर्मा 21 रन, मेलकेन बोर, कॉट जेमिमा रॉड्रिक्स, बोल्ड दीप्ति शर्मा 15 रन. दीप्ति शर्मा जैसे ही मैदान पे आती हैं वो एक सनसनी फैलाने के लिए बॉलिंग गेंदबाजी करती हैं. बहुत ही शानदार गेंदबाजी पाकिस्तान के विरुद्ध की, जिस तरह आधी टीम को बाहर किया था. इस बीच एक बार फिर से श्री चंडी के गेंद को स्वीप किया है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, लेकिन वहां पर खड़ी फील्डर ने उसे गेंद को फील्ड कर लिया. कोई मौका नहीं. आज एक दुर्भाग्य रहा भारत का कि श्रेयंका पाटिल अपनी ही गेंद पर गेंद को रोकते हुए गिर पड़ी थी और एंकल चोट उनको लगी है. उनको मैदान के बाहर ले जाया गया. राधा यादव उनकी जगह फील्डिंग कर रही हैं. समय नीदरलैंड्स का स्कोर 55 रन 2 विकेट के नुकसान पर. अभी भी 155 रन की आवश्यकता है. 71 गेंदों का सामना अभी करना है. डी लीड इस समय खेल रही हैं 13 रन के स्कोर पर. कालिस खेल रही हैं 4 रन के स्कोर पर. ड्राइव किया से पॉइंट की तरफ पर राधा यादव ने बहुत ही मुस्तैदी के साथ गेंद को फील्ड कर लिया. अतिरिक्त खिलाड़ी के रूप में फील्डिंग कर रही हैं श्रेयंका पाटिल की स्थान पर. श्री चरणी जिस तरह से गेंदबाजी कर रही हैं, एक ऑफसाइड में एक दीवार सी खड़ी कर रखी है कप्तान. ये गेंद लेग स्टंप के बाहर थी, स्वीप करना चाहती थी. अंपायर की तरफ देख रही हैं और वाइड का इशारा. इस मैच में जो अंपायर हैं क्लियर पोलोशेक और सूर्य डफंड जो कर रही हैं मैदान में अंपायरिंग, लॉरेन एगेन बैग तीसरे अंपायर यानी टीवी अंपायर के रूप में गेंदबाजी कर रही हैं. इस समय नीदरलैंड का स्कोर 56 रन पर. 2 लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को फिर से स्क्वायर लेग की तरफ खेल दिया और गेंद को फील्ड किया गया और रन लेने का जो सिलसिला है वो और आगे बढ़ता जाए, इससे पहले भारतीय

0: round the wickets as Deepthi started bowling around the wickets, in fact, rather. Down to long gone. It's 2 for 68 from 9.5 overs. And still, I would say it's a decent score when you put up 65, 70 odd runs inside the 10 overs. And here is Deepthi, the last time, comes and throws this one nicely, and the batter played from the crease without any foot movement, and it goes through to the keeper. A dot ball to end the over. 10 overs gone, 2 for 68.
1: भारत और नीदरलैंड्स के बीच इस वक्त कश्मकश जारी है गेंद और बल्ले के बीच में, और देखना है कि नीदरलैंड्स की ये पारी कहां तक जा पाती है। हालांकि भारतीय गेंदबाजों ने काफ़ी कसावट भरी गेंदबाजी की है इस समय। दीप्ति शर्मा बहुत ही स्टार गेंदबाज हैं भारत की तरफ से। पाकिस्तान के विरुद्ध जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की थी, सबको चकित कर दिया था। भारत ने 209 रन 5 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर्स में बनाए थे। 10 ओवर का खेल अब तक पूरा हो चुका है, यानी नीदरलैंड्स अपना आधा सफर पूरा कर चुकी है, लेकिन उनका रन का जो खाता है अभी 68 रन पे अटका हुआ है 2 विकेट के नुकसान पर। जैसा कि हम आपको लगातार बता भी रहे थे, हीथर सीजर्स 2 रन पहले आउट हुई थी, उसके बाद मॉल्केन बोर आउट हुई थी। सीजर्स ने 21 और मॉल्केन बोर ने 15 रन बनाए थे। इस समय स्टीव कैलिस मैदान में खेल रही हैं। क्रांति गौड़ को लाया गया है, मध्यम गति के तेज गेंदबाज। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, बैकफुट पर गई और गेंद को स्क्वायर थर्ड मैन की तरफ निकाल दिया 4 रन के लिए।
2: ये लगा आभा का चौका।
1: कीर्ति गौड़ मध्यम गति के तेज गेंदबाज हैं। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी उनकी और ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी। बल्लेबाज ने मौका तोड़ा और गेंद को धीरे से कट कर दिया था डीप थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ 4 रन के लिए। तो इस समय क्रांति गौड़ से बातचीत कर रही हैं कप्तान हरमनप्रीत कौर। उनको समझा रही हैं कि किस तरह से उनको अपनी गेंदबाजी की दिशा बनाए रखनी है, और दोनों बैटर्स कहना होगा बहुत अच्छा खेल इस समय दिखा रही हैं। लीड खेल रही हैं 16 रन पर और कैलिश खेल रही हैं 17 पर सामना करने के लिए अगली गेंद का। इस गेंद को धीरे से पुश किया था मिड विकेट की तरफ और इससे पहले कि गेंद को फील्ड किया जाता, एक रन और लीड ने अपने खाते में जोड़ा, उनका स्कोर कैलिश ने अपने खाते में जोड़ा 18 रन, उनका व्यक्तिगत स्कोर हो गया। लीड का स्कोर इस समय है 16 रन 15 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। बैबेट डी लीड कप्तान है और विकेट कीपर भी हैं, और एक तरह से कहा जा सकता है कि क्रिकेट में विकेट कीपर की को आकर बहुत देर तक जमने के लिए गेंदों को देखना नहीं पड़ता। इस बीच ये गेंद को धीरे से गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ ड्राइव कट किया है और गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए।
2: ये लगा आभा का चौका।
1: लेग स्टंप के बाहर थी गेंद को धीरे से उन्होंने हवा में थी, हालांकि फील्डर जो खड़ी थी शॉर्ट फाइन लेग पर, उन्होंने गेंद को फील्ड करने का प्रयास किया था, पुश भर किया था गेंद को अपने बल्ले से और फील्डर के हाथ में तो नहीं आई, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जरूर चली गई। लीड इसके साथ ही 20 रन पे जा पहुंची, 77 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इसने अच्छी गेंद थी, इस बार एक कदम आगे बढ़ी, धीरे से गेंद को पैड के साथ खेली थी, लेकिन इसके साथ ही रन लेने का कोई मौका वहां पर लीड को नहीं मिला। बबेट डी लीड कप्तान हैं, और इससे पहले जो बांग्लादेश के विरुद्ध मैच खेला था इस T20 विश्व कप में, अपना पहला मैच खेला था, वहाँ पर 50 रन से अधिक उन्होंने बनाए थे, एक अर्धशतक बनाकर टीम को एक सांत्वना दी थी। हालांकि बहुत कम स्कोर पर उनकी टीम वापस पेविलियन लौट चुकी थी, ऐसे मौके पर डी लीड ने आकर अपनी पारी को संवारा था। इस बीच एक बार फिर से तैयार, 77 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद थी लेग ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई, गेंद को खेलना चाहती थी लेकिन गेंद उनके बल्ले को छकते हुए थी विकेट कीपर घोष की ग्लव्स में जाके पहुंची। बबेट डी लीड बहुत ही अच्छी खिलाड़ी हैं, कप्तान हैं, और जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रही थी बांग्लादेश के विरुद्ध एजबेस्टन में, उन्होंने बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 45 बॉल में 50 रन स्कोर किया था। लीड फिर से तैयार हो रही हैं। क्रांति गौड़ के शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद, गेंद को पुल करना चाहती थी, पूरी तरह से चूकी और गेंद सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में गई, और देखना है अंपायर बात कर रही हैं वहां पर कि क्या कहीं गेंद बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर, एक निर्धारित ऊंचाई से ऊपर निकली, लेकिन 77

6.92 की उनकी गति है, जबकि उनको चाहिए 15.88। इस बीच क्रांति की पहली गेंद को घुमा दिया है ऑन साइड में, बहुत तेजी के साथ दौड़ते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज का घेर की पट्टी को पार किया, एक रन उनके खाते में जुड़ा है और इसके साथ ही स्कोर हो गया 83 रन।

0: इस बीच 84 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इस बीच एक जानकारी हम और आपको दे सकते हैं कि दूसरा जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच है भारत और अफगानिस्तान के बीच में लखनऊ में खेला जाएगा। इस बीच ये गेंद हवा में ऊपर है, देखना है फील्डर्स के नीचे है या नहीं, लेकिन बहुत ही थोड़े से अंतराल से बच गई, वो बाल बाल बची। वहाँ पर स्मृति खड़ी थी, गेंद की तरफ लपकी थी, लेकिन गेंद उनके हाथ पर नहीं आई। डी लीड 21 रन पर सामना करेंगे, जबकि रिस्क क्या स्कोर हो गया 6 रन बगैर किसी नुकसान के, 85 रन 3 विकेट के नुकसान पर 12.2 ओवर्स के खेल पर। और 125 रन अभी भी चाहिए नीदरलैंड्स को इस मैच में पार पाने के लिए। 46 बॉल में गेंदों पर बहुत मुश्किल काम, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, पुल करना चाहती थी, हालांकि पीछे विकेट कीपर अपील की मुद्रा में है, लेकिन अंपायर ने इसे वाइड करार दिया। एक अतिरिक्त रन और इस ओवर में दूसरा अतिरिक्त रन एक लेग बाई से मिला था पहली गेंद पर, उसके बाद में एक रन बल्लेबाजी में मिला था और उसके बाद में ये वाइड गेंद करार दी गई। 86 रन 3 विकेट के नुकसान पर इस समय नीदरलैंड्स का स्कोर। कप्तान बबेट डी लीट इस समय बीच मैदान में सामना करने के लिए तैयार हैं और उनके साथ हैं रिस्क। इस बीच एक गेंद को पुश किया था लीड ने और एक रन अपने खाते में जोड़ा, 22 रन उनका व्यक्तिगत स्कोर हो गया। भारत ने आज अफगानिस्तान के विरुद्ध सेकेंड जो मैच खेला था 170 रन से जीता है भारत ने, और ये सूचना हमारी श्रोताओं को दी जा रही है कि आज जो मैच खेला गया था लखनऊ में, दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच था और उसमें भारत ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 170 रन के बड़े अंतर से अफगानिस्तान को पराजित किया है। 88 रन 3 विकेट के नुकसान पर 12.3 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। भारत और नीदरलैंड्स के बीच लीड्स के में खेला जा रहा T20 विश्व कप का ये मैच। एक बार ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को धीरे से स्क्वायर थर्ड मैन की तरफ खेला, एक रन और जोड़ा है, 89 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इस समय नीदरलैंड्स का स्कोर है और अगर उनको प्रति ओवर 16.50 रन की दरकार है, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है नीदरलैंड्स के लिए। और इस बीच क्रांति की अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को कट किया था, स्क्वायर थर्ड मैन की तरफ जा रही है बहुत तेजी के साथ, लेकिन अब जाके राधा यादव ने गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया विकेट कीपर एंड में, लेकिन तब तक बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था कि वो रन जुटा लेते। 2 रन और जुड़े हैं नीदरलैंड के खाते में। जिस तरह से गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जा रही थी, छिटकी थी वहां पर फील्डर के हाथ से, गली में खड़ी फील्डर के हाथ से लगकर गेंद गई थी स्क्वायर थर्ड मैन की तरफ, थोड़ी सी मुस्तैदी रखी जाती थी, ये कैच हो सकता था। इस बीच एक बार फिर से क्रांति की गेंद, अगली गेंद अच्छी गेंद थी इस बार, लेकिन बैट और बल्ले से उलझी गेंद, बहुत तेजी के साथ रन चुराते हुए डी लीड्स दौड़ी, वहां पर उनका व्यक्तिगत स्कोर हो गया। इसके साथ ही 25 रन 13 ओवर की समाप्ति पर 92 रन 3 विकेट के नुकसान पर नीदरलैंड्स का स्कोर।
1: No Indian bowlers have been tasked in this game, and a lot of cricket going around the world. India playing Afghanistan, and they won the game today, the second ODI by 170 runs. Good centuries from the captain, and of course the wicketkeeper. They're all hammering hundreds, and it was a comprehensive win for India. 402 when they batted first. Shubman Gill scored 154. And Ishan Kishan scored 124, and they won comprehensively. 170 runs is the margin of victory. So, 6 bowlers have been used, and one is indisposed, which is Sri Lanka. Otherwise, Kranti Grau has bowled 4 overs for 26. Nandini back in action now. 2 overs, 1 for 16 balls. She goes for the scoop, does well, beats the short final leg fielder. This will race away now. It probably should be stopped a few yards inside the fence by Sri Charani, a couple of runs here. The scoop has come into effect in this game well from Netherlands' point of view. It's one area where there's a lot of risk involved, but as a matter of fact, it fetches you more runs and disturbs the rhythm of the bowlers. And that takes lead. She's on 27 from 25, fast catching up with the half century scored.

0: be a strong contender in the T20 format, as a matter of fact. So right now, new ply is going to step into the centre. Ply briefly held over the exit of the captain, who's been stumped smartly by Ghosh, and off the bowling of Nandini, and one casualty in the inside with Patil, the off spinner. You know, just bowled one ball, and she had a nasty fall. She slipped, and she suffered an ankle injury. Say, over Dick. She's the new batter in, and the batter at the other side is Richke. Netherlands 96 for 4, one ball to go in the 15th over, and the target they're chasing now looks very unrealistic. 210. Nandini with the last ball of her third over, bowls fuller and lifted in the air, wide of Minon. It'll be cut off by Jemima Roderick. She does well to cover, have to run 15 metres. Couple of runs here, and after 14 overs, Netherlands are 4 for 98.
1: 14 ओवर की समाप्ति पर 98 रन पर 4 विकेट इस समय नीदरलैंड्स का स्कोर है, जो 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं। हीथ सीजर्स, स्कॉट स्मृति मंधाना, बोल्ड कीर्ति शर्मा 21 रन, मेलकन बोर्ड कॉट जेमिमा रॉड्रिक्स, बोल्ड दीप्ति शर्मा 15 रन, बबेट डेलीट, स्टंप ऋचा घोष, बोल्ड नंदी शर्मा 28 रन और स्टीव कैलिस, जिनको सैफ अली ने बोल्ड किया था 18 रन के स्कोर पर। और इस समय 4 विकेट जो गेंदबाजी का सिलसिला है, नंदी शर्मा ने 3 ओवर में 22 रन देके 2 विकेट लिए, शेफाली वर्मा ने 3 ओवर में 20 रन देके 1 विकेट लिया है, और पाटिल जैसा कि इंजर्ड होके चली गई थी, एक गेंद फेंकी थी, श्री चंडी ने 2 ओवर में 11 रन दिए, कोई विकेट नहीं, और दीप्ति शर्मा ने 2 ओवर में 18 रन देकर 1 विकेट लेने में सफलता हासिल की। तो इस समय नीदरलैंड जूझ रही है भारतीय आक्रमण के समक्ष। 14 ओवर का खेल पूरा हो चुका है, डिसीजन को रिव्यू किया गया है, देखना है, अंपायर ने तीसरे अंपायर की तरफ इशारा किया है, और तीसरे अंपायर अब टीवी पर देखकर, टीवी अंपायर लॉरेन एगेन बैग टीवी अंपायर की भूमिका इस मैच में निभा रही हैं, और डिसीजन जिस तरह से आपको हम निरंतर बता रहे हैं कि गेंद को स्वीप करना चाहा था और गेंद उनके बूट पे लगी है, देखना है गेंद बैठ के कहीं किसी किनारे, भीतरी किनारे से तो नहीं लगी, यही देखना है, और अगर नहीं लगी तो फिर उसकी क्या दिशा रही है, क्या गेंद स्टंप्स को छूकर निकल रही है या स्टंप्स के पास से निकल रही है, इन्हीं सब बातों का एक चिंतन होता है। और तीसरे अंपायर की तरफ से ये निर्णय किया जाता है। क्रिकेट में जब से रिव्यू सिस्टम आया है, बहुत से ऐसे मौके आते हैं जब बेहतरीन बल्लेबाज कई बार गलत तरीके से आउट दे दिए जाते थे, लेकिन बाद में इस तरह की कंट्रोवर्सीज निकलती रहती थी, लेकिन फिलहाल देखना है कि अब जाके पूरी तरह से संतुष्ट, मिडिल स्टंप पर गेंद टकराई है, लेकिन देखना है कि क्या निर्णय होता है। अंपायर ने अपना निर्णय दिया, आउट हो गए हैं बैटर, और ये अंपायर की उंगली उठी, इसके साथ ही क्रीज की पारी यहीं पर समाप्त हुई, और एक और करारा छक्का लगा है। रॉबिन रिस्क 8 रन पर आउट हुए हैं। LBW बोल्ड श्री चरणी, उन्होंने मात्र 3 डॉट गेंद बनाई, 1 रन उनके खाते में जुड़ा, और इस तरह से दक्षिण नीदरलैंड्स को एक और करारा छटका लगा है। और देखा जाए तो एक तरफा मैच होता हुआ विश्वनाथ ही नजर आ रहा है कि किस तरह से पहले टॉस जीतने के बाद एक मौका मिला था कि वो बल्लेबाजी करती, लेकिन उन्होंने बेटर समझा, उचित समझा ये कि हम पहले गेंदबाजी करें। भारत ने 209 रन का स्कोर उनके समक्ष दिया है।
0: Well, at times I probably will say it's match of the unequals, isn't it? One of the top ranked team playing a team which is new entrant, and a long way to go. Charney bowls and driven towards long off for a single. She's off the mark, Zwilling. She bowled well indeed, and takes Netherlands up to 99 for 5.
1: Zwilling ने अपना खाता खोला है, एक रन लिया है, जिस तरह से पिछली गेंद पर आउट हुआ था, अंपायर ने एक और आउट नहीं दिया, लेकिन रिव्यू दिया और उस पर भारत को सफलता मिली। 99 रन 5 विकेट के नुकसान पर इस समय नीदरलैंड्स का स्कोर है। ओवर डिस्क इस समय 2 रन के स्कोर पर खेल रही हैं। ज्वेलिंग ने 1 रन बनाया है और अब 111 रन पीछे है अभी भी नीदरलैंड्स की टीम भारत के मुकाबले, जबकि 34 गेंदों का खेल शेष रहा है। बहुत ही मुश्किल, कोई चमत्कार ही हो तो अलग बात है। इस बीच ये गेंद फ्लैटेड गेंद थी, सुरक्षात्मक तरीके से खेला, गुड लेंथ गेंद थी,

0: एक बार फिर से श्री चरणी को सफलता मिली कि उन्होंने मौका नहीं दिया बैटर को रन लेने के लिए। ओवर डिस्क इस समय खेल रहे हैं 2 रन के स्कोर पर और एक बार फिर से श्री चरणी गेंदबाजी करने के लिए राउंड विकेट एक कदम आगे बढ़ी, ड्राइव करना चाहती सीधा, लेकिन गेंद बन लेके बाहरी किनारे से लगते हुए थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: एक चौके से थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है लेकिन निश्चित रूप से ये मैच अब भारत की पकड़ पे मैं आ चुका है। श्री चरणी ने बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए इस ओवर में 1 विकेट लेने में सफलता हासिल की थी और अंपायर ने हालांकि उसको आउट नहीं दिया था लेकिन बाद में रिव्यू लेने पर उनको सफलता मिली। इस बीच ये गेंद ओवर पिच गेंद थी, ड्राइव किया था इसे लॉन्ग ऑफ की तरफ और इससे पहले की गेंद फील्ड की जाती है थ्रो किया जाता, 1 रन और उन्होंने अपने खाते में जोड़ा। हालांकि मिस फील्ड हुई 103 रन 5 विकेट के नुकसान पर। इस समय स्कोर है और 1 गेंद अभी भी शेष है श्री चरणी के इस ओवर की। 14.5 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। नीदरलैंड्स के बल्ले से अभी तक 104 रन निकले हैं, 5 विकेट का नुकसान उनको हो चुका है, आधी टीम उनके आउट होकर पेविलियन लौट चुकी है और भारत के लिए ये एक आत्मविश्वास भरी गेंदबाजी इस समय की जा रही है। अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, बैकफुट पर गए, गेंद को धीरे से पुश किया स्क्वायर लेग अंपायर की तरफ और इससे पहले कि गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाता, 1 रन और जोड़ लिया। 106 रन 15 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो गया है नीदरलैंड्स का।
2: So the game has gone one-sided, isn't it? Last 5 is coming up and it's certainly out of reach now. It's, the ask is around about 20 runs an over, so they don't see any of the best of the IPL games. And 209 in reply after 15 overs, 105 for 5. So Dee Lange, she bowled well. She bowled 4 overs for 32. And she was the best of the ball. She had 2 wickets in the game against Bangladesh too. She bowled 4 overs, 2 for 27, isn't it? In that game. It's going to be Deepti Sharma to bowl her 3rd over. Flights this one and it's lifted in the air, safe. It'll fall safe of the fielder Mandana at deep mid-wicket. In fact, it's not Mandana, I can tell you that. It's Radha. She fields in and sends in the return 106 for 5. And the last 4 overs and 5 deliveries coming up to complete the formalities of this game as they need 104 from 29. And Frederick Erdick, she's the one playing Richa Sharma. She comes in from close to some balls and she slocks the feet to this man, not with much power and timing. Again, Mandana in business, Radha in business. And one more to the Netherlands team. They go up to 107 for 5. But I tell you, by all means, for a team like Netherlands, you know, this is a massive experience for them. One is to qualify for the World Cup. They'll be very happy if they win one game in the in these qualifying matches. Next ball is defended up to short mid-wicket. Mandana, obviously, rather cowering for Harmanpreet Kaur. She's the fielder. And Mandana probably will be strong contender for the player of the match in this game. And the game has been a bit disappointing in the second half, I can tell you. The first half was more entertaining and enterprising. Next ball, she gets a thick outside edge. She's going down towards no women's land. And they run just a single. It was not timed. A thick edge that went sailing in the air and fell between mid-on and deep mid-wicket. They could cross over for an easy single. So that takes in Netherlands up to 108 for 1. 3 singles in this over. Deepti's having a nice little time. She tosses this one nicely. Again, slog swept, not with any timing. So these swipes, it's been looking very ugly, isn't it? These slog sweeps hasn't been as elegant as it has been. And most international wickets now is Deepti from India sharing with Goswami, 355. Magic figure indeed. Next ball, she's lifted this one high, ever long gone, and it's gone for 4.
1: Ye laga, abha ka choka.
2: Well, that's a welcome boundary from a Netherlands team point of view. 42-4 in this game so far, and at the end of 16 overs, it's 5 down for 113. Winning is out of equation now, Goswami, but I'm sure they're going to play for pride, they're going to play with a lot of passion.

0: And they're probably trying to narrow the gap and settle somewhere between 150 to 160 if all the wickets remain intact from a Netherlands point of view. But they'll be very happy if they win one game in the league games of this World Cup before they lay back for Netherlands.
1: 16 ओवर के बाद 113 रन 5 विकेट के नुकसान पर उठा दिया। इस गेंद को देखना है कि इसके पीछे फील्डर है कि नहीं, और इसके साथ ये कैच बहुत ही शानदार तरीके से एक और विकेट मिला है श्री चढ़नी को। और जिस तरह से श्री चढ़नी ने अपने ओवर की शुरुआत की थी और गेंद को थोड़ी सी फ्लाइट किया था, बल्लेबाज को आमंत्रित किया था, स्मृति मंधाना ने एक कैच और पकड़ा है। स्लॉट पे पड़ी थी गेंद और उसे उठा दिया था बिल्कुल, लेकिन पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पाई शॉट को। स्मृति मंधाना वहां पर खड़ी थी और एक शानदार कैच पकड़ते हुए इस बार एक और फ्रेडरिक ओवरडिस्क ने मात्र 9 रन बनाए, 7 गेंदों का सामना किया। कॉट स्मृति बोल्ड श्री चढ़नी 7 रन। इस समय छठा विकेट आउट हो गया है, 6 विकेट गिर चुके हैं और अब पूरी तरह से दर्शकों में भी उत्साह, तिरंगा लहरा रहा है मैदान में वहाँ पर। और निरंतर इंग्लैंड की धरती पर जहाँ पर बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग भी निवास करते हैं, ऐसे किसी भी मैच को वो से मैदान पे ज़रूर आते हैं। 97 रन की अभी भी ज़रूरत है नीदरलैंड्स को, लेकिन अब ओवर बहुत ही कम बचे हैं। एक तरह से मैच भारत की पकड़ में पूरी तरह से आ चुका है और अब राड आए हैं अगली बल्लेबाज के रूप में। अच्छी गेंद थी अंपायर की तरफ से, एसआरआरएस के साथ ही आउट, एक और विकेट मिला है। श्री चढ़नी ने इस गेंद को थोड़ा से हवा में फ्लाइट किया था और डीआरएस लिया है वहां पर। बल्लेबाज ने देखा कि जैसे ही उनको लगा कि कहीं उनका किनारा नहीं लगा है, श्री चढ़नी की गेंद को कट करना चाहती थी, लेकिन बॉल ने उनके बल्ले का एक बाहरी किनारा लिया या नहीं लिया यह अब डीआरएस के जरिए तय होगा। लेकिन भारत के खेमे में उत्साह, क्योंकि अंपायर ने अपनी उंगली खड़ी कर दी थी और अब देखना है कि बहुत नज़दीकी मामला है, उनकी बैट से लगी या नहीं। यहाँ से देखने पर तीसरे अंपायर के पाले में गेंद गई है अब, और जो मूल निर्णय है वो आउट का है अंपायर की तरफ से, और देखना है कि गेंद बल्ले से टकराई या नहीं। लेकिन बहुत ही बेहतरीन कैच विकेट के पीछे ऋचा घोष ने लिया है, और अगर ये परिणाम में बदलता है तो एक और विकेट नीदरलैंड का गिर जाएगा। बैट से टकराई है और अंपायर ने अब जाके अपने निर्णय को वापस बरकरार रखा है, और अंपायर ने दूसरी बार तीसरे अंपायर की सलाह पर अपनी, देखते हैं उंगली उठाई या नहीं। लेकिन लेकिन बैटर पेवेलियन की तरफ लौट रही हैं और धीरे धीरे कदमों से लौट रही हैं, अभी भी कुछ असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एक बार फिर से निर्णय को देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हवा की गति से जब गेंद निकलती है, कई बार तो ऐसा लगता है कि बैट से लगा है, लेकिन विकेट कीपर ऋचा घोष को पूरा कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास था, और अब जाके निर्णय अंपायर का, उंगली ऊपर उठी और राड जो कि शून्य पर आउट होकर पहली ही गेंद पर उन्होंने अपना विकेट गंवाया, और सातवां विकेट नीदरलैंड्स का गिर चुका है। और अब सीजर्स आई हैं बीच मैदान पर, और ये श्री चढ़नी लगातार 2 विकेट ले चुकी हैं, हैट्रिक पर हैं। देखना है अगर वो ये कमाल कर पाती हैं कि एक विकेट और वो अगर अगली गेंद पर लेती हैं तो एक बड़ी उपलब्धि उनके नाम पर जुड़ जाएगी। 16.2 ओवर का खेल अब तक पूरा हो चुका है, 113 रन 7 विकेट के नुकसान पर नीदरलैंड्स का स्कोर है, और अब कितने रन की आवश्यकता है सवाल यह नहीं है। अब सवाल यह पूछा जा रहा है कि भारत कितनी जल्दी इस मैच पर विजय प्राप्त करती है। इस बीच इस गेंद को ड्राइव किया था, लेकिन गेंद मैदान पर लुढ़कती हुई जा रही थी, गेंद को फील्ड किया, एक रन और खाते में जोड़ा है। सीजर्स ने अपना खाता खोल लिया है 114 रन 7 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में अभी भी 3 गेंदें शेष हैं और श्री चढ़नी अपनी कलात्मक गेंदबाजी से कितना कुछ कर पाती हैं। सीजर्स ने 24 पारियों में 69 रन बनाए, बहुत अच्छी बैटिंग कोई उनकी रिकॉर्ड में दिखाई नहीं दे रही है।

0: एक माइंडसेट होता है वो ये सोचते हैं कि सामने वाला अगर इतनी जल्दी आउट हो गया तो क्या बॉल इतनी आउटस्टैंडिंग आ रही है और क्या पिच में कुछ डिफरेंस है, तो ये मैटर करता है एंड हमें उस तरह का माइंडसेट भी बनाना पड़ता है.
1: इंडीड, एंड देयर इज अ लिसनर वेटिंग फॉर अस टू जॉइन हिम. लेट्स गो टू हिम.
2: हम आपको सुन नहीं पा रहे, अपना परिचय दीजिए.
3: हाँ नमस्ते मैडम.
2: नमस्ते, अपना नाम बताइए.
3: मैं आपका परिचय दे दूँ?
2: जी.
3: पालघाना का इंदौर से मोहम्मद अब्दुल मंसूर बोल रहा हूँ.
2: क्या सवाल?
3: महिला टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आगे भी इसी तरीके से वर्ल्ड कप जीत के जैसा 50 का जीता जिसका भी जीते. और मैं कहना चाहूँगा कि जो 50 ओवर में फाइनल खिलाया गया था उसी तरह से आगे भी मजबूत वो खिलाया
2: जी. धन्यवाद आपकी टिप्पणी के लिए. द सेम रूथलेसनेस इज व्हाट आवर लिसनर्स एक्सपेक्ट फ्रॉम द इंडियन टीम. साउथ अफ्रीका दो हैव सम इश्यूज, द मोस्ट प्रोमिनेंट वन बीइंग देयर नंबर 3 पोजीशन. व्हिच बैटर इज बेस्ट फिट फॉर दैट पोजीशन?
4: डिफिकल्ट टू से व्हिच बैटर, बट द पॉइंट इज दिस, द मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका विल बी एन एंटायरली डिफरेंट कप ऑफ टी. एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो, इफ यू डोंट फॉरगेट दिस इज द सेम टीम दैट वी प्लेड इन द 50 ओवर क्रिकेट, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज समथिंग दैट द स्कॉलर ऑल्सो मेंशन्ड. द इंटेंसिटी ऑफ दैट मैच विल बी एन एंटायरली डिफरेंट लेवल एंड दे हैव सो मेनी मैच विनर्स स्टार्टिंग फ्रॉम देयर कैप्टन. सो इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ नंबर 3 और नंबर 4, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ योर माइंड सेट गोइंग इन टू अ बिग मैच. राइट, टूडे इफ दे कैन बीट पाकिस्तान, अगर साउथ अफ्रीका पाकिस्तान को बर्मिंगहम में विन, इट विल बी बिग बूस्ट अहेड ऑफ दिस मैच. But the point is this, against a match against South Africa, Australia, I mean, the dressing room, in the Indian dressing room, their thinking will be completely different. They right. will forget what they have done against, you know, Pakistan or Netherlands. Yeah. So the, and don't think that they are a world beating side. They're a very good side, and they, and many of their cricketers play cricket in these kind of regions and are familiar with the conditions. Similarly, if you see, not many Indian cricketers actually are used to these conditions. Right. Because you see, Smriti Mandhana said something very interesting, that she played the 100. Okay, so these kind of conditions actually help them prepare better. That's why, do you think that Smriti Mandhana is not happy with her 250s? Is because she knows that the next set of matches will be very, very crucial. And if she can't middle the ball, bat agar balla mein nahi laga, that feel good factor is not there. The runs will not come because the bowling from South Africa will be very, very tough.
1: Right, and I think that
5: a lot will depend on the type of wicket that is provided. And in case it is a slightly spinning wicket, we have a good chance of beating South Africa.
1: All right, because Lees will also be waiting to rip the ball. So Shabnam Ismail is again someone who's quick when there's a little bit offerance from the surface. Now let's go to our listener. Ji, aap kahan se call kar rahe hain? Bataiye, aapka parichay dijiye.
6: Haan ji, aadab, namaskar.
1: Namaskar.
6: Ji, main Mustaqim Uta bol raha hu Gujarat se.
1: Ji, bataiye, aapka sawal kya hai?
6: Ji, पहले तो भारत मैच जीता, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी टीम को और ऐसी आगे भी जीतते रहे. बहुत ही उम्दा प्रदर्शन टीम का.
1: शुक्रिया सर.
6: और एक हमारे खिलाड़ी आज इंजर्ड हो गई, तो क्या उसकी आगे कमी खलेगी?
1: राइट, श्रीयंका पाटिल की इंजरी के बारे में पूछ रहे हैं.
6: रेडियो पे दे रहे हैं. हेलो सर
1: जी, बताइए.
6: हेलो, आप रेडियो पे कमेंट्री दे रहे हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं. लोकल रेडियो स्टेशन तमाम रेडियो पे कमेंट्री आ रहे हैं, मीडियम में भी, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं.
1: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया. और ऐसे लुत्फ उठाते रहे, हम यही उम्मीद करेंगे. वैशाली, आपसे रहेगा ये सवाल फिर कि श्रियंका पाटिल की कमी क्या खलेगी अब इंडिया को?
0: कहने के लिए खल सकती है, लेकिन हमारे पास बेटर ऑप्शन है अभी राधा यादव, एंड वो बेटर फील्डर भी हैं. जैसे मैंने बोला कि बैटिंग भी करती हैं वो, तो हमारे पास उसे उनसे थोड़ा सा बेटर राधा यादव है, एंड वो इम्प्रूव भी कर रही हैं. उनकी हम देखें तो उनकी बैटिंग पहले से बहुत इम्प्रूव्ड हो गई है, एंड बॉलिंग लाइनअप की अगर बात करें तो वो काफ़ी बेटर एंड क्रिप के साथ जो बॉल डालती है तो वो काफ़ी अनप्लेबल बॉल होती है. एंड अगर हम बात करूँ बैटिंग के लाइनअप की, जो अभी आप बात कर रहे थे थर्ड डाउन की, बट हमारे पास मिडिल ऑर्डर कहीं ना कहीं लैक कर रहा है, और वो साउथ अफ्रीका टीम के लिए हम उनके अगेंस्ट जब खेलेंगे तो वो

0: हमारे लिए कहीं ना कहीं लैक हो सकता है, क्योंकि मिडल ऑर्डर को बैटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी दो लास्ट टू मैच से दिख नहीं रहा है, नॉट इवन नॉट लास्ट मैच, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहां पर यास्तिका भाटिया या भारती की जगह जो भी खेलता है नेक्स्ट मैच में, उनकी जगह पे हरमन का आना बहुत इंपॉर्टेंट है आफ्टर जैमी।
1: बिल्कुल, और हमने देखा है कि भारत जब विकेट्स लूज करता है तो वो क्लस्टर में लूज करता है, खास करके मिडिल ऑर्डर में। साउथ अफ्रीका के विरुद्ध सीरीज गवाई थी, लेकिन साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में 4-1 से उस श्रृंखला में हार का सामना करना पड़ा था भारतीय टीम को। अभी कंडीशंस काफी अलग होंगे, लेकिन साउथ अफ्रीकन टीम नेट रन रेट में काफी पीछे। भारतीय टीम ने पहले दो मुकाबलों को बहुत अच्छे से भुनाया है इस वर्चुअल नॉकआउट से पहले। भू
2: नहीं, हमारी टीम अच्छा खेल रही है, दोनों जो मैच जीते हैं वो बड़े कन्विंसिंगली हमने जीत लिए हैं। एज फार एज साउथ अफ्रीका इज कंसर्न्ड, उनका अभी शबनम इस्माइल हैज जस्ट कम बैक इनटू द टीम फ्रॉम रिटायरमेंट, सो दैट विल मेक लॉट ऑफ डिफरेंस बिकॉज शी इज बॉलिंग क्वाइट वेल, शी प्लेज इन द WPL, शी नोज ऑल आर बैट्समैन बैट्सवुमन। सो मेरे को लगता है कि अगर हम शुरू के जो हमारे जो बैटर्स हैं वो 6 ओवर निकाल लें आराम से विदाउट लूजिंग मोर देन 1 विकेट, then we can get a good score against South Africa and then put them under pressure with our bowling. Bowling is quite good as far as the spinners are concerned.
1: Absolutely, और वॉलफार्ट शानदार फॉर्म में है, पिछले साल विश्व कप में 50 ओवर के विश्व कप में भी शानदार प्रदर्शन किया था और अभी भी रन बनाने की मशीन बनी हुई है।
3: क्वालिटी बैट्समैन है, देखिए पेडिग्री जो है ना वो आपको दिखेगा, वो रिगार्डलेस कि कौन फॉर्मेट में व्हाइट बॉल खेल रहे या रेड बॉल। देखिए मंदाना, हरमनप्रीत, मिताली राज पहले थे, इन तो दे हैव क्वालिटी, और क्वालिटी जिस बैट्समैन में पेडिग्री और क्वालिटी है दे कैन प्ले इन एनी फॉर्मेट ऑफ द, दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग कि नंबर 3 में कौन बैट करना चाहिए, राइट, बिकॉज टुडे यास्तिका डिड नॉट गेट द रन्स एज डिजायर्ड, बट दीस काइंड ऑफ मैचेस आर वेरी वेरी क्रूशियल, नोबडी विल लुक नॉट लुक एट रन रेट्स, दे विल लुक एट विक्ट्री 2 पॉइंट्स, राइट, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो यू गो विद अ प्रॉपर माइंडसेट, और इस तरह का मैच हम जीतने का कोशिश करेंगे, नॉट अबाउट रन रेट्स।
4: इट ब्रिंग्स अस टू अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट एट दिस स्टेज ऑन द 21st, कर्नल, इट्स गोइंग टू बी द इंडियन बॉलर्स वर्सेस साउथ अफ्रीकन बैटर्स, और डू यू थिंक द साउथ अफ्रीकन बॉलर्स वर्सेस द इंडियन बैटर्स, व्हाट डू यू थिंक विल बी द बिगर बैटल ऑन दैट डे?
2: आई थिंक द बिगर बैटल वुड बी द साउथ अफ्रीकन बॉलर्स वर्सेस द इंडियन बैटर्स, and I hope we do well, okay, and score over 150 and put them under pressure with our spinners.
1: और हमने देखा है कि साउथ अफ्रीकन गेंदबाजी में काप, जो कि काफी अनुभवी खिलाड़ी है, हालांकि बल्ले से योगदान आ रहा है, लेकिन गेंदबाजी में उनकी कमी कहीं ना कहीं खल रही है साउथ अफ्रीका को।
0: गेंदबाजी की बात करूं तो उसमें कहीं ना कहीं ना साउथ अफ्रीका का जो हमने लास्ट मैच खेला था वहां पे अगर देखा जाए तो फील्डिंग ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि दोनों साइड के बैटर बहुत अच्छे हैं एंड स्पिनर एंड बॉलर्स की अगर हम बात करें तो बहुत काफी है, बट यहां पे डिफरेंस होगा सिर्फ आपकी फील्डिंग को लेकर कि आप कैचेस को कैसे ग्रैब कर रहे हैं, आप फोर जहां पे आप फोर को स्टॉप कर रहे हैं वहां पे आप 2 रन्स दे रहे हैं, तो वो बहुत मैटर करता है फील्डिंग के अंदर, एंड साउथ अफ्रीका टीम के साथ हमें यही इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी रन्स जितने कम से कम दे सकते हैं उनको, वो तभी आप आगे जीत के लिए जा सकते हैं। एंड उसके साथ मैं एक चीज और ये कहूंगी कि जैसे आज नंदिनी शर्मा ने बॉल डाली, आउटस्टैंडिंग बॉल डाली, बट उसके साथ अगर हम उन दोनों के फर्स्ट एंड सेकेंड ओवर देखें तो वहां पर कहीं ना कहीं लेग साइड पे बॉल जा रही थी, एंड वो हमें इम्प्रूव करनी है। जब जीत हमें मिलती है तो हम गलतियां भूल जाते हैं, बट गलतियों को देख के अगर हम उसको इम्प्रूव करें तो वो हमें नेक्स्ट मैच के लिए विन दे सकती है।
4: इंडीड, और नंदिनी शर्मा की आपने जब बात की तो कीपर ऋचा घोष उनके लिए आगे खड़े हुए थे, क्योंकि बल्लेबाज चहलकदमी करने पर उतर आए थे ताकि झूलती हुई गेंद को बेहतर संभाल सके। क्या आगे जाते हुए भी हम इन कंडीशंस में इसी पैथरे को आजमाते हुए देखेंगे ऋचा घोष स्टैंडिंग अप?
0: जी बिल्कुल, ऋचा घोष मैंने हमेशा बोलती हूँ इंडियन टीम के लिए बेस्ट है, एंड उनकी बैटिंग ही नहीं उनकी कीपिंग भी आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि वो कहीं भी लेग साइड हो या ऑफ साइड हो वो हर जगह पे आपको डाइव लगाती हुई नजर भी आएंगी, एंड वो जिस तरह से अपना माइंड सेट रखती है उस तरीके से वो बॉल भी डलवाती है बॉलर्स को, वो इशारे से जो एक इशारा देते हैं हम विकेट कीपिंग की जगह पे खड़े होके, वो बॉलर को बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर एज एक टीम के लिए कीपर बैकबोन होता है, क्योंकि वो एक कीपर वहां पिच पे खड़े होके पूरे फील्ड सेट कर सकता है, सब

0: राणा और आर यादव प्रोडक्शन असिस्टेंट्स हैं, तन्मय पंत, अमीशा पटेल और कविता। और इसके साथ ही हम इस प्रोग्राम का यहां पर समापन करेंगे, वापस लौटेंगे 21 जून को भारत और साउथ अफ्रीका के मुकाबले के साथ। जुड़ते हैं आपके साथ शाम 6:30 बजे।
1: प्लेयर ऑफ द मैच।
2: अभी आप आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और नेदरलैंड्स के बीच खेले गए टी20 क्रिकेट मैच पर आधारित विशेष कार्यक्रम प्लेयर ऑफ द मैच सुन रहे थे।
3: यू हैव बीन लिसनिंग टू अ स्पेशल प्रोग्राम प्लेयर ऑफ द मैच ऑफ द टी20 क्रिकेट मैच प्लेड बिटवीन इंडिया एंड नेदरलैंड्स ऑफ द आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आपको सुनवा रहे हैं पैपॉन की आवाज में जोर लगा के हाई शाह इस फिल्म का गीत।

0: जोर लगा के हईशा। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाज थी पेपॉन की।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: उत्तर प्रदेश के प्रथम नैक ए प्लस प्लस मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
0: एक बार फिर हम हाजिर हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम लेकर। अब सुनिए तुलसी कुमार और अरिजीत सिंह की आवाजों में एयरलिफ्ट फिल्म का गीत।

0: तुलसी कुमार और अरिजीत सिंह की आवाजों में अभी आपने सुना एयरलिफ्ट फिल्म का गीत, और इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं, अब आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एमिया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
2: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं।
1: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति विरोधी

0: में जेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने पर सहमति जताई। G7 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने 3 महत्वपूर्ण घोषणा पत्र अपनाए हैं। इनमें संतुलित आर्थिक विकास, बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण और महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। पेरिस में वीवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनाम्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में शामिल होंगे। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कार्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमेरिकी कंपनी की विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है।
1: 2 प्लांट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और दे हैव स्टार्टेड इन गुड फुल स्विंग। 3rd प्लांट का इनॉग्रेशन जुलाई में होगा एंड बाय दिसंबर 4th प्लांट ऑफ सेमीकंडक्टर्स विल बी फुल्ली फंक्शनल कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग इन आर कंट्री।
0: इस बीच श्री वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। भारत ने लखनऊ में खेले गए दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 402 रन बनाए। शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारी खेली। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड को 95 रन से हरा दिया है। लीड्स में खेले गए ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 209 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।